ओम शांति। हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता हमारे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। भगवान के बच्चों की पर्सनालिटी कैसी हो जरा सोच लें। पर्सन जैसा वैसी उसकी पर्सनालिटी, चेहरे पर पवित्रता का तेज हो, नैनों में रूहानियत हो, होठों पर मुस्कान हो, मुख में हमेशा ज्ञान अमृत हो, अमृत की बरसात हो, भ्रकुटी से सभी के ऊपर रंग बिरंगी शक्तियों की पिचकारी पड़ती हो, हर कदम में पद्मों की कमाई हो, हाथ वरदानी हो, मुख भी वरदानी हो, ऐसी पर्सनालिटी हम सभी को अपनी बनानी है। जो आत्माएं अपनी वाचा को बहुत कम यूज करते हैं, 50 शब्द प्रयोग करने की जहां आवश्यकता हो, जहां वो 5 शब्दों में काम चलाते हैं, उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई योगी अगर इस तरह अपनी वाचा की शक्ति को बचाए तो उसे वाचा के सिद्ध होने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और पवित्रता तो हमारी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी है। बाबा ने कह दिया है, प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी का आधार है, क्योंकि जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, देव कुल की आत्माएं जिनके अंदर पवित्रता के बीज हैं, वो बाबा की ओर आकर्षित होती जाएंगी। हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाएं, ये विश्व सेवा का आधार भी है। हमारी प्योरिटी प्रकृति को संपूर्ण बनाती है, पावन करती है, सतो प्रधान करती है। प्रकृति भी तमो प्रधान है, इसलिए मनुष्य को कुछ भी प्रदान नहीं कर रही है। हम प्रकृति से अन्न भी खींच रहे हैं, फलों में स्वाद नहीं रहा है। प्रकृति खाली होगी, उसे हमें पूर्ण करना है, भरपूर करना है, और ये काम करेगी हमारी प्योरिटी। और हमारी प्योरिटी से जब प्रकृति पावन बन जाएगी तो वो हमें सब कुछ प्रदान करेगी। तो हमारी पवित्रता से ये संसार धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। और इन मनोविकारों ने तो संसार को कंगाल बना दिया है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर प्योरिटी का तेज बढ़ाकर इस प्रकृति को भरपूर करें, ताकि ये हमें भरपूर करे, ताकि हमारा भारत फिर से हीरो का मटका बन जाए, यहाँ धन धान्य अथाह हो जाए, किसी को कोई कमी न रहे, सब स्वस्थ हो जाएं, यहाँ सभी निष्पाप हो जाएं, सभी के अंदर पवित्रता का तेज आ जाए, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो जो हजारों में खड़े होते भी हम सबसे अलग दिखाई दें, चेहरे पर दिव्यता। सचमुच कितना बड़ा आकर्षण है। आज चाहे मनुष्य कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका मन उदास हो तो उसकी सुंदरता किसी को भी आकर्षित नहीं करती, प्रिय नहीं लगती। लेकिन किसी ब्राह्मण योगी आत्मा का चेहरा भले ही बाह्य रूप से सुंदर ना हो, लेकिन उसमें रूहानियत की सुंदरता हो, वह आत्मा सभी को आकर्षित करती है। तो हमें तो देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करना है बाबा की ओर। हम अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को बढ़ाते चलें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, जिसको भी देखें वो आत्मा है, और उसे हमें पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, इस वमन का अभ्यास करेंगे, और मुझसे पवित्रता की पिचकारी, सफेद रंग, गोल्डन कलर्स की पिचकारी, जिसको भी हम देखते हैं उसके ऊपर पड़ती है, ये बहुत अच्छा योगदान होगा पवित्रता का। सभी आत्माओं को इससे चार ओर का वातावरण भी पवित्र होगा, और अनेक आत्माओं को पवित्र बनने की
प्रेरणा भी प्राप्त होगी। तो हर घंटे में आज दो बार सभी को इस तरह पवित्र वाइब्रेशंस देने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। अच्छे दोस्ती के संबंध बनाना प्रसन्नता और खुशी का एक पक्का रास्ता है। हाल के अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों के मित्रों और रिश्तेदारों का एक बड़ा दायरा होता है, वे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं, ज्यादा हंसते हैं और कम चिंता करते हैं। परंतु मित्रता बाकी अच्छी चीजों की तरह समय, शक्ति और कर्तव्य निष्ठा मांगती है। पर ऐसी कुछ ही चीजें होंगी जो इससे बेहतर पारितोषिक देती हूं। जैसा कि एक दार्शनिक ने कई शताब्दियों पहले लिखा था, दुनिया में दोस्ती से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। जो लोग इसको जीवन से दूर रखते हैं वह उसी प्रकार हैं जैसे पृथ्वी को सूर्य से अलग कर दिया जाए, क्योंकि प्रकृति की अनमोल देनों से यह सर्वाधिक खूबसूरत और प्रसन्नतादायक है। कोई भी व्यक्ति जिनके तीन दोस्त हैं वह वास्तव में एक धनी इंसान है। इसे दिल से महसूस करने के लिए प्रयास कीजिए। गहन मित्रता स्थापित करने के लिए आपको अपने सुविधाजनक दायरे से निकलकर उन लोगों से बात करने की निष्कपट गर्मजोशी के साथ पहल करनी पड़ेगी, जिन्हें शायद आप अच्छी तरह से जानते भी ना हो। और आप अगर मित्रता के बीज बोएंगे तो आपको अवश्य ही उत्तम दोस्ती की फसल का लाभ प्राप्त होगा। हिम्मत दिखाकर उस इंसान तक जाइए, बात करिए जिसको आप जानना चाहेंगे और अपने से मिलवाना चाहेंगे। हर इंसान में प्रेम का एक गहन भाव होता है और लोग खुश होते हैं अगर आप खुद शुरुआत करते हैं। अगर वे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है। इसको उपेक्षा समझकर नहीं, बल्कि यह सोचिए कि इसमें उनका ही नुकसान है, और बड़ी विनम्रता से अगले इंसान की तरफ आगे बढ़िए जिसको आपके गुणों से फायदा हो सकता है।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने लिखा है, हर इंसान की परेशानियां अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती है। हम अपने जीवन को शोर शराबे की प्रक्रियाओं से भरने के आदि हो चुके हैं। हम रेडियो की तीव्र आवाज के साथ उठते हैं और टेलीविजन के समाचार के साथ तैयार होते हैं। हम जब काम पर जाते हुए गाड़ी चलाते हैं तो भी हम व्यापार की नवीनतम रिपोर्ट सुन रहे होते हैं और अगले 8 घंटे हम दफ्तर के कोलाहल में बिता देते हैं। जब हम दिन खत्म होने पर घर आते हैं तब हम फिर से अपनी शाम की प्रक्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं, जहां पीछे से टेलीविजन की आवाज, फोन की घंटियां, कंप्यूटर की भिन भिनाहट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। पास्कल ने सही लिखा था कि हमारी ज्यादातर चिंताओं की शुरुआत इस बात से होती है कि हम सब ने हर दिन थोड़ी देर के लिए भी अपने जीवन में शांत रहने के महत्व को भुला दिया है। बिना ध्यान रूपी गुण के संपूर्ण और परिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप एक क्रिया पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे और नहीं अपने स्वप्न बना पाएंगे और नहीं रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले पाएंगे। बिना मानसिक अनुशासन के तुच्छ विचार और चिंताएं आपका पीछा करेंगी और आप में कभी भी अपने आप को अधिक अर्थपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। बिना गहन मनोयोग के आपका दिमाग आपका मालिक बनकर आपको गुलाम बना लेगा। जिस दिन आप अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लेंगे उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मनोयोग कोई नए जमाने का अभ्यास नहीं है जो सिर्फ पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं तक सीमित है। इसके विपरीत ध्यान एक अत्यंत पुरानी पद्धति है जिसका विकास दुनिया के कुछ सर्वोच्च रूप से बुद्धिमान लोगों ने अपने मन का पूर्ण रूप से नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए किया था, जिसके द्वारा उपयोगी कार्यों में पूरे सामर्थ्य को लगाया जा सके। मनोयोग वह प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को वह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है जिसके लिए वह बनाया गया है, और इससे यह मूलभूत लाभ है जो शांति और निश्चलता आपको हर रोज 20 मिनट के ध्यान से मिलेगी वह आपके हर मिनट को प्रेरणा से भर देगी। आप दूसरों के साथ अपने संबंध कायम रखेंगे, दफ्तर में ज्यादा स्थिर और एकांत में ज्यादा खुश रहेंगे। मनोयोग आपको एक बेहतर माता पिता जीवन साथी व्यावसायिक व्यक्ति या मित्र में परिवर्तित करता है। आपको इस मन को अनुशासन सिखाने वाली 5000 साल पुरानी शक्ति की खोज करने में जरा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बस ध्यान का सही अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में लाइए। ध्यान करने में सिर्फ इतना ही करना है कि बस एकांत में बैठकर उस प्यारे प्रभु पिता को याद करना है, उनसे वह शक्तियां लेनी है जो शक्तियां हमारे जीवन को श्रेष्ठ

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

एक भारतीय राजा जो एक अजीब तरह की विधि का अभ्यास करता था। हर दिन उठने के तुरंत बाद वह अपना खुद का अंतिम संस्कार पूरे फूलों और संगीत के साथ करता था। पूरे समय वह यह जाप करता था, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया। आइए इस इंसान के इस विधि विधान का अर्थ समझें। यह महाराजा ऐसा प्रतिदिन करके प्रतिदिन अपना संबंध जीवन की नश्वरता के साथ जोड़ता है और अपना हर दिन इस प्रकार जीता है जैसे वह उसका आखिरी दिन हो। उसका यह धार्मिक कृत्य बहुत ही समझदारी दिखाता है और उसे इस सत्य की याद दिलाता है कि समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है और जीवन को स्पष्ट रूप से सिर्फ आज वर्तमान में जिया जा सकता है, न कि आने वाले कल में। इंसान में अपनी नश्वरता की चेतना अपने आप में एक बड़ी बुद्धिमत्ता का स्रोत है। प्लेटो की मृत्युशैया पर उनके एक मित्र ने उनसे उनके जीवन के महानतम कार्य द डायलॉग्स को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए कहा। काफी मनन के बाद उन्होंने सिर्फ दो शब्दों का जवाब दिया, मरने का अभ्यास करिए। प्राचीन विचारकों का कहना है कि प्लेटो के इस विचार को एक दूसरे प्रकार से भी लिया जा सकता है। मौत युवा लोगों की आंखों में भी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी वृद्ध लोगों की आंखों में होती है। हर दिन हमें व्यवस्थित करना चाहिए और उसे पाल पोस कर अपने जीवन को संपूर्ण करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में दाह संस्कार की प्रक्रिया आपको एक सच्चाई से जोड़ेगी कि समय एक अनमोल धरोहर है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से समृद्ध बुद्धिमत्ता और ज्यादा परिपूर्ण जीवन की शुरुआत सिर्फ वर्तमान

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट।

यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास समय की कमी है और एक घंटा जल्दी उठना शुरू करिए। आपके पास विकल्प है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। इस बात की असंतुष्टता प्रकट करना छोड़ दीजिए कि आपको अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम का समय नहीं मिलता। अगर हर रोज आप 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 घंटे का खाली समय हर हफ्ते होता है, जिसमें आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। इसका मतलब 252 घंटे हर महीने और 3024 घंटे प्रतिवर्ष हमें मिलते हैं, जिसे हम अपने जीवन के बाकी कार्यों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज्यादा बेहतर समय कभी नहीं हुआ है, जो इन अपरिमित संभावनाओं को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। जैसा आप अपने आप को रखना चाहते हैं पर वैसे खुश, समृद्ध और शांत नहीं है, तो इसके लिए अपने माता पिता, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना छोड़कर अपनी परिस्थितियों का पूरा दायित्व अपने ऊपर लीजिए। यह पहला कदम होगा जिसके अनुसार आप अपने जीवन को एक नवीन रूप में देखना शुरू करेंगे और वह आपके बेहतर जीवन की शुरुआत का बिंदु होगा। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा है, इस दुनिया में वे ही लोग आगे जाते हैं जो समय के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों को ढूंढते हैं जिनकी उन्हें तलाश है, और अगर वे उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो उनका सृजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों, अपनी अभिवृत्तियों, अपनी दिनचर्या और अपने समय के बारे में सावधानी से चुनाव करिए कि आप उसे कैसे बिताने वाले हैं। शिकायतें छोड़कर जीना शुरू कीजिए। कवि रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में, अगर आप अपनी शिकायत का 1 मिनट 60 सेकंड में दौड़कर तय की हुई दूरी से भर सके, यह दुनिया और इसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। तो मित्रों, आज से हम भी यह तय कर लें कि हमारा समय इन शिकायतों के पीछे व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बल्कि हम उन चीजों के पीछे लगाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो आज यह चीज देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य के बारे में अनेकों लोग अनेक प्रकार की राय रखते हैं। स्वास्थ्य के लिए अनेक पद्धतियां आज विश्व भर में व्यापक हैं। भारत में ही अगर हम देखते हैं तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद सबसे शिखर पर जाना जाता है। विश्व भर में आयुर्वेद की पहुंच है, उसका नाम है। आज हम एलोपैथी, होम्योपैथी, इन पैथीज को भी समझते हैं। साथ साथ भारत में सिद्ध, यूनानी, ऐसे अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। अब इन सारी पद्धतियों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना, उसके जो भी तकलीफें हैं उसे कम करना। और जब वैद्य इस बात को करता है, जब लोगों के कष्ट का वो निवारण करता है, तो ये उक्ति भी सुनने को मिलती है कि वैद्यो नारायणो हरिः, यानी वैद्य को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसे स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है। वैसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। भाव ये है कि स्वास्थ्य इतनी बड़ी पूंजी है कि अगर वो खो जाता है और उसे कोई व्यक्ति लौटा सकता है तो उसे ईश्वर के समान दर्जा देना, ये बताता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी पूंजी है हम सबके लिए। इस बात को समझकर उस स्वास्थ्य को खोने ही न देना, वो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, यही सहज स्वास्थ्य में हमारे चर्चा का विषय भी है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में एक ऐसे ही वैद्य जुड़े हैं जिन्होंने एलोपैथी की शिक्षाएं ग्रहण की हैं। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो आज चर्चा के विषय पर पहुंचे उससे पूर्व वैद्यों की या चिकित्सकों की जो ऊंचे दर्जे की बात कही जाए या उन्हें ऊंची नजरों से जो समाज देखता है वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में देखने को मिले। हालांकि हम देखते हैं कि सैनिक भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, पुलिस वाले समाज की व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए मदद करते हैं। हर एक प्रोफेशन, भले वो शिक्षक का हो या किसी भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो हर एक को एक सम्मान जरूर है, मगर चिकित्सकों के लिए खास तौर पर उन्हें ईश्वर के नजदीक की उपाधि दी जाना, कभी कभार तो मरीज डॉक्टर को कह ही देते हैं डॉक्टर साहब आप ही हमारे लिए भगवान हैं, ये कह देते हैं, तो क्या ये गौर करने वाली बात नहीं है कि आरोग्य कितनी ऊंची स्थिति है कि एक व्यक्ति अगर आपको आरोग्य वापस लौटा सके तो उसके लिए तो भगवान का दर्जा देना तो स्वाभाविक है।
1: सैनिक हमें सुरक्षा देते हैं और चिकित्सक हमें स्वास्थ्य देते हैं। जो पुरानी परंपरा थी, अगर हम इसे वैद्य में दें तो एक नगर वैद्य या एक गांव वैद्य की उपाधि मिलती थी जो आदमी को पूरे शहर या पूरे गांव के बारे में मालूम होता था। ये कहा जाता था कि उस वैद्य को हर घर में क्या बीमारी है, कैसे लोग हैं, क्या उसको दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ कहानियां भी हैं जिसमें वैद्य ये सुनता था, अच्छा उनके घर से आए हैं, ये बीमारी हुई होगी, उसको ये दवा दे दीजिए, बिना ये जाने, या ये औषधि दे दीजिए बिना ये जाने कि लक्षण क्या है। और यही चीज देखिए एलोपैथी में भी इस्तेमाल हुई और वो शब्द इस्तेमाल हुआ फैमिली फिजिशियन। अब आप थोड़ी हमारी पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे कि कोई बीमार होता था तो एक सूटकेस या एक रेक्टेंगुलर लेदर का डब्बा लिए एक बैग डॉक्टर साहब घर आते थे और वो एक बड़ी पुरानी लाइन बोलते थे, मैंने देख लिया है, बुखार उतर जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ दवाइयां लिख दिया हूं ले आइए। आपने एक और चीज नोटिस की होगी इन पुराने चीजों में, वो कहीं भी किसी टेस्ट की या ये मैं जांचे लिख दिया हूं करा लीजिए या मैं एक्सरे लिख दिया हूं करा लीजिए, इसके बारे में वो कोई बात नहीं करते थे। जो एक पुरानी पद्धति थी कि मरीज से बात किया जाए, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, हाँ, फिर उसके बारे में उससे बातचीत करके ही उस हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे कि उसको क्या बीमारी है। फिर मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ तो हम छू कर तापमान देख लालिमा है, टेंशन है, ये देखकर, और जब स्टेथोस्कोप बना तो लोगों ने आला रख के छाती पे देखा। हमारे पुराने वैद्य लोग तो इतने माहिर थे, हमारे यूनानी के जो जानकार थे वो इतने माहिर थे कि वो नब्ज देखकर बीमारी बताते थे। और मैंने यहां तक सुना है कि पुराने वैद्य जो महिलाओं को छूते नहीं थे, वो एक तागा बांध कर उसको छू के बता देते थे कि क्या है। ये कभी मैंने देखा नहीं, बट सुना है। एक इंग्लिश कहावत भी है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो वो समथिंग को जो आपको वापस कर सकता है उसकी बड़ी इज्जत थी। और एक मजबूत शरीर ही सबसे लड़ सकता है, वो परिस्थितियों से लड़ सकता है, पर्यावरण में लड़ सकता है, एवं जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उनसे लड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की। और अगर नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है ना, एक बीमार आदमी को गिराना बड़ा आसान है। तो इसीलिए अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो हमें अपने देश को स्वस्थ रखना है और बीमारियों से बचा के रखना है।
0: जब आप ये बात कहते हैं कि एक नागरिक के स्वस्थ रहने से देश स्वस्थ रहेगा, तो महात्मा गांधी की ये बात याद आती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होगा, तो शायद हम स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई अच्छी भागीदारी ले भी नहीं सकते, ना कुछ हम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही एक जागरूकता रही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर राष्ट्र के लोग स्वस्थ हैं तो वही राष्ट्र की ताकत है।
1: हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड। और हर बड़े से बड़ा डिसीजन पहले दिमाग से लिया जाता है। अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें टॉप 20 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में था, और मुझे जान के ये अच्छा लगा कि उन टॉप 20 में से 15 आर टेक कंपनीज। मतलब जो सिर्फ दिमाग दे रही हैं, वो कुछ गैजेट बना रही हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो कुछ प्रोसेसेस बना रही हैं, जो तो ये सोचिए दिमाग की कितनी वैल्यू है। और अच्छा दिमाग एक मजबूत शरीर में ही रहता है।
0: अब इस शरीर के स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इन चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है, इस पर हम चिंता करते हुए आ रहे हैं। कई लोग इन चिंतनों को सुन रहे हैं तो हमारे इन चिंतन की धाराओं से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लिए ले रहे हैं। पिछले दिनों जब हम बातचीत कर रहे थे कि आहार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है शरीर को स्वस्थ रखने में, और अगर हमें यही ना पता हो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो फिर हम अपने शरीर के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं और हम अपने ही स्वास्थ्य को खोने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये बात बताई थी कि विटामिन्स शरीर में कुछ ऐसा काम करती हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये भी आपने बताया था कि विटामिन्स बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, मगर वो कम मात्रा में भी अगर वो ना हो शरीर के अंदर, अगर वो ना मिले, तो स्वास्थ्य कितनी जल्दी बिगड़ सकता है, आप ये बात कह रहे थे। विटामिन ए के बारे में हमने जानकारियाँ हासिल की हैं। एक और विटामिन के बारे में आप आज हमें परिचय कराएं कि कौन सा ये विटामिन है जिसके बारे में हमें और ध्यान रखना है और समझना है।
1: हमारी विटामिन की श्रृंखला में हम लोग पहले उन विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा में घुल जाते हैं। तो हमने पहले विटामिन ए के बारे में बात की, और ए को हम जोड़ते हैं हर नारंगी चीज से। और अगर हमारा ए गड़बड़ है तो हमारी नज़र गड़बड़ हो जाएगी, और तो हमको कोशिश करना चाहिए कि विटामिन ए पूरा करने के लिए हमको जो भी नारंगी चीज़ें हैं और स्पेशली गाजर, उसका हमें सेवन करना चाहिए। इसी श्रृंखला में विटामिन नंबर दो विटामिन डी, और ये मैजिकल विटामिन है। ये सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल कम्युनिटी में, वो विटामिन डी है। और इसके बारे में इसलिए इतनी बात होती है क्योंकि ये मुफ्त में मिलता है और ये प्रकृति से मिलता है, और इसको अगर हम इसे धर्म से जोड़ के देखें तो ये सूर्य का आशीर्वाद है। इसकी कमी से जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं सिर्फ धूप सेकने से ठीक हो जाती है। विटामिन डी जो है, इसकी सिंथेसिस, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा कमी अगर किसी विटामिन की पूरी दुनिया में है तो वो विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसमें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी नहीं है, मगर वो इसको बनाने में हमारा मदद करता है। जो सूर्य की किरणें हैं वही विटामिन डी को बनाने की शुरुआत करती हैं, और मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इन दिस होल वर्ल्ड इज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी।
0: ये बड़ी मजेदार बात लग सकती है डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि भाई ये विटामिन मुफ्त है और ये विटामिन के लिए कोई पैसा खर्चना नहीं है, प्रकृति से मिलता है, सूर्य की किरणों से ये चीज बनता है। चलिए गाजर के बारे में आप कह रहे थे, विटामिन ए गाजर तो फिर भी खरीदना पड़ेगा ही, कभी तो सूरज की रोशनी खरीदने की नौबत तो नहीं आई। जब ये मुफ्त में मिल रहा है, सूरज हर दिन दुनिया के हर कोने में सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो ये बड़ी मजेदार बात लगती है कि अगर दुनिया की 60% आबादी, आधे से ज्यादा आबादी को अगर इस विटामिन की कमी है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जो मुफ्त में मिलते हुए भी हम कोई चीज को नहीं ले रहे। वरना तो हम सबको तो आदत है, कोई चीज मुफ्त है तो लोग पहले से हथिया लेते हैं।
1: भैया मजाक में तो ये तक कहा जाता है कि अगर जहर मुफ्त में मिल रहा तो वो भी रख लो, पता नहीं किस दिन काम आ जाए। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। जिन जगहों पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलता है, स्पेशली ठंडे देश, मैं इंग्लैंड में भी रहा और विंटर्स इन इंग्लैंड वर वेरी डार्क, और ये होता था कि जो सूर्य का प्रकाश जो था वो करीब 9:30 बजे हमें मिलता था, और करीब 2:30 बजे दोपहर में ही वो थोड़ी सी धुंधलाहट शुरू हो जाती थी और एक ग्लूमी वेदर जिसे कहते हैं वो होता था। और वही गर्मियों के समय सुबेरे 4:30-4 बजे सूर्य उदय होता था और रात में करीब 10:30-11 बजे तक सूर्य का प्रकाश रहता था। तो सबसे बड़ा पहला जो कारण है कि इसकी दुनिया में कमी है, एक जिन देशों में सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे आर्कटिक सर्कल के पास, जहां 6 महीने दिनों 6 महीने रात होती है, तो वहां इसकी कमी है। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण इसका ये है कि हम सब घर में बंद हो गए हैं, हमारी गाड़ी भी बंद है उसमें भी एसी है, हमारा घर भी बंद है उसमें भी एसी है, और हम जहां काम कर रहे हैं वो भी बंद है उसमें भी एसी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सन रेज की बात हो रही है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए, न कि एक कमरे में आप बैठे हैं और वो थोड़ा सा आपको उजाला दिख रहा है, तो वो गलत है। इट इज डायरेक्ट सन रेज। तीसरी जो सबसे बड़ा कारण है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये प्रकाश कहां लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मेरे चेहरे तो थोड़े सूर्य का प्रकाश पड़ गया, मेरे हाथों के ऊपर पड़ गया और हमको सनलाइट मिल गई। नहीं, ये आपकी पीठ पे पड़ना चाहिए और खासकर ऊपरी पीठ पर। और अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट आपकी पीठ पे पड़ेगी तभी आपके विटामिन डी सिंथेसिस में यह आपका सहयोग करेगी। एक बात समझिए कि हम और आप धूप में घूमने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले टोपी लगाते हैं। अच्छा, महिलाएं तुरंत अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लेती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आजकल तो चुन्नी से वो अपने आप को ऐसे ढक लेती हैं कि जैसे जो हमारे पुराने जमाने में हम लोग डाकू दिखाते थे, पूरा चेहरा ढका हुआ है। अच्छा, हाथों में सब ग्लव्स पहन लिया जाता है और हर आदमी इस होड़ में पड़ा हुआ है कि कैसे वो अपने शरीर को सूर्य के प्रकाश से बचा ले। हमने शाम को खेलना बंद कर दिया। हर बच्चा पहले दौड़ रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। जो कॉलोनी सिस्टम था हमारा वो खत्म हो गया। तो सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं रहा है लोगों को। मैं सबको एक सजेशन देता हूं जो मैं खुद करता हूं कि मैं सुबेरे जब सूर्य को जल चढ़ाता हूं तो चढ़ाने के बाद अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके करीब 5 से 7 मिनट तक खड़ा हो जाता हूं और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो विटामिन डी का जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। अगर आप गोरे हैं तो आपकी विटामिन डी की जरूरत जल्दी पूरी होगी और अगर आप डार्क स्किन्ड हैं तो आपके त्वचा में मेलानिन जो एक पिगमेंट होता है जो आप हमें त्वचा का रंग देता है वो अगर ज्यादा है तो आपको सूर्य का प्रकाश आपकी जो त्वचा है वो कम एब्जॉर्ब करेगी। तो आपको ज्यादा देर सूरज की किरणों में रहना पड़ेगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सूरज सबसे अच्छा है, किस समय का सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा है।

0: उस सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश या तो सुबेरे 9 बजे के पहले है या शाम को 5 बजे के बाद का है गर्मियों के मौसम में। और ठंडक के मौसम में जब भी आपको प्रकाश मिले आप इसको जरूर लीजिए।
1: जब आप ये बात कहते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये तो एक कॉमन सी बात होनी चाहिए, ये तो एक सामान्य प्रज्ञा की बात है कि हर व्यक्ति कॉमन सेंस से समझ सकता है कि भाई ये सूरज की रोशनी मिल रही है तो उसको लेना चाहिए। मगर जैसे आपने कहा कि कमी होने के कारण क्या है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, सूरज की रोशनी में खेल कूद नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, हम एसी में हैं, बंद कमरों में हैं, बंद गाड़ियों में हैं, तो सूरज की रोशनी अगर पड़नी भी चाहिए तो हमारी त्वचा पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो अब ये तो बात समझ में आती है कि हाँ कम से कम 5-7 मिनट तो सूरज की रोशनी लेनी है सुबह शाम का समय आपने बताया। साथ में ये भी बताएं कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये भी पता रहे।
0: सबसे जो जरूरी प्रिकॉशन है कि आपकी पीठ पूरी तरह से खुली रहनी चाहिए। कुछ माताएं बहनें कुछ लड़के ये बोलते हैं कि हमने पतली चुन्नी अपने पीठ पे डाल ली। मैं सबको बोलता हूं कि हमको सन लाइट चाहिए, सन की हीट नहीं चाहिए, हमें सूर्य की गर्मी नहीं महसूस होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी त्वचा चुनचुनाने लगे, आपको खुजली होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, तो प्लीज आप सूर्य के प्रकाश से हट जाइए। और तीसरा, आप करीब आधा गिलास पानी पी के सूर्य का प्रकाश लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जो पानी है वो पसीने के रूप में आपकी त्वचा को बचा के रखेगा और हल्का ठंडा करेगा, तो आप सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक ले पाएंगे। गर्मियों में दोपहर 12-1 बजे जब एकदम बुरी तरीके से सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, उसमें बहुत से लोग अवॉइड करते हैं और अवॉइड करना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो सुबेरे का सूर्य और शाम का सूर्य का प्रकाश गर्मी के लिए, और ठंड में आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। हाँ, ठंड में जब आप सूर्य का प्रकाश ले रहे हो तो प्लीज अपना स्वेटर उतार दीजिए, अपनी पीठ को थोड़ा खोल दीजिए, और ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि थोड़ा हाथ पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा चेहरे पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा मेरे पैरों पे पड़ गया, ये नहीं है, उसको पीठ पे ही चाहिए। आप देखिए कितने विदेशी समुन्दर किनारे वो अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके लेटे रहते हैं, किताब पढ़ते हैं और लेट जाते हैं रेत में। वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर लेते हैं कि ठंडक के समय में वो अपने शरीर को बचा के रखेंगे। ये फैट सॉल्युबल है तो ये लिवर में आपके स्टोर हो सकता है, इसीलिए अगर आप सूर्य का प्रकाश लेते रहेंगे तो आपके शरीर में ये बना रहेगा।
1: वैसे विटामिन डी के बारे में बात करते हुए ये बात समझ में आ रही है कि ये फ्री में मिल रहा है, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और कैसे इसे लेना है ये बात समझ में आई है। दोस्तों, मेरे मन में प्रश्न तो ये है कि विटामिन डी के फायदे क्या हैं, क्यों जरूरी है, नहीं लोगे तो क्या होगा, ऐसे आपके मन में भी होंगे ऐसे मैं समझता हूं, मगर घड़ी इशारा करती है कि यहाँ रुकना होगा। तो मैं डॉक्टर साहब से इन प्रश्नों को अगली कड़ी में मैं जरूर पूछूंगा, मगर आज विटामिन डी के बारे में जो जानकारी मिली है उसे लेने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, ये भी हम सबको पता चला है, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और अगर आपको फिर भी आप आगे पीछे सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए मुफ्त में मिल रहा है, तो जल्दी जाइए और सुबह शाम इस विटामिन को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है उसको लेने की शुरुआत करें। आज की बातचीत में इतना ही दोस्तों, आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन डी की अहमियत को समझा, उसका स्रोत क्या है और कितना समय हमें ये सूर्य की रश्मि में खड़े होकर सुबह और शाम या सर्दियों के दिनों में दिन भर कम से कम 5-7 मिनट हम अपनी पीठ पर सूरज की रोशनी गिरे इस बात का ध्यान रखना है ताकि हमें ये विटामिन डी की कमी ना महसूस हो। आगे की कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

इतने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेज करना है खुद अपने आप को। पिछली कड़ी को देखें तो एक मिनट की इम्पोर्टेंस की बात हमारे सामने आई थी और हमने अपने आप से वादा किया था कि हर एक घंटे बाद अपने मोबाइल पर या अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमें याद आ जाए कि वो एक मिनट हमने अपने लिए निकालना है। उसमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, ना पीछे का सोचना है ना आगे का सोचना है, सिर्फ अपने साथ, अपनी सही पहचान के साथ। और मैं कौन हूँ? मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक पावरफुल बींग हूँ, मैं एक लवफुल बींग हूँ। वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, और वो अनुभव हमें लगता है कि ज़रूर आप तक पहुंच रहा होगा कि कैसा आपका पूरा दिन गुजरता है। आज थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं और मैनेज सेल्फ को कैसे करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: मैंने तो सबसे पहले जाके यही किया था सिस्टर शिवानी, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों ने जिनसे हमने वादा लिया था कि ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते का अनुभव जो है वो हमने एक दूसरे के साथ तय किया कि हम देखेंगे हर एक मिनट के बाद, हर एक घंटे के बाद जो एक मिनट हमने अपने आप को दिया वो कैसा अनुभव करवाता है। एंड बिलीव मी, एक दिन के अंदर अंदर आई कैन फील कि आपकी वो थकान कम होती है और वो जो एनर्जी आपको हर एक घंटे बाद मिल रही है कहीं ना कहीं। पहले तो मुझे ये लगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, कि मतलब मैं सेल्फ टॉक है शायद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअली आप देखते नहीं हो, वो रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, पर वो एंड तक आते आते आप ठीक रहते हो।
1: दैट्स ऑल दैट इट इज, इट्स बेसिकली लिटिल रेस्ट, रेस्ट और साइकिल को तोड़ना, वो जो ऑर्डिनरी थॉट्स का साइकिल है उसको तोड़ना, ताकि कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना, ताकि फिर वो एक नया साइकिल शुरू हो जाए। यू नो, एक पॉजिटिव, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है पर होती नहीं है, तो वो अपने आप नहीं होगी ना, तो उसको कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग का साइकिल सेट हो जाए। अब कई बार भाई बहने कहते हैं नहीं होता है, बार बार एक घंटे के बाद एक मिनट नहीं निकाला जाता है, तो एक तो ये निकाला जाता है, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव, और फिर एक आधी बार अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं ना, जस्ट बिकॉज एक आधी बार मिस हो जाता है उसकी वजह से हम सारा दिन ही नहीं करें, हल्का रहें, टेंशन नहीं लेने, तो उसी की टेंशन हो जाती है कई
0: कि
1: बार
0: नहीं निकला।
1: स्पिरिचुअलिटी टू बी कि आप उसकी टेंशन ले लो कि मेरे से नहीं हुआ या मैंने नहीं किया, लेकिन एक बार शुरू में अटेंशन दे के करना पड़ता है, एक बार बेनिफिट होने लगता है तो यू नो थोड़े दिन के बाद, अबाउट लेट्स से 10 days, 10 दिन के आसपास के बाद आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। आपका बॉडी क्लॉक अपने आप आपको याद दिला देगा कि एक घंटा हो गया है, एंड इट इज सरप्राइजिंग। आप कभी देखो कि एग्जैक्ट एक घंटे के बाद आपको याद आ जाएगा, एंड आप देखोगे ना घड़ी में एग्जैक्ट एक घंटा हुआ होगा। इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, माइंड को आदत पड़ जाती है ना, जैसे लंच टाइम है तो पता चल जाता है।
0: इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि कई बार मेरा ना अलार्म नहीं भी लगा होता, 4 बजे एग्जैक्ट मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद 6 बजे भी एग्जैक्ट उठ जाती हूँ, इवन इफ अलार्म नहीं लगा,
1: तो वो बॉडी क्लॉक है।
0: और फिर मुझे जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे को याद आता है कि अच्छा ये 6 बज गए होंगे, एंड जब अलार्म बजा हो या नहीं बजा हो मैं देखती हूँ घड़ी तो 6 बजे हुए होते हैं।
1: सिमिलरली ये हर एक घंटे के बाद एक मिनट, थोड़े दिन सर्व करने के लिए अलार्म और ऐसे एक्सटर्नल मेजर्स की जरूरत पड़ती है। 8-10 दिन 15 दिन के बाद यू डोंट नीड टू पुट एन अलार्म एवरी टाइम ऑन योर फोन, वो आपको नेचुरली याद रहेगा। लेकिन अगर पहले नहीं किया और सोचे नेचुरली याद रहेगा हर एक घंटे के बाद, तो वो याद नहीं रहता है। हम सोचते हैं नहीं याद रहेगा मुझे, ऐसे नहीं याद रहता, वो एक पैटर्न को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो नेचुरल याद
0: रहता है। इनफैक्ट दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस कि हमारी ये जो बॉडी है ये वेट करती है कि हम इसे इंस्ट्रक्शंस दें,
1: माइंड भी वेट करता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें।
0: एक्चुअली यू नो ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि अगर हमने उसको करेक्टली क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं,
1: हम अपने मन को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, क्या सोचना है, कब सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या मुझे नहीं, हम क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हम समझते हैं मन अपने आप वैसे ही चलेगा, फिर वो वैसा नहीं चलता, वो तो यहाँ वहाँ का इधर उधर का सोचता है, फिर हम कह देते हैं मन तो बहुत चंचल है,
0: फिर किसी और की इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है ना, वो किसी फिल्म की इंस्ट्रक्शंस ले ली, कहीं और की इंस्ट्रक्शंस ले ली।
1: तो अगर मन को डिसिप्लिन करे, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि ना कईयों को लगता है मन को कंट्रोल करना तो इट साउंड्स वेरी यू नो वेरी स्ट्रेसफुल, कि जैसे मन को कंट्रोल करना, लेकिन एक सिर्फ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन भी नहीं कहे उसको, कहें एक राइट वे ऑफ थिंकिंग, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं निग्लेक्ट हुआ था, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपना ही मन है, अपनी बात क्यों नहीं मानेगा.
0: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं अपने ही बच्चे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे. वेरी ट्रू, इट इज सो ब्यूटीफुल, एंड इन फैक्ट इट कैन बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप.
1: या इट इज अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ. इसीलिए हमने कहा था पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट विद द सेल्फ, then with family and then with work. That is what.
0: और in fact यहाँ फिर management की बात आ जाती है कि self के साथ हमने relationship तो create किया, अब मुझे manage क्या करना है.
1: Actually जब हम school जाते हैं तो हम हमेशा कहते थे कि school में तीन basic चीजें सिखाई जाती हैं जिसको हम 3 hours कहते हैं, कि reading, writing एंड arithmetic. तो उसको हम हमेशा school में 3 hours कहते थे कि ये 3 hours basic होते हैं, reading, writing and arithmetic. ये अगर आप फाउंडेशन से सीख लेते हो तो आपकी पूरी जो एजुकेशन है और आगे आपकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है, वो 3 hours पे. तो जब हम स्कूल और कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं तो हमें लगता है वाओ द लर्निंग पीरियड इज ओवर, नाउ द फन पीरियड विल स्टार्ट. यू नो, सारी लर्निंग वाला जो फेज था मेरे जीवन का वो खत्म हो गया. तब हमें ये नहीं पता होता कि जो लर्निंग है वो एक्चुअली अब शुरू हुई है. अभी तो हम सिर्फ मेमोराइज कर रहे थे, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही थी, हमारी मेमोरी में हम भरते जा रहे हैं जिसको हम कहते थे मगअप कर दो, मेमोराइज कर दो चीज़ों को. लर्निंग तो अब शुरू होती है, विच इज़ द लर्निंग, द लेसन्स ऑफ लाइफ. कि जीवन में कई ऐसी बातें आएंगी जिनको हमें तुरंत अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, डिसीशंस लेने पड़ेंगे, वो हमने बहुत ज़्यादा उस यात्रा के दौरान सीखा ही नहीं होता. तो जो बहुत सारा आज हमारा स्ट्रेस और ये सब है, इसका मूल कारण ये है कि हमने वो वाली एजुकेशन नहीं ली है. हमारे जीवन के 4 पहलू हैं जिनको हमें इस जीवन की यात्रा के दौरान फोकस भी करना पड़ता है और उन पर इक्वल ध्यान भी देना पड़ता है. उसको हम 4 hours कहते हैं. जो ये 3 hours थे, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, एंड 4 hours हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड रिसोर्सेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेस. अब ये 4 को कैसे मैनेज करना है, ये हमें
0: नहीं आता,
1: किसी ने नहीं सिखाया नहीं. बेसिकली उस दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ना स्कूल में और ना घर पे. No one was teaching us that.
0: We were supposed... We're not even aware of them, you know, कि they exist. चलिए हम reading, writing, arithmetic को तो पता है हमें किस स्थूल रूप में है, लेकिन responsibility, आपने कहा
1: relationships, yeah.
0: roles और resources.
1: Yeah. कैसे इनको चारों को manage करना है. तो ज़्यादा जो आज हमारे को संघर्ष जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें शायद हमने सीखा नहीं या सिखाया नहीं कि अपने आप को कैसे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, रिलेशनशिप्स में कैसे यू नो मिलाकर सबके साथ चलना, किस समय पर कौन सा रोल प्ले करना, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कौन सी पहले जिनको मैनेज करना. बाहर की तो सब पता है रिसोर्सेज, लेकिन मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसको मुझे मैनेज करना है. तो सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये 4 पहलुओं को अपने जीवन में देखते, जिसमें सबसे पहले आती रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसमें हम यही कहेंगे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारा पूरा बचपन है या हमारे बड़े होने का प्रोसेस है, तो हमें ये सिखाया गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
0: बी रिस्पॉन्सिबल, हम बार बार
1: दें रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस, रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी, रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर योर friends, look after your brothers, responsible to do something, always. तो हमेशा जब responsibility की बात आती तो to do something, कुछ करने की जिम्मेवारी उठाओ, ये करने की जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी हमेशा कुछ करने के लिए थी. We never realized that responsibility was to be someone. It was always to do something.
0: I should become, like I should be somebody in the sense?
1: Let's say happy. So to be happy, is that a responsibility?
0: There's no way.
1: To be loveful. Did anyone teach me that is my responsibility?
0: No.
1: They every said, do this. This is your responsibility. Aaj ye kaam pura karke rakhna, ye aapki zimmewari hai. Apni padhai puri karna, itne achhe marks lena, ye aapki zimmewari hai. To zimmewari hamesha
0: karne mein
1: aate the. Lekin mujhe feel kya karna hai, mujhe andar kaise rehna hai, wo responsibility, jo karne wali shakti hai, जो मार्क्स लेने वाली भी शक्ति है, जो पढ़ने वाली भी शक्ति है, जो सारा काम जो ये करने वाली शक्ति है, उसको कैसा रहना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. that no one saw. So responsibility word only came outside.
0: Hmm. It was never in
1: The responsibility was always in doing, not in being. Now we are not human doings. We are human beings.
0: लेकिन responsibility में Shivani basically आप किसी को एक जिम्मेदारी जब दे रहे होते हैं सौंप रहे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं स्वमान बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर हम
1: See again you're going the other way around. आप जब कुछ कर रहे होते हो तब आपका स्वमान बढ़ रहा हाँ. होता है आपका स्वमान रख कर आपको वो करना है अगेन वी ट्राइंग टू लुक एट इट आउटसाइड इन कि ये करेंगे
0: तब आपको
1: तब हमारा स्वमान बढ़ेगा ये करेंगे तो आप खुश रहेंगे ये करेंगे तो ये होगा
0: नहीं बट जनरली अगर हम देखें तो पेरेंट्स भी या टीचर्स भी या आपके बॉस जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अगर आप करेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे
1: अच्छे स्टूडेंट तो डेफिनेटली माने जाएंगे जिस चीज पर आप जिम्मेवारी लेंगे वो स्किल तो आपके अंदर आ ही जाएगा डेफिनेटली इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट्स से बचपन में सिखाया गया स्कूल में टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी

0: of studying. Take responsibility of extracurricular activities. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर रूम क्लीन. लेट्स से एक बच्चे को हमें ये सिखाया जाता था, तो जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हम अच्छी तरह से करके दिखाते ना. नाउ व्हाट अबाउट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पीसफुल? व्हाट, हु विल टीच मी दैट?
1: आई डोंट इवन नो दैट आई कैन बी रिस्पॉन्सिबल. सी, अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि मैं इस कमरे को क्लीन कर लूँ, तो वो तो मैं कर सकती हूँ.
0: टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग योर माइंड. See, so responsibility, definitely, जहां आप जिम्मेवारी लेंगे आप वो कर लेंगे. यही अगर हम यहाँ भी जिम्मेवारी ले लें
1: तो वो तो, oh my God, if I look at it, it's like it's somebody else's responsibility and nobody even bothered.
0: Someone else's responsibility. कि मेरे मन की स्थिति against it went out to that. It was someone else's responsibility. तो what happened? Doing, doing, doing में करते करते हम वो जो being है उसको तो भूल ही गए. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू डूइंग, तो वी बिकेम मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स. अगर आप अपना सारा काम बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप एक बहुत जिम्मेवार हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वो सारा काम आपने दर्द में रहकर किया, सो विल आई से दैट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आई वॉज रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग बट नॉट रिस्पॉन्सिबल इन बींग. तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये नहीं कह रहे कि बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सारा काम करने वाला कौन? तो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो जो करने वाला है अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर वो बाहर जो काम करेगा वो भी तो अच्छी तरह से ही करेगा. इट कैन नेवर गो रॉन्ग. इफ इट इज द बीइंग इज हेल्दी, द डूइंग विल ऑटोमेटिकली बी हेल्दी. लेकिन बीइंग को याद ही नहीं कि वो बीइंग है और वो सिर्फ डूइंग डूइंग डूइंग में आ गया, तो उसका सारा फोकस डूइंग में हो गया.
1: और हम कितनी बार कहते हैं कि मुझे जो भी हो रहा हो मैं सब कुछ ठीक ठाक तो कर रहा हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां तो उठा रहा हूँ, मुझे जो हो रहा है फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन मैं बाहर तो सबके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ.
0: अब मेरा जिम्मेवारी है घर को संभालना. मेरे अब बड़े हो गए ना, तो अब जिम्मेवारी क्या है? ऑफिस में काम करना. कोई बात नहीं, टेंशन हुई तो कोई बात नहीं, गुस्सा हुआ था, जिम्मेवारी क्या थी? सो जितना वो ड्रिल इन हो गया डूइंग डूइंग डूइंग, तो वो डूइंग को करने के प्रोसेस में वो जो बीइंग था वो कितना निग्लेक्ट हो गया. तो इसलिए काम तो सारा अच्छी तरह से हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन द बीइंग पार्ट, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये करना है, ये करना है, ये करना है, बच्चों को बड़ा करना है, ऑफिस का काम करना है, करना है, करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी. तो मैं वो सब कुछ करती गई. ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि मुझे अपना ध्यान रखना है. तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिल, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया था
1: कि अपने के ऊपर तो काम करना ही नहीं है,
0: वो तो मतलब that was not a topic discussed at all ना.
1: We didn't even realize कि ऐसा कुछ हम कर भी सकते हैं, अपने ऊपर भी सोच सकते हैं.
0: तो बचपन से ही मुझे responsibility शब्द हमेशा बाहर कर्म से ही related था, कि अगर आप ये जो आपको काम दिया गया है अगर आप इसको ठीक से कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं,
1: आप गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो, अगर आप ये काम ठीक से कर ले.
0: सो दैट वाज डूइंग. नाउ स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस दैट यू आर अ बीइंग, यू आर नॉट अ ह्यूमन डूइंग. तो आपका सारा फोकस डूइंग पे नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग मींस टू बी. एंड जो ये बीइंग है, दिस इज एट द कोर ऑफ ऑल द डूइंग. तो अगर ये बीइंग स्टेबल नहीं होगा तो जो आप सारा काम करेंगे वो भी अफेक्ट हो जाएगा.
1: तो हम कितनी गलत फहमी में जीते जाते हैं एंड वी कंटिन्यू टू डू, और हम सबके लिए करते जाते हैं. मतलब आई नो सो मेनी पीपल, दे कीप ऑन वर्किंग फॉर अदर्स, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके लिए,
0: अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं.
1: हाँ, और वो कहते और खुद कंटिन्यूस दर्द में. तो इट्स नॉट एक्चुअली राइट.
0: They have to ask themselves, yeah, if that is the right.
1: And they feel कि नहीं, मैं किसी को कुछ कह तो ना रहा हूँ.
0: क्योंकि हमें लगता है हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं.
1: सारे काम तो कर रहा हूँ ना जो so-called ज़रूरत.
0: क्योंकि जिम्मेवारी की लिस्ट में ये नहीं था. जिम्मेवारी की लिस्ट में सारा बाहर वाला कर्म था. That's why we said nobody taught us as a child. Nobody taught us in school कि self responsibility भी कोई चीज है. क्योंकि self बाहर था. सेल्फ मतलब कौन? एक स्टूडेंट. सेल्फ मतलब कौन? एक मदर. सेल्फ मतलब वाइफ. तो वो वाइफ, वो मदर, वो स्टूडेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: निभा रही है, हर तरह के उसको काम करते हुए कर रही है.
0: तो वो एक सेल्फ का गलत आंसर होने से आई एम ऑल दीज रोल्स, तो मैं रोल सारे अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कर रहे हैं, लेकिन हु एम आई? वो आंसर नहीं हुआ तो वो सेल्फ पर ध्यान नहीं गया. अब जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो बीइंग है दैट इज़ एट द फाउंडेशन. सपोज लेट्स से आप एक दिन सुबह एक ग्रम्पी से मूड में उठते हैं, यू नो योर मूड इज़ नॉट वेरी गुड, उस दिन सारा कुछ भी अगर अच्छा होता जाए तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा. इवन इवन योर डूइंग पार्ट सब कुछ ठीक हो रहा है, बट इफ़ योर मूड इज़ नॉट राइट नथिंग विल गो राइट फॉर यू. अगर आप एक दिन उठते हैं व्हेन यू आर वेरी स्टेबल इन द मॉर्निंग, अगर उस दिन कितनी भी परिस्थितियां आ जाए,
1: यू आर ओके.
0: सो दैट मींस व्हाट इज इट, दिस इज द बीइंग, दिस इज द डूइंग. तो फाउंडेशन किसके हाथ में है? बीइंग के हाथ में. अगर बीइंग कमजोर है आज तो सारा जो डूइंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आज बीइंग स्टेबल है तो कितना भी मुश्किल डूइंग उसको करना पड़े तो भी वो आराम से हो जाएगा. सो द बीइंग इज एट द कोर पार्ट ऑफ इट. तो एज वी ग्रो अप हमने बहुत सारी बातें सीखी, हमें इतना कुछ सिखाया गया, मैकेनिकल चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जीवन को लेके सब कुछ सिखाया गया, लेकिन ये नहीं किसी ने सिखाया कि जो इमोशनल डायमेंशन है दैट इज एट द कोर. वो है जो सारे डिसीशंस लेगा, वो है जो एटीट्यूड बनाएगा, और उसी की क्वालिटी फिर एक्शन में आएगी. ये किसी ने नहीं सिखाया. हम जैसे जैसे बड़े होते गए हम स्पेशलिस्ट बनते गए बहुत सारी फील्ड में, कोई क्रिएटिव के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, हम उधर बाहर तो स्पेशलिस्ट बन गए. लेकिन व्हाट अबाउट हेयर क्रिएटिविटी विद माय कॉन्शियसनेस, वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया. जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे हम डिग्रियां तो लेते गए, डॉक्टरेट्स भी लेते गए, ये सब किस काम में आ रही है? मुझे धन कमाया जा रहा है ताकि मैं अपने जीवन को चला सकूं. लेकिन ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि ये जो कोर वैल्यूज हैं यहाँ पर, ये मेरे हर रिश्ते को और मेरे हर निर्णय को इन्फ्लुएंस करेंगे. तो एवरीथिंग दैट आई वाज बीइंग टॉट वाज आउटसाइड. यहाँ तक के सोशल लेवल पर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि हम समाज के लिए जिम्मेवार हैं, हम विश्व के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन हम स्व के लिए जिम्मेवार हैं
1: नहीं. एक्चुअली हमें तो हाँ किसी ने बताया भी नहीं. ऑफकोर्स यही कि somebody actually has to tell us. तो somewhere वही परमात्मा आके बता रहे.
0: That is why. तो कहीं ना कहीं उल्टा हमने सोचा कि हम अपने लिए तो जिम्मेवार हैं नहीं. It went the other way round कि मेरी जिम्मेवारी तो दूसरे ले रहे हैं.
1: और कितनी बार तो हम बोलते हैं मेरी जिम्मेवारी तो वो भी लेगा ना.
0: Yes.
1: भगवान लेगा.
0: Yes. The self responsibility means I am responsible for all my creation. Thoughts, feelings, belief, attitude, perception, ये मेरी responsibility है. Self responsibility means चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा response, मेरी responsible. That is why it is called responsibility.
1: How do I
0: ability to respond. That is responsibility. The word itself has the meaning. Responsibility. लेकिन हमने उसको सारा बाहर करके, तो उसमें शब्द में कितना सुंदर है कि आप किस तरह से परिस्थिति को रिस्पोंड करते हैं वो आपकी जिम्मेवारी है. तो इसलिए लेकिन फिर कई बार हमें लगा कि कैसे हो सकता है ये मेरी जिम्मेवारी कैसे हो सकती है. आज विश्व में इतना कुछ हो रहा है. लेट्स से हम जहाँ रहते हैं वहाँ टेररिज्म है. लेट्स से मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अर्थक्वेक हो गया, वहाँ कुछ एपिडेमिक फैल गया. डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू रिस्पोंड? यस, मे बी इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोज हमें लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है. लेकिन ऐसे सिनारियों में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टेबल रहेंगे, जिनका पूरा ये ध्यान है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या हो रहा है, फिर भी मेरा अगला थॉट, मेरा अगला एक्शन, उसकी क्वालिटी मैं डिसाइड करता हूँ. वो अपने आप को परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जीवन में सिचुएशंस तो
1: आती रहेंगे,
0: आने ही वाले हैं, लेकिन मुझे कॉन्शियसली अपना रिस्पॉन्स चूज करना है. ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट इज वाई बी सेड सेल्फ फर्स्ट. जहाँ आप अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट बनाएंगे अब अगली बार कि मेरी कौन कौन सी जिम्मेवारियाँ हैं, तो उसको टॉप किससे करेंगे?
1: सेल्फ.
0: एंड दैट्स वाई बी सेड सेल्फ, फैमिली, वर्क. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूँ. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक की तो परिवार अपने आप ठीक होगा, तो वर्क प्लेस अपने आप ठीक हो जाएगी. तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे इनकल्केट करें, उसके लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने कई बार रिपीट की है, एंड दैट इज़ यू आर द क्रिएटर. ये भले अब जितनी बार बोलने से, बार बार बोलने से लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो औरों को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बार बार हर रोज हर पल ये याद रखना पड़ेगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट फीलिंग एक्शन.

0: could be as simple as ye barish kyun ho rahi hai, ye koi barish ka mausam hai. You know, something as simple as that. Now, what I'm trying to do is
1: any kind of irritation, actually. Yes. Yeah.
0: Now, this is my discomfort, but I blame the weather. Yes. Because I'm trying to control that which is not in my control. Weather is not in my control. Lekin bar bar, kaisa mausam ho gaya? Kitni garmi hai? Kitni ye hai? Now, this is a series of negative thoughts. Hai, accept karo. Jaise hi accept kar loge, wo aapko utni takleef nahi degi jitna aapko lagta hai. To isliye ek din ke liye check kare ki chote mote bhi jo reactions hote hain, bade bade to ho hi rahe hain, usko to aap stop karke dekhenge. लेकिन छोटे छोटे भी अगर आप रिएक्ट करते हैं, देखेंगे कि हम किसको ब्लेम कर रहे हैं. मौसम को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को, परिवार को, किसी ना किसी को, या फिर उसको भी ब्लेम कर देते हैं. तो जैसे ही किसी को किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा हो गए, तो उस पल हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ एट दिस टाइम.
1: इनफैक्ट इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तब भी हम ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेवार हैं उसके.
0: Absolutely.
1: कोई और किसी, तो हम डिपेंडेंट नहीं हो जाते फिर किसी.
0: Absolutely.
1: के मतलब अगर हम देखें ये कि बहुत सुंदर कोई फूल देखते हैं, या बहुत सुंदर कुछ हम प्रोग्राम देख रहे हैं, या बहुत अच्छा नज़ारा कोई देख रहे हैं, और हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, या हमारे अंदर जो फीलिंग क्रिएट होती है, इट मींस उसकी जिम्मेदारी भी मेरी हुई ना, मैंने क्रिएट किया.
0: एब्सोल्युटली. हर चीज तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं. दर्द भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, लव भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं. तभी तो हम कहते हैं सो पावरफुल हियर, कि आपको किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं.
1: तो मैं जो कुछ भी एक्चुअली फील करता हूँ, मेरी अपनी क्रिएशन है.
0: एवरी थॉट
1: व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ नहीं है. लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि कुछ एक के साथ हम अच्छा फील, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ अगर, तो मैं कुछ के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ के साथ बहुत परेशानी वाली.
0: हाँ, वो हम देखेंगे जब रिलेशनशिप्स में देखेंगे, कि वो भी तो मेरे अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना, उनके प्रति. मेरा आपके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, तब मैं आपके साथ उस तरह से फील करूंगी. लेकिन वो भी फीलिंग किसने क्रिएट की?
1: मैंने
0: क्रिएट की. आपने नहीं क्रिएट की. You don't have that power. आप जो हैं जैसे हैं. अब मेरा आपके प्रति जो दृष्टिकोण होगा, मेरी जो वृत्ति है आपके प्रति, I will create the feeling immediately. या तो आपको याद करते ही वो फीलिंग आ जाएगी, या आपसे मिलते ही वो फीलिंग आ जाएगी. बट इट इज बेस्ड ऑन मैंने आपको किस कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया हुआ है.
1: Yeah.
0: So the first point to remember is this, that I am the creator of all my thoughts, feelings, attitudes, beliefs, perceptions. दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, सारी मेरी अपनी क्रिएशन है.
1: वंडरफुल. यहाँ से हम जो है एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव में लेना शुरू करेंगे कि मैनेजमेंट, क्योंकि जहाँ हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वहाँ फिर वो मैनेजमेंट का प्रोसेस भी आसान हो जाता है. इससे शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू शांति.
1: अगर देखें तो अमेजिंग, लाइक अभी तक हम सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार अपने आप को मानते थे कि ये मेरी जिम्मेवारी है, चाहे वो ऑफिस का काम है या कोई प्रोजेक्ट है. लेकिन हम सबसे ज़्यादा भूले हुए थे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रति हमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होना चाहिए, और वो हम खुद. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपने प्रति जिम्मेवार हो सकते हैं. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में हो सकती हूँ. अगर हम देखें तो हम ये भी कहते आ रहे हैं अभी तक कि बच्चे, अगर हम बच्चे हैं तो जब हम छोटे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हमारी वाइफ है, मैं वाइफ हूँ सपोज, तो मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो तो, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तो अगेन इट्स सो पावरफुल. यू नो, कितना आसान हो जाएगी ज़िंदगी अगर मैं खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगी. और यहाँ से शुरू होगा कि इट मीन्स कि पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ. तो एक दिन के लिए हम ये ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट उसको देखें और क्रिएट करें जब भी, कि मैं कौन हूँ, और उस थॉट प्रोसेस को साथ लेकर.
0: और अगर रिएक्ट करें कभी भी सारा दिन में, तो तुरंत स्टॉप करके अपने आप को याद दिलाएं, आई एम रिस्पॉन्सिबल.
1: नो वन एल्स, इसका मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई है. तो मैं आंसरेबल भी अपने आप को हूँ, जिम्मेवार भी अपने लिए हूँ. वेरी ट्रू. तो यहाँ से एक नई सोच, एक नया बदलाव शुरू हो सकता है. और इनफैक्ट जो छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी हम डिप्लीट हो रहे होते हैं, यहाँ उसको स्टॉप किया जा सकता है. कोई ऐसी बात, कोई सवाल आज की कड़ी से जुड़ा है, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं

0999-344-555, 0999-344-666, 0999-744-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सारी निभाते हुए भी अपने साथ आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये बात आज आप अपने साथ करते जाएं, और उसके बाद फिर जैसे अनुभव हमें होते जाते हैं हम साथ शेयर करते जाते हैं, तो आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मंगल दिवस की मंगल कामनाएं करते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है और 30 जून 2026 आज का तारीख है। और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948 शके 9 गति 16 आषाढ़ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मंगलवार पूर्वाषाढ़ा इस्लामी हिजरी 1448 मरहम मंगल नईम आज है। आज विशेष हुल क्रांति दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी आज है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस भी आज है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी आपको सीधे मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी का जो है विशेष हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, भाई जी नमस्कार। जब आप आ जाते हैं तो हमारे को भी हनुमान जी जैसे नाचने का मन हो जाता है। नाचेंगे तो हमारा कैसे चलेगा और रेडियो मधुबन में हमारी आवाज कैसे पहुंचेगी सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस बहाने तो हम हनुमान जी के साथ में और आपके साथ में मिलकर के नाचने का मन होता है ना सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, झूम झूम कर नाचे हनुमाना ये गाना भी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पहले हनुमान चालीसा सुनाते हैं, उसके बाद फिर हनुमाना को जुमाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया गुड़ीलाल जी याद करने के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं हनुमान चालीसा की तरफ। आज मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ सबके दुख भंजन हो जाए, सब दुख से मुक्त हो जाए।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:30 हो रहे हैं, आप हो हमारे साथ नई ग्रहण इस कार्यक्रम में। और चलिए बातें करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। और छम छम ना झरे हनुमाना, ये गीत भी मिल गया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज के दिन विशेष के बारे में, हुल क्रांति दिवस के बारे में बातें करें। तो ये 30 जून को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक विशेष रूप से स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 मानी जाती है, किंतु इसके पहले भी झारखंड राज्य के संतल तारंगन में संतल हुल और संतल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। और सिद्धू तथा कन्हू दो भाइयों ने भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 यानी 2 साल पहले को वर्तमान साहिबगंज जिले के बदनाहेड गांव में शुरू हुआ इस विद्रोह के मौके पर सिद्धू ने घोषणा की कि करो या मरो अंग्रेजो हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजो हमारी माटी छोड़ो, ये विशेष रूप से जो है नारा दिया गया था इन दो भाइयों के साथ में। और इसमें सिद्धू जी ने ये विशेष नारा दिया था। और ऐतिहासिक ये बताता है कि इतिहासकारों के अनुसार संतल पारंगन के लोग शुरू से ही वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी और सरल होते हैं। इनका जमींदारों और बाद में अंग्रेजों ने खूब लाभ उठा। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने राजस्व के लिए संतल पहाड़ियों तथा अन्य निवासियों पर माल गुजारी लगा दी थी। और इसके बाद न केवल यहाँ के लोगों का शोषण होने लगा बल्कि उन्हें माल गुजारी भी देनी पड़ रही थी। इस कारण यहाँ के लोगों में विद्रोह पनपना शुरू हो गया था। और कहानीकार ये भी कहते हैं कि नागपुरी साहित्य और इतिहासकार पीवी केसरी के अनुसार विद्रोह भले ही संतल हुल हो परंतु संतल पारंगन के समस्त गरीबों और शोषित द्वारा शोषकों अंग्रेजों और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध आजाद आंदोलन था। इस जन आंदोलन के नायक भगनाहेड निवासी भूमिहीन किंतु ग्राम प्रधान चुन्नी मंडी के 4 पुत्र सिद्धू कन्हू चांद और भैरव थे। और उसमें से सिद्धू और कन्हू दोनों जो ने विशेष रूप से इस लड़ाई में भाग लिया। केसरी जी आगे कहते थे कि इन चारों भाइयों ने लगातार लोगों को असंतोष को एक आंदोलन रूप दिया। और उस समय संतलों को बताया गया कि सिंधु को स्वप्न में बोंगा जिनके हाथों में 20 अंगुलियां थी ने बताया है। और जमींदार महाजन पुलिस राजदेन आमला को जुग्गू कामड़ अर्थात जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी आमलों का नाश हो, बोंगा की ही संतल लोग पूजा अर्चना किया करते थे। इस संदेश को डुग डुग्गी पिटवा कर स्थानीय मोहल्लों तथा ग्रामों तक पहुंचाया जाता था। इस दौरान लोगों ने साल वृक्ष की टहनी को लेकर गांव-गांव की यात्राएं शुरू की थी। तो इस तरह का ये आंदोलन जो है इन चार भाइयों ने शुरू किया था। और इसमें सिद्धू को विशेष रूप से सपने में बोंगा दिखाई देता था एक देवी के रूप में, और उनके द्वारा उनकी उंगलियाँ 20 थीं और वो जो भी शोषण करते हैं उनका नाश हो इस प्रकार ये प्रार्थना होती थी। हेलो जी नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश जी बोलता हूँ, जताना से। कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया। सुरेश जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं आपको।
0: बहुत बढ़िया,
1: सुन रहे हैं, अच्छी बातें भी हो रही है।
0: जी जी जी।
1: और बस हमारा तो वही काम है, सुबह आते हैं रेडियो शुरू हो जाता है, शाम तक चलता है, और अच्छी अच्छी बातें आप सभी से सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और थोड़ा सा अभी हमारा रेडियो मधुबन में सुना होगा क्योंकि हमारे कमलेशगंज जी आता था, वो हमारे गुलाटी लाल जी आते थे। तो बहुत अच्छा लगता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो गाने गाते थे ना बहुत अच्छा लगता था।
0: बिल्कुल,
1: गाने
0: बिल्कुल।
1: इतने बढ़िया गाते थे हमारे कमलेशगंज जी और जी, हमारे गुलाटी लाल जी। तो चलो अच्छे और मेहमान को जरूर पकड़ के लाना।
0: आएंगे आएंगे, कोई ना कोई आएंगे,
1: कोई बात हो जाए और अच्छी अच्छी एक वहाँ से भी हम अच्छी बातें सुन पाए, नए नए बातें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलो कमलेशगंज जी को भी हमारा नमस्ते, शायद सुन रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं आपको।
0: बिल्कुल,
1: और मंगलवार है, कल तो पूनम थी, बहुत अच्छा दिन। तो कल भी हमारे एक मंदिर हम गए थे दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारे केसर भवानी का जो मंदिर है हमारे गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ हम गए थे कल, क्योंकि गर्मी तो बहुत थी, फिर भी इतनी भीड़ थी वहाँ मंदिर में कि लोग चाहे कितनी भी हो, लेकिन जितनी गर्मी कितनी भी हो, लेकिन जो आते हैं लोग दर्शन करने के लिए तो आते ही हैं। इसके लिए कोई पैदल चल के आते हैं, कोई साधन में आते हैं, कोई आस पास के लोगों से आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। उस मंगलवार है तो मंगल का गाना तो आपने सुना दिया हनुमान जी का, तो एक और गाना भी सुना देना, मंगल मूर्ति मारुति।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है सर। हमारे गिरिलाल जी कंचन भाई, हमारे भूरीलाल जी से भी हमारी बात हो गई है, भूरीलाल बहुत अच्छे बातें बताते थे
0: जी जी। तो
1: भूरीलाल हमारे गुराराम जी, शायद गुराराम जी और भूरीलाल दोनों एक ही नाम से नाम में कोई फर्क ज्यादा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में गलती हो जाती है। तो गुराराम जी के भी हमारा नमस्ते, राम राम, नमस्ते सर, नमस्ते, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर सा गीत, छम छम नाचे हनुमाना आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चम चम नाचे हनुमाना, ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे। और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधु, जैसे कि गुड़ीलाल जी ने इस गीत को याद करा था तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे होम क्रांति के बारे में। हुआ ऐसे था कि होम क्रांति में जो चार भाई थे उन्होंने मिलकर ये आंदोलन शुरू कर दिया था। और संतल में विशेष रूप से सभी गांव-गांव घूमकर उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार किया कि आज से हम लोग टैक्स नहीं देंगे, माल गुजारी नहीं देंगे। और फिर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और 30 जून 1955 को 400 गाँव के लगभग 50,000 आदिवासी लोग विशेष रूप से एक जगह एकत्रित हुए। आंदोलन का सूत्रपात हुआ और फिर चार भाइयों ने लोगों को संबोधित किया और इस सभा में घोषणा कर दी गई कि माल गुजारी अभी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कन्हू, चांद तथा भैरव इन चार भाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा गया। तो संतरिया ने उनके जो लोग थे वो पुलिस जैसे आई और दरोगा एक जहाँ उनको पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए आया, तो सभी संतली जो आदिवासी थे उन्होंने उनको जो है उस पुलिस को मार दिया, जिसके कारण सरकारी अधिकारियों में एक आंदोलन को लेकर भय पैदा हुआ। और फिर अंग्रेज जो है इस चीज़ के लिए वो और घबरा कर और तैयारियां करने लगी और बागलपुर की सुरक्षा जो है कड़ी कर दी। और इस क्रांति के संदेश के कारण संतल में अंग्रेजों का शासन लगभग खत्म हो गया था। अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए इस क्षेत्र में सेना फिर भेजी गई और जमकर आदिवासियों के बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। अब पुलिस का शासन हटाकर शासन लागू किया आर्मी का। और फिर इस क्षेत्र में जो सेना आई वो जमकर जो है आदिवासियों को गिरफ्तार करती रही और उनको जेल में डाला गया। तो इस तरह से फिर आंदोलनकारी भी इस चीज़ को नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया गया। और इस तरह से आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा पुरस्कारों की भी बाद में घोषणा की गई। और इस तरह से विशेष रूप से भैरव शहीद हो गए, इसमें चांद शहीद हो गए और फिर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद संतल को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजाती रही और लोग लड़ते रहे। तो इस तरह से ये जो है 1855 में आदिवासियों द्वारा पहली बार अंग्रेजों के लिए आंदोलन शुरू किया गया। तो ये थी कुछ कहानी आज की होम क्रांति के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर सा गीत आपके लिए। आज कर 50 मिनट हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ नई किरण में। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

जहां जहां राम नाम की धुन गूंजती है, वहां वहां संकट हरने वाले पवन सूत हनुमान स्वयं चले आते हैं। राम के चरणों में जिनका हर पल ध्यान है, आओ आज हम सभी भक्त मिलकर उसी वीर उसी बलवंत राम भक्त हनुमान का मिलकर गुणगान करें। प्रेम से बोलिए बजरंग बली महाराज।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जैसे कि मंगलवार है और हनुमान जी के खूबसूरत भजन आप सुन रहे हैं, और वक्त हो गया है अब समाचारों का, तो पहले समाचारों की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। 30 जून तो दिल्ली से सीधे समाचार सुनेंगे अभी।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1st दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी 1st दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
5: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
7: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
10: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब 1 महीना 2 महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए समाचारों के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सांसद दिवस आज है, 30 जून को विश्व स्तर पर यह दिन मनाया जाता है। ये दिन सांसदों की उन प्रक्रियाओं को चयनित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों को रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है। साथ ही यह संसदों के लिए चुनौतियों का सामना करने का और उनको प्रभावी तरीके से निपटाने का भी एक स्टॉक करने का एक मौका भी होता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद की गई थी। इसके अलावा ये दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि को चयनित करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन है जिसे 1890 में स्थापित किया गया था। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च संस्था है, इसी के माध्यम से आम लोगों की विशेषता अभिव्यक्ति जो है मिलाई जाती है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है और संसदीय शब्द का अर्थ ही है एक लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे हम संसद कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस के रूप में। चलिए विस्तार से और जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको सीधे मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम। सुनते रहो बस कराते रहो।
11: न जाओ छोड़ कर

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। देवानंद और साधना का बहुत ही प्यारा सा गीत, हम दोनों इस एल्बम का 1961 का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें हो रही थी सांसद दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय दिवस के बारे में, जो विशेष जिनको मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने बातें की। और ये विशेष रूप से अंतर संसदीय संघ अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी देशों की संसद तथा सांसदों के बीच एक समन्वय और अनुभव के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने का दिन होता है, जहां पर विशेष संवर्धन में योगदान देने की साथ ही प्रतिनिधित्व संस्थाओं से विशेष रूप से विकास में योगदान देने के लिए किया जाता है। दुनिया के सभी देशों के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर एक साथ एक छत के नीचे बैठकर बात करते हैं, काम करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। और यही चीज़ें सब जगह 1870 से 80 के दशक में जून 1888 में अमेरिका सीनेट में और अन्य संबंधित परिभाषित कमेटी प्रस्तावों में इस बात का फैसला किया जाता है। और फ्रांस के चैम्बर ने फ्रेडरिक पेसी के प्रस्ताव पर बहस करने की स्वीकृति प्रदान की थी। शांति बहाली के लिए भी ब्रिटिश सांसद विलियम और कैमरन ने फ्रेडरिक पेसी को चिट्ठी लिखकर एक संयुक्त बैठक रखने का प्रस्ताव दिया था। तो इस तरह से ये एक बहुत ही बढ़िया दिन है, जहां पर जनता की बातों को विशेष रूप से अमल में लाने के लिए कार्य किया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो उसे पारदर्शी जवाबदेही होने का भी काम यहाँ पर किया जाता है। तो आई आगे बढ़ते हैं, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
1: बुरा राम बोल रहे हैं रमेश भाई।
0: बुरा राम जी बोलिए, स्वागत है आपका।
1: आवाज बराबर नहीं आ रही
0: है
1: तो? आवाज नहीं आ रही बराबर।
0: किसका आवाज नहीं आ रहा है?
1: अभी सुना दे रहा है थोड़ा। अच्छा, आपको और सब मधुबन भाइयों को बुरा राम की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।
0: जी जी, राम राम।
1: अच्छा अच्छा, और आज ये मंगलवार है।
0: बिल्कुल मंगलवार है, तो हमने हनुमान जी के भजन सुनाए आपको।
1: अच्छा, ये का कुछ और
0: जी जी जी जी।
1: अच्छा, ओके सर।
0: जी जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये थे हमारे बुरा राम जी, जिन्होंने आप सभी से बातें की और याद भेजा है। और उनको रेडियो थोड़ा सा ठीक नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा कुछ है तो आप भी फ़ोन करके बताइए, आपको रेडियो ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं। तो 9:29 हो गए हैं, और वंदना जी भी हमारे साथ है, वो भी आपसे रूबरू होंगे कुछ ही पल में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, जो तीसरी कसम इस एल्बम का है। और मुझे लगता है कि ये गीत तीसरी कसम का आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: देश का और अफसर आज बन मंदिर 7.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है नए किरण इस कार्यक्रम में। और आज तीसरी कसम इस एल्बम का ये गीत आपने सुना दुनिया बनाने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वंदना जी कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग रमेश जी और गुड मॉर्निंग लिसनर्स, मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: जी जी बढ़िया बढ़िया। हम लोग कल अक्रम जी को आपने बुलाया था तो उनके साथ बातचीत हुई, कल उनका शो भी रिकॉर्ड किया और तरुण जी से तो हमारे सभी श्रोता बंधु मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो मेरे गुरुजी हैं और इंटरनेशनल फेम की हस्ती हैं, वो इंटरनेशनल फेम के।
0: जी जी जी।
1: और मेरे गुरु हैं और एट प्रेजेंट मैं उनसे सीख ही रही हूँ।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सेवा की है, बहुत बहुत बधाई आपको।
1: थैंक्स टू गॉड।
0: जी जी जी।
1: करवाने वाला परमात्मा होता है, तो सिर्फ माध्यम होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसने मुझे माध्यम बनाया बस।
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज होल क्रांति दिवस है और फिर इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस भी आज है और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी है। तो चलिए संसदीय दिवस के बारे में हमने बातें की, अब शूद्र ग्रह के बारे में बातें करते हैं। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रो डे के रूप में जाना जाता है, मतलब ग्रहों के दिवस के रूप में 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एस्ट्रॉइड के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2017 से हो गई। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड डे के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 30 जून 1908 को रूस की तुगुसाका नदी के पास में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे शूद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण शूद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून को ये दिन मनाने की शुरुआत हो गई और तब से लोगों को ये जागरूकता किया जा रहा है कि भाई आसमान में जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रॉइड से अगर टकरा देते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसकी जागरूकता रहे लोगों के बीच में और कुछ अनुमान अगर पहले से पता चल जाता है इस ग्रह के बारे में या उस क्षेत्र के बारे में तो वहाँ के लोगों को बचाया जा सकता है या उस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। इसके लिए ये जागरूकता दिवस खास अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी वंदना जी।
1: जी बताइए
0: और सुनाइए हमारे श्रोताओं को, आप भी गीत वगैरह सुनाते तो कोई अच्छा सा गीत आपका पसंदीदा सुनाइए हमारे।
1: आज आप मेरी पसंद का सुना दीजिए, कल मैं जरूर श्रोताओं को सुनाऊंगी। आप डिमांड करेंगे वो सुना दूंगी।
0: अच्छा,
1: आज आप मेरी पसंद अपनी पसंद का कोई गाना मेरे लिए सुना दीजिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: अब तो कौन सा अपनी, सब अच्छे गाने हैं मेरे पास।
1: अपनी पसंद का गाना मेरे लिए।
0: चलिए मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनाता हूँ, बढ़िया सा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। जी हां, इसी का नाम है। राज कपूर एंड नूतन पर पिक्चराइज किया गया मुकेश का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे अभी। श्री अनाई इस एल्बम का ये गाना था जो अभी आपने सुना। बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह के बारे में और ये क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया आपको। सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ ऐसा खगोलीय पिंड विचरण करते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टान पिंड है जिसका विशेष, जिन्हें शूद्रगा या एस्ट्रोट कहा जाता है अंग्रेजी में, बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्रीय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कई लोग इसे उल्का पिंड भी कहते हैं और कुछ लोग एस्ट्रोट कहते हैं। और ये सूर्य के चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिर जाते हैं और गिर कर बच जाते हैं, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वहीं शूद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने से पहले ही सौर ऊर्जा से जल जाते हैं, उन्हें उल्का पात्र कहा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं। हालांकि भारत में पृथ्वी से टकराने की घटनाएं काफ़ी कम होती हैं, लेकिन बाहर के कुछ इलाकों में ये ज़्यादा पाया जाता है। आमतौर पर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जो कि सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आ जाते हैं। ये क्षेत्र जहां शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पहले एस्ट्रॉइड की खोज साल 1801 में हुआ था। खगोल शास्त्री गुडसेप याजी ने इसको किया था। फिर उसके बाद आंतरिक वैज्ञानिकों की तरफ से अब तक खोजा गया सबसे बड़ा शूद्र ग्रह मानव जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास के बारे में मुख्य रहस्य रखने के अलावा इसके एस्ट्रॉइड के बारे में यह भी माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में संसाधन रखते हैं जो मानव जाति के उपयोग के लिए काम आ सकते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। जी वंदना जी, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं।
0: जी जी जी, बताइए हमारे सभी श्रोताओं को कुछ।
1: आपकी बार जो मेरा आना हुआ तो ज्ञान सरोवर में जो अपना कल्चरल विंग का प्रोग्राम चल रहा था अपने, वो तो खत्म हो गया है। तो उसमें मैं अपने गुरुजी को लेकर आई थी और जैसे इंटरनेशनल फेम के हैं वो, तो वहाँ जो अगर जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके भी कनेक्शन में कोई कोई भी हस्ती इस समय है और वो अगर चाहते हैं ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू मतलब जुड़ना, तो वो अपने हमारे यहाँ आकर अगर अपनी अरेस्ट रहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किस तरीके से उनको एक मंच दिलाया जाए। तो वहाँ जो मंच मिलता है तो उसकी पहचान तो ऑब्वियसली होती है। तो मैं अपने गुरुजी को लेकर गई थी, हालांकि वो बहुत फेमस हैं, लेकिन फिर भी जब हम परमात्मा के घर में आते हैं तो वो जो परिचय होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। और जैसे उनकी मैसेज भी साथ में थी और उन्होंने वहाँ जो सब कार्य व्यवहार होता है हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका, उसको देखा। वहाँ की साफ़ सफाई इतनी अच्छी है वो वहाँ देखा। और वहाँ आचार व्यवहार जो किस समय किस तरीके से हमारी ब्रह्मा कुमारी में सब लोग करते हैं उसको, ऑल दो एंड ही उस्ताद अकरम खान तो डिफरेंट जैसे है रिलीजन होने के कारण, वो सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी उनको बहुत अच्छा लगा, शांति को बहुत महसूस किया। दीदियों से मिले बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर उनकी रिकॉर्डिंग

0: वगैरह भी हुई, जब शांतिवन यानी कि बाबा के घर में जब आए तो इतने बड़े कारोबार को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना बड़ा कारोबार किस तरीके से चल रहा है, कोई किसी को बता नहीं रहा है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं कर रहा है, सब अपने अपने जैसे ऑटो मोड पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर उनका स्टेज पर भी स्वागत हुआ था कल मुरली के बाद, तो और फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए भी वो गए थे। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा सारी चीज़ों को, भोजन को उन्होंने जैसे खाया जो हमारा ब्रह्मा भोजन होता है, तो बहुत उनको अच्छा लगा वो खाकर, क्योंकि ये तो परमात्मा का प्रसाद होता है। तो बहुत मतलब वो इतनी अच्छी फीलिंग्स यहाँ से लेकर गए थे, और ये बोलकर गए थे कि हम बार बार आए, और जो शांति हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने करुणा भाई जी से मिले थे या बड़ों से जितने मिले थे, उन्होंने यही स्टेज पर भी यही बोला कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो दुनिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो रमेश जी, वो तो आपको पता है, जो भी बाहर से आते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ
0: परमात्मा
1: थोड़ा
0: के
1: सा
0: शांति का सुकून का जो अनुभव वो लोग करते हैं, तो सभी के लिए
1: वो
0: होता है।
1: बिल्कुल
0: तो उन्हें
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा और बोल कर रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बार बार
1: दोबारा
0: यहाँ
1: वापस
0: आता
1: आऊँ।
0: रहूँ।
1: जी
0: तो उनको इनविटेशन भी मिला है। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनकी पहचान में भी कोई है तो आप ला सकते हैं उनको स्टेज पर, और दीदियों से अपने सेंटर के थ्रू मिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा उनका।
1: जी, वंदना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। अरे आज कल्याण जी वीर जी शाह इनका जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे। भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे। कल्याण जी, कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पे फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, और वर्ष 1954 में एक फिल्म आई थी नागिन। नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध उन्होंने किए थे, और फिर यहाँ से उनकी जो है ट्रैक शुरू हो गई, और भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने वाले श्रेय जो है इलेक्ट्रॉनिक संगीत को शुरू करने का श्रेय भी कल्याण जी को जाता है। 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी,
2: नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को, नवी किरण को, रमेश जी को और हमारे सभी शो को। आज जरा मौसम जरा सुस्त है और आवाज जरा कुछ प्रोग्राम आवाज आता था कुछ नहीं आता था, शुरू शुरू होता था। तो आज
1: बारिश आने वाला है ना, इसलिए मौसम सुस्त है।
2: आज बारिश आने वाला, बरखा रानी जरा
1: जम के बरसो।
2: तो रेडियो मधुबन को और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है, जिनका भी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत नमस्कार, ओम शांति। और गाना सुनते हैं,
1: जी
2: संगम पिक्चर का गाना है। किस बात से नाराज हो, किस बात का गम, किस सोच में डूबी हो तुम, बन जाएगा सुंदरम तेरे दिल के मंदिर में। नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मदन जी आपका। चलिए, ये थे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बात है आपने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कल्याण जी के बारे में बातें कर रहा था, और इनका जन्म आज ही के दिन 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ जिले में कुंडवोड़ी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम वीर जी शाह था, और कल्याण जी बचपन से ही संगीतकार बनने का सपना देख रहे थे और देखा करते थे। हालांकि उन्होंने किसी उस्ताद से संगीत की दीक्षा नहीं ली थी, अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए थे, और फिर हिंदी फिल्म जगत में सफल संगीतकार जोड़ी में से एक कल्याण जी आनंद जी, ये किराने की दुकान पर नून तेल बेचने की जिंदगी गुजार रहे थे, मगर एक तंग हाली ग्राहक ने उधारी चुकाने के बदले इन्हें संगीत की तालीम देने की पेशकश की। तो वीर जी ने फिर उनसे संगीत लेकर संगीत की दुनिया में बड़ा नाम किया। तो आइए ऐसे ही संगीत से सराबोर कल्याण जी आनंद जी का एक गीत आपके नाम।

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, चैन से महबूबा होगी। ये बहुत ही सुंदर गीत आपने अभी सुना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद ये गीत था। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका आज जन्मदिन है 30 जून के। तो 30 जून को भारतीय राजनीतिक और राज्यसभा के सांसद है भूपेंद्र यादव, इनका जन्मदिन आज ही है। 1969 में इनका जन्म हुआ था। और भारतीय साहित्यकार नागार्जुन, इनका भी जन्मदिन आज है। 1911 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। हिंदी के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार और आलोचक थे रघुवंश, 1921 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही हिंदी फिल्म के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार कल्याण जी का जन्म भी आज ही के दिन है। 1928 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक CNR राव, 1934 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और भारतीय पत्रकार और राजनेता हरिवंश नारायण सिंह, 1956 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक तथा लोकसभा के सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, 1903 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

0: पे रुक जाते हैं। हार को पहचान बना लो, अपनी जीत का मजा फिर दोगुना होगा यकीनन। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए 9:55 पर
1: एक और जो थक कर भी मुस्कुराते हैं वही असली जीत को पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो थक कर भी मुस्कुराते हैं वही असली जीत को पाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम। उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कई आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा, सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

रखना, धर्म की रक्षा करने आएगा वो अब, धर्म की रक्षा करने

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंत कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन। और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय, तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय, लंच के समय, उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा, और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए, कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज़्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे, ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा। लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने % की छूट मिली हुई है राजस्थान में, ठीक है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ, आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और 1 टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की और कुछ धागे लेना है आपको केसर का, बस। सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, 1 टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है,
1: बस आपकी दुआ आती है, मैं तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
0: जी।
1: 30% मिलता है महिलाओं को,
0: 30%, ठीक है,
1: 30% मिलता है और अब 50 होने वाला है, सुना है।
0: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है,
1: ठीक है
0: जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की गिरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल, फिर ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गरम करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप दो बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है। लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो। या फिर आजकल तो मेहमान भी फोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है। और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है। और आपको दीदी प्रणाम है।
2: आपको भी नमस्कार।
3: बहुत अच्छा कार्यक्रम जी, अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
2: बिल्कुल।
3: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
2: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
3: जी, दीदी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है। फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं पीला रंग और लाल रंग, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नजर डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है, दूध, फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम काजू और पिस्ता ले सकते हो, 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच, सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए, दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए, ताकि नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी यह गाढ़ा हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा, बारीक झोंके मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को तीन हिस्सों में कर लेना है आपको, तीन जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, तीन हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको तीन तीन कलर के डालना है, थोड़ा लाल, थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और एक पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी के सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है, बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से, श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है, जो विचार होता है, एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चले जाते हैं, तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत, ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में, आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी, तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी,
2: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की, तो देखिए जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता है, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
1: जी,
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को।
1: बिल्कुल,
2: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी।
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
1: जी,
2: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: बस एकदम अच्छे हैं। अरे दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
3: सही बात है
1: जी।
3: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
1: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
3: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो कि अपने गाड़ी की हो तो समझो कि आगे आ गया, बम्प आ गया
1: जी,
3: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
1: जी।
3: हाँ, वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए, चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
1: चलिए ठीक है,
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
3: जी, जी,
1: जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोलता
1: हूं। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: बहुत अच्छी बात हो रही है, अच्छा विषय भी दिया है, आज जिंदगी में यही तो हो रहा है
1: जी,
4: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
1: जी,
4: सही समय पे गेयर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
1: हाँ जी,
4: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
1: जी,
4: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भिड़ जाती है, तो ऐसा भी होता है
1: जी।
4: तो सही समय पे जिंदगी में भी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर देखो चल, आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जी

0: भी हो चाहे गाड़ियों की है, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
1: जी,
0: सोच के रहना है, सोच के चलना है, तभी तो हम आसान से जिंदगी
1: जी
0: सकते हैं। नमस्ते
1: जी, नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका। और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ, अब अपने दोस्त

0: अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान, अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम, मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है, बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
2: हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
3: बस आप मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ, अभी वो दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
3: चालू हो गया।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है,
3: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
2: जी, प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
3: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
2: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
3: ये 30% होती है सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
2: ठीक है। चलिए, आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
3: अभी वो सभी ने, मैं वो यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और अभी से जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो भी सही है। चलो,
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं,
3: मेरा तो यही बस ये कहना है।
2: जी,
3: ओम शांति, नमस्कार
2: जी,
3: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को।
2: जी, आपको भी नमस्कार, जी शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे, और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, की थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
4: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
2: हाँ जी नमस्कार, कमलेश बहन, कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक, आप कैसे हो?
2: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
4: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
2: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो है,
4: बहनों भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
2: जी जी जी बिल्कुल।
4: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
2: हाँ जी,
4: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
2: जी,
4: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको। किस साइड अपने को घुमाना है और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
2: जी
4: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
2: जी बहुत बहुत आभार कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का युग होकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, जरूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो जरूर बना करके खाइएगा, और ज्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई, और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को, और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं और सबके पास अपना अपना कुछ जरूर होता है। मैंने एक गाना सुना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अब कभी कभी हम कुछ ऐसा भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होता है और वो हमें बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते, कभी कभी दूसरों के इमोशंस को गलत समझ लेते हैं। तो आइए जिंदगी से प्यार थोड़ा और बढ़ाते हैं और रियलिटी चेक देते हैं खुद को। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं कल्पना जी, सीधे ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, शुक्रिया आरुषि, और इस एक बार आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत मजा आ रहा है।
2: थैंक यू सो मच दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने टाइम निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जिनको आप पहचानते हैं क्योंकि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को। और लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आते हैं तो जिंदगी से प्यार करने के नए तरीकों के बारे में जानने का हमें भी मौका मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको बताने आए हैं, मगर इस बातचीत में हम कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिससे हमें भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और खुद की जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखने का एक अनूठा मौका मिलता है।
2: बिल्कुल, और ये मौका सबको मिलना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़े, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। दीदी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमोशंस बोलते ही ऐसा लगता है बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि क्या हम फील कर रहे हैं, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, बहुत वर्ड सुनते हैं, पर ऐसे तो आसान है, दुखी होते हैं पता चलता है, सुखी होते हैं पता चलता है, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम जब बड़े होते जाते हैं तभी आ जाती है या बचपन से होती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
3: इमोशंस तो बचपन से ही हम एक्सप्रेस करते आए हैं
2: जी।
3: जैसे छोटे बच्चे भी जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा जिससे बात भी करने नहीं आता है, जो पालने में लेटा हुआ है, वो भी कभी मुस्कुराता है और कभी रोने लगता है। तो अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी किस तरह की इमोशंस होगी? नेचुरली कुछ चाहिए, तो उसके इमोशंस हैं। अगर छोटे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो उसकी क्या इमोशंस होगी?
5: गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा,
3: गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन अंदर सोच क्या चल रही होगी कि ये मेरा है,
5: मेरा टॉय,
3: मुझे खेलना है और आपने मुझे छीन लिया। तो इमोशन हो गया एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, लव है, ये सारी इमोशंस है जो हम मनुष्य होने के नाते समय प्रति समय पैदा होने से लेकर मृत्यु तक फील करते ही है। हम कभी सैड होते हैं, सैड किस लिए होते हैं कि भाई कुछ तो बुरा हो रहा है, मैं एग्जाम में फेल हो गई या मुझे कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एंड कम मार्क्स मिले, तो मुझे दुख होता है, सैडनेस होती है। एंड देन गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, इरिटेट होते हैं। समझो कि आप रास्ते में चल रहे हो, आजकल ये सारी बातें देखने सुनने को लोगों को मिल रही है कि रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया और आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, ये कितनी लाचारी है, कितनी गलत बात है। तो एक जोश भी आएगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अगेन फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये सारी इमोशंस हम कभी ना कभी अपने लाइफ में, इनफैक्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते ही हैं,
5: एक साथ भी फील करते हैं दीदी सब कुछ।
3: हाँ जी।
5: तो ओके, जैसा आपने कहा कि बचपन से जब बच्चा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पड़ने लगती है? मतलब हमें बचपन में समझ में आ रहा है कि बच्चा ये फील कर रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा है, क्लियर है, लेकिन बड़े होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि हमें समझ में आना बंद हो जाता है, या फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि वो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कभी कभी? श्रीनिधि जी, आप आंसर करना चाहेंगे?
4: मैं समझता हूँ, अभी कल परसों ही हम एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और वह ये चीज एक प्रश्न के रूप में उभर कर आई कि जब हम सभी जानते हैं कि हम सब भावनात्मक जीव हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम बचपन से इन अनेक एक्सपीरियंसेस को, इन भावनाओं को महसूस करते आए हैं, जैसे विकल्पना जी कह रहे थे कि हम कभी सैड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी एंग्शियस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को महसूस करते आए हैं, तो जब ये अनुभवी हो चुके हैं हम, तो क्यों जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम इन्हीं इमोशंस को डील करने में स्ट्रगल करने लगते हैं? और ये स्वाभाविक रीति से ये प्रश्न उठता भी है। जैसे बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कई बार बच्चे अपने इमोशंस को स्वाभाविक समझ लेते हैं, यानी गुस्सा होना या इरिटेट होना हम मान लेते हैं कि स्वाभाविक है, और मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो गुस्सा होना और मुझे टैंट्रम्स दिखाना और चिड़चिड़ा होना, ये होना ही चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं बच्चे। और जब तक आप बच्चों को इस विषय पर सही तरीके से काउंसिल न करें, या उनके अपने इस इमोशन को समझने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करें, या उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस इमोशन को सही तरीके से, आप ये कहें कि उसको हम अलग अलग तरीकों से उस इमोशन को ब्रेक करके, ये क्या इमोशन है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये समझाते नहीं या डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते पेरेंट्स या उनके आसपास जो बड़े हैं वो ये चीजें नहीं करते, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करके चलने लगता है कि भाई ये ठीक ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ऐसे घरों में या ऐसे परिवारों में जहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, या बच्चे जो कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स को चुपचाप सह लिया जाता है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और कई बार पब्लिक में लोग ये कहते भी है कि क्या इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं समझाया कि पब्लिक में भी ऐसे बिहेव कर रहा है, और हम देखने लगते हैं कि बच्चे उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, कि हम उन बच्चों को ऐसा कह के डिस्क्राइब भी करने लगते हैं, अरे भाई इसके तो टैंट्रम्स बहुत होते हैं, अरे ये तो बड़ा नखरे वाला बच्चा है भैया, इसके तो बचपन से इसको जैसे पाल पोस के बड़ा किया भगवान ही जाने, ये इसको जो चीज चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब ये सारा घर से पे उठा लेगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इन इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में एजुकेट ना करें बच्चों को, तो आगे बढ़ के एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसके उसको प्रोसेस करने का पॉजिटिव तरीका क्या है, वो ना जानने के कारण वो लाइफ में चैलेंजेस महसूस करते हैं इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पियर का है, और ये एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन को हम सभी नेपोलियन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जानते आए हैं, फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर हुए हैं, मगर बचपन में उनके मन पर बिल्लियों के प्रति एक ऐसा डर बैठा हुआ था जिसके कारण वाटरलू का युद्ध उन्हें हारना पड़ा। ब्रिटेन के साथ युद्ध में हारने की वजह कोई कमजोर रणनीति नहीं थी, जिस समय वो रणनीति बना रहे थे उस युद्ध के लिए, उस समय पर किसी ने उनके शिविर में बिल्ली छोड़ दिया, और क्योंकि वो बिल्ली वहां से गुजर गई तो नेपोलियन का सारा ध्यान उस बिल्ली पर था, वो सही निर्णय नहीं कर पाए, और उस समय पर उनका मन बिल्ली के भय से ही आक्रांत था, जिसके कारण वो सही रणनीति नहीं कर सके, जिसकी वजह से युद्ध में हार हुई। ये बात अक्सर हिस्ट्री में कोट की जाती है। तो ये पता चलता है कि आप फियर हो, एंग्जाइटी हो, या इरिटेशन हो, या अनेक प्रकार के हेट्रेड हो, जेलसी हो, बच्चे ये स्वाभाविक रीति से इमोशंस उभर कर आते हैं, बट इन इमोशंस को मैनेज करने के तरीके या इन इमोशंस के प्रति हमारी अवेयरनेस होना कि हाँ ये इमोशन ये है, इस इमोशन का ये नाम है, और ये प्रोसेस करने का एक पॉजिटिव तरीका है, या दूसरे तरीके से भी मैं इसको हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं समझाया जाता या उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होती, तो आगे चल के ये चीजें व्यक्ति इन्हीं इमोशंस के कारण, खुद के ही इमोशंस के कारण सकम करने लगता है, उन इमोशंस के कारण सफर करने लगता है,
5: सफर करते हैं। जी कल्पना जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसा सफर करने लगते हैं हम, मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस है, सफर करते हैं इमोशंस के कारण, भावनाएं कई बार कंट्रोल में ही नहीं आ पाती, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम राइट भावना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्या वो वही फील कर रहा है उस वक्त, या वो पेन फील कर रहा है और दिखा कुछ और रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमोशन अंदर कुछ और है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, क्या ये कंफ्यूजन्स होते हैं या फिर वो इमोशन पता चलता है कि कौन सा है?
3: कोई भी इमोशन जो है वो बिना रीजन के नहीं होता है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया है, जो भी रीजन है मेरे इमोशन के पीछे वो मुझे पता होता है क्यों मेरा ये इमोशन है। अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्यार है तो क्यों है। सो ये हर इमोशन के पीछे का रीजन तो पता होता है हमें, और वो औरों को भी पता होना चाहिए। जहां तक इमोशनल अवेयरनेस की बात आते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को समझने की बात आते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है उनको सडनली उदास क्यों फील हो रहा है, क्यों उनका मूड खराब हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही, कोई रीजन नहीं, छोटा सा कारण बनता है और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। सो जब हम उनको पूछते हैं कई सारे प्रश्न, जैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है क्या, कितने दिनों से आप सही तरह से सोए नहीं, क्या आपको भूख सही लगती है, क्या कुछ दिनों से आपकी भूख कम हुई है, या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, क्या बात है, या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ है, हर्ट हुआ है, क्यों आपको सैडनेस फील हो रही है। तो जब ये सारी बातें हम पूछते हैं तो कई बार पता चलता है कि नींद हुई नहीं है, काफी दिनों से नींद ही नहीं आई। कई बार पता चलता है कि खाना से ठीक से नहीं मिला है। कई बार ये पता चलता है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ हुई है। सो नेचुरली रीजन तो है, परंतु कई बार कारण पता नहीं चलता है कि क्यों। कई बार और भी एक है, हमारा जो मूड है ना, फीलिंग्स और मूड है, वो हमारी गट हेल्थ के साथ बहुत जुड़ी हुई। जो भी हमारा भोजन हम करते हैं, अगर उसका सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, अर्थात हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है काफी दिनों से, वो भी हमारे मूड पर असर करता है।
5: ओके।
3: इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी फीलिंग्स जो इस समय है वो क्यों है, किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, श्री जी है, आप है, मैं हूँ। अगर मैं इसी समय अपने आप से पूछूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, है ना, अगर उस मीटर को मैं चेक करूं, इमोशनल मीटर को, कि 0 से 10 के बीच में मैं इस समय कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। अगर हम 10 को नेगेटिव समझे और 0 को पॉजिटिव समझे, तो कहाँ तक मैं रिलैक्स हूँ, कहाँ तक मैं खुश हूँ, कहाँ तक मैं ओरिएंटेड हूँ, ये मुझे अगर समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमोशनल अवेयरनेस।
5: ओके, अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कुछ करते हुए या बात करते हुए भी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब रो रहे होते हैं तब समझ में आता है हम उदास हैं, या फिर बुरा फील हो रहा होता है तब समझ में आता है उदास हैं, पर बात करते करते ऐसे तो शायद रैंडम नहीं सोचा कि क्या फील कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना होगा शायद हमें थोड़ा और अपने इमोशंस को कि किसी से बात करते वक्त भी क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दीदी।
3: एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, कि कई बार कहा जाता है गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, है ना, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से, तो हमें फील होता है, हमें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करते समय मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब है।
5: बिल्कुल,
3: इंट्यूशन आता है। सो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, ये सही नहीं है, उसी समय अगर हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस व्यक्ति के सामने से हट जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं, या फिर अपने आप को बचाने का कोई तरीका सोचते हैं, तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
5: मतलब हम बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को और खुद को अगर हम इमोशनली अवेयर हैं तो।
3: जी,
5: वंडरफुल। श्रीनिधि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कभी क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही इमोशंस या हम उस एज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या उसको मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं?
4: ये बहुत ही मजेदार बात है जब आप पूछ रहे हैं आरुषि जी, और युवाओं के सिलसिले में जब आप ये बात पूछते हैं तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी अपने इमोशंस को लेबल करना नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या चीज है।
5: ओके,
4: मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में जेलसी के इमोशन को फील नहीं किया था।
5: अच्छा,
4: जब उन्होंने ये चीज देखा कि कोई उनके किसी चीज पर जेलस हो रहा है कि भाई उनको ये चीज मिल गई है और इसके कारण वो उनसे नफरत कर रहे हैं या उनसे एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो मेरे पास आए बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो मुझे उनको ये समझाने में काफी मेहनत लगी कि आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक चीज के लिए अप्लाई किया, आपको ये चीज मिली, उनको ये चीज नहीं मिली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर चूंकि वो चीज आपको मिली और उनको नहीं मिली है, इसलिए वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है इस मोमेंट पे, वो एक डिसकंफर्टिंग फीलिंग है उनके लिए भी, और क्योंकि वो एक डिसकंफर्ट महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे तो आप इस बात की खुशी का इजहार करेंगे कि देखो मुझे तो ये चीज मिल गई, और इसलिए वो आपको अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से बात कही कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
5: अच्छा,
4: मैंने कहा बिल्कुल आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए नहीं हो, या हो सकता है आपके घर में पहले से परवरिश ऐसी दी गई हो कि किसी को कोई चीज मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आप शायद कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही आप रेज नहीं करते, शायद बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, घर में आपके घर में ज्यादा बच्चे रहे होंगे तो आप शेयरिंग करना सीख चुके होंगे, या किसी को कोई चीज मिलती है तो ना मिलने पर भी उसका बुरा ना मानना आप स्वाभाविक रीति से अनुभव करते आए होंगे, तो ऐसा बहुत सारे इमोशंस के साथ होता है, और युवा काल एक ऐसा काल होता है कि जहां पर आप अभी अभी चीजों को एक एडल्टहुड में एक्सप्लोर करने लगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वयस्क जैसा बर्ताव करें, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल जैसा बर्ताव करें, और कभी कभार इस प्रेशर के चलते भी आप अपने इमोशंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि भाई एक्टिविटी जो अक्सर वर्कशॉप्स में हम लोग कराते हैं वो ये है कि शुरुआत में हम कहते हैं कि एट द मोमेंट हाउ आर यू फीलिंग, तो लोगों को अलग अलग चीजें बताने का, उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कभी कभार उस फीलिंग के ऊपर ही आपको, जब कल्पना जी कह रहे थे कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग, हाउ एंग्शियस आर यू फीलिंग, आप इन चीजों को पूछते हैं तो पहली दफे लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब ऑन अ स्केल भी मैं अपने आप को माप सकता हूँ।
5: बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है।
4: हाँ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता, इससे पहले किसी ने उस चीज पर बातचीत नहीं की हुई होती, और इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। कई बार बच्चे लफ्जों में चीजों को समझने लगते हैं, कई बार आजकल मैं बच्चों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पूछा भाई किस बात के लिए डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो बोलता है आज मैं इतना सब कुछ पढ़ना है मेरे को और मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो हालांकि कोई 11-12 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो हमें लग सकता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, कि 12 साल की उम्र में तुम्हें किस बात का डिप्रेशन होना चाहिए, किस बात के लिए तुम्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता या वो पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो उस चीज को डिप्रेस्ड फील कर रहा है। कई बार हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम कुछ शब्दों को सुन लिए होते हैं टेलीविजन में, मीडिया में, या हमारे टीचर्स या बड़ों को, घर वालों को बातचीत करते सुन लेते, तो हमको लगता है कि भाई ये सैड होना ही डिप्रेस्ड होना है, या मूड ठीक नहीं होना ही डिप्रेस्ड होना है। तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि हम इमोशंस को समझें। आज मैं इस घड़ी कैसा महसूस कर रहा हूँ, उस इमोशन का एक नाम है, वो क्या चीज है। अगर मुझे वो समझ आ जाए, वो अवेयरनेस आ जाए, तो फिर शायद मैं उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में भी सोच पाऊंगा।
5: एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और हमारे पास इस एपिसोड में टाइम कम बचा है, लेकिन हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे इस पे बातचीत करना। मैं कल्पना जी से भी आने वाले एपिसोड्स में ये जानना चाहूंगी कि क्या जैसे हम जेलस फील कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हैं कि 10 नंबर पे हैं, वो रेटिंग क्या हमें करनी चाहिए और उससे क्या फर्क पड़ता है डील करने पे, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी प्रेजेंटली जो भी हमने बातें सुनी उससे हम अपने करंट इमोशन को समझ पाए या उसको अनुभव कर पाए, इसके लिए क्या कुछ मेडिटेशन हम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें मदद करे?
3: बिल्कुल, जैसे कि मेडिटेशन का मतलब ही है कि अपने अंदर में जाकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम चारों तरफ से अपने अटेंशन को कट ऑफ करके उसको पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कितना इंटेंसिटी है उस फीलिंग की, क्या वो फीलिंग सही है या नहीं है, या वो फीलिंग जैसा मुझे फील हो रहा है वही है या कुछ और है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ये हम ओपन अप करके फिर छोड़ देंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो आकर्षण हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, वो प्यार हो जरूरी नहीं है, तो उस चीज को समझना। तो चलिए इस चीज के लिए हम थोड़े से,
5: मुझे लगता है दीदी ये बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि फील करते हैं कि प्यार है पर वो सच में है या नहीं, ये बहुत लोग जानना जरूर जाएंगे, तो अगले बार में जाने को मिलेगा।
3: सो चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और थोड़ा सा चारों तरफ से अपने अटेंशन को कलेक्ट करके अपने ऊपर एकाग्र करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्रोताओं से कि वो गहरी और लंबी सांस लें, जहां भी हैं 2 मिनट के लिए रुक जाएं, आराम से बैठ जाएं। ये 2 मिनट का अभ्यास हमें आने वाले 2 घंटे के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देकर जाने वाला है। अपनी आंखों को आराम से बंद करें, सांसों पर ध्यान दे, गहरी और लंबी सांसें ले, सांस के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करें, थोड़ा सा अपने आप से मेंटली डिटैच हो जाए, जैसे हम दूर से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वैसे दूर से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखिए, केवल देखिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, भावनाओं में न बहें, जस्ट विचारों को आते हुए जाते हुए देखते रहें, किसी विचार को पकड़े नहीं, जाने दें। अब एक सुंदर विचार को अपने मन में दोहराए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस समय आज मैं बहुत खुश हूं। रिपीट करें इस विचार को अपने मन में 2 बार 3 बार 4 बार, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और देखिए उस विचार से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही, मेरा मन अपने आप खुशी का कारण ढूंढ रहा है। गर्मी के इन दिनों में ठंडी हवा चल रही, चारों ओर हरे भरे पेड़ पत्ते फूल और उनकी खुशबुएं हैं। मेरी खुशी के कई सारे कारण हैं, परंतु मैं बिना कारण के भी खुश होना जानती हूं, मुस्कुराना जानती हूं। गहरी और लंबी सांसें, इसी विचार के साथ आज सारा दिन व्यतीत करें, मैं खुश हूं। कारण ढूंढे खुशी के लिए, और ना हो तो बिना कारण के भी खुश होना अपनी आदत बना ले। धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक थॉट में हम कैसे स्थित हो सकते हैं अपने, और मल्टीपल आने वाले थॉट से अवेयर होते हुए जाते हुए भी कैसे देख सकते हैं और कैसे टिक सकते हैं उस इमोशन में जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते भी हैं, तो उसका प्रोसेस आपने बताया, एक्सपीरियंस भी कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
5: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर और राज जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को और बेहतर पहचानना चाहते हैं, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से कहिए लव यू जिंदगी।

नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज हमारे सामने ऐसी नारी शक्ति विराजमान है जिनका नाम है अयोध्या शर्मा। आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 62 वर्ष है और आपने पढ़ाई बीए की हुई है और आप

0: लेखिका है, संगीत का शौक रखती है, डांस भी आप बहुत अच्छा कर लेती है, आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई सबका शौक है, और किसी जमाने में आप भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग भी लेते थे और इस कंपटीशन को आप जीत करके फर्स्ट भी आते थे। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वैसे हम इनको हाउस मेकर कह सकते हैं कि एक गृहिणी है, लेकिन साथ ही साथ इतनी प्रतिभाओं की धनी है। तो ऐसी नारी शक्ति से आज हम बातचीत करेंगे, आपसे मिलवाएंगे और इनका अनुभव भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। बहुत अच्छा लगा, देखिए आप आज स्टूडियो में पधारे हैं
1: जी,
0: आपके अनुभव शेयर करने के लिए, और आपके चेहरे की स्माइल देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा इसी तरह खुश मिजाज रहती है
1: जी। मुस्कुराती रहती हूँ मैं सबको देखकर, ताकि मेरे को देख के और भी लोग मुस्कुराए, क्योंकि सबके दिलों में कितनी तरह की उलझने रहती है, लोग मुस्कुराना ही भूल गए, लेकिन अपन एक स्माइल देंगे तो उधर से भी एक स्माइल तो आएगी, ये मेरी कोशिश रहती है।
0: क्या बात है और बहुत अच्छी कोशिश है कि खुश रहना और खुशियां बांटना।
1: दुखों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम मुस्कुराने के तो पैसे नहीं लगते ना
0: जी।
1: और नहीं मुस्कुराएंगे तो भी दुख तो कटने वाला नहीं है, वो तो चलेगा, तो फिर क्यों नहीं अपन मुस्कुराए, क्यों अपने अपने दिल की वो चीज लोगों को क्यों बताए कि मैं दुखी हूँ के क्या हूँ, मुस्कुराओ ना, इसमें क्या जाता है, हमेशा मुस्कुराते रहो।
0: बहुत ही सुंदर और अच्छी सोच है आप कि अगर दुख है तो ऐसे भागने वाले नहीं है
1: जी,
0: तो चेहरे पर लाने से कोई फायदा भी नहीं है
1: जी,
0: इसलिए मुस्कुराना जरूरी है। बहुत सुंदर आपने बात कही है, और कहते ना कि जो हकीकत में ऐसा जीवन जीते वो ही बोल पाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
1: अभी घर पर ही हूँ, बस यही लेखन कार्य है, और काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ। अभी मैं 4-5 महीने से काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ, उसमें हमारी सभी बहनें जुड़ी हुई है, ऑनलाइन काव्य गोष्ठी चलती है। हमारी अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना शर्मा है, जो अपने आबू रोड में ही रहती है, आबू रोड की अध्यक्ष वो है। तो महीने के लास्ट तारीख को हमारी काव्य गोष्ठी होती है, उसमें सभी भी स्टेटों के जितने भी जो लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं, लेखन कार्य करते हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, कोई भी कुछ अपनी रचना बोल सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, अपनी स्वरचित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्वरचित नहीं है या किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है या आपके मन को मतलब मनोबल बढ़ाती है तो वो भी आप उसमें बोल सकते हो, ये पूरी छुट्टी है उसमें। किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है और आपका मनोबल बढ़ाती है तो आप औरों को भी सुनाकर प्रेरणा दे सकते हो।
0: अच्छा, तो ये कोई आप पर्सनल समाज मिलकर के कर रहा है या फिर सभी के लिए?
1: सभी के लिए है ये गांधीधाम, बड़ोदरा, ये आबू रोड, कितने शहर जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और भी लोगों को जोड़ो जो संगीत पसंद करते हैं और किसी भी तरह का मतलब गा सकते हैं, सुना सकते हैं, अच्छी बातें अच्छे विचार आजकल इसी की जरूरत है लोगों के लिए
0: जी,
1: क्योंकि सब लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है।
0: तो इसमें महिलाएं जुड़ती है या पुरुष लोग
1: नहीं,
0: भी जुड़ते
1: पुरुष भी
0: हैं?
1: पुरुष भी, बच्चे भी, जो कोई भी हो गा सकते हैं
0: जी। जी
1: जी,
0: और इससे मतलब आप किस तरह इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या सिस्टम रहता है इसका?
1: इसका सिस्टम ये है कि महीने की जो एक लास्ट तारीख होती है उसको चाहे कोई सा भी वार पड़े, संडे पड़े तो बहुत ही अच्छा होता है, सभी के लिए सुविधा रहती है। अगर संडे नहीं, आपके सैटरडे पड़ा था, शनिवार था 30 तारीख का, तो हुई मीटिंग तो वो एक लिंक देते हैं, उस लिंक से जुड़ना पड़ता है, उस लिंक पे सभी की फ़ोटोएं आ जाती है और सभी एक दूसरों का वेलकम करते हैं। फिर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, और जैसे ही जिसका नाम बोलता है और जिसको जो कविता जो भी कुछ बोलना है अपना कार्यक्रम, उसकी 2 लाइनें पहले एक दिन पहले लिख के डालनी होती है व्हाट्सएप पे कि मैं इस विषय पर ये बोलूँगी, तो उनको पता रहता है, तो आगे होके बोलते हैं आप सुनाइए अपनी रचना, इस तरह से होता है।
0: टाइमिंग क्या रहता है?
1: टाइमिंग जितने ज़्यादा लोग उतना ही टाइम, अगर वो किसी काम के वजह से बाहर गए हुए हैं, नहीं जुड़ पा रहे उस दिन, कहीं गए हैं, सबको घर गृहस्थी में काम रहता है तो नहीं हो पाता है, जैसे जितने लोग हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो 1.5-2 घंटा भी हो जाता है, और कम लोग आए हैं आज तो कम टाइम लगता है, 1 घंटे।
0: तो ये रात का समय रहता है, दिन का समय रहता है?
1: शाम का 5:30।
0: अच्छा,
1: शाम का टाइम।
0: फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
1: इससे अभी देख रहे हैं समय, फिर जो सबसे अच्छा गाते हैं करते हैं उनको अलग से छांट कर और फिर उनका वहाँ नाम वगैरह देंगे, सम्मानित करेंगे। दिल्ली में इसका बड़ा वो है कार्यालय, वहाँ सभी नाम वाम जाएंगे, अभी देख रहे हैं कौन अच्छा गाते हैं करते हैं, फिर उनको सम्मान करेंगे
0: दिल्ली में।
1: दिल्ली में
0: तो फिर आप लोग भी जाते हो या फिर दिल्ली में आपकी टीम है वो सम्मान करती है?
1: दिल्ली बुलाया जाएगा बाद में जब कभी भी उनका प्रोग्राम होगा बड़ा, अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है।
0: अच्छा, तो कितना समय हुआ है
1: ये? अभी 5-6 महीने हुए।
0: अच्छा, तो हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी मान लीजिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं?
1: जरूर जरूर।
0: अच्छा,
1: तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी गा सकते हैं।
0: तो या हर कुछ भी सुना रहा है और आप उसको पसंद करते हैं या सेलेक्टेड गीत कविताएं होते हैं?
1: नहीं, पहले उनका वो कराते हैं, अगर अच्छा गाया है तो उनको सराहना करते हैं कि भाई अच्छा गाया है, आगे और भी अच्छा गाओगे आप, प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे शुरुआत होती है, चलता है थोड़ा बहुत, अगर कोई वो है तो उसमें सुधार कराने का बोल देते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा गाइए, अच्छे उससे बोलिए, तो सभी को लेते हैं।
0: अच्छा,
1: ताकि सबका मनोबल बढ़े कि भाई अब की बार थोड़ा ढंग से नहीं गा पाए तो अगली बार थोड़ा इसमें ये सुधार करना, फिर जब फाइनल होगा तब उसमें फिर अच्छे लोगों को छांटेंगे।
0: हाँ, वो फिर छटनी हो जाती है।
1: हाँ, छटनी हो जाती है। अभी तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है और कोई भी भाग ले सकता है।
0: अच्छा, इसमें कोई फीस वगैरह?
1: नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री एकदम।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: ग्रुप से जुड़ना होता है, क्या करना होता है?
1: लिंक देते हैं, वो लिंक पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस, आधार कार्ड, सब तरह के वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करनी पड़ती है।
0: ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, ताकि किसी को बड़ा मंच मिले ना मिले
1: जी,
0: यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है
1: जी,
0: तो उनका सपना भी पूरा होता है
1: जी। एक बात बताऊं कि बचपन से मुझे कोई भी अच्छी चीज़ हो ना, कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिलती है तो उसको आके मैं कॉपी में उतार लिया करती थी। ऐसे करते करते मेरी पूरी डायरी भर गई। फिर मैंने सोचा क्या होगा इसका, एक दिन क्या करेंगे, कभी इच्छा होती पढ़ लेते हैं, मन खुश हो जाता है कोई अच्छी रचना पढ़कर। इस तरह से चलता रहा चलता रहा और अब देखो बाबा की कृपा, ये कार्यक्रम शुरू हुआ काव्य गोष्ठी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रोग्राम होगा। तो इसमें अभी पूरी डायरी मेरे काम आ रही है, और इसमें ऐसा है कि ये नहीं कि बिना देखे आप गाओ, कागज़ पर देखकर डायरी में भी गा सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये, अब देखो एज का भी वो है, थोड़ा भूल भी जाते हैं अपन गाते गाते, प्रैक्टिस है नहीं
0: जी।
1: अचानक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ तो आप कागज़ में देख के, किताब में देख के गा सकते हो। तो वो मैंने जो इतना सारा लेखन कार्य इकट्ठा किया लिख लिख के, और वो मेरे काम आ रहा है, एक से एक गीत गाकर और सब प्रेरणादायक ऐसे गाती हूँ। हमेशा वाहवाही होती है, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, सबका नंबर आता है। अभी 4-5 बार सरस्वती वंदना मैंने गई।
0: अच्छा, इसमें कोई थीम देते हैं आप या हर प्रकार के गा सकते हैं, जैसे राजस्थानी, हिंदी?
1: हर प्रकार के। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एज वाले हैं, वो भजन गाते हैं तो भजन भी गा सकते हैं, किसी भी भगवान का हो, वो भोले बाबा का हो, वो गणेश जी का हो, किसी का भी हो,
0: जिसको जो आता है वो सुना सकता है।
1: सुना सकता है, संगीत से जुड़ा होना चाहिए
0: जी।
1: संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। संगीत में वो शक्ति है कि कितना ही बीमार आदमी हो उसकी आप कितना ही दवा सब कुछ कर लो, देखभाल कर लो, जब तक अच्छे विचार और संगीत उनको नहीं सुना दूंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, एक डॉक्टर तो होता है देखता है ऐसा हो गया नहीं है, टाइम लगेगा वो है, और एकदम पॉजिटिव बोलता कुछ नहीं, अभी होते हो आप रेडी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये विचारों का ही वो है, तो एकदम पेशेंट में स्टेमिना आ जाती है।
0: जी जी बिल्कुल। हाँ, आपने सही कहा है। और संगीत के भी बहुत ही अच्छी आपने शायरी बोल के सुनाई है कि रोगी को वास्तव में संगीत सुना दिया जाए तो आदत तो उसी समय ठीक हो जाएगा।
1: कम से कम हर स्वस्थ व्यक्ति को भी आधा एक घंटे रोज संगीत सुनना चाहिए
0: जी।
1: मैं भी टीवी पे गाने सुनती हूँ मस्ती पर, पुराने गाने, फिल्मों के।
0: चलिए, तो हम आपसे 2 लाइन जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, इसलिए कहीं भी जाइएगा नहीं। अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके अनुभव अभी भी सुनने बहुत सारे बाकी है। आइए सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुणे लौट करके आ रहे हैं। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं कि किस तरह इनके पिताजी यात्रा निकालते थे और ट्रेन में ये लोग यात्रा करते थे। तीन तीन चार चार महीना ट्रेन में ही इनका गुजरता था। तो अयोध्या जी, फिर आप कह रहे थे कि बच्चे का जन्म भी ट्रेन में हो गया। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एज वर्ग होता था या फिर इसमें कुछ कंडीशन होती थी?
2: नहीं, हर एज होती थी। यहाँ तक कि गांव के लोग तो ये मानते हैं जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है कि ये हमारे देवता हैं, पूर्वज हैं, उनको भी यात्रा करानी पड़ती है। आप मेरे कभी अनुभव सुनना, साक्षात ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो कहते भाई हमारे पितरों को हमको यात्रा लेके चलनी है। कहते हैं रोंगटे थोड़े खड़े हो, तो बोले पितरों को यात्रा करानी है तो उनका कैसे? तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं था, उन्होंने कहा तो वो तो देवता समान है, उनके क्या पैसे लेने, ले चलो यात्रा में उनको। लेकिन वहीं स्टेशन पे जैसे वो आए ना, तो उनके शरीर में वो आ गए और उनका मेरी जगह कहाँ है, मेरा टिकट लो तब मैं बैठूंगा गाड़ी में। सबके टिकट हैं, बिना टिकट के मैं नहीं चलूंगा। फिर 125 रुपया उस जमाने में चलता था, 1 रुपया और 54, आपने देखी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल,
2: अभी भी रखे मेरे पास 25 पैसे।
1: जी, हमने भी कर रखा है स्टोर
2: जी। तो 125 रुपये का टिकट लिया उनका, और उनकी इतनी सी जगह छोड़ के और फिर बैठा करते थे। एक बार कोई उनकी जगह खिसक गया, बैठ गया, ध्यान नहीं रहता है, तो फटाक से उनके घर के सदस्य के शरीर में आके बोला कि मेरी जगह छोड़ के बैठा करो। और डिलीवरी हुई, डेथ हुई, कितने ही लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहाँ जाना है, किसको वो करना है, क्या करना है। फिर स्टेशन मास्टर जी से सब कुछ पूछते थे कैसे क्या करना। फिर उनका अंतिम संस्कार भी होता था काशी में, उज्जैन में, कई जगह 8-10 डेथें भी हुई थी। बहुत बहुत बुजुर्ग लोगों को ले गए। अब आते थे टिकट, और उस टाइम इतने बिजी होते थे, कहते भैया मेरे 8 टिकट काटना, मेरे 5 काटना। तो हम सब लोग होते थे, जगह जगह एजेंट बैठे हुए थे, सबको रसीद बुक दे रखी थी, पैसे ले लेते थे और रसीद काट के, मेरे 5 सदस्य है और ये एज है, अब वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सा है। और एज का तो आजकल कोई भी नहीं है
1: जी,
2: किसी भी एज में व्यक्ति कभी भी जा सकता है
1: जी।
2: एज का वो नहीं है कि इसी एज में व्यक्ति जाएगा करेगा।
1: तो जैसे आप 8 भाई बहनों इस तरह हर साल यात्रा पर 3-4 महीना बाहर रहते थे
2: जी,
1: तो स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी?
2: मिल जाती थी उस जमाने में।
1: अच्छा।
2: बहुत खुश होती थी टीचर, बहुत ही खुश होती थी, जाओ यात्रा में जाओ आराम से, और भगवान की दया से पास हो ही जाते थे, बस सेकंड एंड थर्ड या कभी कभी फर्स्ट बॉकम इस तरह से कर करके और ग्रेजुएशन किया।
1: तो हर साल वो स्थान पर जाते थे या चेंज करते रहते थे?
2: चेंज भी होता रहता था, जैसे ये गंगा सागर वगैरह जाते थे तो थोड़ा चेंज होता था कभी, और तीनों धाम की जो यात्रा है उसमें तो वही सब आते थे, रामेश्वरम, जगदीश, जगन्नाथपुरी, ये सारे सब माउंट आबू। तो कितनी बार आके गई हूँ शादी में, रेलवे स्टेशन पे खूब टोस्ट खारी खाई है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट स्टेशन मेरा आबू रोड ही होगा।
1: शादी करके आप आबू रोड ही आ जाएंगे।
2: आबू रोड आ जाएंगे
1: जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि आपको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सभी का शौक है
2: जी,
1: तो ये किनसे सीखा आपने?
2: ये घर में ही, आठ पड़ोस की औरतें होती थी सभी, जैसे स्वेटर बुनना है, और स्कूल में भी मेरे वो होम साइंस थी, तो कुकिंग करना मुझे बहुत शौक है, गुलाब जामुन वगैरह सब अपने हाथों से बनाना करना, गाजर का हलवा। तो इसका भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में आता था दाल के पकौड़े बनाने, गाजर का हलवा बनाना है, फिर नंबर मिलते थे, सब मैडम वगैरह टेस्ट करती थी कितने नंबर आए कितने क्या। होम साइंस थी मेरे पास सब्जेक्ट,
1: होम साइंस में तो
2: सभी आ जाते हैं, कपड़े धोना, किस तरह से नील देना, टीना पोल देना, कपड़े के दाग कैसे छुड़ाना, सब चीज की एग्जाम होती थी।
1: तो आपके लास्ट तक आपने बीए फाइनल किया था तब तक होम साइंस थी या फिर 11-12 तक?
2: नहीं, 11-12 तक, फिर मेरे थे हिंदी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स बीए तक।
1: अच्छा।
2: हाँ, 12वीं से जो सब्जेक्ट होते हैं ना तीन
1: जी,
2: तो हिंदी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र।
1: हाँ, उसके बाद आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया।
2: चेंज कर लिया
1: जी।
2: फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई 21 साल की उम्र में, 21 से 22 में लगी जब शादी हो गई।
1: जी जी, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा परिवार मिलकर के आप यात्रा पर जाते थे, तो 3-4 महीना घर बंद रहता था?
2: घर बंद रहता था, केवल एक रूम है बहुत बड़ा, जो मंदिर है, मेरे पिताजी पंडित है जैसे मैंने बताया, तो मंदिर है बहुत बड़ा, तो वो पड़ोसियों को देखे जाते थे उसकी चाबी कि आप इनकी पूजा करना भगवान के रोज, तो वो संभालते थे पूजा जब तक हम नहीं आते थे। पहले पड़ोस भी परिवार की तरह होते थे, एकदम घर की तरह पूरा, और न कोई चोरी होती थी ना कुछ, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के ताला दे के चले जाते थे। आजकल तो जाने से पहले घर की 10 बार सोचते हैं और चोरियां भी खूब होती है।
1: अभी तो घर में एक ना एक मेंबर तो रहता ही है,
2: रहता ही है बहुत, हमारी कॉलोनी में बहुत चोरियां होती है
1: सातपुर में, हाँ
2: तो जाते हैं कहीं तो। लेकिन मेरा एक सिद्धांत क्या है कि आपने अगर घर छोड़ा कहीं भी जा रहे हो तो उस परमात्मा पे विश्वास रखो कि बस मैं गया, अब घर तेरा है, तेरे को देखना। अगर आप इस सिद्धांत पे चलते हो, क्योंकि जो अपनी किस्मत में है वो तो कहीं जा नहीं सकता, और जो किस्मत में नहीं है वो अगर घर में भी तुम रह रहे हो तो वो तो जाएगा ही जाएगा किसी भी तरह से। तो ईश्वर में पूरा भरोसा। ट्रेन में बैठने के बाद में मैं घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, जहाँ गए हूँ वहाँ का और एंजॉय खराब
1: जी,
2: हो
1: जी, बिल्कुल।
2: इतना पैसा खर्च किया है, अभी जाके आए हम वहाँ शिमला, तो बिल्कुल मैं तो घर की याद ही नहीं आती, जाके वहाँ सब सारा सब देख कर आराम से घर में आते हैं, और भगवान की कृपा है सब कुछ पहले जैसा ही सब कुछ मिलता है
1: जी जी।
2: तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, अगर वो अपने ऊपर कृपा कर रखी है तो किसी की जरूरत नहीं है, एक की जगह 1000 को ला के खड़ा कर देगा, और उसकी वो नहीं है कृपा तो सारा खेल बिगाड़ देगा। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्रभु विश्वास करना
1: जी
2: भगवान पे।
1: तो जैसे आप बता रहे थे कि 3-4 महीना यात्रा पर जाते, आप 8 भाई बहनों, कभी किसी की शादी भी हुई होगी, तो यात्रा के दौरान अगर शादी करनी होती तो फिर कैसे क्या करता है?
2: नहीं, उस हिसाब से करते थे शादी। अब जैसे भाभियां वगैरह आ गई तो उनको भी लेके जाते थे। मेरी भाभी 1.25 महीना हुआ था, डिलीवरी थी, भतीजा हुआ 1.25 महीने की थी, और मेरे पिताजी की हमेशा जिद रहती थी कि सारे घर के चलो, मेरा भी यही नारा है हमारे घर में पता कहीं भी जा। अब मेरे बच्चों का भी यही नारा हो गया, अभी जैसे हिल स्टेशन शिमला जाना था, पहले हम मंसूरी गए, गई बार तो एकदम माउंट आबू जैसे ये सारा राउंड राउंड रास्ता, तो थोड़ी एज वेज हो गई तो थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ दोनों तीनों जने, पापा और मैं घर पे रह जाएंगे। तो इसने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। तो मैंने कहा दोनों जने का खाना तो मैं बना लूँगी, नहीं है तो टिफिन मंगा लूँगी, सारी व्यवस्था है और सब काम वाली आती है सारा काम करने वाली। तो मैंने कहा बोले नहीं जाएंगे। तो उस टाइम तो मतलब कि कम रेट में थे रूम वगैरह और ये सारा सब, मैंने मना कर दिया तो इसने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर 10-15 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने कहा तुम नहीं जा रहे क्या? बोले नहीं आप नहीं चल रहे तो हम भी नहीं चल रहे। फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं मेरे जैसे। तो मैंने कहा कि लो चलो चलते हैं, होगा सो देखा जाएगा, जो भी तबीयत बिगड़ेगी करेगी कुछ भी होगा। नहीं बोले आपको लेके इस तरह से चलूंगा, तबीयत बिगड़ेगी कैसे? मसूरी पे तो सुविधा नहीं थी, और शिमला में क्या ट्रेन जाती है पहाड़ियों के बीच में होके, 103 तो गुफाई थी। कभी आप गए हो शिमला में? देख के आना बहुत गजब का नज़ारा है, 103 तो गुफाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, अंधेरा गुप, सब लोग ट्रेन वाले चिल्लाए, और वो ट्रेन जिसमें आराधना पिक्चर थी ना, जिसमें शर्मिला टैगोर थी, गाड़ी में बैठी बुक पढ़ती है और राजेश खन्ना नीचे रोड पे चलते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उस वाली ट्रेन में हम बैठे जो शूटिंग हुई थी, और वो ट्रेन चली, इतना सा भी नहीं लगा कि इतनी ऊँची पहाड़ी पर कब चढ़ गए, और इतना मजा, और चारों तरफ इतने फूल प्रकृति के, अपन तो लगाते हैं एक पेड़ पौधा भी तो उसका कितना संभालते हैं कितना करते हैं तब कोई फलता है या फूल देता है, प्राकृतिक सौंदर्य इतना, हजारों फूल बेल लताएं, इतना सब कुछ नज़ारा देखने में, पूरा कब समय भी बीत गया पता ही नहीं चला, 4-5 दिन तक वहाँ शिमला जाके आए
1: जी जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरा परिवार जाते थे
2: जी
1: ट्रेन से, और आपने कुछ बताया था कि आपकी भाभी को भी
2: डिलीवरी हुई थी उस
1: वही ट्रेन में
2: जी, नहीं घर पे हो गई थी डिलीवरी, 1.25 महीने की हो चुकी थी, हमारे 1.25 महीने तक सूतक मानते हैं कि 1.25 महीने तक चूल्हे परिंडे कहीं लग नहीं सकते
1: जी।
2: पवित्र नहीं मानते, 1.25 महीने के बाद जब जलवा हो जाता है, पूजा हो जाती है, कुआ पूजन होता है हमारे, फंक्शन होता है, वो फंक्शन हो जाता है उसके बाद वो कहीं भी जा सकती करती। तो मेरी मम्मी ने मना किया कि भाई बहू को नहीं लेके चलेंगे, बच्चा बहुत छोटा है, रोज ये गंगाओं में नहाएगी, सब जगह गंगा जी में नहाना पड़ता है, तो बच्चा छोटा है दूध पीता है माँ का, तो बीमार बीमार हुए नहीं, बोले भगवान ने सब कुछ, सब बात वो भगवान पे छोड़ते थे और उनके सब काम पूरे भी होते थे। ऐसे ही मैं भी भगवान पे छोड़ती हूँ, मेरे सब काम पूरे होते हैं, मैं जो कह देती हूँ ना वो बात होती है। फिर लेके गए उसको, ले गए अब पिताजी की जिद के आगे, वो सभी गंगाओं में नहाई करी तो मेरे भतीजे को निमोनिया हो गया था। निमोनिया हो गया, छोटे बच्चों का, सवा महीने का बच्चा लड़का, वो भी
1: कितना नाजुक।
2: हाँ कितना नाजुक,
1: चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो, वही सवा महीने का बच्चा
2: वो
1: तो
2: जी बहुत छोटा था। बहुत मना किया मेरी माँ ने कि देखो मत लेके चलो, हर साल चलते हैं, अगले साल चलेंगे, थोड़ा बड़ा होने दो। पर उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि परिवार पूरा ही चले। लेके गए तो भाभी हर गंगाओं में नहाती थी तो उसको भी थोड़ा बहुत तो नहलाते ही थे गंगा का पानी वगैरह। तो निमोनिया हो गया बहुत बड़ा और इतना सीरियस हो गया कि पूछो मत। तो मेरे भाई वगैरह डॉक्टरों को दिखाए करे वो, मेरे पिताजी तो बस अपनी शक्ति को मानते थे। 51 पंडित बिठाए और पता नहीं कौन सी पूजा करवाई, वो कोई नाम है, वो पूजा उन्होंने कराई।
1: वो भी ट्रेन में ही?
2: नहीं, वो मतलब ट्रेन से नीचे उतर के ग्राउंड में।
1: हाँ सफर में ही।
2: हाँ सफर में, सफर में।
1: और कहाँ से लाए होंगे 51 पंडित?
2: ट्रेन में ही मिल गए।
1: अच्छा।
2: हाँ ट्रेन में ही, पूरा जनकपुर और ये जयपुर में कौन सी जगह है, वो साधु महात्मा संत, ये अजमेर के पास है सलीमाबाद, वहाँ के सर्वेश्वर जी महाराज, जनकपुर, अयोध्या, सब जगह
1: जी जी जी। चलिए तो
2: और फिर ठीक हो गया वो।
1: अच्छा,
2: पूजा होते ही ठीक हो गया मेरा भतीजा।
1: चलिए बहुत सुंदर, तो आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: शिवराज सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: बहु रानी और सास माँ होती है, बहु रानी और सास माँ होती है। नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है, नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ है। इनके काफी अनुभव सुने हैं कि किस तरह हर साल 3-4 महीना आप सफर में ट्रेन में ही रहते थे, बच्चे का जन्म भी ट्रेन में, तो बुजुर्गों की मृत्यु भी ट्रेन में, और कुछ हो गया है तो पूजा पाठ वगैरह भी सब ट्रेन में, मतलब आधी लाइफ इनके ट्रेन में ही गई। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, और भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपके पिताजी को अवार्ड भी मिला।
2: जी, हमेशा हर साल यात्राएं लेके जाते थे, तो उनको बॉम्बे रेलवे से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। ट्रेन के पास पूरे ट्रेन बनी हुई है सर्टिफिकेट के ऊपर, और उनके विचार लिखे हुए हैं कि एक आदमी ऐसे छोटे गांव से, राणोली गांव दौसा के पास, 4 क्लास पढ़े हुए उस जमाने में, लेकिन आज के PhD के सबसे बड़ी शिक्षा को मात दे सकते थे। इतना ज्ञान, इतना अनुभव उनको था। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है पढ़ाई से भी ज्यादा होता है, किताबी ज्ञान कम होता है। किताबें पढ़ के डिग्रियां चाहे कोई कितना ले लो, अगर वो अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर उनकी पढ़ाई किस काम की है।
1: जी।
2: तो व्यवहारिक ज्ञान होना जीवन में बहुत ज्यादा है। तो आज उन्होंने देखो 4 क्लास पढ़े हुए थे, 4थी क्लास की परीक्षा भी, जैसे आज हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो अपने गांव से दूसरे शहर में जाते हैं, सेंटर आता है, तो ऐसे ही उस जमाने में राणोली एक छोटा सा गांव है दौसा के पास, उसमें हमारे आमों के बगीचे वगैरह हैं, दादाजी ने लगा रखे हैं और ये सब। तो मेरे पिताजी 4थी क्लास का एग्जाम देने के लिए दौसा आए थे।
1: अच्छा।
2: उस जमाने में 4थी क्लास के, और हम इतने पढ़ गए लिख गए, सारे बहन भाई सबको मात कर देते थे, हिसाब किताब सब में। इतने लोगों को यात्रा कराना है, ऐसे ही है क्या? आज अपना एक परिवार नहीं समझ

0: डाल सकते
1: बिल्कुल,
0: और वो भी एक बेटा एक बेटी आज के जमाने में, और आज की जनता तो केवल एक बच्चे पे आ रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब हमारे देख लो, गुड़िया है एक, 5 साल की हो गई मेरी पोती, बेटे वो बिल्कुल ना बोलते हैं, बहुत है एक ही, और हम 8 बहन भाई थे, तो सोचो उन लोगों की उन्होंने कैसे, और अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया, हमको कोई शिकायत नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हो स्वर्ग में हो, और हर जन्म में हमको वही परिवार मिले, वही माता पिता मिले, इतना सुख उन्होंने हमको अच्छा दिया कि कभी ऐसे, और इतना प्रेम होता था, छोटे बच्चे के कपड़े हो गए वो बड़ा हो रहा है तो उसको पहना दिए, उसके उसको पहना दिए, आजकल तो एक बार पहने फेंको हटाओ, और वो भी ब्रांडेड, ब्रांडेड कपड़े होने से मैडम कुछ नहीं होता है
1: जी,
0: ब्रांडेड सोच होनी चाहिए, कपड़े खराब हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए, चोरी चकोरी से गलत कार्य से शर्म करनी चाहिए, अपना घर कैसा भी हो, कुछ भी हो, मंदिर है वो, झोंपड़ी हो चाहे कुछ, तो इस तरह के लोग आजकल शो ज्यादा देखते हैं, असलियत को वो नहीं पहचानते।
1: जी जी जी, नकली का जमाना है,
0: नकली का जमाना, दिखावे का, दिखावे का
1: जी। तो फिर आपको शिक्षा संस्कार भी माता पिता से ट्रेन में ही मिलते थे?
0: ट्रेन में मिले, घर पे भी मिलते थे, हर बात पे रोका टोकी करते थे, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ में, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, कोई आंख में कर रहा है, तो हमको ऐसे ऐसे शेर शायरियां चौपाइयां ये सब करके बताते थे, नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर। इस तरह से कह कह के समझाते थे, और इतना परिपक्व कर दिया हमको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो भी वो 10 बार एक दो काम कर लेंगे, फिर हाथ धोने की आदत, एक दो काम करे फिर हाथ, इतनी बार हाथ धोते हैं करते हैं, और अब मेरी वही आदत हो गई, परिवार में मैं कुछ देखती हूँ करती हूँ तो तुरंत टोकती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो बच्चों, ऐसा नहीं करना बेटा, बैठे बैठे कोई जैसे यूं कर रहा है, हाथ जूटे हो गए ना, तो बोले अब काम क्या करना है जो हाथ जूटे हो गए, नहीं मुँह में हाथ नहीं देने का, परिवार के लिए भी मैं बहुत रोका टोकी करती हूँ, ये मेरी थोड़ी गलत आदत है, सही है जो भी आप समझो। इतना
1: आपका समय अलग था, लेकिन अभी का समय अलग है, अभी थोड़ी रोका टोकी मतलब पसंद नहीं करते हैं आज की जनरेशन।
0: लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चों की पूरे समाज में तारीफ है, और मेरे पियर वाले सब मेरे बच्चों को, इतना मेरे पियर जाते हैं सुबह उठते में, मामाओं को प्रणाम करना, मामी जी को प्रणाम करना, सब सब कहते हैं अयोध्या भाई आपके बच्चे देखो कितने संस्कारिक है, मतलब ता से बच्चे की पहचान नहीं होनी चाहिए कि भाई उनका पुत्र है, ये पुत्र से पिता की पहचान होनी चाहिए, अच्छा आप उनके बच्चे हो, तो अब बच्चों से हमारी पहचान है, बच्चों को भले ही इनको ऐसा लगा हो, कभी मेरी बात का बुरा भी नहीं माना है, लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे पसंद है, तो पूरा आबू रोड कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे जिन्होंने तुमको संस्कार दिए, तो ये संस्कार पहले मैं लेके आई हूँ अपने घर से, गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और गृहिणी चाहे तो घर को नर्क बना सकती, ये गृहिणी के ऊपर डिपेंड है, आदमी तो हमेशा बाहर रहता है जॉब पे, लेकिन वो चाहे तो, फिर बच्चे कहना मानने वाले भी होने चाहिए थे, मैंने ऐसा जीवन जिया शादी के बाद अपना काम किया, पहले तो इतने नौकर चाकर भी नहीं होते थे, सब झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करते थे हमारे जमाने में, सारा सब कुछ कर करा के दोपहर में बच्चों को आते स्कूल से सिखाया, खाना खा के कपड़े चेंज करके और अपना बैग लेके पहले होमवर्क पूरा करो और फिर दोपहर में सो जाओ, ना मैं कहीं जाती थी इधर उधर मोहल्ले में औरतों के पास, कोई ऐसी औरत हो जिसके पास बैठे शिक्षा मिले, तो मेरा तो अलग ही जीने का तरीका है, आपको पता है मेरे को तेरी मेरी ये फालतू का समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर अपन पुण्य भी नहीं कमा सकते हैं तो क्यों किसी को, अपना घर संभाल के ही बता दें तो वही सबसे बड़ी बात है, मैं तो सबसे ही कहती हूँ मेरे किसी की नहीं सुननी, मेरे तो बस मेरे घर की तारीफ हो जाए कि अच्छे से घर चल रहा है, वही सबसे बड़ी बात है।
1: बहुत सुंदर विचार है आपके, और वो शिक्षा संस्कार जो बचपन से मिलते हैं उसका तो प्रभाव पूरे लाइफ टाइम पड़ता ही है, और हर माँ की इच्छा रहती है कि अगर अच्छे शिक्षा संस्कार हमें मिले तो हम भी अपने बच्चों को उस अनुसार ढाले। लेकिन हाँ, सबके बच्चे ऐसे नहीं होते कि वो अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं, वो सारे अपने मन से भी चलते हैं,
0: मन से चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज बैंक में जॉब करता है, वाइफ आ गई बच्ची हो गई, लेकिन आज भी ये बड़ा भी कितना भी बुड्ढा हो जाएगा मेरे लिए वही रहेगा, मेरी छवि में मुझे वही दिखता है कि मेरा बच्चा है जब इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया, अभी भी मैं इसको डांट दूं कुछ भी कह देती हूं कभी कुछ नहीं कहता,
1: माता पिता के लिए तो देखे बच्चे बच्चे ही रहेंगे,
0: मेरा कहना मानते हैं अभी भी, मैं कह देती हूँ ऐसे नहीं वैसे नहीं यूं नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कह देती हूँ मैं, क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता ऑफ हो गए थे.
1: अच्छा.
0: दादी ने इनको पाला था, बहुत ऐसी कंडीशन जिंदगी जी है इन्होंने, तो मैं ना मेरी थोड़ी आदत खराब है, इनको भी कह देती हूँ ऐसे नहीं, आप इतने बड़े प्रिंसिपल हो, ऐसे बैठने का ढंग हो, ऐसे बात करना. अभी जैसे गेट पे आए ना तो एक पुलिस वाले भैया आए और भाग के आए और बोले सीधी गाड़ी अंदर जाने दो. तो हमने सोचा भाई ऐसे क्या, बोले इन सर से मैं पड़ा हुआ हूँ, बाहर गेट कीपर पे बैठे ना पुलिस वाले भैया, नाम भी बताए, बेटे को पता होगा, तो उनका सीधी गाड़ी ले जाओ, इस सर से पड़ा हुआ हूँ मैं. अब इनके क्या 3 अटैक आ गए ना, थोड़ा कम बोलते हैं. हमेशा 100% रिजल्ट दिया इन्होंने, कभी सुख की रोटी नहीं खाई, टाइम हो गया रोटी छोड़ के चल देते थे, लेकिन स्कूल में कभी शिकायत नहीं आई.
1: कहाँ जॉब थी?
0: 10 साल तो मूंगथला में रहे
1: जी,
0: और 20 साल रेवदर में रहे, और 5 साल पामेरा, वहां से रिटायरमेंट हुआ. VRS लिए 6 महीने पहले, अटैक आ गया ना
1: जी जी जी,
0: तो फिर VRS दिला दिया हमने.
1: प्रिंसिपल के पद पर थे?
0: प्रिंसिपल के पद पर.
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं. आप कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही उनको क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज?
0: यही मैसेज देना चाहूंगी बहनों को कि नारी शक्ति एक ऐसी है जिसको भगवान ने इस तरह से बनाया है, पियर और ससुराल दो दो घर को निभाती है. छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातें तक उसको याद रहती है, उसने मेरे को इस फंक्शन पे ऐसा दिया था, वो दिया था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. नारी शक्ति को अपने आप पे इतना गर्व होना चाहिए, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं घर की नौकरानी हूँ, मेरा तो यही जीवन है कि मैं उठूँ और सबको सेवाएं करूँ, काम करूँ. कोई कह रहा है चाय बना दो, कोई का खाना हो रहा है, मेरे ऑफिस जाना है, मेरे स्कूल जाना है, सबका करके भी वो अपने लिए समय निकाले और अपनी पहचान अलग से बना के बताए.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है नारी शक्ति को, और ये बहुत ही जरूरी भी है.
0: और आज मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व है कि मैंने हाउसवाइफ होके भी नींव की ईंट बनके और कंगूरे झुकाए हैं, और जो मेरे अंदर गुण थे वो कैसे लोगों को मालूम पड़ते, अगर मैं लोगों से मिलती नहीं और ये बुक लिखती नहीं, लोगों के हाथ में मेरी ये किताब जाती नहीं, मेरा लेखन कार्य, तो उनको कैसे पता पड़ता कि मैं घर के अंदर क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, कैसे मेरी एबिलिटी मालूम पड़ती सबको.
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या जी, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही कीमती समय स्वयं का भी दिया रेडियो मधुबन और श्रोता बंधुओं के लिए, और बहुत ही सुंदर अनुभव सभी के साथ शेयर किए हैं, इसके लिए आभार आपका. आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम. वंदे मातरम में अयोध्या शर्मा, जो आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं, आपने BA कर रखा है, उम्र आपकी 62 वर्ष है, और आपको किस तरह देखिए कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक है, और कैसे सफर में आपका जीवन बीता, किस तरह ट्रेन में यात्राओं पर आप जाते थे, कैसे आपको अपने माता पिता के द्वारा शिक्षा संस्कार मिले, और आपने किस तरह अपने बच्चों का शिक्षा संस्कार दिए. क्या आज आप एक हाउसवाइफ होकर के भी, का कहना है कि पूरे आबू रोड में आपकी पहचान अच्छी है, सभी आपको जानते हैं मानते हैं. सचमुच में एक गृहिणी से, वो कहते हैं ना कि उम्मीद बहुत ही कम रखते हैं लोग, लेकिन नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है, अगर वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि अयोध्या जी ने किया है. देखिए इनके अनुभव हमने काफी कम सुने हैं, बहुत सारे अनुभव है जो हम अगले रविवार को सुनेंगे और भी, लेकिन आज के लिए इतना ही. तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है. प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो. अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे अयोध्या जी के साथ. तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: सॉन्ग्स दैट कैनॉट बी इरेज्ड फ्रॉम योर हार्ट, इसलिए लौट आई हूँ फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो गीत हमारे दिलो दिमाग पर बरसों से हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उन्हीं गीतों को नए अनोखे अंदाज में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर से आपका मन पसंद दिल पसंद कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं स्वर्णलता। हमेशा नए अनोखे अंदाज में उड़ती रहती हूँ आपकी खातिर। तो रेडी है ना आज के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुनते हुए मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM, हमारा रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: Imagined. कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत सुनने के लिए आपको ट्यून करना होगा रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूं स्वर्णलता। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम गुलदस्ता। आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम हैं बिल्कुल बेफिक्र मोड में। आप भी बेफिक्र हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पुराने गीतों के नए रूप को देखने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में, डोंट मिस द शो। वन एंड ओनली स्वर्णलता के साथ आप बिताएंगे पूरा एक घंटा। इस एक घंटे के सफर को यादगार करते हैं हम दोनों मिलकर। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
2: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
1: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आप सुन रहे हैं नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। वैसे हमारे पुकारने पर आप चले आते हो रेडियो मधुबन पर, ट्यून इन करते हो और फौरन हाजिर हो जाते हो। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपसे आज एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं और मन ही मन मैं इसे पढ़ भी लूंगी, क्योंकि आपके भाव रिच हो जाते हैं, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाती हैं, है ना। तो ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आज एक अनोखे अंदाज में सिंगर पेश कर रहे हैं, उसे एक री इमेजिन्ड तरीका दिया जा रहा है, उसे नव कल्पना का रूप दिया जा रहा है। तो इस नव कल्पना को आप कैसे स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी भी गीत का ओरिजिनल वर्शन ही पसंद है, क्या ख्याल है आपका? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गीतों को अगर कोई अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में गाए या उसमें कोई चेंजेस लाए म्यूजिक में, क्या आपको पसंद है? आपको पसंद है ऐसे चेंज्ड वर्शन को सुनना? तो आज के कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल होना ही पड़ेगा जो ऐसे स्टाइल को पसंद करते हैं, अपना लेते हैं तुरंत, किसी की क्रिएटिविटी को तुरंत जो अपना लेते हैं,

सहज ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एक ही वस्तु के साथ लगाव लगाए बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद वह पीछे अपने आप को पाता है, वह कतार में अपने आप को पीछे पाता है क्योंकि वह आगे बढ़ नहीं पाता। हमें कई बार ऐसे चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक को ओल्ड मेलोडीज को सदाबहार गीत भी कहे जाते हैं। अब इन सदाबहार गीतों के जो ओरिजिनल वर्शन है उनका न्यू वर्शन आ चुका है। सभी अपने अपने अंदाज में इसे गाते हैं। ओरिजिनल वर्शन का एक अनोखा अंदाज भी है जो अपने अनोखेपन को दर्शाते हैं इन गीतों के नए वर्शन में। तो आप सब इन्हें सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा तो इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको दे और उस नएपन को आप दिल से कबूल कर ले। तो बने रहिएगा अंत तक आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह, क्योंकि आपका वादा है हमारा साथ हमेशा निभाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: संगीत प्रेमियों का कहना है कि ओल्ड मेलोडीज का अपना ही एक दौर था, वह दौर कभी वापस आ नहीं सकता। पर हम कहते हैं कि आज की जनरेशन भी ओल्ड मेलोडीज गा रही है, और आज की जो जनरेशन है उसमें कुछ जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन पुराने गीतों को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं, वह भी सही है। इससे नयापन आ जाता है, और नयापन कौन नहीं चाहता साथियों, है ना? हर चीज में तो नयापन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी सही। री इमेजिन्ड न्यू वर्शन आज आप सुन रहे हैं इन सदाबहार गीतों के। तो आप बताइएगा आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे भी हमें बता सकते हो, आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक के आधुनिक वर्शन आपके लिए रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो अभी बैक टू बैक दो गीत हम सुनने वाले हैं।
1: रुक, रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
2: सर वो सर सर
1: ओए क्या सर सर करके सर सरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
1: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहन कर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

0: कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम पुराने गीतों के, पुराने दौर के जो सदाबहार गीत हैं, उन गीतों के नए वर्षन हम सुन रहे हैं, जिसको रीमेक वर्षन भी कहा जाता है। और अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने। फर्स्ट सॉन्ग किशोर कुमार का था ओ मेरे दिल के चैन, और सेकंड सॉन्ग एक डुएट सॉन्ग रहा इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अब साथियों, आपने देखा कि दूसरे गीत में इसके शब्द भी बदल दिए गए और उसको अपने तरीके से पेश किया गया, और वह भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, खूबसूरत लग रहा था, है ना। तो ऐसे ही गीतों को आज आप सुन रहे हैं जिसमें नवीनता है। बने रहिए और सुनिए अगला गीत।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए

0: आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते. से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बीइंग असर्टिव. ये भी तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड एंड असर्टिव. डजंट हैव टू बी लाउड, you know, it doesn't have to be loud. Hum sochte hain zor se bol diya to that is assertive, that is a trace of anger. Aapka volume badh hi nahi sakta hai jab tak wo energy accumulate nahi hui hai andar. To even jab hamara volume is tarah se zor se badh jata hai, that energy has been created inside. Bahut aaram se, stability means stability everywhere, you know, thoughts, words and actions. To andar wo stability hogi, wo bahar apne aap aayegi. We will not have to do it. And for discipline karne ke liye aapko jo direction dena hai, usko aap dete hain. To I think energy exchange will be very comfortable between the two people.
1: Aap sun rahe hain Radio Madhuban. Sunte rahiye, muskurate rahiye.

चार दिन की जिंदगी है हंसते गाते चलता चल, चार दिन की जिंदगी है हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलता चल, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराते हुए हर लम्हा बिताते हुए आगे बढ़ता चल। फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे और ऐसे ही गीतों को हम लेकर आएंगे। और जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कंप्लीट एकांत की स्थिति एक आनंददायक स्थिति है, जब कुछ नया अपने आप दौड़े चला आता है, और इस कल्पना शक्ति के लिए एकांत की स्थिति की भी बहुत आवश्यकता है। तो आनंद लेंगे हम बॉलीवुड हिंदी क्लासिक्स का हमेशा, क्योंकि ये सदाबहार गीत ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह सदाबहार गीतों के साथ, नए नए गीतों के साथ। अब कौन से गीत पेश करने वाली हूँ जरा देखते हैं। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज मुझे मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिला कई सालों के बाद। बहुत मजा आया उससे मिलके। अपने स्कूल के वो दिन याद किए जब हम साथ में खेलते और पढ़ते थे। पुराने दोस्तों से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। मीना मीना मीना, हाँ वो रही, अपनी सहेली सबीना के घर में खेल रही है। आओ वहीं चलते हैं।
1: पकड़ लिया।
2: ये क्या मीना, तुम तो बहुत तेज भागती हो। माँ देखो ना, मीना ने मुझे फिर से आउट कर दिया।
3: पता है सबीना, बचपन में जब प्रभा मुझे पकड़न पकड़ाई के खेल में हरा देती थी तो मैं भी अपने माँ से ऐसे ही कहती थी, माँ देखो ना, प्रभा ने मुझे फिर से पकड़ लिया।
1: प्रभा,

0: प्रभा कौन है माँ?
1: मेरी सहेली।
2: मेरी सहेली, साथ में खूब खेली।
3: चाची, प्रभा काकी क्या आपके साथ स्कूल में पढ़ती थी?
1: नहीं मीना, हमारे माता पिता ने हमें स्कूल नहीं भेजा। उस जमाने में लोगों के सोचने का ढंग अलग था। तब लोग लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के फायदे नहीं जानते थे। लेकिन आजकल तो हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं।
0: अब प्रभा काकी कहाँ है माँ?
1: दूर कहीं एक गांव है, जमनापुर। शादी के बाद वो वहीं चली गई थी। अब तो कई साल बीत गए, बहुत याद आती है उसकी।
3: चाची जी, आप किसी दिन प्रभा काकी के गांव जाके उनसे मिल।
1: नहीं मीना बेटी, पास की बात होती तो मैं चली भी जाती, लेकिन इतनी दूर।
3: आपके पास उनका पता है?
1: हाँ पता तो है, लेकिन।
3: इसका मतलब आप उन्हें चिट्ठी तो लिख ही सकती हैं?
1: अरे हाँ मीना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सबीना बेटी, तू मेरी तरफ से प्रभा को चिट्ठी लिख देगी ना?
0: हाँ हाँ माँ, मैं अभी कागज और पेन लेकर आती हूँ।
4: सबीना ने प्रभा काकी के लिए एक चिट्ठी लिखी और अगले दिन उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। और अगले कई दिनों तक सबीना की माँ प्रभा काकी की चिट्ठी आने का इंतजार करती रही, लेकिन उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। और एक दिन जब स्कूल से लौटने के बाद सबीना खाना खा रही थी तो।
0: तुम बैठो माँ, मैं देखती हूँ। कौन कौन है?
4: सबीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत 1.5-2 साल की बच्ची गोद में उठाए खड़ी है। वो औरत सबीना को देख के मुस्कुराई और बोली,
5: तुम पूनम की बेटी हो ना?
0: जी हाँ, लेकिन आप?
5: सोचो कौन हूँ मैं?
0: मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा।
5: देख तो मैं भी तुम्हें पहली बार ही रही हूँ, लेकिन हमारी बात हो चुकी है एक बार चिट्ठी से।
0: चिट्ठी से? प्रभा काकी।
5: हाँ।
0: माँ, माँ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ ना माँ।
6: आती हूँ सबीना, कौन आया है बता तो।
5: प्रभा तू? देखा पूनम, कर दिया ना हैरान, कैसी है?
6: मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू अचानक यहाँ, और मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया तूने?
5: खुद जो आ गई। दरअसल मुझे नदी पार वाले गांव जाना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से होती चलूं।
6: ये तो तूने बहुत अच्छा किया प्रभा, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ।
5: चुप हो जा।
0: इसका नाम क्या है प्रभा काकी?
5: नीलू।
6: बड़ी प्यारी है तुम्हारी बेटी, कितनी बड़ी हो गई?
5: 1.5 साल की है नीलू।
0: नीलू, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ।
5: अरे वाह सबीना, नीलू से तो तुम्हारी एकदम दोस्ती हो गई, है ना पूनम?
6: हाँ भाई, इन दोनों की माएं भी पक्की सहेलियां जो हैं। आ प्रभा, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर दोनों साथ में मिल के खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे।
5: ठीक है।
6: नीलू दलिया खाती है ना?
5: बड़े शौक से।
6: मैं अभी इसके लिए दलिया बनाती हूँ।
0: माँ, मैं अभी आई।
6: अरे कहाँ भागी जा रही है?
0: 2 मिनट में आती हूँ माँ।
4: सबीना को गए पूरे 20 मिनट हो चुके थे। सबीना की माँ को अब उसकी चिंता सताने लगी थी।
5: चिंता क्यों करती है पूनम, आ जाएगी।
6: 2 मिनट का बोल के गई थी, अब तो इतनी देर हो गई है।
3: नमस्ते चाची। नमस्ते प्रभा काकी।
5: नमस्ते। ये कौन है पूनम?
3: काकी, मैं मीना हूँ, सबीना की सहेली।
6: मीना बेटी, तुमने प्रभा को कैसे पहचाना?
3: थोड़ी देर पहले सबीना मेरे घर आई थी, मुझे ये बताने कि प्रभा काकी आई हुई है। सबीना कहाँ है चाची?
6: वही सोच के तो मैं भी परेशान हो रही हूँ बेटी, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की।
3: मीना, तुम कब आई?
6: तुम कहाँ थी सबीना, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी?
0: माँ, पहले मैं मीना के घर गई और फिर लाला जी की दुकान पे।
6: लाला जी की दुकान पे क्या करने?
0: ये घी लाने।
6: घी? सबीना बेटी, मैं जानती हूँ कि घर में घी नहीं है, लेकिन आज का खाना तो मैं बना ही चुकी हूँ,
1: घी बाद में भी तो आ सकता था।
0: माँ, जब मैं मीना के घर गई तो वो अपनी छोटी बहन रानी को दलिया खिलाने ही वाली थी।
1: तो
0: मीना ने रानी के दलिये में ऊपर से एक चम्मच देसी घी डाला। फिर मुझे याद आया कि आपने नीलू के लिए दलिया बनाना है और घर में घी खत्म था, इसलिए मैं भाग के लाला जी की दुकान से घी लाने चली गई।
5: सबीना, मीना, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हें ये सब सिखाया किसने?
3: प्रभा काकी, माँ जब भी मेरी छोटी बहन रानी को खाना खिलाती है तो उस खाने में एक चम्मच घी या मक्खन जरूर डालती है।
0: आंगनवाड़ी बहन जी भी यही कहती है कि 2 साल से छोटे बच्चों के खाने में एक चम्मच घी या मक्खन जरूर डालना चाहिए। एक तो उससे खाने का स्वाद बढ़ता है और बच्चों के शरीर का सही विकास होता है और उन्हें पूरी ताकत भी मिलती है।
1: भाई ये बात तो ठीक है प्रभा, पहले 2 साल बच्चे के शरीर के विकास के लिए बहुत खास होते हैं।
5: पूनम, मुझे यहाँ आके सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी नीलू भी बड़ी होके मीना और सबीना की तरह समझदार बने।
2: समझदार बने, होशियार बने।
4: देखा दोस्तों, मैं ना कहता था कि मीना से मिलके मजा तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक जरूरी बात भी पता चल जाती है। चलो भी, क्या कहा, कहाँ चले? अरे भाई, मीना और मिट्ठू की कविता नहीं सुननी?
3: 2 साल तक के बच्चों को जब भी खाना खिलाएं,
2: उसमें एक चम्मच घी या फिर मक्खन जरूर मिलाएं।
4: भाई वाह, क्या बात कही है अपनी मीना और मिट्ठू ने। तो इसी बात पे हो जाए गाना।

0: बढ़िया गाना था। अब हम चलेंगे मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: ठीक है, तो सुनो, पहली कड़ी, मैं और मेरी हर एक सहेली साथ में रहती झुंड बना के।
3: मीना, क्योंकि मीना अपनी सहेलियों के साथ झुंड बना के रहती है।
1: गोलू, पहले पूरी कड़ी तो सुन लो, मैं और मेरी हर एक सहेली साथ में रहती झुंड बना के, हम सब उड़ती फिरती हवा में, पीती फूलों का रस जाके।
4: समझ गया, सही जवाब है तितली, क्योंकि तितली फूलों का रस पीती है।
1: कृष्णा, लेकिन क्या तितलियाँ झुंड बना के रहती हैं?
4: बहन जी, ये तो मैं भूल ही गया था।
1: चलो चलो, जल्दी सोचो क्या है सही जवाब।
3: बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है।
5: हाँ बहन जी, दूसरी कड़ी भी बताइए ना।
1: सुमी, दीपू, ठीक है, दूसरी कड़ी भी बता देती हूँ। बच्चों, ये रही दूसरी कड़ी। यूं तो दिखने में हम छोटी, लेकिन कभी काट जो खाएं, दर्द के मारे लोग बेचारे उई उई करके शोर मचाएं।
6: मुझे पता लग गया, सही जवाब है चींटी, क्योंकि चींटी भी जोर से काटती है।
1: मोनू, क्या चींटियां हवा में उड़ती हैं? बच्चों, अब सुनो तीसरी कड़ी। कभी न थकती कभी न रुकती, काम में अपना करती जाती, मेरे घर को कहते छत्ता, मैं एक मीठी चीज बनाती।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है मधुमक्खी। मधुमक्खी फूलों से पराग ले जाके अपने छत्ते में उसका शहद बनाती है।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक मजेदार कहानी, चटपटे गीत और एक अनोखे खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: डिटेक्टिव गोपीचंद, पात्र परिचय, दृष्टि यश, आदित्य और आकाश। रीटा के पास इंस्पेक्टर गोडबले का फोन आया था। रीटा ने गोपीचंद को बताया कि फिल्म स्टार सुरेश कुमार का कत्ल हो गया है और गोडबले ने फौरन उन्हें मुंबई के फिल्म स्टूडियो बुलाया है।
4: सर गाड़ी तैयार है, आप फौरन तैयार हो जाइए, वहाँ गोडबले हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने सारा सामान रख लिया है।
3: वे तुरंत फिल्म स्टूडियो के सेट पर पहुंच जाते हैं जहां सुरेश का मृत शरीर लहूलुहान पड़ा था। फिर वे फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलते हैं।
5: हमें पूरा भरोसा था कि सुरेश और रमन ये फिल्म बनाने के बाद बहुत शानदार कमाई करते, लेकिन लंच के बाद जब सुरेश

0: का शॉट रेडी हुआ तो मेकअप रूम में उसे मृत पाया गया।
1: गोपीचंद और रीटा लाश के आसपास का पूरा मुआयना करते हैं और उन्हें वहां कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं। वे उन्हें तफ्तीश के लिए अपने पास रख लेते हैं।
2: प्रोड्यूसर साहब, मैं आपकी इस फिल्म के तैयार शॉट्स देखना चाहता हूँ। आप प्रोजेक्टर पर मुझे बनी हुई फिल्म दिखाने का इंतजाम कर दीजिए।
1: वे अचानक फिल्म देखते हुए उछल पड़ते हैं और एक शॉट रुकवाते हैं। उस शॉट को वह ध्यान से रिवर्स कर करके देखते हैं। उन्हें कुछ दिखाई देता है। रीटा और गोपीचंद फिर स्क्रिप्ट राइटर से कहानी लेकर ध्यान से पूरी स्क्रिप्ट को देखते हैं। गोपीचंद को कुछ मिल जाता है।
3: गोपी जी और मैंने अपनी पूरी तहकीकात कर ली है। प्रोड्यूसर साहब, वह आपकी पूरी फिल्म यूनिट और सभी कलाकारों से मिलना चाहते हैं।
2: मुझे सुरेश के कातिल के बारे में पता चल गया है और उसका नाम रमन है। वह उस फिल्म में सुरेश का को स्टार था।
4: पर रमन तो बहुत अच्छा कलाकार था, वह ऐसा क्यों करने लगा? वो तो सुरेश के साथ बहुत अच्छा किरदार निभा रहा था।
2: मेकअप रूम में मुझे यह लाइटर भी मिला और यही लाइटर मैंने फिल्म के एक सीन में भी देखा है, जिससे रमन कुछ पेपर जला रहा था। मतलब मेकअप रूम में सुरेश के कत्ल के बाद रमन इस लाइटर को धोखे से वही छोड़ गया था। हमें जल्दी से रमन के घर पर पहुंचना होगा, कहीं वह सबूत ना मिटा दे।
1: फिर रमन के घर की तलाशी ली जाती है और उन्हें वहाँ धारदार हथियार भी उसके बगीचे में एक कोने से मिल जाता है, जिससे उसने सुरेश का कत्ल किया था। रमन गहरी पूछताछ के बाद सब कुछ कबूल कर लेता है।

Hello students, this is Sandeep Trivedi. After a long time, I am back with the lesson which is A Man's True Son from the book Golden Rays for class 10th RBSE, Rajasthan Board of Secondary Education. So, bachon, आज मैं संदीप त्रिवेदी बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच में एक बार फिर आया हूँ. आपकी जो बुक है गोल्डन रेज उसका 10th लेसन अ मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. टेक्स्ट को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. तो देखिए जरा जो एक्टिविटी वन है विच इज कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन में ए को छोड़ दिया हमने, बी को छोड़ दिया, सी पे सीधा सा आ जाते हैं. और सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स. ओके, अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन. व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द फीस्ट, ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन, यानी उस व्यक्ति के घर में किस अवसर पर दावत चल रही थी, या जो भोजन की व्यवस्था की गई थी वो क्यों की गई थी, उसका कारण क्या था. व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ फीस्ट. तो इसको हम शुरू करेंगे, द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन वाज. ठीक है, आपको समझिए कि व्हाट से शुरू है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, वाटर वाज को हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज ही यूज करेंगे, यानी जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है हम आंसर भी उसी टेंस में ही देने की कोशिश करेंगे. तो द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन वाज, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया. अब हम देखते हैं, शुरू में आते हैं. आपको हमेशा मैं कहता हूं कि खुद आंसर लिखना आना चाहिए. ओके, और दैट्स वाई व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको लेसन समझना पड़ेगा. अब मैं भी देखिए आपको वही कोशिश कर रहा हूं कि इसी लेसन में से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं. शुरू में हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन, इट वाज हिज बर्थडे. ओके, तो आंसर मिल गया आपको कि क्यों था भाई. अब देखिए हम आंसर बनाते हैं, अगेन ध्यान से सुनिएगा, द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन वाज His birthday, या the birthday of the gentleman, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, Who were the guests in the feast? Who में आपको पता है सीधा who की जगह आप answers लिख देंगे, relations and had come from far and near to greet him and bring, देखते हैं जरा अभी, him gifts. ओके, तो यहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको बर्थडे के बाद ही, मैनी ऑफ हिज रिलेशंस, मैनी ऑफ द जेंटलमैन्स रिलेशन एंड हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स. ओके, इतना लंबा हम इसको नहीं करेंगे आंसर को, और हम इसको, तो मेनी रिलेटिव्स वर द गेस्ट्स इन द फीस्ट, बहुत सारे रिलेटिव्स थे. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वर द गिफ्ट्स प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल. तो द गिफ्ट्स वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल बिकॉज, सेकेंड पैराग्राफ में आ जाइए, ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सो दैट ऑल माइट सी देम, बिकॉज All the guests might see the gifts. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं एक बार. क्वेश्चन है हमारा, why were the gifts placed in the center of the hall? तो आंसर होगा, the gifts were placed in the center of the hall because all the guests might see them. Okay? Fourth question. What a strange thing did the gentleman noticed after the feast was over. Okay. तो after, यहां से शुरू करेंगे हम. मैंने बताया था आपको अगर question के बीच में when और after आ जाए तो उसी से answer शुरू करेंगे. After the feast was over,
the gentleman noticed that he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका. फोर्थ क्वेश्चन हो गया. नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाई डिड द जेंटलमैन ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग बैक द डिशेस. ओके, तो व्हाई डिड द जेंटलमैन, फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑर्डर हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द डिशेस. तो वाई से है द जेंटलमैन ऑर्डर्ड, ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन है. डिड, डिड को हम जब हटाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. टेंस का रूल है ये, पास्ट टेंस का. तो द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द डिशेस बिकॉज ऑल द गेस्ट्स हैड नॉट येट बीन फेड. सो ही सेड टू हिज सर्वेंट दैट ब्रिंग बैक द डिशेस. ओके, तो बिकॉज ही सेड to his servant that all the guests had not yet been fed. सभी जो मेहमान थे उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए वापस लेकर के आओ आओ. Sixth question है, what was in the box brought by the stranger on the gentleman's birthday? Okay, last में है देखिए. तो what was in the box? ठीक है, तो हम देखते हैं what was in the box, box में क्या था. ठीक है, आंसर आपका बहुत सिंपल सा है, अ प्रेशियस पर्ल वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी. ठीक है, अ प्रेशियस पर्ल वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी वाज इन द बॉक्स ब्रॉट बाय द स्ट्रेंजर ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे. ये आंसर हो गया आपका. सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई वाज द जेंटलमैन अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर. क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी वगैरह कम हो गई थी, ऐसा दिया हुआ है ना. तो द जेंटलमैन वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर बिकॉज, बिकॉज देख लेते हैं, बिकॉज हाँ सीधा सा आंसर दिया है, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम. ठीक है, हिज साइट वॉज डिम, आंखों की रोशनी बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है ना. आठवां क्वेश्चन है, हु वॉज द स्ट्रेंजर. तो द थीफ whom he fed many years ago was the stranger. नाइन्थ क्वेश्चन है, what did the gentleman give to the thief? तो the gentleman kindness. इसका आंसर बहुत सिंपल होगा, kindness. What did the gentleman give kindness to the thief? ठीक है, उसी काइंडनेस यानी दयालु का, उसी अपनेपन की बदौलत तो वो आज बदल गया था. तो अब डी में आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच. देयर आर 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर. ठीक है, पूरी कहानी जब उसने सुनाई तब वो उसको पहचाना. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द काइंडनेस of gentleman influence the life of the thief. ठीक है, जो दयालुता थी उससे उस चोर की जिंदगी कैसे बदली. What did the gentleman say to the stranger at the end of the story? लास्ट में कहानी के अंत में क्या कहा था उसने. Through a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born. Explain with reference to the story A Man's True Son. तो इसको समझाना है हमें, इस लाइन को जहां पे लिखा हुआ है वहां पे. पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी A Man's True Son. लास्ट में आ जाएगा, लास्ट पैराग्राफ में उसने कहा ना, मेरे बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं था. एक्टिविटी टू, वोकेबलरी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स ऑफ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी एंड ऑल्सो यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. एग्जाम्पल,
humble, class simple, sadharan, vinamra. Please come and share this humble me with me. ठीक है, उसके बाद है greet, और इनको arrange करना arrogant, quietly, touched, precious, courtesy. तो हम match करते हैं, देखें greet क्या होता है, अभिवादन. ठीक है, थर्ड नंबर पे है bow in a respect, arrogant. arrogant का full of pride, arrogant का होगा full of pride, जो कि पांचवें नंबर पे दिया हुआ है list B में. थर्ड नंबर पे है quietly, quietly का होगा in a slow voice. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो है. फोर्थ पे है touched, touched, touched का होगा emotionally influenced. लास्ट छठे नंबर का. पांचवें नंबर पे precious, इसका होगा costly. सेकंड नंबर पे जो है, और एक बचा courtesy, courtesy का होगा जो फोर्थ नंबर पे है जेनरस बिहेवियर. ओके, तो ये आपका वोकेबलरी में ए एक्सरसाइज पूरी हुई. अभी बी में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कैच साइट ऑफ, फ्रेज हो गया ये एक तरह से, अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज्यादा मात्रा में, पास ऑन, पहुंचाना देना, पुट अवे, लुक अप, लुक आफ्टर, देखभाल, गिव अप, छोड़ देना, सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं. इट इज अवर ड्यूटी टू, खाली जगह, अवर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज. तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी क्या करें, देखभाल करें. तो क्या आना चाहिए, लुक आफ्टर. इट इज अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज. दूसरा है कर्टसी, इज ग्रेट एट्रीब्यूट दैट शुड, खाली जगह, टू पोस्टरिटी. कर्टसी इज ग्रेट एट्रीब्यूट That should क्या आना चाहिए, that should pass on, I think. सबको शिष्टाचार सिखाना चाहिए ना. थर्ड में देखते हैं, people often, हरी जगह, a rainbow during rainy season. अच्छा, people often, सर क्या होता है, इंद्रधनुष दिखता है ना बारिश के मौसम में, तो कैच साइट ऑफ ये आएगा. फोर्थ में है इट इज गुड, खाली जगह, गिव अप, छोड़ देना. इट इज गुड गिव अप टू स्मोकिंग. ओके, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिएगा. अब आते हैं हम एक्टिविटी 3, जो कि है ग्रामर, और इसमें है नाउन क्लॉजेस. हमने सेवेंथ लेसन में देखा था ना, क्लॉजेस दिए हुए थे, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो सबसे पहले दिए जा रहे हैं आपको नाउन क्लॉजेस. नाउन क्लॉजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों का समूह होते हैं, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ दियर ओन, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, सर्विंग द सेम फंक्शंस एज नाउन्स. दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स दैट, वेदर, व्हाट, एक्सेट्रा. इनमें नाउन क्लॉज में दैट, वेदर और व्हाट ये होते हैं नाउन क्लॉजेस विद दैट. दैट से कैसे हो सकते हैं देखते हैं जरा. पहला है द मैच विल स्टार्ट एट 4 PM, खाली जगह, इनडिपेंडेंट सेंटेंस. दैट द मैच विल स्टार्ट एट 4 PM, द यूज ऑफ दैट हैज मेड द सेंटेंस डिपेंडेंट. इट विल बी कंप्लीट व्हेन अ फाइनाइट वर्ब इज एडेड.
अब दैट लगाने से ये क्या है, निर्भर हो गया है वाक्य, तो दैट द मैच नाउन क्या है यहाँ पे, द मैच, लेकिन अब ये सेंटेंस अधूरा है, दैट द मैच विल स्टार्ट एट 4 PM, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें, तब जाके कंप्लीट हुए ना। हाँ, दैट द मैच विल स्टार्ट एट 4 PM इज श्योर। अब ये फाइनाइट वर्ब यहाँ पे क्या डाल दी इन्होंने, इज, कि मैच 4 बजे स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल पक्का है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट द मैच विल स्टार्ट इज अ नाउन क्लॉज डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब इज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉजेस। ओके, तो नाउन क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, और नाउन क्लॉज का हमने एक एग्जाम्पल देखा था यहां पर, अभी हम पढ़ रहे थे दैट द मैच विल स्टार्ट एट 4 PM इज श्योर। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट द मैच विल स्टार्ट इज अ नाउन क्लॉज डूइंग द वर्क ऑफ अ नाउन फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब इज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉजेस। अब टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं, नाउन क्लॉजेस एज पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट, दे मे अपीयर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शनिंग एज डिफरेंट ग्रामेटिकल यूनिट्स एज स्पेसिफाइड बिलो। ए, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन क्लॉज फॉर्मुलेटेड विद द इंट्रोडक्टरी दैट, नाउन क्लॉज जो है उसको दैट से हम शुरू करते हैं, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस हैविंग फाइनाइट वर्ब्स लाइक एस्टेब्लिश। अब इसमें जो फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी आ सकती है अगर दैट से नाउन क्लॉज है, तो establish, prove, show, and the linking verb be, okay? तो तीन verbs दिए हैं यहाँ पे, establish, prove और show. First, that the sun rises in the east is a well-known fact. That the smoking causes health disorders has been established by science. That the third example is that the man is guilty has been proved in the court. Fourth example is that the train will be late has been shown in the display chart. Fifth is that the monsoon will be late is sure. It is notable that the use of that clauses as subjects as shown above is more suitable in writing than in speech.

ये अब पहला था हमारा, इसमें एग्जाम्पल हमने देखा फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। दूसरा आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वो आज नहीं हम पढ़ पाएंगे, कल पढ़ेंगे। तो नाउन क्लॉज ये समझना बहुत जरूरी है, दैट वेदर, और एक और वर्ड क्या था इसमें नाउन क्लॉजेस, दैट वेदर और व्हाट, ये तीन। तो इस तरह की एक्सरसाइज भी आती है फिर कि इन्हीं से हमें सॉल्व करनी है वो, कि कोई किसी में दैट लगेगा, किसी में व्हाट लगेगा, किसी में वेदर लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे और एक्सरसाइजेस आएंगी तो अब हम कल देखेंगे इसको, और ये बहुत समझना जरूरी है नाउन क्लॉज, और ये सारे क्लॉजेस समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बाजौड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग, युग आप बताओ।
2: मैं सूरत वराछा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराछा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9th में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: 2nd।
6: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
9: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
9: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
10: मुझे एक सपने में

0: मैंने देखे थे एक बार।
1: देखी थी तो कोई सपना आया आपको?
0: हाँ।
1: उसको देखने के बाद
0: जग गए।
1: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
0: मैं डॉक्टर बनूंगी।
1: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
0: दीदी मरीजों का इलाज।
1: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
2: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
1: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। करोगे?
3: हाँ।
1: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
4: टीचर।
1: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ आप क्या सपना देखते हो, बड़े होके क्या बनोगे?
5: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
1: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के कुछ भी नहीं? ठीक है चलो, शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा। पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
6: संगीत कलाकार।
1: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
6: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
1: अच्छा मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के, कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
6: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो कड़ी।
1: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
7: बड़ा होकर CID बनना चाहते
1: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
7: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
1: अच्छा तो आप क्या करोगे CID बनके?
7: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
1: देश में जुर्म बढ़ रहा है उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी आप क्या बनना चाहते हो?
8: टीचर।
1: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
8: दीदी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं, कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है, काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
0: हाँ।
1: क्या सोचते हो बता?
0: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
1: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
8: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
1: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
4: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
1: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
2: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
1: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
4: डांस।
1: डांस? अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
7: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
1: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
6: किसी को लगता है पर हम से नहीं लगता।
1: आप से किसी को भी नहीं लगता?
6: नहीं लगता।
1: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
7: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
1: इसलिए औरों को
7: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
1: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
4: दी हमको भी यही लगता
1: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं,

0: कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
1: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
1: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे तो?
1: घुमाऊंगी।
0: तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग
2: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष,
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े लड़के कैसे अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान और
4: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे
5: दीदी? हम
0: आप भी सेवा करोगे? और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है आप बताओ? फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी पापा, दादी, दादाजी, चाची, चाची।
0: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
5: दीदी, मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा, मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
5: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ यू?
2: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
0: इसलिए वो फेवरेट।
2: कैसियो मंगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा, पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
2: दादी, दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
2: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
0: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मम्मी पापा, दादा, दादी।
0: और सबसे अच्छा
1: दीदी, मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा।
1: मम्मी
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
1: दीदी, अजी, अज्जा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
1: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
1: तो मुझे कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
4: मेरी फैमिली में मम्मी पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
4: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
4: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तब भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
2: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
2: दीदी, हमको भी वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे।
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
2: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होते हो?
1: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
2: जब एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है, इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान बताओ?
4: कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोला,
2: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
2: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो,
2: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
2: हमारे घर में तो है ही नहीं और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
2: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वरी, आप कभी गुस्सा होते?
1: नहीं।
0: दे? लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं। मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
1: हाँ।
3: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा
3: होता? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो? और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता
0: हूँ। अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
1: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
1: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती तो हम झगड़ते। तो दीदी फिर कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके लेने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हम
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी धक्का देती हूं, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए
0: झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड्स से हमें बात करनी चाहिए, वो बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: अच्छा, उसकी भी जगह बता देते हो।
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शॉर्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: दीदी कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। यू,
1: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर हूँ, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं?
1: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
1: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
1: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरे,
1: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
1: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
1: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर क्या चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी झूठ नहीं बोलते, ले जाते ही है।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
5: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता है उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
5: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
5: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
6: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है?
6: हाँ।
0: क्या करते हो?
6: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
6: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग करना।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
6: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
6: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
6: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हो? बहुत सारे गाने आते।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
7: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत इंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
6: हाँ
0: बताओ।
6: बार एक योगा में कॉम्पिटिशिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कंपटीशन में पार्ट लेते, हमें प्राइज मिलता तो मजा आता ही है।
6: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
6: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, ये बताओ आप लोगों को मजा आता है कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
1: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
1: कभी खाने में करेला का साग होता है ना, इसलिए
0: करेला। अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
1: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
1: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
3: नहीं लगता।
0: और आपको?
2: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कुछ कड़ियों में आपने स्वामी जी से राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग तथा वेदांत की व्याख्या सुनी। अब हम फिर बेलूर मठ में लौट आते हैं और शिष्यों के साथ स्वामी जी के विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के कुछ अंश सुनते हैं।
1: श्री सुरेंद्रनाथ सेन महाशय स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर स्वामी जी से प्रश्न पूछा करते थे और स्वामी जी भी बिना थके उनके संदेहों को दूर कर देते थे। अब हम सुरेंद्रनाथ के कुछ संस्मरण सुनेंगे।
2: सोमवार 24 फरवरी 1898 की बात है। दोपहर में मैं फिर स्वामी जी के पास आया। उनके चारों ओर काफी लोग बैठे थे। मधुर भाव पर चर्चा हो रही थी। ईश्वर को पतिरूप में भजना, जैसे कि चैतन्य संप्रदाय में प्रचलित है, मधुर भाव कहलाता है। स्वामी जी की उक्तियों से कभी कभी हंसी के फव्वारे छूट जाते। किसी बीच कोई बोला,
3: चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला में हास्यास्पद ऐसा क्या है? क्या आप सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महात्मा नहीं थे और उनका जीवन सर्वभूत हिताय नहीं था?
4: कौन हो तुम? तो महाशय जी, मैं क्या फिर तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? तुम तो केवल इसमें हंसी ही देखते हो। पर महाशय, तुम्हें यह नहीं दिखता कि चैतन्य महाप्रभु के ज्वलंत आदर्श कामिनी कांचन के त्याग के सांचे में अपने को ढालने के लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया है और जन साधारण में वही आदर्श की भावना ठूंस ठूंस कर भर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु तो महान त्यागी थे। उनका कामिनी और इंद्रिय भोग से क्या नाता? पर बाद में उनके अनुयायियों ने स्त्रियों को भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर दिया। चैतन्य के नाम पर उनसे अनैतिक संबंध स्थापित किए और इस तरह उनके महान आदर्श मिट्टी में मिला दिए। प्रेम का जो आदर्श चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में प्रकट किया था, उसमें तो अहम भाव और वासना का लवलेश भी नहीं था। वह तीन्द्रिय प्रेम सर्वसाधारण के लिए कैसे सुलभ हो सकता था? उनके उत्तरकालीन वैष्णव गुरुओं ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के त्याग और निस्प्रहता के आदर्शों की ओर दुर्लक्ष्य कर सर्वसाधारण में उनके प्रेम के आदर्श का ही प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण उस स्वर्गीय प्रेम के तत्व को तो समझ नहीं पाए और उस प्रेम को स्त्री पुरुष के निकृष्ट स्वरूप के प्रेम का रूप प्राप्त हो गया।
5: पर महाराज, कृष्ण के नाम के उपदेशों का अधिकार सर्वसाधारण को क्यों नहीं होना चाहिए?
4: मैं उनके उपदेशों को नहीं, उनके प्रेम के महान आदर्श राधा प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें वे रात दिन मस्त रहते थे और अपने को राधा का ही स्वरूप समझते रहते थे।
5: ये सर्वसाधारण के लिए क्यों वर्जित है?
4: इस देश पर उसका क्या परिणाम हुआ ये तो देखो। उस प्रेम भाव का सर्वसाधारण में प्रचार किए जाने से सारा राष्ट्र अशक्त हो गया है, जाति का पौरुष नष्ट हो गया है, लोगों को बस रोना और आंसू बहाना मात्र आता है। यही उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है। उनके साहित्य को देखो, जो कि राष्ट्र के विचारों और भावों का दर्पण होता है। इन 400 वर्षों के बंगाली साहित्य का ध्रुवपद यही कराहना और आंसू बहाना ही तो है। इन 400 वर्षों में वीर रस का एक काव्य तक तो नहीं रचा गया।
5: तो उस प्रेम के अधिकारी फिर कौन है?
4: जब तक हृदय में वासना के लिए तिल मात्र भी स्थान है, तब वो प्रेम संभव नहीं। केवल महान त्यागी, निष्प्रह और संन्यस्त व्यक्ति, केवल जो मानवों में अति मानव है, देव स्वरूप है, केवल उन्हें ही उस स्वर्गीय प्रेम का अधिकार है। यदि वो प्रेम का उच्चतम आदर्श सर्वसाधारण में प्रचलित कर दिया जाए, तो शनै शनै वो मनुष्य के हृदय में प्रबल सांसारिक प्रेम में ही विकृत हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का प्रिया भाव से ध्यान करते करते साधारण मनुष्य अधिकांश समय अपनी ही प्रिया के ध्यान में खोया रहेगा और इसका परिणाम क्या होगा यह स्पष्ट है।
5: ठीक है महाराज, नाम कीर्तन अत्यंत सहायक है और उसमें बहुत ही आनंद आता है। धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। और महाप्रभु चैतन्य ने भी जनता को यही उपदेश दिया है। जब मृदंग बजने लगता है तो हृदय आनंद से उछलने लगता है और आदमी नाचने लगता है।
4: ये ठीक है, पर ये मत समझना कि कीर्तन का अर्थ केवल नाचना ही है। कीर्तन का अर्थ है जैसे भी संभव हो ईश्वर का गुणगान। वैष्णवों का भावावेश में आकर नाचने लगना और मस्त हो जाना निस्संदेह अत्यंत मनोहारी है, पर उसमें एक धोखा भी है जिससे अपने को बचाना चाहिए। वो धोखा है उसकी प्रतिक्रिया में। एक ओर तो भावनाएं उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती हैं, नैनों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर शरीर मस्ती में झूमने लगता है, पर दूसरी ओर जो ही संकीर्तन समाप्त होता है भावनाओं की इन प्रबल लहरों का उतना ही शीघ्रता से पतन होता है। समुद्र में लहरें जितनी ऊपर उठती हैं उतनी ही नीचे गिरती हैं। उस अवस्था में प्रतिक्रिया का आघात सह लेना सरल नहीं है। जब तक सद विवेक बुद्धि का विकास नहीं हो जाता, साधारणतया व्यक्ति ऐसी अवस्था में वासना इत्यादि दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है। अमेरिका में भी यही बात मेरे देखने में आई। कई लोग गिरजाघर जाते हैं, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं, तन्मय होकर गाते हैं, धर्मोपदेश सुनते सुनते रोने भी लगते हैं, पर प्रार्थना समाप्त होने पर जो ही गिरजा के बाहर आते हैं इसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और वे इंद्रिय सुखों के शिकार हो जाते हैं।
3: महाराज कृपा कर यह बताइए कि चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से विचार योग्य समझकर हम ग्रहण करें जिसमें कोई भूल ना हो।
4: ईश्वर की ज्ञान मिश्रित भक्ति से आराधना करो। भक्ति के साथ विवेक का लोप ना हो। इसके अतिरिक्त महाप्रभु से उनकी सहृदयता, प्राणी मात्र के प्रति उनकी प्रेममय दया, ईश्वर के प्रति उनका उत्कट प्रेम सीखो और उनकी निस्पृहता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ।
2: अब प्रश्नकर्ता ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, अब मैं समझ गया कि आपका कहना ठीक है। वे महाशय तब स्वामी जी को प्रणाम कर चले गए। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि स्वामी जी कलकत्ते में आते थे तो इस प्रकार की गोष्ठियां रोज हुआ करती थी। प्रातः काल से रात्रि के 8-9 बजे तक हर घड़ी दर्शकों और श्रोताओं का तांता ही लगा रहता था। इससे उनका भोजन कभी समय पर नहीं हो पाता। इसीलिए कई लोगों ने स्वामी जी को सलाह दी कि वे आगंतुकों से निश्चित समय पर ही भेंट किया करें, किंतु स्वामी जी का हृदय तो प्रेम का सागर था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था और लोगों में धर्म के लिए जिज्ञासा और पिपासा देखकर तो उनमें करुणा उमड़ पड़ती थी। इसीलिए अस्वस्थ रहने पर भी उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं मानी। उनका तो बस यही एक जवाब होता था,
4: वे अपने घरों से चलकर यहाँ तक आने में इतना कष्ट उठाते हैं तो क्या मैं सिर्फ अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाने की थोड़ी सी आशंका से ही उनसे दो शब्द भी नहीं बोलूं? ये कैसे संभव है?
2: करीब 4 बजे चर्चा समाप्त हुई, मंडली विसर्जित हो गई थी। केवल कुछ ही सज्जन बैठे रहे जिनसे स्वामी जी इंग्लैंड और अमेरिका आदि के संबंध में बातचीत करते रहे थे। इसी वार्तालाप के मध्य में उन्होंने कहा,
4: इंग्लैंड से लौटते समय मुझे एक अद्भुत स्वप्न हुआ था। जब हमारा जहाज भूमध्य सागर में चल रहा था, स्वप्नावस्था में मैंने देखा कि ऋषि तुल्य कोई वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आओ हमारा उद्धार करो। मैं थेरा पुत्तम के प्राचीन पंथ का अनुयायी हूं जो प्राचीन भारतीय ऋषियों की शिक्षाओं पर आधारित है। जिस सत्य और जिन आदर्शों का हमने प्रचार किया, ईसाई लोग उनका ईसा मसीह द्वारा प्रचलित किया जाना बताते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहां खुदाई की जाए तो कई प्रमाण मिल सकेंगे। मैंने पूछा, कौन सी जगह खुदाई करने पर वे अवशेष और प्रमाण मिलेंगे? उस श्वेत केशी वृद्ध ने तुर्की के पास का एक द्वीप बताकर कहा, वहां। इतने में ही मैं जाग गया और डेक पर जाकर मैंने जहाज के कप्तान से पूछा कि जहाज अभी कहां है। जहाज के कप्तान ने हाथ से दिखाते हुए कहा, देखो वो तुर्किस्तान है और वो क्रीट द्वीप है।
2: क्या यह एक स्वप्न मात्र ही था या उस स्वप्न में कोई सत्य छिपा था, कौन जानता है।
0: स्वामी जी के एक और भक्त थे सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता महाशय। उनकी डायरी से भी हमें कुछ संस्मरण मिले हैं, लीजिए प्रस्तुत है।
2: एक दिन विभिन्न विद्यालयों के मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं स्वामी जी का दर्शन करने बेलोड़ मठ गया। हम उनके पास बैठ गए, कई विषयों पर चर्चा हो रही थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछे जाते ही वे उसका संतोषप्रद उत्तर दे देते थे। मेरा एक मित्र धीमी आवाज में स्वामी जी की प्रशंसा कर रहा था।
4: मेरी प्रशंसा मत करो, हमारी इस दुनिया में प्रशंसा और निंदा का कोई मूल्य नहीं है। ये तो केवल झमले के समान मनुष्य को झोंके दिलाती रहती है। मुझे काफी प्रशंसा मिली, कटु आलोचना की बौछार भी मैंने सही है, पर उनकी याद से क्या लाभ। हर एक व्यक्ति निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करता रहे, जब अंतिम घड़ी आएगी तो निंदा और प्रशंसा मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए समान हो जाएगी। हम सब यहां काम करने आए हैं और जब पुकार होगी तब सब कुछ छोड़कर चल देना होगा।
2: पर हम सब इतने अधिक गरीब हैं स्वामी जी।
4: गरीबी के इन विचारों को छोड़ो, किस दृष्टि से तुम गरीब हो। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि सोने के मुलायम गद्दे नहीं हैं और बुलाते ही हाजिर होने वाले नौकर चाकर नहीं है। उससे क्या होता है तुम नहीं जानते। यदि तुम रात दिन दूसरों की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दो तो जीवन में तुम्हारे लिए असंभव और असाध्य कुछ नहीं रहेगा। और फिर तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने जीवन की प्रकाशमान सरिता का दूसरा छोर अनंत असीम फैला है। मृत्यु का आवरण हट गया है और तुम अमरों के रम्य देश के अधिकारी बन गए हो।
2: ओ, आपके समक्ष बैठकर आपकी जीवन दायिनी वाणी सुनने में कितना आनंद है स्वामी जी।
4: देखो, भारत का परिभ्रमण करते करते कई महात्माओं से मेरी भेंट हुई, कई ऐसे हृदय पाए जिनमें दया और प्रेम का सागर लहरें मार रहा है। उनके चरणों में बैठकर मुझे प्रतीत होता था कि मेरे हृदय में शक्ति की अनंत धारा प्रवाहित होने लगी है। आज जो थोड़े शब्द मैं तुम लोगों के सामने बोल रहा हूं वे उन महात्माओं के सानिध्य से प्राप्त उस प्रबल धारा के किंचित बूंद मात्र हैं। ये मत सोचो कि मुझमें स्वयं में कोई महत्ता है।
2: पर स्वामी जी, हम तो आपको इसी भाव से देखते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। ये शब्द मेरे मुख से निकले ही थे कि उनके वे प्रकाशमान नेत्र अश्रु प्लावित हो गए। उनके हृदय से प्रेम उमड़ा जा रहा था और वे धीरे धीरे कोमल मृदुवाणी में बोले,
4: उन पुण्य चरणों में ही ज्ञानी के ज्ञान की पूर्णता समाई है, उन्हीं पुनीत चरणों में ही भक्तों की भक्ति और प्रेमियों के प्यार की पूर्णता समाई है। मुझे बताओ, उन श्री चरणों के सिवाय भवताप से दग्ध जीव और कहां शरण पाएंगे।
2: कुछ क्षण बाद वे फिर बोले,
4: हाय मनुष्य कितना मूर्ख है जो अपना जीवन कल में बिता देता है, पर कब तक वे ज्ञानी बने रहेंगे। अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद जीवन चक्र के संध्या काल में मां की गोद में सबको आना ही होगा।

0: स्वामी जी के एक और प्यारे शिष्य थे श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती जी। उन्होंने स्वामी जी शिष्य संवाद नामक ग्रंथ में स्वामी जी के साथ उनके कई वार्तालापों का वर्णन किया है। यद्यपि वार्तालाप मुख्यतः आध्यात्मिक विषयों पर ही केंद्रित था, फिर भी इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शिल्पकला और राष्ट्र संबंधी अनेकानेक विषयों पर स्वामी जी के विचार व्यक्त हुए हैं।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान कैसे हो सकता है तथा हम अपनी खोई हुई मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भलीभांति दर्शाया गया है। ये वार्तालाप सन 1898 ईस्वी में बेलूर मठ का है, जब मठ का निर्माण कार्य चल रहा था।
2: स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है?
3: तुम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हो।
2: महाराज, क्यों, किस प्रकार?
3: बहुत दिनों से देश के नीची जाति वालों से घृणा करते करते अब तुम लोग जगत में घृणा के पात्र बन गए हो।
2: हमने कब उनसे घृणा की?
3: क्यों, पुरोहितों, द्विजों के दलों ने ही तो वेद, वेदांत आदि सार युक्त शास्त्रों को द्विजों के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को कभी पढ़ने नहीं दिया, उन्हें स्पर्श भी नहीं करने दिया, उन्हें केवल नीचे दबा कर रखा है। स्वार्थ की दृष्टि से तुम ही लोग तो चिरकाल से ऐसा करते आ रहे हो। द्विजों ने ही तो धर्म शास्त्रों पर एकाधिकार जमा कर विधि निषेधों को अपने ही हाथ में रखा था और भारतवर्ष की दूसरी जातियों को निम्न कहकर उनके मन विश्वास में जमा दिया था कि वे वास्तव में निम्न हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते हर समय कोई कहता रहे कि तू निम्न है, तू निम्न है, तो कुछ समय के पश्चात उसकी यही धारणा हो जाती है कि मैं वास्तव में निम्न हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना। द्विज जातियों का अब धीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है। द्विजों के तंत्र मंत्र में उनका विश्वास कम हो रहा है। प्रबल जल वेग से नदी का किनारा जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार से द्विजों की करतूतें अब लुप्त हो रही हैं। देख तो रहा है ना?
2: जी हाँ, छुआछूत आदि का बंधन आजकल धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है।
3: होगा नहीं, द्विजों ने धीरे धीरे घोर अनाचार, अत्याचार करना जो प्रारंभ कर दिया था। स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी प्रभुता को ही कायम रखने के लिए कितने ही विचित्र ढंग के अवैधिक, अनैतिक, युक्ति विरुद्ध मतों को चलाया था, उनका फल भी हाथों हाथ पा रहे हैं।
2: क्या फल पा रहे हैं महाराज?
3: क्या फल नहीं देख रहा है? तुम लोगों ने जो भारत के अन्य साधारण जाति वालों से घृणा की थी, इसलिए अब तुम लोगों को हजारों वर्षों से दास्तां सहनी पड़ रही है और तुम लोग अब विदेशियों की घृणा और स्वदेश निवासियों की उपेक्षा के पात्र बने हुए हो।
2: परंतु महाराज, अभी तो व्यवस्था आदि ब्राह्मणों के मत से ही चल रही है। गर्भाधान से लेकर सभी कर्मकांड की क्रियाएं जैसे द्विज बता रहे हैं वैसे ही लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
3: कहां चल रहा है शास्त्रोक्त दशविध संस्कार? कहां चल रहा है? मैंने तो सारा भारतवर्ष घूमकर देखा है। सभी स्थानों में श्रुति और स्मृतियों द्वारा निंदित देशाचारों से समाज का शासन चल रहा है। लोक प्रथा, देश प्रथा और स्त्री प्रथा ही सर्वत्र स्मृति शास्त्र बन गए हैं। कौन किसकी बात सुनता है? धन दे सको तो पंडितों का दल जैसा चाहो विधि निषेध लिख देने को तैयार है। कितने पुरोहितों ने वैदिक कल्प, गुह्य और श्रौत सत्रों को पढ़ा है? उस पर देख, बंगाल में रघुनंदन का शासन है और जरा आगे जाकर देखेगा मिताक्षरा का शासन, और दूसरी ओर जाकर देख मनुस्मृति का शासन चल रहा है। तुम लोग समझते हो शायद सर्वत्र एक ही मत प्रचलित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वेद के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, सब लोग वेदों की चर्चा करें और इस प्रकार सर्वत्र वेद का शासन फैले।
2: महाराज, क्या अब ऐसा चलना संभव है?
3: वेद के सभी प्राचीन नियम चाहे ना चले, परंतु समय के अनुसार काट छांट कर, नियमों को सजाकर, नए सांचे में ढालकर समाज के सामने रखने से वे क्यों नहीं चलेंगे?
2: महाराज, मेरा विश्वास था कि कम से कम मनु का शासन भारत में सभी लोग अब मानते हैं।
3: कहां मान रहे हैं, तुम अपने ही देश में देखो ना, तंत्र का वामाचार तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो गया है। यहां तक कि आधुनिक वैष्णव धर्म में भी, जो मृत बौद्ध धर्म के कंकाल का शेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट हो गया है। उस अवैधिक वामाचार के प्रभाव को घटना होगा।
2: महाराज, क्या अब इस कीचड़ को साफ करना संभव है?
3: तू क्या कह रहा है, डरपोक कायर पुरुष कहीं का? असंभव कह कह कर तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता?
2: परंतु महाराज, देश में मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषिगणों के फिर से पैदा हुए बिना ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता।
3: अरे, अपवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु याज्ञवल्क्य बने थे, या और कुछ? चेष्टा करने पर हम भी तो मनु या याज्ञवल्क्य से बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा? मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक प्रथाओं को समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नए सांचे में गढ़कर नवीन रूप में देश में चलाना होगा। ऐसा नहीं है क्या?
2: जी हाँ।
3: फिर तुम ही लोग तो पूर्व काल में वैदिक ऋषि थे, अब केवल शरीर बदल कर आए हो। मैं दिव्य चक्षु से देख रहा हूं, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जगा दे, उठ उठ, लग जा कमर कस। क्या होगा दो दिन का धनमान लेकर? मेरा भाव जानता है, मैं मुक्ति आदि नहीं चाहता हूं। मेरा काम है तुम लोगों में इन्हीं भावों को जगा देना। एक मनुष्य तैयार करने में लाख जन्म भी लेने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
2: अच्छा महाराज, उस प्रकार काम में लगकर भी होगा, मृत्यु तो पीछे लगी ही है।
3: धत छोकरा, मरना हो तो एक बार मर जा। कायर पुरुष की तरह रात दिन मृत्यु की चिंता करके भी बार बार क्यों मरता है?
2: अच्छा महाराज, मृत्यु की चिंता यदि ना भी की, फिर भी इस अनित्य संसार में कर्म करके भी क्या लाभ है?
3: अरे, मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में दो दिन अधिक जीवित रहकर भी क्या लाभ? जरा जीर्ण होकर थोड़ा क्षीण होते हुए मरने के बजाय दूसरों की तरह वीरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है?
2: जी हाँ, आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया।
3: यथार्थ जिज्ञासु के पास लगातार दो रात बोलते रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता। मैं आहार निद्रा आदि छोड़कर लगातार बोल सकता हूं। चाहूं तो मैं हिमालय की गुफा में समाधि मग्न होकर बैठा रह सकता हूं। और देख तो रहा है, आजकल मां की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिंता नहीं है, किसी ना किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करता? इस देश में भी रह रहा हूं, केवल देश की दशा देखकर और परिणाम का चिंतन करके फिर स्थिर नहीं रह सकता। समाधि फमाधि तुच्छ लगती है, तुच्छ ब्रह्म पदम हो जाता है। तुम लोगों के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का व्रत है। जिस दिन वो व्रत पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन छोड़कर सीधा भाग जाऊंगा।
2: मैं मंत्रमुग्ध की तरह स्वामी जी की इन सब बातों को सुनकर स्तंभित हृदय से चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकता हुआ कुछ देर बैठा रहा। इसके पश्चात विदा लेने के उद्देश्य से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज तो फिर आज आज्ञा दीजिए।
3: जाएगा क्यों रे, मठ में ही रह जाना। गृहस्थों में जाने पर मन फिर मलिन हो जाएगा। यहां देख कैसी सुंदर हवा है, गंगा जी का तट, साधुगण साधन भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और कलकत्ते में जाकर फिर वही व्यर्थ की चिंता में लग जाएगा।
2: मैंने आनंदित होकर बोला, अच्छा महाराज तो आज यही रहूंगा।
3: आज ही क्यों रे, सदैव यही नहीं रह सकता? क्या होगा फिर संसार में जाकर?
2: स्वामी जी की यह बात सुनकर सिर झुका कर रह गया। मन में एक ही साथ अनेक चिंताओं का उदय होने के कारण कोई भी उत्तर न दे सका।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

0: करवां।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 30 जून की बातें करते हैं अभी, और विशेष आज जो है नागार्जुन कल्याण जी, CNR राव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, हरिवंश नारायण सिंह, रघुवंश भूपेंद्र यादव, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ दादा भाई नौरोजी, साहिब सिंह वर्मा, KH आरा, आशा देवी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ।

कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सुंदर विचार के बाद आपको कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से रूबरू कराने वाला हूं। कहते हैं विचार कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही बहुत नायाब है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को लीजिए। ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बात करते हैं नागार्जुन के बारे में, एक ऐसे शख्सियत, जी हाँ, प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक, कवि और इतिहासकार हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन का असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम के रचनाओं का सृजन किया। अब 30 जून यानी आज ही के दिन 1911 के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा के दिन हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था जिसने अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का ये महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बन गई। यात्री आपका उपनाम था और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा भी। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगाल में कविताएं लिखते थे। मैथिली भाषा में लिखे गए उनके अपने काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गच्छ के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हिंदी काव्य मंच पर अपने सत्यवादिता और लाग लपोट से रहित कविताएं लंबे युग तक गाने के बाद 5 नवंबर सन 1998 को खाजा सराय दरभंगा बिहार से ये रचनाकार हमारे बीच से विदा हो गया था। तो आइए इनके कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हुशान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हां, सफर इस कार्यक्रम का सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना। चलिए नागार्जुन के बारे में और बातें करते हैं और साहित्यिक परिचय की बात करें तो इनकी 40 राजनीतिक कविताओं का चीर प्रतिष्ठित संग्रह विशाखा आज भी उपलब्ध नहीं है। संभावना भर की जा सकती है कि कभी छुटपुट रूप से प्रकाशित हो गई हो, किंतु वो इस रूप में चेत नहीं है। सो कुल मिलाकर तीसरा संग्रह अब भी जो है इनका मिल सकता है। हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें उनकी गुम भी हैं। और मैथिली भाषा का आंदोलन भी इनके पूर्व तक मैथिली लेखक कवि के लिए, भले मैथिली भाषा आंदोलन की ऐतिहासिक व्यवस्था रही हो, लेकिन कवि लेखक बहुधा इस बात और व्यवहार पर आत्ममुग्ध ढंग से सक्रिय थे कि साइकिल की हैंडल में अपना चूड़ा सत्तू बांधकर मिथिला के गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन दान कर दिया करते थे। इसके बदले में किसी प्राप्ति की आशा नहीं रखी इन्होंने। मातृभाषा की सेवा के बदले कोई दाम क्या, मैथिली और हिंदी के भाषिक विचार उनका हूबहू वैसे नहीं पाया जैसे आम तौर पे इन दोनों की भाषाओं के इतिहास दोष और राष्ट्रभाषा बनाम मातृभाषा की देखने मानने का चलन है। फिर उसके बाद इनकी बात करें तो मार्क्सवादी का प्रभाव इनके ऊपर रहा और रंग देखकर वो खिन्न थे। वो पूछते थे कि कौन से मार्क्सवाद की बात कर रहे हो, मार्क्स या चरू, मजुमदार या चेवगरिया की। इस तरह उन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन जरूर किया, लेकिन जब पार्टी विफल रही तो बाबा ने जयप्रकाश को भी नहीं छोड़ा। खिचड़ी विलाप देख हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। काम नहीं है, दाम नहीं है, तरुणों को उठाने दो बंदूक, फिर करवा लेना आत्मसमर्पण, फिर करवा लेना आत्मसमर्पण। लेकिन इसके लिए उनकी आलोचना भी होती थी, बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं, बाबा कहीं टिकते ही नहीं है। नागार्जुन का मानना था कि वह जनवादी है, जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है। मैं किसी विचारधारा का समर्थन के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं गरीब मजदूर किसान की बात करने के लिए हूँ। गरीबों को गरीब ही माना, उसे किसी जाति या वर्ग में विभाजित नहीं किया जाए। तमाम आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने विषाद लेखन कार्य किया। तो उनकी कृतियाँ एक लंबी लिस्ट है, उनकी लिखी हुई किताबों की, कविताओं की भाषा शैली देखें, एकदम सटीक जो है विचार उनके चलते थे। नागार्जुन रचनावली भी बहुत पॉपुलर है, साहित्य और सम्मान उनको मिला है, साहित्य में उनका एक अलग स्थान भी मिलता है, नए भारत के निर्माता के रूप में उनको देखा जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, नागार्जुन जी के बारे में ये थी और 5 नवंबर 1998 को वो इस दुनिया से अलविदा हुए, रुखसत हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने समृद्ध हिंदी साहित्य को सबके नाम कर दिया था। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनकी बात करने से अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि ये है कल्याण जी. और इनके साथ नाम जुड़ जाता है, जी हाँ, आनंद जी. हिंदी सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे. भारतीय सिनेमा की बहुत ही पॉपुलर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे. कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्म दुनिया में कदम रखा और बाद 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों की कुछ चंद संगीतबद्ध किए थे. भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है. और 1992 में संगीत के श्रेष्ठ क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था. अब बात करें तो इनकी, कल्याण जी का जन्म आज ही के दिन 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ जिले में कुंडा रूढ़ी नामक स्थान पर हुआ था. इनके पिता का नाम वीरजी शाह था. कल्याण जी बचपन से ही संगीतकार बनना इनका सपना देखा करते थे, हालांकि उन्होंने किसी उत्साह से संगीत की शिक्षा नहीं ली. अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वे बाद में मुंबई आ गए. हिंदी फिल्म जगत की सफल संगीतकार जोड़ी में से एक कल्याण जी आनंद जी अपने किराने की दुकान पर नून तेल बेचा करते थे और उसी से जो जिंदगी गुजार देते हैं. अगर एक तंग हाल ग्राहक ने उधारी चुकाने के बदले दोनों को संगीत की तालीम देने की पेशकश ना की होती. वीरजी शाह का परिवार कच्छ से मुंबई आ गया और आजीविका चलाने के लिए किराने की दुकान खोल ली थी. अब यहाँ ऐसे हुआ, किराना दुकान खोलने के बाद सभी तो पैसे देते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो उधारी में अपना ले जाते हैं. अब बंदा भी सोचता है कि दुकान तो है अपना और ग्राहक भी यहीं का है, तो आज नहीं तो कल देगा. इस भाव से उधारी भी चलती रहती है. और जो लोग हमारे किराना दुकान संभाल रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं उधारी लेकर उधारी देकर क्या हुआ होगा. और इवन सुरेश जी भी शायद उधारी देते ही होंगे, जो कपड़े के व्यापारी हैं. तो बताइएगा आप हमें. और ऐसे ही वीरजी शाह यानी कल्याण जी के पिता जब किराना दुकान मुंबई में खोल लिया, तो एक ग्राहक जो है दुकानदार का सामान तो लेता था लेकिन पैसे नहीं चुकाता था, उधारी रख देता था. वीर जी ने एक दिन जब देखा कि ये बहुत दिन हो गया उधारी भाई दिया ही नहीं, तो उन्होंने थोड़ा अपने दोनों बेटों को, कल्याण जी और आनंद जी को, संगीत उधारी चुकाने के लिए वीर जी ने मांगा. तो उस ग्राहक ने कहा, देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आपके दोनों बेटे कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाने का जिम्मा संभाल लेता हूँ. तो इस तरह से आपकी उधारी के पैसे भी एक तरफ संगीत जोड़ी की नींव पड़ेगी, माना एक तरफ चुकता होता जाएगा, और मेरा भी काम बनेगा, आपका भी काम बनेगा. तो इस तरह से आनंद जी, कल्याण जी आनंद जी का जो संगीतकार का जो बीज है, यहाँ से शुरू हो गया, जिसने अपने संगीत में हिंदी फिल्म जगत को हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना लिया. हालांकि उधारी के संगीत ने उन गुरुजी को सुर और ताल की समझ भी उतना खास नहीं था, लेकिन उन्होंने वीर जी के पुत्रों कल्याण जी और आनंद जी में संगीत का बुनियादी समझ जरूर पैदा कर दिया. इसके बाद संगीत में दोनों की रुचि बढ़ी और दोनों संगीत की दुनिया से जुड़ गया. हेमंत कुमार के सहायक बने पहले. कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ चंद संगीतबद्ध किए थे. भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत हुई और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने लगातार 3 दशक 1960, 70 और 80 के तक हिंदी सिनेमा पर राज किया. तो इस तरह से ये सफल संगीतकार की जोड़ी बनी. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं. तो चलिए, लगभग 4 दशक तक अपनी संगीत का जादू श्रोताओं को भाव विभोर करने वाला कल्याण जी 24 अगस्त 2000 को इस दुनिया से चले गए. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए अभी

0: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए जाते जाते एक और खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, जिनका जन्मदिन आज है और एक रासायनिक वैज्ञानिक है जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। इन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के मुख्य रूप में सेवा कर रहे हैं। लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। 16 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया है और चंद्रशेखर वेंकट रमन और अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये तीसरे वैज्ञानिक है ना कमाल की बात। CNR राव का जन्म 30 जून 1934 को यानी आज के दिन बेंगलुरु के एक कन्नड़ परिवार में हुआ और वे अपने माता पिता नागेश और नागम्मा राव की एकमात्र संतान थी। शुरू से अच्छे संस्कार और पढ़ाई में अच्छा होने के कारण बासनगुड़ी में आचार्य हाई स्कूल में पढ़ते हुए उनकी रुचि रसायन विज्ञान की ओर बढ़ी और फिर अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अच्छा पकड़ ले लिया और केवल 17 साल की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री पूरी की। BSc के बाद MSc के दौरान उन्हें रसायन विज्ञान पलिंग की पुस्तक नेचर ऑफ द केमिकल बाउंड को पहली बार पढ़ने का मौका मिला। इस पुस्तक ने राव के जीवन में उनके मन में अणुओं के संचार के प्रति गहरी उत्सुकता पैदा कर दी। बस फिर क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA और IIT खड़गपुर से PhD की और 24 साल की आयु में PhD करने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक में से एक का सम्मान भी इनको प्राप्त है। फिर शादी हो गए 1960 में। उसके बाद पुत्र संजय बेंगलुरु के स्कूलों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में जुड़ गए। उनकी पुत्री सुचित्रा का विवाह MK गणेश से हुआ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के निदेशक है। राव का सारा समय रासायनिक विज्ञान को समर्पित। उनकी मेज पर कंप्यूटर नहीं है, वे अपने ईमेल खुद नहीं देखते, फोन पर केवल पत्नी से बात करते हैं। तो इस तरह से विवाह के बाद इनका संसार इस तरह से हो गया और व्यावसायिक शुरुआत उन्होंने की। बेंगलुरु में लेक्चर बने, 3 साल तक वो IIT खड़गपुर के रसायन विभाग के प्रधान बने। ऐसे बहुत सारे संस्थानों के साथ शुरू उनका काम हुआ। शोध के क्षेत्र में रिसर्च में उन्होंने ट्रांजिक्शन मेटल ऑक्साइड सिस्टम, मेटल इंसुलेटर ट्रांजिक्शन, CMR मटेरियल, इस तरह के अलग अलग उनके केमिकल पर उन्होंने काम किया। शोध जगत के शतवीर के रूप में जाना जाता है और नीति निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग काम करने वाले ये महान वैज्ञानिक की कहानी। बस इतना ही, एक और गीत के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. चलिए, CNR राव के बारे में हमने बातें सुनी और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का. अब बात करते जाते जाते मुकुट बिहारी लाल भार्गव के बारे में. और ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिक, भारतीय कांग्रेस के सदस्य, 1951 से सदस्य तक लोकसभा के सदस्य, संविधान सभा का भी सदस्य चुन लिया गया था इन्हें. और मुकुट बिहारी लाल ने आज़ादी के बाद 3 चुनाव में अजमेर निर्वाचित क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था. और इनका जन्म विशेष 30 जनवरी को 1903 में राजस्थान के उदयपुर रियासत में हुआ था. राजस्थान के मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता मुकुट बिहारी लाल भार्गव

उनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और 1927 में बेवार में वकालत इन्होंने शुरू की थी। तो ये थी कुछ ख़ास बातें इनके बारे में और इसी के साथ चलिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं, है ना। तो कार्यक्रम को पूरा करते हैं और हमारे बीच हमारे जो दोस्त हैं सुरेश जी जोटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा, जागीरदार जी, भूपत सिंह जी और मदन जी सभी को याद करते हैं और दयाराम जी कुपाराम जी सभी को याद करते हुए और बहनों में हमारे हर्षिता जी अंजिता जी और जैनाब जी इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बेहतरीन विचार बेहतरीन शब्द से शुरू करते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ये सुंदर विचार के साथ मैं अभी चाहूँगा आपसे इजाज़त। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सारे जिसे हमें वो करते याद, धन्य बनाने वाले दिल से लाखों धन्यवाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रे
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. और दोस्तों, आपने सुना था साइबर सेफ्टी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको मदद करती हैं, साथ साथ आपके अपनों को भी बचाती हैं किसी भी स्कैम से. दोस्तों, मैं बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और मुझे लगता है वो हम सबके लिए बड़ी ज़रूरी है. कुछ झलकियाँ सुनते हैं और आपको पता चलेगा कि आपको अपनी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर.

0: होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा
2: Basically, we experience anxiety about the events with to some extent. अगर आप कहते हैं कि भाई मतलब क्योंकि anxiety जो होती है ना, वो basically हमारे लिए motivator का role play करती है. अगर हमें anxiety होगी तभी हम कुछ काम करेंगे, हमें लगेगा कि नहीं हमें better perform करना है. अगर मुझे चिंता होगी तभी मुझे लगेगा ना कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए. बट अगर यही anxiety extremes में चली जाए तो फिर ये एक serious problem है. Because तब क्या होगा कि ये सिर्फ हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि होगा क्या कि भी हमारी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को भी इम्पेक्ट करेगी, लाइक हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी सोशल लाइफ को. सो ओकेजनल एक्साइटी एंग्जाइटी इज गुड और यू कैन से नॉर्मल, बट अगर यही एक्सटेंट जो है वो क्रॉस कर जाता है, लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो इट इज बेड फॉर आर
3: उसको हमें ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ज़्यादा उसकी तवज्जो नहीं देनी चाहिए. So we understand that how academic anxiety you know affects us, जैसा आपने कहा. So if we talk about the sign and symptoms of the same, क्योंकि हम students के लिए बात कर रहे हैं, हमारे adolescents के लिए, तो वो कैसे आप उन्हें बताएंगे?
2: हाँ, देखिए अब किस तरह से आप किस कौन से symptoms होते हैं या कौन से signs होते हैं जिसको आप देख के आपको लगेगा कि इस person को, इस बच्चे को जो है वो एकेडमिक एंग्जाइटी है. तो अगर हम फिजिकल सिम्टम की बात करें तो आपने देखा होगा हेडेक होती है या फिर स्टमक एक होती है, या बेसिकली आपने देखा होगा जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो एग्जाम टाइम में होता क्या है कि हमको या तो बहुत भूख लगती है, और कई बार क्या होता है कि हमको भूख ही नहीं लगती पूरा पूरा दिन,
3: ऐसा होता है ना.
2: हाँ, एबनॉर्मल हो जाता है, एग्जैक्टली डिस्टर्ब हो जाती है हमारा ईटिंग पैटर्न. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, एकेडमिक एंग्जाइटी. या फिर आपने देखा होगा कई बार हमारे को कुछ असाइनमेंट मिला है, कोई टास्क मिला है परफॉर्म करने के लिए, और हमारी डेडलाइन नियर आ रही है, तो होता क्या है कि हमें रात भर नींद नहीं आती, और अगर हम सोते भी हैं तो हमारे माइंड में भी वही सब चीजें चलती रहती हैं, वही कंटेंट हमारे माइंड में घूमता रहता है. या समटाइम्स क्या होता है कि हम पूरा दिन हमें ऐसा लगता है स्लीपी फील होता है कि हम सो जाते हैं, है ना. तो बेसिकली क्या होता है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो दीज आर सम फिजिकल सिम्टम्स. और आप देखते हैं कि हार्ट बीट बढ़ती है हमारी, या फिर हमें स्वेटिंग होने लगती है, या फिर फीमेल्स में देखा गया है कि जो उनकी पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं ड्यू टू एकेडमिक एंग्जाइटी और ड्यू टू एंग्जाइटी. सो दीज आर सम फिजिकल सिम्टम्स विच यू नो जिनकी वजह से जो है मतलब दीज आर द सिम्टम्स जो कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस पर्सन को, इस चाइल्ड को जो है वो एंग्जाइटी हो रही है, एकेडमिक एंग्जाइटी हो रही है, राइट. इसी तरह अगर हम बिहेवियर फीचर की बात करते हैं, या फिर हम इमोशनल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा फीलिंग ऑफ पैनिक या फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हम होपलेस हो जाते हैं. आपने देखा होगा बेसिकली क्या होता है, जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है, तो होता क्या है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि हमने अच्छा ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया, तो मतलब बहुत होपलेस फील होते हैं. ऐसा लगता है हमें पता नहीं हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं मैं उसको क्वालिफाई कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. या आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई हमारी ओरल प्रेजेंटेशन है, जैसे ही हम प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं घर से, और जब हम जैसे स्टेज पे खड़े होते हैं,
3: पोडियम,
2: हाँ
3: एग्जैक्टली
2: एग्जैक्टली, जैसे हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो बेसिकली क्या होता है, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते हैं. या फिर आपने देखा होगा कि नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं हमारे अंदर, नेगेटिव थॉट्स इन द सेंस हम सोचने लगते हैं कि मैं एक बैड मतलब बैड स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मतलब गिव अप टाइप वाली फीलिंग आने लगती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वर्थलेस हूँ. तो इस तरह की फीलिंग्स जो है हमारे अंदर आने लगती है जब हमको एकेडमिक एंग्जाइटी होती है, ठीक है. इसी तरह अगर हम बात करें कि हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की, कॉग्निटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, तो हम क्या है कि हमें कुछ भी रिकॉल करने में, कुछ भी रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम जो है सिंपल इंस्ट्रक्शन भी हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी मतलब रिसीविंग हमारी जो है वो कम होते चली जाती है. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एकेडमिक एंग्जाइटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कोई फियर होता है हमारे आउटकम्स को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर कि पता नहीं क्या होगा. तो बेसिकली इस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं कि इस पर्सन को मतलब इन दीज आर द बेसिकल सिम्टम्स जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस पर्सन को एकेडमिक एंग्जाइटी है.
3: तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत नाजुक मोड़ होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ काउंसलर की भूमिका में डॉक्टर राहुल भी हैं। डॉक्टर राहुल, अभी जैसे एक स्टेज फियर की बात यहाँ पर डॉक्टर अरोरा ने रखी, प्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर रखी, और उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्चा पहुँचता है पोडियम पर और वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, माइंड उसका ब्लैंक हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और हमारा जो टॉपिक भी है दैट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज थॉट्स एंड फीलिंग्स इन दी स्टूडेंट्स, और वो जिस एज में रहते हैं गुजर रहे होते हैं उससे, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
4: Yes, sir. So during these examination days, so many students are facing this anxiety and stress things. So what we need to do, we as a counselor, we as a teacher, we as a parent, we need to teach our students so they could identify their feelings and emotion. We need to design our classroom activity, or we need to teach our students human universal human values, so they could identify their real feelings. We need to make that environment so they can express their emotions. So what I would suggest to all the teachers or counselor or parents, they need to make an environment like that so students can participate in things which teach them, can learn from this,
2: you know, relation develop kare. आपने देखा होगा, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, सबको ही एक कामिंग और एक एम्पैथेटिक प्रेजेंस चाहिए होती है, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, शेयर कर सके। तो होता क्या है कि आप इस तरह से रिलेशन अपना डेवलप करें बच्चे के साथ कि आप वो आपको इजीली बता पाए कि वो किसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो एकेडमिकली कहाँ मतलब लैक कर रहा है, या उसको क्या क्या एंग्जाइटी किस चीज से हो रही है। तो आपको एक ऐसा उसके साथ रिलेशन डेवलप करना है जो कि ट्रस्ट का हो, उसे पता हो कि मेरी बात जो है आगे लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। राइट राइट। नेक्स्ट, आप जो है बच्चे के देखिए, एक लाफ्टर और एक एक हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। जब हम हंसते हैं ना, तो होता क्या है, एक डोपामिन हार्मोन होता है जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता है। और जब वो रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सेटिस्फाइड, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, और हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इस तरीके का हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा जो है वो हैप्पीनेस फील करे। या आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं ना, बेसिकली उनको अगर रियल स्टोरी सुनाइए, आप बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि बीइंग अ चाइल्ड, आप जब स्टूडेंट थे तो आपके साथ क्या हुआ, तो क्या होगा कि वो अपने आप को ना कोरिलेट करते हैं।
3: right.
2: कि अच्छा, इस तरह से आपके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम होता था, आपको भी एग्जाम से पहले ऐसी ही टेंशन होती थी, तो उनको लगेगा कि ये सब चीजें नॉर्मल है, ऐसा कुछ मेरे साथ डिफरेंट नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या है कि आप उनको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, या फिर आप उनके देखिए एक स्लीप जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, तो इंश्योर करें कि उसका जो स्लीप स्केड्यूल है ना वो ठीक हो। लाइक एक टीनेजर के लिए बोलते हैं कि कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप जरूरी है। राइट। या फिर एक 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 9 से 12 घंटा सोना जरूरी है। तो आप देखिए कि वो इतना प्रॉपर नींद ले रहा है, क्योंकि देखिए जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स हो जाता है।
3: right.
2: हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है ना वो प्रॉपर होती है, और जब ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमें एंग्जायटी कम होगी। राइट। इसी तरह जो बच्चा है उसकी उसके जो एफर्ट्स है उसको एक्नॉलेज कीजिए। अगर वो कुछ भी छोटा सा एफर्ट भी करता है या कुछ भी टास्क में परफॉर्म करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि यस तूने अच्छा किया है। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी करे, नहीं ये तो कुछ नहीं। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम क्या करते हैं कि बच्चा अगर हमें आके बताता है कि मम्मा मैं फर्स्ट आया या मम्मा मैं सेकंड आया, मतलब सेकंड आया तो हम लगता है सेकंड आया, अच्छा फर्स्ट कौन आया, हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट कौन आया। तो ऐसा नहीं, अगर वो सेकंड आया तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए ना,
3: पहले उसके ही रिजल्ट को हमें अप्रिशिएट करना, फिर हम बाकी क्लास का
2: कंपेयर करने से पहले आप उसके जो उसकी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो सेकंड आया तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। तो इसी तरह आप उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए। राइट। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मतलब बच्चे की एंजाइटी को बीइंग अ पेरेंट और टीचर जो है आप उसको
3: डील कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तमाम सारी जो जानकारियां दी, जो पॉइंट्स आपने रखे, वो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर है फॉर ऑल द टीचर्स एंड पेरेंट्स। और टीचर्स की अपनी जो है सीमाएं होती हैं और पेरेंट्स की अपनी सीमाएं होती हैं, बहुत ही तालमेल बनाकर चलना होता है। लेट्स मूव अहेड, वी हैव हार्डली 5 मिनट्स इन दिस सेशन। डॉक्टर राहुल, आपके लिए एक यहाँ पर सवाल उठता है कि स्ट्रेटजीज की यहाँ पर बात की डॉक्टर अरोरा ने, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी कैन सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन अडॉप्ट टू टैकल with these situations, if they have any?
4: For this anxiety and stress issue, the solution comes in clusters. So there is no any hard or fast rule, but if we do multiple things, if we take care of our physical health, mental health, emotional health, so and we work upon this, okay, if we are working upon this, so we can do wonders. Okay, so what I would suggest that there are very few activities which we need to do in our day-to-day life if we want to live anxiety-free. So first of all, I want to suggest that please tell your children or students, then they indulge in some kind of physical activities. Like ma'am said, whenever we do physical activities, so some amount of endorphins release in our body. So due to those endorphins, so we feel happy because we feel happy. So it is very necessary for all of us that we should not play a video game or PlayStation or anything all the time. We should also play in grounds. We need to spend time in ground. We need to indulge in a physical activity. We need to take a protein diet. This is very important for all of us that please take care of our children's diet. Minimize their phone and screen time after corona. We know that whenever we use a social networking website, so we use in a binge watching. So we constantly watching so many web series and reels and shorts so many times. So what happened with us, a minimal amount of dopamine secretes when we see a 30 seconds or 15 seconds clip. So due to that dopamine, we constantly start binge watching of these all things. So we minimize our screen time. We need to take care of ourselves by doing self-love, which is so much more important than anything. That if we love about ourselves, so we take care of ourselves and we do so many other things. Those all.

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ।
1: अंतरा, तुमने दो अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं।
0: हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद हैं, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है।
1: ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो।
0: कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ।
1: हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो, सब ठीक तो है?
0: मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपने टिफिन भी नहीं बांटता, मैं हमेशा अकेले खाती हूँ।
1: अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो, तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो।
0: मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊँ और इससे मुझे सुकून मिलता है।
1: ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आएं और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों, और कोई? अंतरा,
0: हाँ?
1: क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी?
0: बालों को तो देखो,
2: वो दो अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है।
0: मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ।

0: अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है।
1: वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है, मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना।
2: ये हमारी बेटी है।
3: अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को।
0: मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है।

0: गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में जो बीत गई सो बीत गई ये खूबसूरत गीत आप तक पेश कर रहे हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: रूहानी,
0: आप सुन रहे हैं उड़ान। तो चलिए आज अमेजिंग जानकारी, कहानी, कविता साथ ही साथ और आपके लिए लेकर आएंगे हम सवाल भी, जिसका जवाब देना होगा आपको
1: 9414151415 पर।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। और जब भी गाड़ी से बाहर जाएं, सीट बेल्ट बांधना कभी ना भूलें।
2: ओए रुक,
3: रुक। हाँ कहिए।
2: ओ जी कहना सुनना, आपकी शादी

0: में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। तो ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और आज की अमेजिंग जानकारी मेडिकल टेक्नोलॉजी के कमाल के साथ ही जुड़ी हुई है। दुनिया भर में मेडिकल साइंस ने कई टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल तेजी से और बढ़ता जा रहा है। हाल ही हाल एक भारतीय डॉक्टर ने दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना में बैठकर इंदौर में मौजूद एक मरीज की हार्ट सर्जरी कर दी।
4: इस रोबोटिक सर्जरी में मरीज अपने डॉक्टर से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर था। यह दुनिया की अब तक की सबसे लंबी दूरी से की गई रोबोटिक हार्ट सर्जरी मानी जा रही है।
3: आखिर ये हुआ कैसे? आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। डॉक्टर ने खास कंप्यूटर और रोबोटिक सिस्टम की मदद से सर्जरी को कंट्रोल किया। डॉक्टर ने इंटरनेट की मदद ली और अपने हाथों की हर एक्टिविटी को मरीज के पास मौजूद रोबोटिक मशीन से जोड़ दिया।
4: कंप्यूटर की मदद से वे देखते जाते और जो वे करते वही उनका रोबोट भी करता। सुनने में वह यह किसी साइंस फिक्शनल फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही सच है।
3: बात यह हुआ कि इस प्रकार गजब की चीजें देश दुनिया में हो रही है और उसको जो कहते हैं ना सफल करना, भारतीय वैज्ञानिक जरूर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का सवाल भी है। रूहानी, आपका स्कूल कब से खुलने वाला है?
4: मेरा स्कूल तो कल से ही खुल गया था।
3: कल से खुल भी गया था? ओहो, तो रूहानी को मुबारकबाद, क्योंकि स्कूल अब रूहानी जाने लगी है। खैर आगे बढ़ते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ आप सभी दोस्त जुड़े हुए हो, सुनते रहो
4: मुस्कुराते रहो।
3: और आज का सवाल आपके लिए खास। सवाल है, नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब झटपट देना
4: 9414151515 पर देना,
3: 9414151415 पर देना। सुनते रहो
4: मुस्कुराते रहो
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और अगला गीत आपके लिए, हर तरफ हर जगह।

0: कोई तो है जो हमारी मुश्किल को दूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मैं और रूहानी पेश करते हैं। कहानी का शीर्षक है सूरज दादा की सीख। क्रिश बहुत खुश था। उसने सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियों में वो पूरे दिन खेलेगा,
1: आम खाएगा और देर तक सोएगा। लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगता था।
0: बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई गर्म हवा का बड़ा सा हीटर चल रहा हो। एक दिन क्रिश अपने दोस्तों के साथ दोपहर में क्रिकेट खेलने चला गया।
1: उसकी मम्मी ने कहा, बेटा इतनी तेज धूप में मत जाओ, टोपी पहन लो और पानी की बोतल साथ ले रखो।
0: लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैदान में पहुंचते ही सब बच्चे खेल में लग गए।
1: थोड़ी देर बाद कृष्ण को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसका सिर भी भारी लग रहा था।
0: तभी उसे चक्कर आने लगा और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका दोस्त विवान तुरंत पानी लेकर आया। उसने कहा, क्रिश तुम ठीक तो हो?
1: क्रिश धीरे से बोला, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। क्रिश को देखकर वहीं पास में बैठे पार्क के माली दादा आए।
0: उन्होंने उसे नींबू का पानी पिलाया और बोला, बेटा गर्मी में शरीर का खास ध्यान रखना पड़ता है। तेज धूप में ज्यादा देर रहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
1: क्रिश ने दुखी होते हुए कहा, मम्मी ने कहा था लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी।
0: दादाजी बोले, सूरज हमें रोशनी और ऊर्जा दोनों देता है, लेकिन हमें समझदारी भी तो रखनी चाहिए। गर्मी में खूब पानी पीना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए और
1: दोपहर की तेज धूप में जाने से बचना चाहिए।
0: कृष्ण ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं ध्यान रखूंगा दादाजी। अगले दिन कृष्ण ने अपनी आदत बदल ली। वो सुबह जल्दी उठता, खेलता, पानी की बोतल हमेशा साथ ले रखता और
1: घर लौटकर ठंडा नींबू पानी पीता था। उसने अपने दोस्तों को भी गर्मी से बचने के तरीके बताए।
0: कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी बोली, वाह मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया। कृष्ण बोला, क्योंकि मैंने
1: सूरज दादा की सीख को समझ लिया है। जो भी इसे समझ लेगा वह हमेशा स्वस्थ रहेगा।
0: सीख यही है कि गर्मी में हमें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए, चाहे और बड़ों की बात
1: हमेशा माननी चाहिए।
0: चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ आज का सवाल आप दोस्तों के लिए विशेष सवाल है। नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश।
0: झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो
0: और अगला गीत है तेरी पनाह में।

0: तेरी पनाह में हमें रखना, नाग नदी की लहरों में इतिहास छपा पुराना।
1: संतरे की खुशबू सा महके यह शहर बड़ा सुहाना।
0: दीक्षा भूमि की पावन माटी देती ज्ञान का संदेश है।
1: भारत के इस हृदय स्थल का अलग ही है परिवेश।
0: फुटाला झील के किनारों पर जब ढलती है एक शाम,
1: रंग बिरंगी रोशनी में सजती है सुबह और शाम।
0: भीड़ भाड़ से दूर सुकून सेमिनारी की वादियों में,
1: नागपुर बसता है सदा सबके दिलों के यादों में।
0: तो चलिए दोस्तों, इस कविता के साथ साथ आज का सवाल एक बार पुनः आपके लिए।
1: नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं?
0: आपके सामने ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश। झटपट जवाब दीजिए दोस्तों, देर मत कीजिए, क्योंकि मैं मोना और मेरे साथ रूहानी, हम दोनों लाइव आपके बीच कार्यक्रम लेकर आए हैं। उड़ान सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या इसमें पता है? लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते हैं। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आज के होमवर्क के साथ आप दोस्तों को जोड़ लेते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
5: रूहानी।
4: चलिए आज शब्द संपदा को जरूर सीखते हैं। हाँ, बहुत सारे शब्द हैं और उसके अर्थों को जानते हैं। निरापद,
5: इसका अर्थ होता है सुरक्षित।
4: जी हाँ, निरापदता का अर्थ होता है सुरक्षा। सहिष्णुता,
5: सहनशीलता।
4: परछाई,
5: पछाई।
4: पछाई
5: पालतू पशुओं की एक नस्ल।
4: गोई,
5: जोड़ी।
4: कुलेल,
5: क्रीड़ा।
4: विषाद,
5: उदासी।
4: पराकाष्ठा,
5: अंतिम सीमा।
4: गणनीय,
5: गणनीय यानी गिनने लायक।
4: सम्मानित। विक्रह,
5: अलगाव।
4: पगहिया,
5: पशु बांधने की रस्सी।
4: गराव,
5: फुदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है।
4: प्रतिपाद,
5: विरोध।
4: टिटकार,
5: मुंह से निकलने वाला टिक टिक क्या शब्द।
4: मसलहत
5: हितकर।
4: रगेदना,
5: खदेड़ना।
4: मल्ल युद्ध,
5: कुश्ती।
4: सभी का
5: वास्ता या सरोकार।
4: कांची हाउस,
5: मवेशी खाना। वह बाड़ा जिसमें दूसरे के खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं।
4: रेवड़,
5: पशुओं का झुंड।
4: उन्मत्त,
5: मत वाला।
4: थान,
5: पशुओं के बांधे जाने की जगह।
4: और उच्छा,
5: उत्सव या आनंद।
4: चलिए ये थे करीबन आपके 15 नए शब्द और उनके अर्थ। आगे बढ़ते हैं और मिशन लाइफ आप तक पहुंचाने के बाद सीधे ईमानदारी की सबक ये कहानी आप तक पहुंचाते हैं। आप जुड़े हैं
5: उड़ान के साथ।
4: और पुनः एक बार सवाल, नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं?
5: ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश।
4: झटपट दोस्तों जवाब दीजिए 9414151415 पर दीजिए।
6: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
7: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: सुनो समस्त चंदनपुर वासियों, सेठ धनपत जी की बात कान खोल कर सुन लो। सेठ जी की 1,00,000 रुपए रास्ते में कहीं गुम हो गए हैं। जो कोई भी उन पैसों को सही सलामत सेठ जी तक पहुंचाएगा, उसे पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपए दिए जाएंगे।
9: गांव के कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे।
10: क्या सेठ को लगता है हम मूर्ख हैं? जिसे पैसे मिलेंगे वो उसे वापस क्यों करेगा? और वैसे भी सेठ इतना कंजूस है कि 1,000 रुपए देने में भी उसका कलेजा फटेगा।
9: लोग वापस अपने काम पर लग गए। इधर सुलोचना ने अपने पति माधव से कहा, सुनो जी, मुझे आपको इस तरह तकलीफ में देखकर बहुत दुख होता है। आप सुबह से शाम तक जमींदारों के खेतों में खटते हैं, पर बदले में चंद कौड़ियां ही हाथ आती हैं। माधव ने लंबी सांस ली और कहा,
11: तुम सच कहती हो सुलोचना, मेहनत मेरी और मुनाफा दूसरों का। अब से मैं अपनी मजदूरी बढ़ाऊंगा। सारा दिन कुदाल चलाने से हड्डियां चटकने लगती हैं। इतने कष्ट के बाद भी सूखी रोटी नसीब होती है। आज से मैं अपने परिश्रम का उचित मूल्य मांगूंगा, चाहे काम मिले या ना मिले, पर अब मैं खुद को और नहीं थकाऊंगा।
9: तभी गांव का एक बड़ा जमींदार माधव के द्वार पर आया। उसने कड़क आवाज में कहा,
12: माधव, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा हल चलाते हो। तुम्हें मेरे दूर वाले 2 बड़े खेतों को 3 दिन में जोतना है। मैं कुछ दिनों के लिए पंचायत के काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे या नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी मजदूरी दे दूंगा।
11: जमींदार जी, मैं काम तो कर दूंगा, परंतु एक बात है, अब पुरानी मजदूरी में मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे मेरे कठिन परिश्रम का पूरा दाम चाहिए। आज से मैं 1 दिन की मजदूरी के 7 चांदी के सिक्के लूंगा।
12: एक मजदूर होकर इतना अहंकार? 7 सिक्के तो शहर के कारीगर भी नहीं लेते। तुम 2 सिक्कों से सीधे 7 पर पहुंच गए। लगता है तुम्हें काम करने की इच्छा नहीं है। मैंने सोचा था तुम ईमानदार हो, इसलिए काम देने आया था। वरना बाहर ऐसे 20 मजदूर खड़े हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर गधे की तरह खटने को तैयार है। मैं तुम्हें 7 सिक्के कभी नहीं दूंगा। जाओ, अब घर बैठो और मक्खियां मारो। मैं किसी और से काम करवा लूंगा। पता नहीं इस गांव के लोगों को क्या हो गया है, सब लूटने पर उतारू हैं।
9: मुखिया बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। माधव ने उदास होकर सुलोचना से कहा,
11: देखा सुलोचना, मजदूरी बढ़ाने की बात सुनते ही जमींदार की आंखें अंगारे बरसाने लगी। यही कारण है कि मैं अपनी आवाज नहीं उठाता था। यहां गरीबों के पसीने की कोई कीमत नहीं है। मजदूरों की भीड़ है, इसलिए मालिक अपनी मनमानी करते हैं।
9: पर आप जितना काम करते हैं उतना कोई नहीं करता। आप 1 दिन में 3 दिन का काम निपटा देते हैं, इसीलिए सब आपके पास आते हैं। मेरा मानना है कि अगर 7 सिक्के नहीं मिल रहे तो कम से कम 5 तो मांगिए। 5 चांदी के सिक्कों में भी हमारा घर सम्मान के साथ चल सकेगा।
11: ठीक है सुलोचना, अब से मैं 5 सिक्कों से कम पर काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कहीं और काम मिलता है क्या। शाम को लौटते समय घर के लिए कुछ राशन लेकर आऊंगा।
9: और वो काम की तलाश में गांव की पगडंडी पर चल दिया। चलते चलते जब वो घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उन पैसों पर पड़ी। माधव ने जब उसे उठाकर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उन पैसों को देखकर माधव के मन में विचार आया,
11: हे ईश्वर, ये तो किसी की बहुत बड़ी पूंजी है। जिसकी भी ये गिरी होगी वो बेचारा तो दुख के मारे बेहाल होगा। शायद ये उसकी जिंदगी भर की कमाई हो। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, मुझे इसके असली मालिक को ये लौटाना ही होगा।
9: माधव काम ढूंढना भूल गया और सीधे घर लौटा। सुलोचना उसे जल्दी वापस आया देख चौंक गई। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? काम नहीं मिला क्या?
11: सुलोचना देखो, मैं जंगल के रास्ते जा रहा था और मुझे ये मिला।
9: सुलोचना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो चमत्कार है, आज तो हमारा भाग्य खुल गया। लोग सच कहते हैं, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब आपको तपती धूप में हल चलाने की जरूरत नहीं, हम इन पैसों से अपना खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने लिए 2 नई साड़ियां लूंगी। बरसों हो गए फटे कपड़ों में पैबंद लगाते हुए, और आपके लिए भी नई जूते और कुर्ता लाऊंगी। माधव ने उसे टोकते हुए कहा,
11: ये तुम क्या कह रही हो सुलोचना, ये हमारा धन नहीं है। हम किसी और के खून पसीने की कमाई पर कैसी हक जमा सकते हैं? किसी ने इसे मेहनत से संचित किया होगा। मैं गांव जाकर पता लगाऊंगा कि ये किसका है और उसे वापस कर दूंगा।
9: आप भी क्या बात करते हैं, क्या घर आई लक्ष्मी को कोई ठोकर मारता है? शायद भगवान ने ही हमारी गरीबी देखकर ये भेजा हो। अगर आप इसे मना करेंगे तो ईश्वर भी हमसे रूठ जाएंगे। इससे हमारे कष्टों का अंत हो सकता है।
11: नहीं सुलोचना, बेईमानी से मिली लक्ष्मी कभी सुख नहीं देती। सोचो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं पता कि ये धन किसी धनी का है या किसी लाचार का, परंतु मेरा धर्म कहता है कि जिसकी भी अमानत है उसे लौटा देनी चाहिए। मैं इसे सेठ धनपत के पास ले जाऊंगा, शायद उन्हीं के हो।
9: आप बहुत भोले हैं। एक काम कीजिए, अगर 3 दिनों के भीतर कोई इन पैसों का दावा करने नहीं आता तो फिर हम इसे रख लेंगे। तब हम मान लेंगे कि ये ईश्वर का ही वरदान है। माधव अपनी पत्नी की बात मान गया। दूसरी ओर सेठ धनपत की मुनादी के बाद भी कोई उसके पास नहीं आया, ना तो पैसे मिले और ना ही कोई खबर। सेठ ने अपने आदमी से पूछा,
13: क्या हुआ, किसी ने कुछ बताया?
9: उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा,
14: सेठ जी, मैंने पुरस्कार की घोषणा भी की परंतु कोई सामने नहीं आया।
13: लगता है इनाम छोटा है। एक काम करो, फिर से पूरे चंदनपुर में मुनादी करो और इस बार कहो कि जो पैसे लौटाएगा उसे 2,000 रुपए इनाम में मिलेंगे।
9: वो आदमी फिर से गांव के चौक पर पहुंचा।
15: सुनो, ध्यान से सुनो चंदनपुर के भाइयों और बहनों, एक बड़ी खबर है। सेठ धनपत जी ने अपना इनाम बढ़ा दिया है। उनके 1,00,000 रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। जो भी व्यक्ति उन पैसों को वापस लाएगा उसे अब 1 नहीं बल्कि पूरे 2,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे।
9: ये खबर माधव तक पहुंची। उसे यकीन हो गया कि ये पैसे सेठ धनपत के ही हैं। उसने सुलोचना से कहा,
11: देखा, अब उन पैसों के मालिक का पता चल गया है। अब हमें एक पल भी इसे घर में नहीं रखना चाहिए।
9: ओह, तो ये उस लालची धनपत के पैसे हैं। वो आदमी तो मक्खी चूस है, गरीबों का खून चूसता है। हमें उसे कुछ नहीं लौटाना चाहिए। उसे सपने में भी पता नहीं चलेगा कि पैसे हमारे पास हैं।
11: नहीं सुलोचना, वो कैसा भी हो पर हम अपनी नीति नहीं छोड़ सकते। किसी के चरित्र को देखकर हम अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करेंगे। यदि हम चोरी का धन रखेंगे तो हम में और उस लालची सेठ में क्या अंतर रह जाएगा। हमें अपनी आत्मा को जवाब देना है। यदि हम ईमानदार नहीं रहे तो हम खुद की नजरों में गिर जाएंगे।
9: ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर याद रखना वो सेठ कभी किसी का भला नहीं करता। माधव पैसे लेकर सेठ धनपत की हवेली पहुंचा।
11: सेठ जी, मेरा नाम माधव है। मुझे वन के रास्ते में आपके ये पैसे मिले थे। मैं इसे आपको वापस करने आया हूँ।
9: सेठ धनपत की आंखें खुशी से चमक उठी।
16: अरे, मेरे पैसे? तुम तो बड़े ईमानदार निकले, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
9: परंतु जैसे ही सेठ ने पैसे पकड़े उसके भीतर का लालच जाग उठा। उसे याद आया कि अब उसे 2,000 रुपए इनाम में देने पड़ेंगे। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने पैसों को इस तरह गिना जैसे कुछ कम हो।
16: माधव, तुमने पैसे लौटाए इसके लिए धन्यवाद, परंतु जैसा कि तुमने देखा, तुमने तो अपना इनाम पहले ही ले लिया है।
9: माधव हैरान रह गया।
11: क्या मतलब सेठ जी?
16: इसमें पूरे 1,00,000 रुपए थे, परंतु अब इसमें 2,000 रुपए कम है। इसका मतलब है कि तुमने अपने हिस्से के 2,000 पहले ही निकाल लिए। तुम भी बड़े चालाक निकले। खैर, मुझे खुशी है कि तुमने बाकी के तो लौटाए।
9: माधव का चेहरा सफेद पड़ गया।
11: आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने पैसे गिने तक नहीं। पैसे निकालना तो दूर की बात है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की।
16: क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? मेरे पैसे और मुझे ही नहीं पता होगा कि इसमें कितने थे। तुमने चोरी की है और अब सीनाजोरी कर रहे हो। चलो, अब इसका फैसला तो पंचायत में ही होगा।
9: माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सुलोचना की बात याद आई। लालची आदमी कभी सुधर नहीं सकता। उसे अपनी ईमानदारी पर दाग लगने का गहरा दुख था। उसे इस बात का मलाल नहीं था कि इनाम नहीं मिला, बल्कि इस बात का था कि एक बेईमान आदमी उस पर कीचड़ उछाल रहा था। सेठ धनपत माधव को घसीटते हुए पंचायत में ले गया।
16: नमस्ते सरपंच जी, मैं व्यापार के लिए जा रहा था और मेरे 1,00,000 रुपए गिर गए थे। इस व्यक्ति को वो पैसे मिले, परंतु सरपंच जी, इसने उसमें से 2,000 रुपए पहले ही चुरा लिए और अब कह रहा है कि मैंने इसमें से पैसे नहीं निकाले। न्याय कीजिए सरपंच जी।
11: सरपंच जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, परंतु मैंने कभी किसी का एक पैसा भी नहीं दबाया। मुझे ये पैसे वन में मिले और मैं बिना देरी किए इसे लौटाने पहुंच गया। मुझे नहीं पता था कि इसमें कितने पैसे हैं। यदि मेरी नीयत में खोट होता तो मैं पूरे पैसे ही रख लेता सरपंच जी। मेरी ईमानदारी पर संदेह ना करें, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
9: सरपंच बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय था। सरपंच ने सेठ के चेहरे के भाव पढ़ लिए और समझ गया कि वो लालच में झूठ बोल रहा है। लेकिन सरपंच ने अभी कुछ नहीं कहा। सरपंच जी कुछ देर मौन रहे और फिर बोले,
17: इस समय हमारे पास कोई गवाह नहीं है, इसीलिए मैं इस मामले की गुप्त जांच करवाऊंगा। 3 दिन बाद तुम दोनों फिर से उपस्थित होना, तब तक ये पैसे मेरे पास जमा रहेंगे।
9: दोनों अपने अपने घर चले गए। सुलोचना घर पर माधव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब माधव लौटा और उसने पूरी कहानी सुनाई तो सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी।
3: मैंने कहा था ना कि वो सेठ दुष्ट है। ईमानदारी का फल हमें अपमान के रूप में मिल रहा है। क्या दुनिया में सच बोलने की कोई जगह नहीं बची?
11: धैर्य रखो सुलोचना, सरपंच जी न्याय करेंगे।
9: अगले 2 दिनों तक सेठ धनपत ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि माधव चोर है। परंतु गांव वालों को माधव पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि माधव भूखा मर सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। कुछ पड़ोसी माधव के घर आए और बोले,
18: तुमने बहुत बड़ी भूल की माधव। उस लालची सेठ को धन लौटाना ही नहीं चाहिए था। वो तो दूसरों का हक मारने में माहिर है।
9: माधव व्याकुल था। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। तीन दिन बाद पंचायत फिर से लगी। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा,
17: सेठ धनपत, तुमने कहा था कि तुम्हारे पूरे 1,00,000 रुपए गिरे थे, परंतु इस पैसों में 2,000 रुपए कम निकले। इसका अर्थ ये है कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है। शायद तुम्हारे पैसे कहीं और गिरे होंगे, उसे जाकर खोजो। और माधव, तुम्हें जो पैसे मिले हैं उसका कोई असली मालिक सामने नहीं आया है, इसीलिए नियम के अनुसार यदि 1 महीने तक इन पैसों पर कोई और दावा नहीं करता तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे।
9: ये सुनते ही सेठ धनपत के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपना सिर पीटने लगा, पर सरपंच के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपना ही नुकसान करवा कर चुपचाप हवेली लौट गया। जब सेठ चला गया, सरपंच ने माधव को पास बुलाया।
17: माधव, मैं जानता था कि सेठ झूठ बोल रहा है। ये सिक्के उसी के थे, पर उसके छल की सजा उसे मिलनी जरूरी थी। हमेशा याद रखना, ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है।
9: माधव ने सरपंच को धन्यवाद कहा। सरपंच ने माधव को उसकी सत्य निष्ठा के लिए अलग से बहुत सा धन और अनाज भी दिया। जब माधव घर पहुंचा, सुलोचना की खुशी का ठिकाना न रहा।
19: वाह, ईश्वर ने सच में हमारी सुन ली।
11: सुलोचना, भले ही हमें ये धन मिला है, परंतु मैं अभी भी चाहता हूँ कि सेठ को उसके पैसे मिल जाए, क्योंकि अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा।
9: माधव वो पैसे लेकर सेठ धनपत की हवेली गया। सेठ धनपत बहुत दुखी बैठा था। जैसे ही उसने माधव को देखा, वो गुस्से में बोला,
16: अब क्या मेरी हवेली लेने आए हो?
9: माधव ने शांति से पैसे उसके सामने रख दिए और कहा,
11: सेठ जी, मैं जानता हूँ ये पैसे आपके ही हैं। मुझे और सुलोचना को सरपंच जी से पर्याप्त धन मिल गया है, हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं।
9: ये देखकर सेठ धनपत सन रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
16: माधव, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैं धन के नशे में अंधा हो गया था। मैंने अपनी ही मूर्खता से अपनी साख और धन दोनों खो दिए थे। असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे बड़े हृदय में है। मुझे क्षमा कर दो भाई।
4: सेठ धनपत, असली जो धन है वो ईमानदार और बड़े हृदय, बिल्कुल, जो हर चीज को एक्सेप्ट करे और माफ भी करे। नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं?
5: ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश।
4: चलिए इस राज्य की विशेषताएं कुछ बता देते हैं आपको।

0: इस राज्य की विशेषताएं काफी सारी हैं। यह राज्य
1: भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है,
0: साथ ही साथ
1: देश का सबसे समृद्ध और दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।
0: और कहते हैं यह भारतीय फिल्म उद्योग का केंद्र बिंदु भी है। साथ ही साथ इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वो इसी राज्य की राजधानी में मौजूद है। यदि आपको इस राज्य के विषय पर इतनी सारी जानकारियां मिल गई, हिंट आपको समझ में आ गया, तो आप देर मत करना। सही जवाब नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर सी अरुणाचल प्रदेश? झटपट जवाब दीजिए 9414151415 पर दीजिए।

0: सेवा का वादा करके मेवा खा गया। ये गाना जरूर आगे सुनाएंगे, लेकिन आज के सवाल का जवाब आप दोस्तों से जानना चाहेंगे, झटपट जवाब दीजिए। कौन है हमारे बीच? जी ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, मजा आया आपने कॉल किया। बताइए सर, आज के सवाल का जवाब क्या चुनकर दे रहे हैं?
1: महाराष्ट्र।
0: ओके, क्या आपको इस राज्य में जाने का मौका मिला कभी?
1: जी हाँ, रहा हूँ काफी दिन।
0: आप काफी दिन रहे हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते जरूर रहिए। थैंक यू कॉल करने के लिए।

0: इस खूबसूरत गीत को आप तक पेश करने के बाद मैं मोना और मेरे साथ
1: रूहानी,
0: हम दोनों वापस आ गए और आज के सवाल को पुनः एक बार दोहराने के लिए हम उसी राज्य के गीत को आप तक पेश किए हैं। और सवाल है, नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? आपके सामने ऑप्शन रखा है,
1: ए है महाराष्ट्र, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश।
0: झटपट जवाब दे दीजिए 9414151415 पर दीजिए। अब देर न कर मेरे भाई, अब देर न कर। अगला गीत आपके लिए उड़ान में, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, और तब तक उससे जाने से पहले आज के सवाल का जवाब।
1: नागपुर और जालना किस भारतीय राज्य के जिले हैं? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश। मुझे मणिपुर तो नहीं लगता, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र।
0: जी, जब बात हुई थी मुंबई राजधानी, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का फिल्म उद्योग उसी शहर से जुड़ा हुआ है, भारत की सबसे ज्यादा आर्थिक जीडीपी, हाईएस्ट जीडीपी उसी राज्य की ही है, तो सही जवाब
1: ऑप्शन ए महाराष्ट्र है।
0: कल मिलने का वादा करते ठीक शाम
1: 6 बजे,
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना भाषा से कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जैसे प्रोग्राम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, तो इस एरिया में जो कुछ गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंच है, आज एक मंच मिलेगा बच्चों को, क्योंकि हम पोलो ग्राउंड में पहुंचे जहाँ की रेडियो मधुबन का जो टावर है प्रसारण होता है, अचलगढ़ से प्रसारण होता है। तो इस कार्यक्रम को भी आज जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पोलो ग्राउंड आबूराज में पहुंचे, जो कि आबू पर्वत से पहले विख्यात था। तो आज आबूराज से ही सभी को हमारा श्रोता मित्र को सलाम करते हुए स्वागत करते हैं। एक प्रस्तुति जो कि हम सबको विदित है, खेल हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है। खेल तो बहुत सारा है, लेकिन अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, और उनका जो गाइड करते हैं जो हमारा टीम लीडर है, तो उनको भी धन्यवाद है। तो उनका एक इशारा से आज हमें प्रस्तुत करने के लिए दिए, तो उनको पहले सुनेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। कोच हमारा,
1: मेरा नाम परमेश शर्मा है
0: जी। सर,
1: मैं वॉलीबॉल कोच हूँ और SMS स्टेडियम जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। वहाँ पर बाहर के लड़के भी आते हैं। वहाँ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा एक वॉलीबॉल की एकेडमी भी चलाई जाती है। वहाँ सभी प्लेयर्स को रहने की, खाने की, पढ़ने की पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ सुबह शाम बच्चे ग्राउंड आते हैं, और दिन में सभी जने सुबह जो स्कूल का टाइम होता है तो वहाँ पर स्कूल के ऑटो की व्यवस्था रहती है, तो सभी जने ऑटो से स्कूल जाते हैं। उसके बाद में आकर गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्टल दिया है वहाँ रुकने की व्यवस्था है। फिर वहाँ पर दिन में लंच के बाद रेस्ट करके और इवनिंग सेशन लगता है।

0: जयपुर में SMS स्टेडियम में, ठीक है। और वहाँ पर फिर बच्चों को डिनर है और नाइट स्टे वहीं रहता है, रहना खाना पीना सब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। और हमारी लड़कियाँ वहाँ अच्छी परफॉर्म कर रही है। पिछली बार भी जैसे हमारी एकेडमी की अभी दो लड़कियाँ हैं जो इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, एक तो अनीता जाट है जो स्कूल इंडिया खेल के आई थी अभी, और इस साल एक हाल ही में एक लड़की रजनीश नैन जिसका स्कूल इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसकी टीम चाइना जाएगी। और हमारी जो एकेडमी की लड़कियां हैं इसका 17 और 19 में पिछली बार दोनों में स्टेट में गोल्ड मेडल है, और कम से कम 10-15 लड़कियां हैं जो नेशनल में सिलेक्शन हो चुका है। और ये अभी गवर्नमेंट का इनका कैंप लगा है, इसमें से कुछ लड़कियां जो है वो अकेडमी की लड़कियां आई है, बाकी चित्तौड़गढ़ से कुछ लड़कियां आई है, एक दो लड़कियां बीकानेर से आई है। इनका कैंप लग रहा है और सुबह शाम यहाँ पर प्रैक्टिस होती है, और रहना खाना जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो जिला कलेक्टर सिलोई जिला कलेक्टर है उनकी तरफ से यहाँ पर व्यवस्था करवाई गई है। यहाँ पर बच्चों को एक बार घूमने के लिए गुरु शिखर अचलगढ़ भी लेकर गए हैं, एक बार बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वोटिंग कराई गई है। कराई गई नहीं कराई गई?
1: यस सर।
2: अरे वाह, जो से बोलिए।
1: यस सर।
0: तो इसके लिए हम सिरोही कलेक्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार कहेंगे, क्योंकि पूरे जो 6 खेल का जो यहाँ कैंप लग रहा है उसके अंदर सभी बच्चों को, एक दिन लड़कियों को और एक दिन लड़कों को वोटिंग की पूरी व्यवस्था करवाई गई थी, और ऐसे ही घूमने के लिए भी एक दिन लड़कों को और एक दिन लड़कियों को गुरु शिखर और उधर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को घुमाया गया है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
2: बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति और जानकारी दिया। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे, और जो बच्चे इस माध्यम से सुन पा रहे हैं तो जरूर इसका फायदा ले, और उनको स्वागत करते माउंट आबू का जो आबूराज का जो पोलो ग्राउंड में खेल कूद चल रहा है, और बच्चों से जानेंगे उसके बारे में। लेकिन हमारा जो बच्चे स्टूडेंट्स जो सुनते जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते उनके लिए एक जड़ी बने संजीवनी बूटी जैसे काम करेगा, उनका जो भावना भाव को लेकर आपका पास पहुंचेंगे। ये था सर का जो कोच का कुछ इंट्रोडक्शन। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे आप सबसे। हमारा साथ जो होवनहार बच्चे कितना उम्मीद लेकर आए हैं, कितना मेहनत करते हैं अपना शरीर को फिट रखने के लिए, जानेंगे एक अल्प विराम के बाद। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। Oh, oh, oh.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में हम पहले बताए थे लिंक का, पहले गीत भी सुने आप लोग, और बच्चों का आवाज न हो, बच्चों का जो भाव और भावना न हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी द्वारा, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। आज कम्युनिटी से बच्चा है और खास राजस्थान का नाम रोशन करेंगे और पहला प्रस्तुति के लिए तैयार है। रेडी? ओके। हेलो, क्या नाम बताइए?
2: मेरा नाम कल्पना, मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ। मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो जयपुर में एकेडमी है उसमें प्रैक्टिस करती हूँ, और अब हमारा यहाँ पे 20 दिन का समर कैंप लगा है, उसमें मैं आई हूँ। यहाँ का मौसम और सब अच्छा है, और यहाँ जो सरकार ने है ना, यहाँ अब हमें इसलिए कैंप लगाया कि जैसे कि नीचे के एरियो में गर्मी ज्यादा है, तो अब यहाँ पे जो मौसम अच्छा है तो इस वजह से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्टेमिना भी अच्छा होगा, और लड़कियों के साथ जैसे कि साथ में एक साथ कैंप लगाया तो बॉन्डिंग भी बनेगी और गेम में इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो थैंक यू सर।
1: वाह, थैंक यू, वेलकम करते हैं। और कल्पना नाम जैसे संकल्प से सिद्धि करेंगे, है ना, जो भी संकल्प करेंगे ना कल्पना, तो जरूर कामयाबी होंगे, क्योंकि हमारा संकल्प में इतना सिद्धि है, शुद्ध संकल्प हो, सच संकल्प हो और कल्याणकारी हो, तब जाकर हमें आगे बढ़ सकते। इसके लिए प्रोत्साहन आपको कौन कौन देते हैं?
2: मेरे गुरुवर, मेरे सर, मेरे पेरेंट्स और मेरे साथी, सभी।
1: साथी का नाम क्या? अच्छा, साथी का नाम बताओ। देखिए बहुत सारा साथी तो है, एक अच्छा साथी हर समय, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा है ना, अच्छा दोस्त सभी न, एक
2: सभी
1: है। क्या बताओ, सभी इनका अच्छा दोस्त है, किसका नाम लू किसका नहीं लू, इसलिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, किसका नाम नहीं लिया, बोला सभी मेरा अच्छे दोस्त। ताली बजा भाई, अच्छे दोस्त लोग, वेरी गुड। देखो ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लग रहा, मुस्कान चेहरा में गुलाब फूल जैसे खिल गया है कि नहीं, तो इसलिए और एक बार ताली बजा बच्चे, क्या बात, एक्सरसाइज भी हो जाता है और उस साइलेंस में ही आपका शरीर फिट होता है, क्योंकि एक इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं फेस को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते कल्पना को, नेक्स्ट इस कार्यक्रम को और आगे एक कदम बढ़ाते हुए। हेलो।
3: हेलो, मेरा नाम गरिमा है, मैं डीडवाना कुचामन से हूँ, और मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रैक्टिस करती हूँ, और हमारे कोच का नाम श्रीमान प्रवीण शर्मा है, वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, और जो हमारी गलतियाँ वगैरह होता है सब बताते हैं, हमारी जो भी कमी है वो सुधारते हैं, और अभी हमारा कैंप लग रहा है माउंट आबू में, इससे हम सेल्फ डिपेंड होना सीखते हैं, और घर वालों से दूर रह के हम आत्मनिर्भर भी होते हैं, और यहाँ हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और हमारा गेम भी इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे।
1: अच्छा, गेम में क्या क्या गेम आपको अच्छा लगता है?
3: वॉलीबॉल ही है सर।
1: आप वॉलीबॉल के लिए आए? वॉलीबॉल का खासियत क्या है, मैंने क्या विशेषता जो आप उसको सिलेक्शन किए, क्रिकेट को नहीं किए, बैडमिंटन को नहीं किए, सिर्फ वॉलीबॉल को क्यों?
3: सर हमारे गांव में बाकी गेम चलते नहीं है, और ये वॉलीबॉल ही है ज्यादा जो
1: चलता है।
3: हाँ, इसलिए।
1: कौन सा गांव? गांव में आते हैं आप?
3: हाँ।
1: शहर से नहीं, गांव से।
3: हाँ।
1: इसलिए गांव में वॉलीबॉल होता है, इसलिए उनको अति सहज सहूलियत से मिल जाता है।
3: हाँ।
1: जिसका चलते और प्रैक्टिस भी हो जाता है और ग्रुप मिल जाता है और अच्छा उसमें
3: हाँ,
1: लगता
3: हाँ।
1: है। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो क्रिकेट के लिए कोई ऑफर मिलेगा तो क्या जाएंगे?
3: नहीं नहीं, बस
1: सही बात, जो एक ही में, क्योंकि एक व्रता जैसे रहना चाहिए भाई, हम वॉलीबॉल में तो उसमें ही दिखाएंगे, पांच जगह में नहीं जाना है, एक जगह में खोदेंगे तो जरूर पानी निकलेगा, पांच जगह खोलेंगे तो समय हमारा बर्बाद होगा, टाइम भी जाएगा,
3: और कुछ नहीं आएगा
1: हाथ में, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक बात बोले, ऐसे बच्चे के पास उमंग हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत और खास में राजस्थान, और राजस्थान को तो कहते राजाओं का देश, जहाँ पर माउंट आबू जो देवभूमि कहते, और देवभूमि में सभी पधारे, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं,
3: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
1: क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट बताओ, क्या अच्छा आपको? वेदर तो है ही, वेदर
3: हाँ, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, एकदम नेचुरल हवा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ का, वेदर मौसम सब कुछ अच्छा है यहाँ का,
1: इसलिए प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमको बचाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डे में हम अभी जून महीना में मनाए थे, एनवायरनमेंट प्रकृति हमारा कितना दोस्त होना, मित्र होना चाहिए, प्रकृति को मित्र बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, अगला स्टेप में पहले हम किसको सुन रहे थे? गरिमा को, कल्पना गरिमा का बाद अभी चलते हैं दूसरा। हेलो, नाम बताइए।
4: जी मेरा नाम खुशबू है, मैं बाड़मेर से हूँ और मैं भी जयपुर एकेडमी से ही प्रैक्टिस करती हूँ। और यहाँ हमारा समर कैंप लग रहा है जो कि 20 दिन का है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है जैसे कि सबने बोला ही है।
3: तो
4: और
3: कुछ नवीनता बोला वो लोग तो बता दिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो खाना पीना का रहता ना, कहीं पेट पूजा तो पहले होना चाहिए।
4: क्या खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, दो तीन चीजें में प्रकृति से भी मिल रही है जैसे कि कैरुंदे हुए और आम हुए, यहाँ आम भी लगे हुए हैं बहुत सारे, खजूर भी है, ये सब हमने खाए हैं इधर।
3: डाइट में क्या क्या गवर्नमेंट तरफ से आपको प्रोवाइड हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ना पैसा शुल्क देना पड़ता है आपका, जो भोजन करते तीन टाइम का लंच डिनर वगैरह उसमें पैसा लगता है ना, फ्री मिलता है?
4: या हमें गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छी डाइट मिल रही है,
3: जैसे
4: कि सुबह हमें मिलता है ब्रेड जैम, दूध, दलिया, आंवला और उस थोड़े मिल के हिसाब से एक दिन अलग उपमा वगैरह, पराठे वगैरह ऐसे मिलते रहते हैं। और दोपहर में हमें दाल चावल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और दही मिलता है। और डिनर में हमें मिलता है सब्जी बनती है और रोटी और दूध मिलता है, सलाद।
3: इसे कितने दिन का ये आपका जो कैंप चल रहा है, कितने दिन के लिए, कब से शुरू हुआ?
4: ये हमारा हुआ था 4 तारीख से शुरू हुआ था, अब 24 तारीख को इसकी क्लोजिंग है।
3: तो श्रोता मित्र ध्यान से सुने, 4 जून से 24 जून, जब 20 दिन का यहाँ पर उनको मिला है, को बाहर से घर से दूर आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। और सरकार को भी धन्यवाद देते इस तरह बीच बीच में बच्चों को उमंग उत्साह देने के लिए, एक हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए इस तरह ग्राउंड भी मिला है। और माउंट आबू तो है ही है आबूराज, तो उसका विशेषता जितना भी का काम ही होगा क्योंकि सबको पसंद है आबूराज। और जैसे बताया क्या नाम था,
4: खुशबू,
3: आज तो खुशबू फैलाया है ना। खुशबू मतलब क्या है?
4: खुशबू यानी महक, सुगंध।
3: तो फूल से हम तो सुगंध लेते, लेकिन बच्चों से आपको जब देखेंगे बा किसको लेखें तो खुशबू कैसे महसूस करेंगे? कुछ नवीनता देखने से पता चले पर्सनैलिटी।
4: हाँ।
3: क्या होना चाहिए खुशबू में, वो भी एक पर्सनल, जैसे जैसे एक खुशबू बताओ, फूल का खुशबू तो सबको मालूम है।
4: हाँ।
3: लेकिन व्यक्ति का खुशबू किसको कहते हैं?
4: व्यक्तित्व और आत्मसम्मान, पॉजिटिव वाइब्स,
3: किसको दुख नहीं देना।
4: हाँ।
3: सुख लेना, सुख देना, ये गुड वाइब्रेशन एक वैल्यू है ना। जैसे धीरज, परीक्षा का समय में एग्जाम होता है ना।
4: हाँ।
3: तो उसमें गंभीरता से लेना है उसको, ऐसे फालतू नहीं लेना, भाई आए तो गंभीरता से करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए नेक्स्ट। हेलो, नाम बताइए।
5: माया सेन।
3: हाँ, कहाँ से?
5: मैं चित्तौड़गढ़ से।
3: और बाप, चित्तौड़गढ़ कहाँ का? राजस्थान का। सभी का आज भरपूर है, गुलदस्ता बन गया, सभी फूल जैसे नाम करते। तो आपका लक्ष्य क्या रखे, बड़े होकर क्या बनेगी?
5: मैं बड़े होकर पीटीआई बनना चाहूंगी।
3: पीटीआई, वेरी गुड। इसलिए स्पोर्ट्स को सिलेक्शन किया, पीटीआई के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या मेहनत करते हैं?
5: इसके लिए स्पोर्ट्स के बाद बीएड करके मैं मतलब ऐसे पढ़ाई करके ऐसे ही पीटीआई बना
3: आफ्टर ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद खेल में लेंगे। हेलो, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट।
6: हाय, मेरा नाम लेखिका शर्मा है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनेड है, मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। और हम यहाँ पे या माउंट आबू हमारे 20 दिन का समर कैंप लगा है जो 4 जून से 24 जून तक है। अब हमारे 15-16 दिन हो चुके हैं और अब 5-6 दिन और बाकी है। यहाँ पे जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है, वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो ग्राउंड है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे ग्राउंड मिले हैं, हमें सरकार द्वारा बहुत अच्छा खाना मिलता है दोनों तीनों टाइम, डाइट वाइट भी बहुत अच्छी है।
3: अच्छा, आपका दिनचर्या क्या, सुबह से शाम तक क्या करते हैं?
6: हम सुबह
3: आज कैंप में इधर गए तो कुछ काम नहीं, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, बाहर तो जाना नहीं होता है, तो सब्जी बनाना नहीं पड़ता है ना, तो आपको पूरा टाइम मिला है, तो सुबह से शाम तक आपका दिनचर्या टाइम बाई टाइम क्या करते हैं? क्योंकि एक जो लक्ष्य रखे उसको गोल अचीव करने के लिए आपका समय को भी उसी हिसाब से ढलना पड़ता है, तो आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं वो बताइए, जो कि हमारा ये कार्यक्रम का माध्यम से जो बच्चे सुन रहे हैं तो उनको एक प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले।
6: हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं क्योंकि हमारा अभी जो यहाँ का ग्राउंड टाइम है वो 6 बजे का है। 5 बजे उठ के फिर रेडी होते हैं और 5 बजे ग्राउंड पे आने के बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग वनिंग करते हैं। हमारा सुबह फिजिकली होता है, बॉल टच हम बहुत कम करते हैं। फिर जाने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा धो के सो जाते हैं। फिर टाइम यहाँ से 10:30 के आसपास ब्रेकफास्ट करके सो जाते हैं हम। फिर 3 बजे उठ जाते हैं क्योंकि हमारे जो इवनिंग सेशन है वो 4:30 का है। यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करके फिर हम खेलना शुरू कर देते हैं और हम मैच खेलते हैं शाम को। सब कोई दूसरे गेम्स वाले सर आ जाते हैं उनके साथ खेलते हैं।
3: क्या क्या खेल खेलते हैं?
6: वॉलीबॉल खेलते हैं।
3: वॉलीबॉल खेलते हैं, अटेंशन देते हैं, फोकस उसी में। और तीरंदाजी बहुत पर खेल होता होगा।
6: हाँ,
3: क्या क्या खेल देखे आप? भले नहीं खेले लेकिन क्या क्या खेल
6: यहाँ पे?
3: एक 15 दिन आप यहाँ पर रुके, तो क्या क्या खेल यहाँ?
6: यहाँ पे 6 गेम्स है, उसमें एक वॉलीबॉल है, तीरंदाजी है, बॉक्सिंग है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है और एथलेटिक्स है।
3: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस कार्यक्रम को सुंदर में साकी दृष्टा रूप में हमारा सर देख रहे हैं, इसको पूरा केयर टेकर के जैसे सर ऑफिशियली भी हमारा सर को परिचय लेंगे। सर अपना परिचय दीजिए।
7: मैं वीर सिंह देवड़ा
3: जी सर,
7: शिक्षा विभाग से यहाँ लगा हूँ इस कैंप में।
3: शिक्षा विभाग राजस्थान
7: शिक्षा विभाग सिरोही से लगा हूँ यहाँ पर इनकी व्यवस्थाओं के लिए। तो सुबह शाम तक इन की व्यवस्थाओं में हम ध्यान रखते हैं।
3: क्या बात?
7: और बच्चे यहाँ 6 प्रकार के खेल खेलते हैं
3: जी सर।
7: तो वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, तीरंदाजी है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है। तो सभी बच्चे बढ़िया आनंद ले रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है इनको
3: जी जी।
7: बढ़िया इनको देखते हमें भी आनंद आ रहा है
3: कि
7: ये राजस्थान का
3: टैलेंट है,
7: राजस्थान का टैलेंट है। और उम्मीद करते हैं कि ये राजस्थान का नाम रोशन करेंगे आगे जाके। बहुत बढ़िया बच्चे, बढ़िया आनंदित और सब साथ मिल के खेलते हैं, अच्छा भोजन मिलता है इनको और बढ़िया एनर्जी वाला भोजन है। और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था फ्री कर रखी है इनके लिए और बढ़िया बच्चे सब आनंद आ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, कोचेज भी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह इनका व्यायाम सेशन होता है वार्म अप वाले और दौड़ भी करते हैं और शाम को स्किल डेवलपमेंट होती है और गेम भी होते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ कर।
3: तो आप पीटी सर ना स्कूल में क्या करते हैं सर?
7: मैं वैसे हैंडबॉल, टेबल टेनिस और कबड्डी का पीटी हूँ और मेरे भी बच्चे खेलते हैं और अपने सिरोही से यहाँ इस बार 5-6 बच्चों ने भाग लिया है।
3: क्या बात!
7: और ऊपरी खेड़ा की लड़कियाँ हैं जो राजस्थान गोल्ड मेडलिस्ट है इस बार लील की, वो भी यहाँ भाग ले रही है और वो भी यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा महसूस कर रही है।
3: बोले उपला खेड़ा, ऊपरी खेड़ा,
7: ऊपरी खेड़ा
3: कौन सा?
7: अवरोड तहसील से है और वहाँ की इस बार राजस्थान टॉप रही है बच्ची।
3: क्या बात, उनसे मिलाना जरूर।
7: बिल्कुल आपको मिलेंगे, अभी वो चले गए हैं।
3: धन्यवाद, आपने गाइड किया और खासकर हमें खुशी है कि सिरोही से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी को लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक मौका मिल रहा है। क्योंकि सिरोही जिला में हमारा 5 जो ब्लॉक है, तो आबरोड ब्लॉक, पिंडड़ा ब्लॉक और रेबदर ब्लॉक और अपना शिवगंज और सिरोही, सबको लेकर हम चलते हैं। क्योंकि रेडियो मधुबन हर ब्लॉक में जाकर, हर तहसील में जाकर उसको गतिविधि देखते। तो आज पोलो ग्राउंड स्थित जो आबूराज से हम आपका कवरेज आपके पास पहुँच रहे, जो कि शाम का सुन पाए, ये सुबह का रिकॉर्डिंग था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और किसी बात को लेकर। बहुत मजा आया कि बच्चों से जो मिले तो उनका जो भाव भावना, जो अंदर में जो बात था, बड़ों क्या बनना चाहते और क्या कोचिंग कैसे होता है और क्या क्या सुविधा मिलता है, ये गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते, क्योंकि राजस्थान सरकार और खासकर सिरोही जिला कलेक्टर उनको भी धन्यवाद देते, कार्यक्रम बच्चों को उत्साह दिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज बारी बारी सभी खेल का अनुभव और जो अनुभव उनका पास है वो दे रहे हैं और जो पोलो ग्राउंड में हुई थी उस प्रोग्राम आज उसको आगे बढ़ाते हुए जो हैंडबॉल चल रहा है उसका कवरेज आपके पास हम रख रहे हैं बारी बारी और हमारा कोच को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं और एक स्टूडेंट जो प्रशिक्षित स्टूडेंट हैं पोलो ग्राउंड में जो जून 4 तारीख से जून 24 तारीख से जो हुई उसका कवरेज आपके पास रख रहे हैं तो एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको स्वागत करते हैं, अपना परिचय देंगे प्लीज।
4: मेरा नाम नितिन सैनी है, मैं जयपुर से हूँ, मैं हैंडबॉल नेशनल प्लेयर हूँ, मैं लिस्ट हूँ नेशनल में।
3: अरे वाह, इस तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या मेहनत किए थे?
4: सर हमारे कोचेज बहुत ही अच्छे कोचेज थे, इंटरनेशनल कोचेज थे, हमारे सर प्रवीर दीप सिंह जी और हमारे मनीष राठौड़, दोनों ही बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया, जो चीज हमें बाहर सीखने को नहीं मिलती वो यहाँ सीखने को मिली हमारे दोनों कोचेज के द्वारा से।
3: अच्छा, तो खासकर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे आए थे तो आपका जो हैंडबॉल में कौन सा जिला से आए थे आपको कुछ याद है?
4: जी सर,
3: जैसे
4: हमारे चूरू से बच्चे थे, चित्तौड़गढ़ से थे, सीकर से थे, जयपुर से थे, भीलवाड़ा से थे, नागौर से थे, ऐसे बीकानेर, ऐसे ऐसी जगह से बच्चे थे।
3: लगभग पूरा राजस्थान का पूरा मैंने प्लेयर आए थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर।
4: हाँ सर, पूरे राजस्थान के पूरे प्लेयर थे।
3: और कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर राजस्थान को मैंने माउंट आबू जो की आबूराज को पसंद करेंगे?
4: जी सर बिल्कुल।
3: क्या खासियत है आबूराज की?
4: हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, आबूराज में हम रहे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ठंड का माहौल देखने को मिला, हमें वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हमें रनिंग कराते थे, हमें पहाड़ों में रनिंग करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे व्यू देखने के मौके मिले।
3: तो जो भी श्रोता हमारा सुन रहे लिसनर्स तो उनको भी कभी मौका मिलेगा तो इस तरह गेम यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आबूराज को जो माउंट आबू को तो उनको भी फायदा मिलेगा। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर जो भूमि माने देवभूमि है तो ये भी एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग करता है। और जो रनिंग मैंने सुबह सुबह देख रहा था सभी बच्चे रनिंग में पूरा मैंने पहाड़ी इलाके में कैसे रनिंग करते वो भी सीखने को मिलता है ना?
4: जी सर, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला वहाँ रनिंग करने में भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह रनिंग कराई हमें, जैसे गौमुख में गए थे, हमें बहुत मजा आया गौमुख से, गौमुख में मजा
3: गौमुख तक पहुँच गए थे। अरे
4: हम गौमुख पर रनिंग करते हुए लेके गए थे हमें पोलो ग्राउंड से और हम मून पॉइंट अर्बुदा माता सभी जगह पे हमें रनिंग करते हुए लेके गए और हमें बहुत अच्छा मजा भी आया वहाँ पे रनिंग करने में।
3: तो खासकर जो हैंडबॉल है तो इसमें कितने बच्चे रहते हैं दोनों साइड में?
4: दोनों साइड में 14 प्लेयर रहते हैं सर।
3: सात सात ऐसे 7-7?
4: 7-7 प्लेयर रहते हैं।
3: अच्छा, कोई बैकअप भी रहता है कुछ, मान लीजिए किसको थोड़ा चोट आया कि कोई मैंने बैकअप में रहते हैं कोई
4: सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, टोटल प्लेयर 16 रहते हैं वन टीम में और सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं 8 प्लेयर।
3: ओके ओके, और उसके लिए खास क्या ध्यान देना पड़ता है एक प्लेयर को?
4: प्लेयर को सर सबसे ज्यादा अपनी इंजरी का ध्यान देना पड़ता है, डाइट का ध्यान देना पड़ता है। कि अपने को कैसे अच्छा है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, अपना बेस्ट देता है, इंजरी ना हो जाए, डाइट अच्छी लेता है, कोचेज की बात में जैसे कोच बताते हैं वैसा करता है, डिसिप्लिन में रहता है,
3: इंस्ट्रक्शन जो आता है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक अनुशासन में चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि कोच तो हमारा कप्तान है, तो कोच का जो दिशा निर्देश मिलता है उस तरफ फॉलो करता है, डाइट हो चाहे हेल्थ हो चाहे एनवायरनमेंट को भी साफ सफाई रखना और खुद भी साफ सफाई रखना और मन और बुद्धि को मेडिटेट करके एकाग्रत फोकस करके।
4: हमारे कोच के लिए, हमारे कोच के लिए दीप सिंह हमें इस चीज के लिए अलग से क्लास दिए थे हमें।
3: अच्छा,
4: ये क्या बात है, वो कैसे कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे क्या रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, बड़ों का आदर करना है, ये चीज हमें अलग से क्लास दी थी।
3: नहीं, उससे क्या है ना, शक्ति मिलता है और कुछ कमाना अच्छा जब करते हैं बा करने के लिए सोचते हैं तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच हमें टीम को बल देता है, सबका प्रति सुभावना रहता है, शुद्ध भावना रहता है और कल्याणकारी भावना जब रहता है टीम के लिए तो जरूर टीम मैंने एक इंडिविजुअल नहीं, ये गेम तो जो हैंडबॉल है तो एक मैंने समूह रूप में करना पड़ता है, मैंने जो गेम है सिंगल नहीं है, एक टीम है, तो टीम के लिए सुभावना और उनका कल्याणकारी भावना रखेंगे तो जरूर टीम को आगे बल मिलेगा और टीम जरूर सक्सेस होगा। इस तरह आपको कोच से मिलता है। और खासकर आपका जो गांव है, कौन सा गांव?
4: सर मैं जयपुर से हूँ।
3: प्रॉपर जयपुर शहर से है?
4: हाँ जी सर।
3: अच्छा, जयपुर को तो सभी जानते हैं है ना, सबका जय होने वाला है और पिंक सिटी से प्रसिद्ध है जयपुर में। ऐसे खास कोई विजिटिंग करने के लिए जाएंगे क्या क्या प्लेस है
4: क्या सर
3: जयपुर में पर्यटन स्थल?
4: जयपुर में घूमने की जगह?
3: हाँ, जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा
4: जयपुर में? सर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी, हवा महल हमारे, जल महल है हमारे, जंतर मंतर है हमारे, आमेर किले हैं हमारे।
3: अरे वाह।
4: और हमारे जैसे हमारे बहुत खूबसूरत स्टेडियम भी है जयपुर का स्टेडियम, जहाँ हम
3: स्टेडियम लोग प्रैक्टिस
4: करते हैं।
3: क्या बात है,
4: जहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी होते थे पहले। यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह भी है यहाँ पे, जैसे हमारे एक लेक भी है सांबर लेक
3: जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए सभी पर्यटक को इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरूर एक बार जयपुर जाकर अपना जो विजिटिंग प्लेस है, जो साइट सीन है, तो जरूर देखें। और ऐसे तो पिंक सिटी का नाम से प्रसिद्ध है और जयपुर बहुत अच्छा प्लेस है जो राजस्थान का मैंने हार्ट है। और हमारा जो भाई जी अपना बात को रख रही है भी कम बात नहीं, अचानक भी आए, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, फिर भी अपना बात को रख पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। ऐसे उमंग उत्साह मिलता रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। और खासकर आपका जो जीवन में लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
4: मुझे इंडिया की तरफ से मेडल लाना है।
3: क्या बात, बहुत अच्छा, आपको इन एडवांस बधाई हो। और इंडिया भारत माता के लिए कुछ करने के लिए चाहते हो, मेडल लेकर आना है। और बास्केटबॉल आपका फेवरेट है ना, इस गेम को ही ज्यादा पसंद करते हैं?
4: हैंडबॉल,
3: हैंडबॉल को, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को नहीं, सिर्फ हैंडबॉल क्यों?
4: गेम तो सब सारे गेम अच्छे हैं सर
3: जी,
4: पर सर खुद का गेम हमारा हैंडबॉल है।
3: हैंडबॉल है, तो इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आप लिए हैंडबॉल को, मैंने कौन आपको प्रभावित किया बा आकर्षण करने के लिए, बा इस गेम को आने के लिए कौन प्रेरणा दिया बा आपको सजेस्ट किया?
4: सर मेरे चाचा रविंद्र सैनी है जो ऐसा ही है, हैंडबॉल इंडियन प्लेयर है वो भी।
3: ओके।
4: उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वो भी हमारे कोच प्रियदीप सिंह के अंडर खेले हुए हैं।
3: ओके, वेरी गुड, उनको भी धन्यवाद देते हैं इसको आगे रखने के लिए, आपको भी प्रेरणा दी, क्योंकि देखो जो घर के कोई भी सदस्य रहता है तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और कुछ गाइडलाइन भी मिल जाता है, मैंने सपोर्टिंग जिसको कहते हैं है ना, तो परिवार हो चाहे कोई भी आपका दोस्त इस तरह फील्ड में है तो आपको सहयोग मिल जाता है, जिसका चलते आप भी आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे। और रेडियो मधुबन में आज अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं तो आपको कैसे महसूस हो रहा है?
4: मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे हमने वहाँ को सीखा है वो आपको मैं पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बहुत ही अच्छी लेवल की कोचिंग दी गई है वहाँ पे माउंट आबू में, हमारे दोनों ही कोच बहुत ही अच्छा हौसला देते रहे हमें, बहुत टाइम टाइम पे बताते रहे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हमें, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिली माउंट आबू में।
3: आज
4: रात में
3: आप तो कोचिंग कोचर से कोचिंग ले रहे, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप कोच बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना?
4: नहीं सर, जैसे हम उनके लेवल जितने किसी को नहीं सिखा पाएंगे, किसी को जितना उन लोगों ने हमें सिखाया होता हम किसी को नहीं बता पाएंगे।
3: अच्छा, ऐसे उनके पास बहुत अनुभव है, मैंने एक्सपीरियंस।
4: हाँ हाँ बहुत एक्सपीरियंस है सर उनके पास, वो खुद
3: ओके
4: हमारे हैंडबॉल जैसे हमारे प्रीति सर हैं, खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, बहुत बार इंटरनेशनल खेला है उन्होंने, और वो बहुत इंटरनेशनल कोचेज भी हैं, दोनों हमारे कोच हैं जो इंटरनेशनल कोचेज है।
3: इससे पता चलता है बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, और जैसे जितना भी हो तो उनका हम पद का धूली जैसे है उनसे बराबर नहीं कर पाएंगे, बड़ों को सम्मान देते हैं। और हमारा कोच तो कोच होते हैं तो उनका बराबरी नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम भी कभी भी माने चांस मिलेगा तो बड़े होने के बाद तो आप भी कोचर बन सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे हो जा सकते हैं नहीं तो पीछे जा सकते हैं। उनका बराबर तो नहीं हो पाएगा लेकिन लक्ष्य रखेंगे तो कोच तो बन सकते हैं। और वो प्लेयर अच्छा अपना भारत के लिए नाम रोशन करने के लिए कुछ मेडल लेकर आने के लिए जो लक्ष्य रखा है जरूर आप कामयाब होंगे। और एक टीम वर्क जो होता है तो आप ऐसे सिंगल सभी का सहयोग से खेल होता है, तो जो हैंडबॉल में खासकर क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है?
4: सर जैसे हमारे तो पहले तो ये है कि सारी टीम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे हमारे जो खेलता है उसको अच्छे से टीम चला के चलना पड़ता है, हमें बोल के खेलना पड़ता है हम करेंगे हम जीतेंगे, एकता में शक्ति है, हम ये सोच के चलते एकता में शक्ति है, हमारी टीम को कोई नहीं छोड़ सकता।
3: जी बहुत अच्छा। और अभी कौन सा क्लास में पढ़ाई चल रहा है?
4: जी सर अभी मैं 12th क्लास में हूँ।
3: 12th, तो आफ्टर 12th क्या करेंगे?
4: सर अभी तो जैसे मैं अभी हैंडबॉल को कंटिन्यू करते हुए 12th क्लास को कर रहा हूँ अभी।
3: हाँ उस तरफ भी कॉलेज भी करेंगे, नहीं तो कोई भी अच्छा यदि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं ऐसे।
4: जी सर
3: जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन जाते हैं ना, पढ़ाई का साथ साथ ये तो खेल तो साइड है, कोई कोई पूरा खेल में ही पूरा जीवन दे देते हैं और कोई कोई साइड बाई साइड रखते हैं। अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई करेंगे तो खेल को साथ तो रखना ही है।
4: जी सर खेल साथ में रखेंगे।
3: बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपका जो व्यू, और इसका श्रेय किसको देना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहते हैं आप जो इतना तक पहुंचे?
4: ये सर मैं धन्यवाद मेरे चाचा रविंद्र सैनी को और मेरे कोच दिलीप सिंह दोनों को देना चाहता हूँ।
3: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर में कार्यक्रम को सजाया, और आपका जो बड़े प्रेरणा का स्रोत दोनों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनका बदलता आज यहाँ तक पहुँचे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका बदल आशीर्वाद से और गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केनो, खमा गणी और एक बेहद खूबसूरत सभी को शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शाम का हम सफर शो खुशी के नगमे दिल की बातें। दोस्तों, आज 30 जून 2026 कैलेंडर का एक पन्ना पलटने वाला है ना। सभी के घर में कैलेंडर है और सभी के घर के कैलेंडर में आज हम क्या करेंगे, यानी कि कल हम क्या करेंगे कि पुराना पन्ना पलटेंगे और नया पन्ना शुरू करेंगे। और इसके साथ ही साल 2026 के पूरे 6 महीने आज हम सबसे विदा ले रहे हैं। वक्त का पहिया कितनी खामोशी से और कितनी तेज़ी से घूमता है ना। ऐसा लगता है कि कल ही तो जनवरी की वो कड़कती ठंडी थी और आज देखिए जून की ये ढलती शाम और आसमान में तैरते बादलों के टुकड़े। अरावली की इन पहाड़ियों को छूकर जो ठंडी हवाएं आ रही है वो बस यही कह रही है कि ठहरो, ज़रा सांस लो और मुस्कुराओ। यहाँ दोस्तों, हमें भी खुशी के नगमे दिल की बातें को शुरू किए हुए आज 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने हो गए। जनवरी की 26 को हमने फर्स्ट शुरू किया था। जनवरी 26 फर्स्ट खुशी के नगमे दिल की बातें हमने स्टार्ट किया था और आज जून 26 को पूरे 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। वैसे तो 5 महीने कह सकते हैं बट 6 महीने, जी हाँ, 6 महीने हो चुके हैं। और देखिए दिन कैसे चला जाता है, दोस्त बनते हैं नए, समय का पता नहीं चलता है, गाने सुनते हैं, गानों के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ सुनने को मिलती है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास में रेडियो के साथ जुड़ते हैं तो चीज़ें बनती जाती है। तो आज की शाम डायरी के पिछले 6 महीनों के पन्ने पलटेंगे और पन्ने पलटने से पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े, चले सुनते हैं पहले उनसे, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं बुरीलाल जी आप? आज आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, नेटवर्क कट रहा है। हेलो, बुरीलाल जी, आज आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, एक बार फिर से कॉल कीजिए बाहर आकर के। शायद नेटवर्क इशू है बुरीलाल जी की तरफ से और देखते हैं फिर से एक बार, अगर ठीक से कॉल आता है और हम ठीक से उनसे बात कर पाते, कॉल अगर उठा पाते हैं तो फिर से करते हैं बुरीलाल जी से बात। लेकिन हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि आज की शाम डायरी के पिछले 6 महीनों के पन्ने को पलटते हुए, लेकिन फिर से बुरीलाल जी का हमारा कॉल है, चलिए फिर से बात करते हैं बुरीलाल जी की तरफ से। हेलो,
1: नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, जी अब ठीक से आवाज आ रहा है? बिल्कुल,
1: अब रेडी आ रहा है?
0: बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए।
1: हाँ, तो अपना मूवी है,
0: हाँ जी,
1: पन्ना की तमन्ना है,
0: हाँ,
1: हीरा मुझे मिल जाए,
0: क्या बात है,
1: चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए,
0: हाय हाय,
1: पन्ना की तमन्ना है तो हीरा मुझे मिल जाए, ठीक है सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आज कोशिश करते हैं आपके लिए आपका ये फेवरेट गाना हम प्ले करें।
1: क्या कह रहा है आपके साथ में, हमारे को हमेशा के लिए रहना है।
0: हाँ हाँ, सही बात है। बाकी हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए बुरीलाल जी,
1: धन्यवाद।
0: तो ये थे हमारे बुरीलाल जी और इनकी फरमाइश, गाना तो बड़ा प्यारा इन्होंने हमें सजेस्ट किया है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। चलिए कोशिश करते हैं उनका ये प्यारा सा बेहतरीन सा गाना हम उनके लिए प्ले करेंगे। लेकिन जी हाँ, बात कर रहे थे कुछ मीठी यादों को समेटेंगे और कुछ दिल की बातें करेंगे, और जब बातें यादों की हो तो भला गोल्डन एरा के नगमे से बेहतर और क्या हो सकता है। और चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं लता जी के इस बेहद मखमली आवाज़ के साथ, सुनते हैं सबसे पहले ये नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। जी हाँ, लाइन पे लिंक लगाने से पहले शायद एक और कॉल है, सुनते हैं पहले अपने कॉलर के साथ। हेलो,
2: ओम शांति, गुड इवनिंग हमारे प्यारे भाई जी, कैसे हो?
0: बढ़िया सुरेश सुभाष जी, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद, आपकी तबीयत ठीक है?
2: हाँ ठीक है, पर बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए मैं सुनता हूँ।
0: अच्छा,
2: कल का भी आपका प्रोग्राम।

0: सुना मैंने गुस्सा प्यार
1: जी
0: इसके ऊपर था
1: जी, जी.
0: और सभी हमारे भाई जो बोलते हैं श्रोता भाई बहुत अच्छा लगता है सभी को सुनते हम और खुशी से झूमते भी है बहुत अच्छा लगता है. और आज शायद कल्याण जी का क्या कुछ सुबह सफर में सुना था मैंने.
1: अच्छा.
0: और उनका मार्ग संगीत मार्गदर्शन में गीत शायद शोर का एक प्यार का लुकमा है
1: जी.
0: ये गीत को शायद उन्होंने संगीत दिया है.
1: ओके.
0: और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का महाराष्ट्र से ओम शांति नमस्कार.
1: सुभाष जी धन्यवाद सो मच. और सुभाष जी सच्ची बताया ना तो आज हमारी अंतरिक्ष जी से बात हो रही थी फोन पे और आज हम सभी जो भी हमारे लिसनर्स हमको सुनते थे और उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सभी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आज अंतरिक्ष जी ने भी हमें आपके बारे में पूछा था कि सुभाष जी का कॉल आता है कि नहीं आता है. हमने यही कहा कि सुभाष जी की थोड़ी सी तबीयत नासाज है और उनके कॉल अभी कम आते हैं लेकिन देखिए आज आपने हमें कॉल किया है और इतनी हमें अंदर से खुशी हो रही है कि क्या बताएं कि आज आपका कॉल आया और हमने आज आपको याद भी किया था.
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका प्यार देखे सभी का प्यार देखे दिल गदगद हो रहा है.
1: धन्यवाद.
0: खुशी से दिल गदगद हो रहा है.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू शुक्रिया भाई.
1: और आपने जैसे कहा था कि कल्याण जी का आज कुछ तो है तो आज कल्याण जी का जन्मदिवस है. 30 जून 1928 कल्याण जी का जन्मदिवस था और 24 अगस्त 2000 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी. तो हमारे सुभाष जी ये बहुत ही प्यारे हमारे श्रोता लिसनर है जो बहुत समय समय सुन रहे हैं और आज उनका कॉल आया है तो हमें बड़ी अच्छी बात लग रही है. देखिए आज मतलब एक इत्तेफाक देखिए कैसा चल रहा है कि हम बात कर रहे थे 6 महीने से हमने जो शुरुआत है कि पिछला पन्ना हम पलटेंगे. आज ही मैंने अंतरिक्ष से भी बात की थी. अंतरिक्ष से भी हमारी बात हो रही थी. उसने भी हमारे सभी का एक एक के हालचाल पूछे सभी को उन्होंने नमस्कार किया. हम बात करने ही वाले थे कि आगे शो में हम बात करेंगे लेकिन देखिए सबसे पहला कॉल ही हमारे भूरीलाल जी का आया फिर सुरेश जी का कॉल आया. सुरेश जी ने सभी को याद भी किया और पन्ने को पलटते ही हमारे सबसे पहले जी सुभाष जी ने हमें सबसे पहली बार हमें कॉल किया था मुझे याद है जब हम फर्स्ट शो हुआ था और सुभाष जी को पता था और उन्होंने गाने सुनना शुरू मतलब सुनते ही थे काफ़ी समय से सुनते थे और कॉल भी करते थे रेगुलर. और आज सुभाष जी ने देखिए फिर से हमें कॉल किया. तो यही होते हैं एक साइकिल जब साइकिल का एक पूरा पहिया जब घूमता है चक्र एक पूरा घूमता है तो वहीं वहीं आकर के फिर से रुकता है. बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका हमें कॉल करने के लिए. आज हमें बड़ा प्यार अच्छा लग रहा है आपने हमें कॉल किया. और बात ये हो रही थी कि हम आपको पहला नगमा सुनाएं लता मंगेशकर की आवाज़ में. चलिए सुनते हैं सबसे पहले ये प्यारा सा नगमा फिर करते हैं ढेर सारी बातें. तो बने रहिए रेडियो के साथ सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए.

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और क्या बात है, इस गाने की बात कर रहे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे। चलिए करते हैं सबसे पहले कॉलर से बात, फिर करेंगे इस गाने के बारे में बातें। हेलो
1: हेलो, बुरा राम बोल रहा हूँ सर।
0: बुरा राम जी, कैसे हैं आप?
1: सर आपकी जैसे बैठे और सुन रहा, फिर फोन लगाने में थोड़ा टाइम लग गया।
0: अच्छा, कोई बात नहीं।
1: मैं बोला राम राम तो कौन से, और सब मधुबन भाइयों को,
0: बिल्कुल
1: सुरेश भाई को, मदन लाल भाई को, सुभाष भाई को, मेरा हाथ जोड़ के सबको भाइयों को राम राम।
0: चलो, जो भी आपको सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको भी आज के दिन की राम राम।
1: बस बस। अच्छा, एक मेरा गाना जूना गाना है
0: जी, बिल्कुल
1: थोड़ा सुनने को। वो मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफोन।
0: क्या बात है,
1: वो ऐसा करके वो सुनने का थोड़ा तमन्ना है, सुनाएंगे।
0: बिल्कुल जरूर से हम आपका ये गाना आपको सुनाएंगे, और आप बिल्कुल से बने रहिए रेडियो के साथ और आपका ये गाना सुनिएगा जी। थैंक यू सो मच बुराराम जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, आज तो गाने की जो फरमाइश आ रही है, बड़ी प्यारे प्यारे फरमाइश हमारे गानों की आ रही है, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है इस तरह के गाने सुनने के। क्योंकि पहला एक गाना जो मुझे बड़ा बेहद पसंद है, जो अभी अभी हमारे बुरीलाल जी ने हमें सजेस्ट किया है सुनने के लिए, पन्ना की तमन्ना है। और उसमें उस गाने के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन पहले अभी जो हमने गाना सुना, इससे पहले उनसे मिली नज़र के बारे में हम बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी की आवाज़ की वो खनकती हुई मिठास और दिल को छू लेने वाली वो कशिश, जैसे कि आपने अभी सुना इस गाने में, उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, होश तो उड़ेंगे ही, और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े, चलते सुनते हैं उनसे। हेलो
2: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, सरोज भाई बोलता हूँ जेठाना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं?
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं, बातें सुन रहे हैं हमारे सभी मित्रों की। हमारे अपने राम जी आ गए, सुभाष भाई आ गए, बुरा राम जी आ गए, तो हमारे सभी मित्र के बातें हम सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो हमारे मित्र से बात हो जाए, पहले मैं से लास्ट में बात करूँ। तो अभी हमारे और एक श्रोता बाकी है, जो हमारे मदन लाल जी
0: थोड़ा सा आजकल लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं, उनको थोड़ा सा लेट हो जाता है।
2: कोई बात नहीं, आते हैं सही, कोई बात नहीं, आते हैं सही है। तो चलो, अच्छे सभी मित्रों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छा गाने की भी फरमाइश की है
0: जी।
2: और हमारे आंतरिक भाई के, वो हमने सबको याद किया है, वो भी आंतरिक भाई को भी हमारा नमस्ते है।
0: हाँ।
2: वो आपसे बात हो गई, हमको भी खुशी हुई कि सबको याद कर रहे हैं
0: जी।
2: तो आंतरिक भाई को भी हमारा नमस्ते, केवल भाई आपको भी नमस्ते,
0: थैंक यू सो मच, और आपको भी नमस्कार
2: जी। जी, और बहुत अच्छा गाना चल रहा है, तो चलो मैं भी एक गाना दे दूँ कि आपको
0: जी,
2: और जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिन को गाना पड़ेगा।
0: वाह,
2: वही गाना है सर।
0: चलिए बिल्कुल से बजाते हैं आपके लिए, आपका ये फेवरेट गाना। और
2: चलो, हमारे सबसे सभी मित्रों को आपको आपके दिन की बहुत शुभकामनाएं। हमारे कल्याण जी का जन्मदिन है, तो कल्याण जी को भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारे गुजरात वाले हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, गुजरात से है कल्याण जी, और आनंद जी
2: बिल्कुल। तो हमारे पिताजी का नाम है कल्याण जी वीर जी।
0: अच्छा, हाँ,
2: उसको बोला जाता है
0: जी, कल्याण जी वीर जी शाह जी।
2: चलो, ऐसे भी हमारे दोस्त ने अच्छे अच्छे गाने भी उसने पेश किया है।
0: वैसे
2: सबको,
0: वैसे सुरेश जी, हम आपको बता दें कि हम भी शाह है, मेरा नाम भी केवल शाह, हम भी केवल शाह लगाते हैं
2: जी। अरे वाह, चलो केवल शाह जी आपको भी नमस्ते।
0: नहीं नहीं, थैंक यू सो मच।
2: चलो आज भाई, हमको अच्छा लगा कि आपने शाह बात बताया। आप
0: वैसे, हम वैसे, मैं भी, मेरी मदर टंग गुजराती है, हम बोलते हैं गुजराती।
2: अच्छा?
0: में। हाँ बिल्कुल,
2: चलो सही बात है। चलो, आपकी जो
0: मातृभाषा
2: आपने बताया, हमको भी अच्छा लगा।
0: थैंक यू, ओके,
2: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेश जी कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी हमारे सारे लिसनर्स जो हमें सुनते हैं, और उनका प्यार भरी फरमाइशें, प्यार भरी क्या कहते हैं, फरमाइश नगमे हम उनको ज़रूर से सुनाते हैं, कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले हमारे इस नगमे के बारे में, जो अभी हम सुन रहे थे, और गाने की जब बात की कि लता मंगेशकर की जी आवाज़ थी, और गाने के बोल थे, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, जब भी ये गाने नगमे कानों में पड़ता है ना, तो दिल सच में एक अलग ही दौर में चला जाता है। आज के इस हसीन शाम के इस एवरग्रीन गानों की कुछ अनकही और बेहद दिलचस्प यादें हैं, हम आपसे थोड़ी सी साझा करते हैं, जैसे कि ये जादुई नगमा साल 1968 में आई सुपरहिट क्लासिक फिल्म झुक गया आसमान से है। इस गाने को पर्दे पर अपनी सादगी से, खूबसूरती से जिंदा किया था सदाबहार सायरा बानो और जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार जी ने। जी हाँ, आवाज़ में स्वर ललिता, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, संगीतकार जय किशन जी साहब और गीतकार हसरत जयपुरी जी थे। दोस्तों, इस फिल्म से कुछ ऐसी और भी यादें हैं, जैसे कि आज के दौर में हम फैंटेसी और पुनर्जन्म पर कई फिल्में देखते हैं, लेकिन उस जमाने में यानी कि 1968 में ये कॉन्सेप्ट बेहद अनोखा था। यह फिल्म हॉलीवुड की क्लासिक हियर कम्स मिस्टर जॉर्डन से प्रेरित थी। वो 1941 में आई थी। कहानी में स्वर्ग का एक दूत यानी कि जिसे डेविड साहब ने निभाया था, गलती से राजेंद्र कुमार के किरदार संजय की जान वक्त से पहले ले लेते हैं। जब ऊपर जाकर पता चलता है कि अभी तो इनकी उम्र बाकी है, तो उन्हें वापस धरती पर एक दूसरे शरीर यानी कि तरुण कुमार में भेजा जाता है। यह कॉमिक और इमोशनल ड्रामा उसी दौर के दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। जी हाँ, और कश्मीर की वादियों का जादू और सायरा बानो जी का स्टाइल, इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कश्मीर की हसीन वादियों में हुई थी। इस गाने में और पूरी फिल्म में सायरा बानो इतनी खूबसूरत लगी थी कि इनके हेयर स्टाइल और एथनिक ड्रेसेस का ट्रेंड उस दौर की लड़कियों में सिर चढ़कर बोल रहा था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं शंकर जयकिशन साहब, मोहम्मद रफी, इस गाने के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज अगला नगमा भी हमारा वेट कर रहा है। और ये जो अगला नगमा है हमारे भूरीलाल जी की तरफ से है कि इनका ये जो गाना था फिल्म पन्ना की तमन्ना, ये जो गाना है, चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर। बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने प्यारा सा नगमा सुना, इस फिल्म के मुख्य किरदारों के नाम पर ही बनाया गया था इस फिल्म का नाम। जी हाँ, हीरा और पन्ना मूवी से ये गाना था। और जो गाने के बोल इसमें, जैसे देवानंद साहब का जो किरदार का नाम है हीरा और जीनत अमान जी के किरदार का नाम पन्ना था। गीतकार आनंद बख्शी ने इन नामों को प्यार के धागों में इस तरह पिरोया कि आज भी प्रेमियों को पसंदीदा गाना बना हुआ है। जी हाँ, पंचमदा और जोड़ी का जादू, आरडी बर्मन यानी हमारे सच्चे पंचमदा का संगीत इस गाने की जान है। किशोर कुमार की मस्त मौला और लता मंगेशकर जी की खनकती आवाज़ की जुगलबंदी ने इस ट्रैक को भारतीय सिनेमा का एक आइकॉनिक डुएट बना दिया था। गाने में जो कार की सवारी और खुला आसमान दिखता है, वो उस दौर के युवाओं के लिए आज़ादी और रोमांस का प्रतीक बन गया था। जी हाँ, और एक और चीज़ थी, जैसे कि जीनत अमान जी ने इसका एक ट्रेंड सेट लुक किया था। इस गाने में जीनत अमान जी का जो लुक था बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश था। इनका वो बड़ा बड़ा चश्मा, ओवरसाइज ग्लासेस और हिप्पी स्टाइल हैंडबैग और दौर में इतना पॉपुलर हुआ कि कॉलेज जाने वाली हर एक लड़की उस फैशन को कॉपी करना चाहती थी। जी हाँ, एक और बात ये थी कि देवानंद साहब की जो बात थी कि इसमें अभी इस मूवी से पहले ही उन्होंने एक मूवी की थी हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से, वो बड़ी कामयाब के बाद, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी। उसके बाद देवानंद साहब जीनत अमान की अभिनय क्षमता से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने इस फिल्म को ना सिर्फ डायरेक्ट किया बल्कि हीरा और पन्ना की इस अनोखी प्रेम कहानी और सस्पेंस थ्रिलर को बड़े पर्दे पर जीवित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला नगमा हमारे प्यारे से सुभाष जी की तरफ से आया है, क्योंकि बहुत ही प्यारा नगमा उन्होंने हमें सजेस्ट किया, एक प्यार का नगमा है। सुनते हैं ये नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बात।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ गीता चिकारा के नाम से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों कुछ गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का पूरा फलसफा चंद लाइनों में बयां कर देते हैं। साल 1972 में आई फिल्म शोर का एक ऐसा ही गीत है जिसके बोल आज भी जब कानों में पड़ते हैं तो दिल ठहर सा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक प्यार का नगमा है अभी हमने जो ये गाना सुना फिल्म शोर से। संतोष आनंद के आंसुओं से निकलते ये गीत, यानी कि इस गाने को जब लिखने वाले महान गीतकार संतोष आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह गाना उन्होंने अपने जीवन के एक बेहद कठिन और भावुक दौर में लिखा था। उनकी इसी सच्चे दर्द और एहसास ने इस गाने को अमर बना दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये जो संगीत है इस गाने में, वायलिन का जो इस्तेमाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने किया है वो सीधे दिल के तार, जी हाँ, छू लेता है। मुकेश और लता जी की त्रिवेणी, यानी कि इसमें मुकेश जी और लता जी ने सिंगल यानी कि एक एक करके तो गाना गाया ही है फीमेल वर्जन में और मेल वर्जन में, लेकिन इसे ड्यूएट में भी गाया गया, मतलब इसे 3 बार गाया गया इस फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि फरमाइशें बहुत है और हमें सारी फरमाइशें भी पूरी करनी है। तो अगली जो फरमाइश है हमारे भूरा राम जी की तरफ से, जी हाँ, मेरे पिया गए रंगून। चले सुनते हैं इस गाने के बोल और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा एक नगमा सुना। जी हाँ दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में जब हम किसी अपने की याद आती है तो हम तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से करीब 7 से 8 दशक पहले जब मोबाइल ना था इंटरनेट, तब दूर बैठे पिया से बात करने का इकलौता ज़रिया हुआ करता था। जी हाँ, टेलीफोन या फिर ट्रंक कॉल। पता नहीं मुझे कितनों ने ट्रंक कॉल किए हैं, मैंने शायद नहीं किया है ट्रंक कॉल। हाँ टेलीफोन था मेरे घर पे, लेकिन ट्रंक कॉल हमने कभी नहीं किया। आप हमें बता सकते कॉल करके या फिर कल आप हमें मैसेज पे बता सकते कि किन किन ने ट्रंक कॉल किए हैं। जी हाँ, आपको पता है ट्रंक कॉल, आपको जो भी मैसेज करना है आप हमें 9414151415 पर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने जो गाना सुना फिल्म पतंगा का 1945 में आई एक ऐसी चुलबुला और सदाबहार गाना है, अभी हमने जो गाना सुना, जिसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की इस मीठी सी टकरार को हमेशा हमेशा के लिए जी हाँ अमर कर दिया। दोस्तों बता दूँ इसमें कुछ दिलचस्प जो बातें हैं, सिनेमा का पहला टेलीफोन सॉन्ग बना, शमशाद बेगम की खनकती आवाज़ इसमें थी, संगीत का जब खुद बने गायक। हाँ जी हाँ बिल्कुल, इस गाने की सबसे जो मज़ेदार बात यह है कि इसके संगीतकार श्री रामचंद्र ने सिर्फ इसकी लाजवाब धुन बनाई बल्कि गाने में पिया के हिस्से को अपनी आवाज़ भी दी। राजेंद्र कृष्ण ने जादुई बोल लिखे थे, गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने बेहद आसान और सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे रंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी शहर की भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, रंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी भी हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फरमाइश की ओर। जो हमारी अगली फरमाइश थी, जिंदगी एक प्यार का गीत है, हमारे प्यारे सुरेश जी ने हमें एक नगमा पेश किया। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

दोस्तों आज हम एक ऐसे गीत की बात करने जा रहे हैं जो महज एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी को जीने की पूरी गाइड बुक है। जी हाँ दोस्तों, साल 1983 में आई फिल्म सौतन का ये गीत जो अभी हमने सुना, जब भी बजता है दिल को एक अजीब सा हौसला और सुकून दे जाता है। जी हाँ, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, क्योंकि जिंदगी जो अभी हम गाने के बोल थे, जिंदगी प्यार का एक गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस कर उससे पार जाना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा मौका आता है, कभी भी ऐसा वक्त आता है जब हम उदास होते हैं या फिर दिल से कई दुखी होते, तो ये गाना ज़रूर से सुन लीजिए, बहुत ही मोटिवेशनल है। इसमें उषा खन्ना का एक बेमिसाल संगीत था, इसे बेहद खूबसूरती गाने को धुन दी थी, और हिंदी सिनेमा की दिग्गज महिला संगीतकार उषा खन्ना जी ने उन्होंने इस गीत की धुन में जो सादगी और गहराई पिरोई, उसे इसे सदाबहार बना दिया। सावन कुमार तक का दोहरा जादू इस फिल्म के निर्देशक सावन कुमार तक जी थे, और बेहद कम लोग जानते हैं कि इस गाने के दिल को छू लेने वाले बोल भी खुद सावन कुमार जी ने लिखे थे। राजेश खन्ना जी का भावुक अंदाज पर्दे पर काका, यानी राजेश खन्ना साहब ने अपनी आंखों और अदाकारी से इस गाने को एक एक शब्द के दर्द और दर्शन को जीवित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगला नगमा। जी हाँ, बता दूँ मैं आपको, हमारे मदन लाल जी ने हमें कॉल किया था जब पीछे गाना बज रहा था, और उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम सभी को सुनाया। यह है बम्बई मेरी जान। चले सुनते हैं प्यारा सा नगमा और आप सभी से लेते हैं विदा। जी हाँ दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त ठीक 8 बजे, तब तक आप सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। हम आपसे लेते हैं विदा। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि सभी को।

0: स्वास्थ्य, मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हम में से बहुत सारे लोग जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसे गाड़ी की तरह हांकते रहते हैं और कभी किसी रोज वो गाड़ी कहीं अटक जाए या शुरू होने में तकलीफ देने लगे तो तब हम ध्यान देने लगते हैं कि ओह हो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या आप में से बहुत सारे लोग जो कार या टू व्हीलर चलाते होंगे या साइकिल भी चलाते होंगे, आप सभी ये ध्यान न रखें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराई जानी चाहिए, कभी कभी ग्रीस चेक कर लेना चाहिए, पहिया ठीक है या नहीं, हवा ठीक है या नहीं, ये चेक किए बगैर अगर आप चलते हैं तो एक न एक दिन सुबह उठ के आप देखते हैं तो गाड़ी पंक्चर है या गाड़ी में कोई खराबी है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हम अपने इस गाड़ी के बारे में यानी अपने शरीर के बारे में ध्यान रखें और अगर इस गाड़ी में कोई गड़बड़ियां हैं तो होने से पहले ही उसे ठीक करने के प्रयास करें। और सहज स्वास्थ्य में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हमें ये बात समझ में आए कि हम अपनी गाड़ी की मरम्मत समय रहते कर लें, गाड़ी में खराबियों को होने न दें और इस गाड़ी का ध्यान रखें। प्रायः व्यक्ति जब गाड़ी खराब होती है तो इस शरीर के लिए लोग वैद्यों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही चिकित्सक हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी गाड़ी का ख्याल बेहतर रख सकें और चिकित्सकों के ऊपर जो ऑलरेडी वर्कलोड बढ़ा हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां से वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, ये बात सोचने और समझने वाली है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो जाए तो तब हम गैरेज में ले जाएं, मगर हम ये भी चीजें जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई समय रहते सर्विसिंग भी करा लेना चाहिए, गाड़ी का ध्यान भी रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ऑयलिंग व्हीलिंग कर लेनी चाहिए। ये हम अपने दो पहिए और चार पहिए या जितने पहिए की भी गाड़ी है उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, मगर इस शरीर रूपी गाड़ी के बारे में क्या हमें ऐसा ख्याल रखने की जरूरत है?
1: जरूर है। जिस तरह से गाड़ी रेगुलर सर्विस चाहती है उसी तरह शरीर भी रेगुलर सर्विस चाहता है। और मैंने ये अपने प्राकृतिक चिकित्सालय में ये अनुभव करना शुरू किया है। पहले मरीज हमारे यहाँ महीने दो महीने रहता था, पर अब वो 7 दिन रहता है और बॉडी सर्विस करा के चला जाता है। पहले पुराने मरीज एक बार आते थे, 2-3 महीना रह के पारिवारिक संबंध बना के चले जाते थे। अब ऐसे मरीज हैं जो हर 6-8 महीने पे आते हैं और अपनी बॉडी की सर्विस कराते हैं और चले जाते हैं। ये हमारे रेगुलर पेशेंट है। आज ही हमारे चिकित्सालय में कोटा से एक दीदी और उनकी माता जी आई हैं और ये दोनों जन ही हमेशा गाड़ी से ड्राइव करके आते हैं और दोनों लोग हर साल हमारे यहाँ करीब 3 हफ्ते का समय बिताते हैं। और ये देखने में आया है कि अब लोग अपने शरीर और साथ साथ मन दोनों का सर्विस करा रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूं कि आप अपने घर पे भी हों, हमने जो पुराने एपिसोड्स में बात किया कि थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, थोड़ा बहुत फास्टिंग, थोड़ा बहुत भोजन पे कंट्रोल, ये करते रहिए कि बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकाल पाए। और जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में भर गए हो, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर अपने पूरे शरीर को साफ कर लीजिए। ये बॉडी सर्विस स्टेशन है।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने शरीर की ये सर्विसिंग भी करानी जरूरी है और ये करने के तरीके कितने आसान हैं ये भी आपने बताया। थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत आहार के प्रति सजगता, थोड़ा बहुत फास्टिंग, उपवास इत्यादि करके हम अपने शरीर को सर्विसिंग कर सकते हैं, उसको ठीक रख सकते हैं और इससे मन भी अच्छा रहता है। कल हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब कि शरीर के लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। आजकल जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो विटामिन्स की आवश्यकता को समझते हैं, बहुत सारे लोग विटामिन्स की दवाइयां लेने लगे हैं, विटामिन्स के टैबलेट्स भी खाने लगे हैं। आपने कल की बातचीत में ये बताया कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रकृति

0: से हमें निशुल्क रीति से मिल रहा है। उसके लिए हमें कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ते ही हमारे जिस्म में वो चीज बनने लगती है, और ज्यादा समय भी नहीं, दिन में 5-7 मिनट अगर हम शरीर को सूरज की रोशनी में देते हैं तो ये अपने आप बनने लगता है, ये आपने बताया। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये विटामिन डी आवश्यक क्यों है, क्या काम ये करता है, ये भी तो समझा जाए।
1: इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि हमारे में विटामिन डी की कमी हो रही है। सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है कि महिला या पुरुष जब रात में सोने जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि जो उनका पार्टनर है, पुरुष ये सोचते हैं कि महिला मेरा थोड़ा सा पैर दबा दे, या महिला ये सोचती है कि पुरुष थोड़ा सा मेरा पैर दबा दे, या प्लीज मेरे पैर के ऊपर पैर रख के सो जाओ। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग मिलती है इन यंगस्टर्स, यंगस्टर्स मतलब 30+ के उम्र के लोगों में, अबव 60, 60 साल के ऊपर हमेशा यह होता है कि बहू आई है और 2 दिन हमारा पैर दबाई है और हमको बड़ा अच्छा लगा है, या जो ओल्ड या जो महिला है या पुरुष है वो कहते हैं जब तक पैर दबाती है बड़ा अच्छा लगता है और जैसे ही वो छोड़ देती है वापस दर्द करने लगता है। तो ये सब बिना कोई जांच किए, बिना कुछ किए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर दबाया जाए और आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, आपकी हड्डियां रो रही हैं। और जब हम विटामिन, आपको कोई भी शरीर का अंग दबाते हैं तो जो हमारी हड्डी है उसके ऊपर का कैल्शियम कंप्रेस होता है हल्का सा। एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि एक साधारण बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं। आप जैसे ही वो हड्डी को तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, आदमी को बहुत अच्छा लगने लगता है। और ये क्रूडेस्ट टेस्ट है, सबसे सिंपल टेस्ट है बताने के लिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। इसको सिर्फ हड्डी से जोड़कर पहले देखा जाता था, पर अब ये आपको बहुत सारी समस्याएं अगर हो रही हैं तो आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
0: मैं अक्सर ये चीज देखता था, आज भी ये चीज होता है कि घर में अगर थोड़े बड़ी आयु के लोग हैं, दादा दादी के उम्र के लोग हैं, और घर में अगर बच्चे हैं तो वो यही कहते थे कि भाई मेरे पैर पे थोड़ा चल लो तुम। और मैं सोचता था कि ये चलवा क्यों रहे हैं किसी को अपने ऊपर। और वैसे भी हम भारत में तो ये मान्यता है ही कि अगर बड़ों को हमारे पैर लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पैर नहीं लगने चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए, हमसे गलती हो जाती है छोटे होने के नाते बड़ों को हमारे पैर लगे। मगर यहाँ जब बड़े खुद कह रहे हैं तो मैं हमेशा सोचता था आखिर ये क्या है, क्या इसमें आनंद आ रहा है जो ऐसे चलवा रहे हैं। आप पता चल रहा है कि ये तो
1: विटामिन डी की कमी है भैया। कमर का दर्द, मतलब सबसे पहले मेरा कमर बहुत दर्द हो रहा है, या वो कहते हैं ना सवेरे तो एकदम ठीक था पर शाम होते होते बहुत थक जा रहे हैं, मेरी कमर में दर्द होने लग रहा है, और उसका वो कि कोई छोटा बच्चा मेरे कमर पे चल देता है या कमर पे पैर रख देता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगता है। भैया अब विटामिन डी को मैजिकल विटामिन इसीलिए बोला जाता है कि इसको पहले से दर्द के साथ देखा जा रहा था, अब ये तक देखा जा रहा है कि जिनको डिप्रेशन हो रहा है, जो इरिटेटेड रहते हैं, जो जिनका मूड थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, थोड़ा दुखी फील कर रहा हूं, अगर उनको भी विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में, यहां तक कि अब तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी अगर हो रही है पुरुषों की वजह से, तो उसमें भी अब विटामिन डी के रोल की बात की जा रही है। तो अगर जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, अगर वो थके थके महसूस कर रहे हैं, कमर में उनके दर्द हो रहा है, हाथ पैर दबवाना उन्हें पसंद है, तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है। कुछ लोग की हड्डियां अगर बार बार टूट जा रही हैं, थोड़ा सा झटका लगा और हड्डी क्रैक कर जा रही है, टूट जा रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी कम हो रहा है।
0: ये तो बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी की कमी को कैसे हम परख सकते हैं कि हाँ ये अगर हो रहा है तो ये मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी जब नहीं होता है तो शरीर में क्या रोग पैदा होते हैं, उससे क्या चीजें होने लगती हैं शरीर में, वो भी चीज समझा जाए। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो दर्द तो बहुत समय से हो रहा है, कई चीजों को तो हम ऐसे ही इग्नोर करते चले जाते हैं, अरे हाथ पैर तो दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे उम्र दराज लोग तो ये कह देते हैं कि भाई अब तो उम्र हो गई, ये तो दर्द होना स्वाभाविक है। ऐसा भी कई लोग कहने लगते हैं, आज हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, इसलिए भी दर्द हो रहा है, ये कहते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में क्या चीज है, विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या चीजें हो सकती हैं शरीर में?
1: अगर हम लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होगी तो सबसे पहले हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उन्हें रिकेट्स नामक एक बीमारी हो सकती है, जिसमें उनके पैर टेढ़े हो सकते हैं और हड्डियां टूट सकती हैं। और बड़े वयस्क लोगों में अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक हुई तो उन्हें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, जिसको ब्रिटल बोन्स कहा जाता है, उनकी हड्डियां एकदम भुरभुरी हो जाती हैं और हड्डियां जो है वो जल्दी टूट जाती हैं। ये समस्याएं हड्डियों को रिलेटेड है। दूसरा, लंबे समय तक अगर विटामिन डी कम रहेगा तो आदमी बहुत थका हुआ महसूस करेगा, मतलब कहते ना इच्छा ही नहीं हो रही है, बड़ी थकान हो रही है यार, काम करने में मन नहीं लग रहा है। इवन कुछ महिलाओं और पुरुषों में जो बाल गिरने का कारण है उसमें भी विटामिन डी का रोल माना जाता है, कि अगर विटामिन डी कम हो रहा है तो शरीर में कोलेजन कम होने लगता है, और जब वो कोलेजन कम होता है तो वो हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है और हमारा हमको हेयर फॉल भी होता है। तो इसीलिए अगर किसी को बहुत थकान, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोर ये महसूस हो रहा है तो प्लीज विटामिन डी के लिए जरूर सोचें, कहीं ये आपकी समस्या है विटामिन डी की वजह से तो नहीं हो रही।
0: डॉक्टर साहब, ये बात समझ में आती है कि विटामिन डी की कमी से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और जैसे आपने इसको मैजिक विटामिन कहा, ये भी बात समझ में आ रही है कि हाँ इसकी अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब विटामिन डी की कमी को पूरा करने की बात आती है तो लोग कैसे इस चीज को पूरा करें, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि आजकल लोग बहुत सारे टैबलेट्स खा रहे हैं, मल्टी विटामिन्स खा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा, ये हम हर दिन खा रहे हैं ये भी लोग कहने लग गए हैं, तो क्या ये सही तरीका है या विटामिन डी को पूरा करने के कुछ और भी तरीके हैं?
1: सबसे पहले हम ये समझ लें कि विटामिन डी हमारे शरीर में बनता कैसे है और इसमें किस किस अंग का रोल आता है या किस किस अंग की सहभागिता होती है। सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा के ऊपर पड़ता है तो जो सब डर्मल फैट है, मतलब जो त्वचा के नीचे का हमारा जो वसा है, उससे रिएक्शन होता है और वो एक 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर ये हमारे लिवर में जाता है, वहां इसे एक एंजाइम मिलती है जो इसको 25-hydroxy कोलीकैल्सिफेरॉल बनाती है, और फिर ये हमारी किडनी में जाता है, और फिर फाइनली ये जो कैल्सिरॉल है, जो इसका एक्टिव फॉर्म है, उसमें ये उसके वो बनता है और फिर वो हमारे शरीर में ये काम करता है। कॉमन भाषा में ये समझा जाए, विटामिन डी है वो मजदूर है, वो हमारे खून में से कैल्शियम निकाल के हमारी हड्डियों को चिपकाता है, और वो कोशिश करता है जहां भी कैल्शियम चल रहा है उसको उठा के ले आए, हमारी आंतों में, हमारी किडनी से, मतलब वो हर जगह से कैल्शियम लेके आता है। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये हमारे शरीर में फॉस्फोरस को भी लेके आता है, तो ये दो मिनरल्स को लेकर ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये देखिए कि इस विटामिन के लिए हमको सूर्य का प्रकाश, हमारी त्वचा, हमारी लिवर और हमारी किडनी, ये चारों चीज चाहिए। फैट सॉल्युबल है तो थोड़ा सा फैट भी चाहिए, तो इतनी चीज है। और अगर इन चीजों में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम सूर्य का प्रकाश नहीं लिए, हमारी लिवर खराब हो गई, हमारी किडनी खराब हो गई, या हम अपने भोजन में फैट नहीं ले रहे हैं, जिन लोग का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो फैट मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो या एक और चीज, आजकल बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करा रहे हैं, जिनमें वो अपनी आंतों को काट के छोटा कर दे रहे हैं, अपने पेट को छोटा करवा दे रहे हैं, तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में विटामिन जो डी है उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इफेक्ट हो जा रहा है, और जब वो इफेक्ट हो जा रहा है तो हमारे शरीर को पूरा कैल्शियम नहीं दे पा रहा है।
0: अब ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन डी का कैल्शियम के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, और जैसे आपने ये भी बताया कि शरीर के जो ये अलग अलग अंग हैं, हमारी किडनीज हैं, लीवर है, इन सब का भी इसका कनेक्शन है, और लोगों को इन सारे कनेक्शंस को समझने से इसकी अहमियत समझ में आती है और क्यों ये शरीर के लिए आवश्यक है ये बात पता चल जाती है।
1: भैया पहले, अब तो भारत में नमक में आयोडीन मिलने लगा, नहीं तो पहले औरतों को घेंगा हो जाता था, जिसको थायराइड की बीमारी कहते थे, और थायराइड के ऊपर छोटी सी ग्लैंड्स है जिनको पैरा थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, उसमें पैरा थायराइड हार्मोन निकलता है, वो भी विटामिन डी के साथ जुड़कर हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप देखिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके कितने सारे अंगों की जरूरत है। ये हमारे शरीर की सुंदरता है कि बहुत सारे अंग मिलकर एक काम कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर सुंदर और सुडौल बना रहता है।
0: आजकल मैं समझता हूं कि लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में ज्यादा बिजी हैं, सुडौल बनाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तब तक नहीं सोचते जब तक कोई चीज अकड़ नहीं जाती कि भाई मेरे से झुका नहीं जा रहा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा या पैर नहीं उठ रहा। मगर ये आज की त्रासदी है, और जब हम ऐसे चिकित्सकों से इन चीजों के बारे में सुनते हैं तब हमारी जागरूकता आती है, तब हम समझते हैं कि हाँ, हमें इन चीजों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में भी ये बात बताई थी कि विटामिन डी को लेने के लिए बहुत सारे विदेशी सैलानी भारत, या भारत जैसे वो देश जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, वहां पर पहुंचते हैं और काफी दिनों तक वो बीच स्पेस सागर किनारे अपनी पीठ सूरज की ओर करके पड़े रहते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई चलो हमारा विटामिन डी की कमी हम पूरी करें क्योंकि हमारे देश में ये चीज नहीं मिलती। और भारत में रहने वाले लोगों को या ऐसे उष्णकटिबंध में रहने वाले लोगों को इस चीज की जानकारी ना हो तो ये बहुत ही बड़ा नुकसानदायक चीज समझ में आ रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम भी बीच पर जाएं अभी, या हर दिन के लिए कोई चीज ऐसा इख्तियार कर लिया जाए कि भाई हाँ, विटामिन डी की कमी ना हो हमारे पास?
1: सबसे पहला हमको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए 15 मिनट दिन में जरूर से, अगर 30 मिनट तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो मांसाहारी हैं वो लोग मछली और कुछ लिवर का पार्ट खा के अपने इस विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों में आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है वो है मशरूम खाने का, और इसको जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, धूप में रखे हुए मशरूम की सब्जी बनाई गई है, कि वो जो मशरूम जो है वो यूवी रेस से चार्ज हो गया है। सर, चार्ज वाटर से कुछ नहीं होने वाला है, उससे बहुत कम मिलता है, बट मैक्सिमम वेजिटेरियंस को या तो धूप में रखी हुई मशरूम की सब्जी से कर ले, और या तो धूप से पी। ये भैया गोली के रूप में भी मिलता है, और मैं एक नेचुरोपैथ होकर और एक एलोपैथ होकर, एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर होकर, जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनका लेवल बहुत कम है, उनको मैं रिकमेंड जरूर करता हूं कि आप प्लीज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो बोली है वो प्लीज हफ्ते में एक बार करीब 8 से 12 हफ्ते तक ले लीजिए। अगर ये आप ले लेंगे तो आपको 6 से 8 महीने की छुट्टी हो जाएगी। गोली लेने का ये मतलब नहीं है कि हम धूप में जाना नहीं जाएंगे, हमने तो गोली ले ली हम नहीं जाएंगे। प्लीज गोली आपको एक बूस्टर डोज की तरह दी गई है, पर धूप में जाने का जो अपनी आदत है उसको डालिए। प्लीज 15 मिनट अपनी पीठ को धूप की तरफ जरूर करिए। तो सबसे अच्छा तरीका विटामिन डी लेने का है कि 15 मिनट धूप सेका जाए।
0: बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है कि लोग पैसा खर्च करके विटामिन डी के दूसरे पर्याय खोजने में लगे रहते हैं, मगर जो प्रकृति से प्रदत्त चीज है, जो सबसे आसान भी है और मुफ्त में मिल रही है, और वही एक शाश्वत तरीका है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को ना होने दें और सूरज की रोशनी से हम उस चीज को हासिल करें। दोस्तों आज की बातचीत में यही विराम लेना होगा, घड़ी इशारा करती है, मगर आज जो चीजें हमने समझी हैं कि विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, शरीर के अलग अलग अंगों के साथ विटामिन डी का जो कनेक्शन है वो भी आज समझ में आया है, और इस विटामिन डी को आप सभी सीरियसली लेंगे और आप सभी अपने शरीर में इस विटामिन की कमी को ना होने दे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज की बातचीत में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को, अपने समाज को, परिवार को और अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए, एक स्वस्थ विश्व की कामना करते करते यह भी ध्यान रखें कि भाई अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो रही है तो हम प्रकृति से मिल रही चीजों का सही सेवन नहीं कर रहे हैं। तो विटामिन डी के लिए खास तौर पर आप सभी सूर्य की रोशनी में 15-20 मिनट बैठें और शरीर पर सूर्य की किरणों को पड़ने दें। आज की बातचीत से यही संदेश आप सबके लिए। फिर मुलाकात होगी सहज स्वास्थ्य में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आपका फेवरेट शो सपनों की सैर।
3: हाँ बच्चों, तो परी और मनी दीदी आ गए हैं आपसे बातें करने, आपको कहानियाँ सुनाने, आपको पहेलियाँ सुनाने।
2: हाँ, और जैसे कि बच्चों आप जान रहे हो कि हम आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्रॉब्लम से भी रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रश्न आते हैं, तो ये सिलसिला अभी चल रहा है और बच्चों के प्रश्न भी आते रहते हैं।
3: हाँ, तो जैसे मनी दीदी, आज पूनम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अगर कोई दोस्त मुझसे नाराज हो जाए तो मैं क्या करूँ।
2: हाँ पूनम, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी तो दोस्त नाराज हो भी जाते हैं छोटी छोटी बात पर। अगर हमने अपनी कोई जीत शेयर नहीं करी या फिर उनसे झगड़ा कर लिया, तो उनसे प्यार से बात करो भाई।
3: बिल्कुल पूनम, और सच्ची दोस्ती में अहंकार नहीं होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए।
2: हाँ, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका कारण तो पता कर ही लो, और उस कारण की आप सॉरी भी कर सकते हो अपने फ्रेंड से।
3: हाँ, सॉरी बहुत मैजिक का काम करती है पूनम, इसीलिए सॉरी करोगे फिर से दोस्ती हो जाएगी।
2: हाँ, तो चलो बच्चों, ऐसे ही यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मनी दीदी और परी को पूछना चाहते हैं, तो आप हमें 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज सकते हैं।
3: हाँ, हम उसको आपके रेडियो पर हम जरूर उसका जवाब देंगे।
2: हाँ, तो चलो भाई, अब समय भी हो रहा है और लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद परी की कहानी भी तो सुननी है ना।
3: तो चलो मनी दीदी, चलते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गाना।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: बच्चों चलो, कहानी की बारी शुरू हो गई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी और आज परी सुनाने वाली है मछुआ और मंत्री की कहानी। एक राजा था, उसे रोज तुरंत पकड़ी गई मछलियाँ खाने का शौक था। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया, कोई भी मछुआ समुद्र में मछली मारने नहीं गया, इसलिए राजा को तुरंत पकड़ी हुई मछली मिल नहीं सकी। राजा ने घोषणा कर दी कि उस दिन जो भी तुरंत पकड़ी हुई मछली राजा के पास लाएगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। एक गरीब मछुए ने ये घोषणा सुनी, जान जोखिम में डालकर समुद्र में मछलियाँ पकड़ी और राजमहल पहुँचा। राजमहल के पहरेदारों ने उसे फाटक पर रोक दिया, वे उसे राजा के मंत्री के पास ले गए। मंत्री ने मछुए से कहा, मैं तुम्हें राजा के पास जरूर जाने दूंगा, पर तुम्हें राजा से जो इनाम मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। मछुए को मंत्री का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया, फिर भी उसने मन मार कर उसे स्वीकार किया। इसके बाद पहरेदार उसे लेकर राजा के पास गए। मछुए ने राजा को मछलियाँ दी। राजा मछुए पर बहुत प्रसन्न हुए। बताओ क्या इनाम चाहिए, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बच्चों सोचो, मछुए ने क्या इनाम मांगा होगा। मछुए ने कहा, महाराज मैं चाहता हूँ मेरी पीठ पर 50 कोड़े लगाए जाए, बस मुझे यही इनाम चाहिए। मछुए की ये बात सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। राजा ने मछुए की पीठ पर 50 हल्के कोड़े लगाने का आदेश दिया। जब नौकर मछुए की पीठ पर 25 कोड़े लगा चुके थे, तो बच्चों सोचो मछुए ने क्या कहा, रुको अब बाकी के 25 कोड़े मेरे साझेदार की पीठ पर लगाओ। बच्चों राजा ने मछुए से कहा, तुम्हारा हिस्सेदार कौन है। मछुए ने कहा, महाराज आपके मंत्री महोदय ही तो मेरे हिस्सेदार है। मछुए का जवाब सुनकर राजा गुस्से से तमतमा उठे। बच्चों सोचो अब मंत्री का क्या हाल होगा। उसने मंत्री को अपने सामने हाजिर करने का आदेश दिया। मंत्री ने सामने आते ही राजा ने नौकर को आदेश दिया कि इन्हें गिनकर 25 कोड़े लगाओ, इनकी पीठ पर कोड़े जोर जोर से लगने चाहिए। इसके बाद राजा ने बेईमान मंत्री को जेल में डाल दिया और फिर राजा ने मछुए को मुंह मांगा इनाम दिया। देखा बच्चों, कहानी समझाती है ना कि जैसी करनी होती है वैसी भरनी भी पड़ती है, तो हमेशा सोच समझ कर काम करना, वरना हम ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसीलिए इतनी ज्यादा लालच मत रखना। तो चलो, मनी दीदी आने वाली है तेनाली राम की कहानी लेकर के, उसके पहले सुनते हैं छोटा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सब लोग।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों आ जाओ, मनी दीदी लेकर आ गई है तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब और हम पढ़ रहे हैं इसमें की कहानी जिसका नाम है मित्र की पहचान, जिसमें 9 वर्ष के उत्सव के लिए महाराज ने अपने पड़ोसी राज्यों के नरेशों को आमंत्रण भेजा है और 2 नरेश जो कि उनके बचपन के मित्र थे वे भी आए हैं और वे महाराज के साथ ही राजमहल में ही उन्हें ठहराया गया है। तो चलो अब बिना देर किए मैं ये किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। अतिथि प्रेमी होने के कारण महाराज कृष्णदेव राय ऐसे भी अपने महल में आने वालों का खूब सत्कार किया करते थे। अब जब उनके 2 बाल सखा पधारे हों तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी कैसे रह सकती थी। महाराज लगातार अपने इन दोनों अतिथियों के पास ही बने रहते, कभी मित्रों के साथ चौसर खेलते तो कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाते। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, नव वर्ष समारोह का दिन आ गया। पिछले 2 दिनों तक अपने मित्रों की आवभगत में लगे रहने के कारण महाराज को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि मुख्य समारोह की क्या तैयारियां हुई है और क्या बाकी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि महाराज मुख्य आयोजन के संदर्भ में स्वयं कोई रुचि न दिखाएं। महाराज के विशिष्ट सभासद भी महाराज के इस आचरण से अचंभित थे। जिस दिन नववर्ष का मुख्य समारोह आयोजित होने वाला था उस दिन प्रातः काल में महाराज के मुख्य सभासदों और विश्वसनीय माने जाने वाले लोगों ने मिलकर तय किया कि आज वे लोग महाराज से मिलने महल जाएंगे तथा महाराज से आग्रह करेंगे कि वे समारोह की तैयारियां देख लें। सुबह महाराज अभी बिस्तर से उठे ही थे कि उन्हें प्रहरी ने सूचना दी कि महाराज से मिलने के लिए सभासदों का विशिष्ट मंडल आया हुआ है। महाराज ने प्रहरी को निर्देश दिया कि वह उन लोगों को बाहरी कक्ष में बिठाए और प्रतीक्षा करने के लिए कहे। थोड़ी ही देर के बाद महाराज कृष्णदेव राय अपने कपड़े बदल कर वहाँ पहुँच गए जहाँ उनकी प्रतीक्षा में सभासद बैठे हुए थे और इन सभासदों में तेनाली राम भी था। तो बच्चों चलो भाई अब फिर से हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि समय भी हो रहा है और अगली कड़ी में जानेंगे कि फिर से इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए सुनते हैं तब तक ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों, अभी तो हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ में पहुंच गए हैं। सोए तो नहीं ना आप? अभी सोना नहीं भाई, अभी पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जाना है ना। तो परी, पिछली कड़ी में कौन सी पहेली थी भाई, बच्चों को जरा बताओ।
3: हाँ बच्चों, पिछली कड़ी में तो बहुत आसान पहेली थी, कभी मीठा तो कभी खट्टा हर मौसम में मिलता, छोटा सा गोल गोल बड़ा मजेदार सबके दिल को भाता।
2: हाँ, और सही जवाब पता है ना सभी बच्चों को बहुत पसंद है, वो है फ्रूट, यानी कि फल, और उसमें भी सब वैरायटी के मिलते हैं, सभी मौसम में मिलते हैं। कभी मीठा मीठा आम होता है, कभी खट्टा खट्टा पाइनएप्पल होता है, कभी छोटा सा गोल बेर या जामुन होता है, और कभी बड़ा और मजेदार तरबूज होता है ना। तो फल तो सबके दिल को भाते हैं।
3: हाँ मम्मी दीदी, तो बच्चों जल्दी से आज फिर से एक बार, क्योंकि महीने का अंतिम दिन है ना, तो नोट कर लो एफर्मेशन।
2: अच्छा, क्या एफर्मेशन है परी?
3: मैं हूँ खास, मैं हूँ महान, मेरे सपनों का है आसमान, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपने दिल पर भरोसा रखता हूँ।
2: अच्छा, तो बच्चों आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया? चलो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और फील करते हुए मेरे साथ साथ बोलना। मैं हूँ खास, मैं हूँ महान, मेरे सपनों का है आसमान, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपने दिल पर भरोसा रखता हूँ।
3: बिल्कुल बच्चों, तो ये एफर्मेशन आपको बहुत ताकत देगा, इसलिए जल्दी से 9414151415 पर इसका वॉइस नोट बनाकर हमें भेज दीजिए।
2: हाँ, जो कि अगली कड़ी में हम आपको आपकी ही आवाज में सुनाएंगे।
3: तो चलो मनी दीदी, अब जाना है ना?
2: हाँ, तो चलो करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय।
3: सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या?

अकाम, उनकी बात सुन करके अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कई आप जैसे लोग मुझे अंधेरे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझे बेचारे का क्या होगा, सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

की रक्षा करने आएगा वो अब धर्म की रक्षा करने।

0: कराने तुम देखना हो।
1: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका जो बता रही हूँ आपको, कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंत कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार मंगलवार रविवार शनिवार कोई भी दिन, और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय लंच के समय उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गरम नहीं हो, सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनकर डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है, तिनका डालते हैं मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज़्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे, ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो, ठीक है। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा। लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट मिली हुई है राजस्थान में। ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ, आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और एक टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की और कुछ धागे लेना है आपको केसर का, बस। सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, एक टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है?
1: बस देखो चल रहा है,
0: पता जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है,
1: बस आपकी दुआ थी है मैं तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
0: जी।
1: 30% मिलता है महिलाओं को,
0: 30%, ठीक है,
1: 30% मिलता है और अब 50 होने वाला है, सुना है।
0: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है,
1: ठीक
0: है जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की घीरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल। फिर ठंडा होने दीजिए इसको, ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गर्म करना है, ठीक है, खिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है। लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो, या फिर आजकल तो मेहमान भी फोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है, महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है। और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है। और
2: जी, आपको
3: दीदी प्रणाम है।
2: और आपको भी नमस्कार।
3: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
2: बिल्कुल।
3: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
2: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
3: जी, दीदी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से। और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है। फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम, काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है। ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं पीला रंग और लाल रंग, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आप अपनी डायरी में नजर डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है, दूध, फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम, काजू और पिस्ता ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच। सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए, दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए, ताकि नीचे चिपके नहीं। ठीक है, हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी ये गाढ़ा हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा। बारीक जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को तीन हिस्सों में कर लेना है आपको, तीन जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, तीन हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफ़ेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको तीन तीन कलर के डालना है, थोड़ा लाल, थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और एक पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी के संचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है। बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से, श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है, जो विचार होता है, एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चला जाता है तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत, ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी,
2: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की तो देखिए, जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहां पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहां पे ज्यादा हो जाता है
1: जी।
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को,
1: बिल्कुल
2: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी।
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
1: जी,
2: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो।
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: बस एकदम अच्छे हैं। अरे दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
3: सही बात है
1: जी।
3: वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
1: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
3: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो के अपने गाड़ी की हो तो समझो के आगे आ गया बम्प आ गया
1: जी,
3: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने पर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
1: जी।
3: हाँ वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए कि चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
1: चलिए ठीक है,
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
3: जी, जी,
1: जी, जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे वक्त और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोलता हूं।
1: हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: बहुत अच्छी बात हो रही है, उसका विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
1: जी,
4: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
1: जी,
4: सही समय पे गेयर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
1: हाँ जी,
4: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
1: जी,
4: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भेज जाती है, तो ऐसा भी होता है
1: जी।
4: तो सही समय पे जिंदगी में भी दीदी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए, ताकि देखो चल आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा, हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, तो ही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
1: जी,
4: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
1: बिल्कुल
4: तो ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
1: जी,
4: सोच के रहना है, सोच के चलना है, जी,
1: जी, जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम, मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
2: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
3: बस मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ, अभी दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
3: चालू हो गया, चालू हो गया।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है,
3: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
2: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
3: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
2: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
3: ये 30% हो गए सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
2: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
3: अभी वो सभी ने, मैं यही कहता हूँ

0: में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा। आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आपके जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है। अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार, कमलेश बहन कैसे हो आप?
1: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
0: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
1: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
0: वो तो है ही, ईश्वर की कृपा तो है।
1: बहनों भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
0: हाँ जी,
1: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
0: जी,
1: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
0: जी,
1: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है। अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
0: जी, बहुत बहुत आभार कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का, यू खोकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, जरूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो जरूर बना करके खाइएगा, और ज्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई, और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को, और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज़ कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज़ पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, ज़ोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और ज़ोर से लगेगी, जितनी और ज़ोर से लगेगी दर्द और ज़ोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और ज़ोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं और सबके पास अपना अपना कुछ जरूर होता है। मैंने एक गाना सुना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अब कभी कभी हम कुछ ऐसा भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होता है और वो हमें बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते, कभी कभी दूसरों के इमोशंस को गलत समझ लेते हैं। तो आइए जिंदगी से प्यार थोड़ा और बढ़ाते हैं और रियलिटी चेक देते हैं खुद को। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं कल्पना जी, सीधे ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, शुक्रिया आरुषि, एक बार आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत मजा आ रहा है।
2: थैंक यू सो मच दीदी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने टाइम निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जिनको आप पहचानते हैं क्योंकि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को। और लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आते हैं तो जिंदगी से प्यार करने के नए तरीकों के बारे में जानने का हमें भी मौका मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको बताने आए हैं, मगर इस बातचीत में हम कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिससे हमें भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और खुद की जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखने का एक अनूठा मौका।
2: बिल्कुल, और ये मौका सबको मिलना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़े, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। दीदी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमोशंस बोलते ही ऐसा लगता है बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि क्या हम फील कर रहे हैं, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, बहुत वर्ड सुनते हैं, पर ऐसे तो आसान है, दुखी होते हैं पता चलता है, सुखी होते हैं पता चलता है, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम जब बड़े होते जाते हैं तभी आ जाती है या बचपन से होती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
3: इमोशंस तो बचपन से ही हम एक्सप्रेस करते आए हैं
2: जी।
3: जैसे छोटे बच्चे भी जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा जिससे बात भी करने नहीं आता है, जो पालने में लेटा हुआ है, वो भी कभी मुस्कुराता है और कभी रोने लगता है। तो अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी किस तरह की इमोशंस होगी? नेचुरली कुछ चाहिए, तो उसके इमोशंस हैं। अगर छोटे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो उसकी क्या इमोशंस होगी?
5: गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा,
3: गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन अंदर सोच क्या चल रही होगी कि ये मेरा है,
5: मेरा टॉय,
3: मुझे खेलना है और आपने मुझे छीन लिया। तो इमोशन हो गया एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, लव है, ये सारी इमोशंस है जो हम मनुष्य होने के नाते समय प्रति समय पैदा होने से लेकर मृत्यु तक फील करते ही है। हम कभी सैड होते हैं, सैड किस लिए होते हैं कि भाई कुछ तो बुरा हो रहा है, हम मैं एग्जाम में फेल हो गई या मुझे कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एंड कम मार्क्स मिले, तो मुझे दुख होता है, सैडनेस होती है। एंड देन गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, इरिटेट होते हैं। समझो कि आप रास्ते में चल रहे हो, आजकल ये सारी बातें देखने सुनने को लोगों को मिल रही है कि रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया और आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, ये कितनी लाचारी है, कितनी गलत बात है। तो एक जोश भी आएगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अगेन फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये सारी इमोशंस हम कभी ना कभी अपने लाइफ में, इनफैक्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते ही हैं,
5: एक साथ भी फील करते हैं दीदी सब कुछ।
3: हाँ जी।
5: तो ओके, जैसा आपने कहा कि बचपन से जब बच्चा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशंस हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पड़ने लगती है? मतलब हमें बचपन में समझ में आ रहा है कि बच्चा ये फील कर रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा है, क्लियर है, लेकिन बड़े होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि हमें समझ में आना बंद हो जाता है, या फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि वो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कभी कभी? श्रीनिधि जी, आप आंसर करना चाहेंगे?
4: मैं समझता हूँ, अभी कल परसों ही हम एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और वह ये चीज एक प्रश्न के रूप में उभर कर आई कि जब हम सभी जानते हैं कि हम सब भावनात्मक जीव हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम बचपन से इन अनेक एक्सपीरियंसेस को, इन भावनाओं को महसूस करते आए हैं, जैसे विकल्पना जी कह रहे थे कि हम कभी सैड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी एंग्शियस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को महसूस करते आए हैं, तो जब ये अनुभवी हो चुके हैं हम, तो क्यों जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम इन्हीं इमोशंस को डील करने में स्ट्रगल करने लगते हैं? और ये स्वाभाविक रीति से ये प्रश्न उठता भी है। जैसे बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कई बार बच्चे अपने इमोशंस को स्वाभाविक समझ लेते हैं, यानी गुस्सा होना या इरिटेट होना हम मान लेते हैं कि स्वाभाविक है, और मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो गुस्सा होना और मुझे टैंट्रम्स दिखाना और चिड़चिड़ा होना, ये होना ही चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं बच्चे। और जब तक आप बच्चों को इस विषय पर सही तरीके से काउंसिल न करें, या उनके अपने इस इमोशन को समझने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करें, या उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस इमोशन को सही तरीके से आप ये कहें कि उसको हम अलग अलग तरीकों से उस इमोशन को ब्रेक करके ये क्या इमोशन है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये समझाते नहीं या डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते पेरेंट्स या उनके आसपास जो बड़े हैं वो ये चीजें नहीं करते, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करके चलने लगता है कि भाई ये ठीक ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ऐसे घरों में या ऐसे परिवारों में जहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, या बच्चे जो कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स को चुपचाप सह लिया जाता है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और कई बार पब्लिक में लोग ये कहते भी है कि क्या इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं समझाया कि पब्लिक में भी ऐसे बिहेव कर रहा है, और हम देखने लगते हैं कि बच्चे उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, कि हम उन बच्चों को ऐसा कह के डिस्क्राइब भी करने लगते हैं, अरे भाई इसके तो टैंट्रम्स बहुत होते हैं, अरे ये तो बड़ा नखरे वाला बच्चा है भैया, इसके तो बचपन से इसको जैसे पाल पोस के बड़ा किया भगवान ही जाने, ये इसको जो चीज चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब ये सारा घर से पे उठा लेगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इन इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में एजुकेट ना करें बच्चों को, तो आगे बढ़ के एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसको प्रोसेस करने का पॉजिटिव तरीका क्या है, वो ना जानने के कारण वो लाइफ में चैलेंजेस महसूस करते हैं। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल फियर का है, और ये एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन को हम सभी नेपोलियन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जानते आए हैं, फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर हुए हैं, मगर बचपन में उनके मन पर बिल्लियों के प्रति एक ऐसा डर बैठा हुआ था जिसके कारण वाटरलू का युद्ध उन्हें हारना पड़ा। ब्रिटेन के साथ युद्ध में हारने की वजह कोई कमजोर रणनीति नहीं थी, जिस समय वो रणनीति बना रहे थे उस युद्ध के लिए, उस समय पर किसी ने उनके शिविर में बिल्ली छोड़ दिया, और क्योंकि वो बिल्ली वहां से गुजर गई तो नेपोलियन का सारा ध्यान उस बिल्ली पर था, वो सही निर्णय नहीं कर पाए, और उस समय पर उनका मन बिल्ली के भय से ही आक्रांत था, जिसके कारण वो सही रणनीति नहीं कर सके, जिसकी वजह से युद्ध में हार हुई। ये बात अक्सर हिस्ट्री में कोट की जाती है। तो ये पता चलता है कि आप फियर हो, एंग्जाइटी हो, या इरिटेशन हो, या अनेक प्रकार के हेट्रेड हो, जेलसी हो, बच्चे ये स्वाभाविक रीति से इमोशंस उभर कर आते हैं, बट इन इमोशंस को मैनेज करने के तरीके या इन इमोशंस के प्रति हमारी अवेयरनेस होना कि हाँ ये इमोशन ये है, इस इमोशन का ये नाम है, और ये प्रोसेस करने का एक पॉजिटिव तरीका है, या दूसरे तरीके से भी मैं इसको हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं समझाया जाता या उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होती, तो आगे चल के ये चीजें व्यक्ति इन्हीं इमोशंस के कारण, खुद के ही इन इमोशंस के कारण सकम करने लगता है, उन इमोशंस के कारण सफर करने लगता है।
5: सफर करते हैं जी। कल्पना जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसा सफर करने लगते हैं हम, मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस है, सफर करते हैं इमोशंस के कारण, भावनाएं कई बार कंट्रोल में ही नहीं आ पाती, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम राइट भावना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्या वो वही फील कर रहा है उस वक्त, या वो पेन फील कर रहा है और दिखा कुछ और रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमोशन अंदर कुछ और है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, क्या ये कंफ्यूजन्स होते हैं या फिर वो इमोशन पता चलता है कि कौन सा है?
3: कोई भी इमोशन जो है वो बिना रीजन के नहीं होता है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया है, जो भी रीजन है मेरे इमोशन के पीछे वो मुझे पता होता है क्यों मेरा ये इमोशन है। अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्यार है तो क्यों है। सो ये हर इमोशन के पीछे का रीजन तो पता होता है हमें, और वो औरों को भी पता होना चाहिए। जहां तक इमोशनल अवेयरनेस की बात आते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को समझने की बात आते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है उनको सडनली उदास क्यों फील हो रहा है, क्यों उनका मूड खराब हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही, कोई रीजन नहीं, छोटा सा कारण बनता है और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। सो जब हम उनको पूछते हैं कई सारे प्रश्न, जैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है क्या, कितने दिनों से आप सही तरह से सोए नहीं, क्या आपको भूख सही लगती है, क्या कुछ दिनों से आपकी भूख कम हुई है, या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, क्या बात है, या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ है, हर्ट हुआ है, क्यों आपको सैडनेस फील हो रही है। तो जब ये सारी बातें हम पूछते हैं तो कई बार पता चलता है कि नींद हुई नहीं है, काफी दिनों से नींद ही नहीं आई। कई बार पता चलता है कि खाना से ठीक से नहीं मिला है। कई बार ये पता चलता है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ हुई है। सो नेचुरली रीजन तो है, परंतु कई बार कारण पता नहीं चलता है कि क्यों। कई बार और भी एक है, हमारा जो मूड है ना, फीलिंग्स और मूड है, वो हमारी गट हेल्थ के साथ बहुत जुड़ी हुई। जो भी हमारा भोजन हम करते हैं, अगर उसका सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, अर्थात हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है काफी दिनों से, वो भी हमारे मूड पर असर करता है।
5: ओके,
3: इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी फीलिंग्स जो इस समय है वो क्यों है, किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, श्री जी है, आप है, मैं हूँ। अगर मैं इसी समय अपने आप से पूछूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, है ना, अगर उस मीटर को मैं चेक करूं, इमोशनल मीटर को, कि 0 से 10 के बीच में मैं इस समय कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। अगर हम 10 को नेगेटिव समझे और 0 को पॉजिटिव समझे, तो कहाँ तक मैं रिलैक्स हूँ, कहाँ तक मैं खुश हूँ, कहाँ तक मैं ओरिएंटेड हूँ, ये मुझे अगर समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमोशनल अवेयरनेस।
5: ओके, अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कुछ करते हुए या बात करते हुए भी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब रो रहे होते हैं तब समझ में आता है हम उदास हैं, या फिर बुरा फील हो रहा होता है तब समझ में आता है उदास हैं, पर बात करते करते ऐसे तो शायद रैंडम नहीं सोचा कि क्या फील कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना होगा शायद हमें थोड़ा और अपने इमोशंस को कि किसी से बात करते वक्त भी क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दीदी।
3: एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, कि कई बार कहा जाता है गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से, तो हमें फील होता है, हमें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करते समय मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब है।
5: बिल्कुल,
3: इंट्यूशन आता है। सो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, ये सही नहीं है, उसी समय अगर हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस व्यक्ति के सामने से हट जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं, या फिर अपने आप को बचाने का कोई तरीका सोचते हैं, तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
5: मतलब हम बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को और खुद को अगर हम इमोशनली अवेयर हैं तो।
3: जी,
5: वंडरफुल। श्रीनिधि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कभी क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही इमोशंस या हम उस एज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या उसको मिसइंटरप्रेट भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं?
4: ये बहुत ही मजेदार बात है जब आप पूछ रहे हैं आरुषि जी, और युवाओं के सिलसिले में जब आप ये बात पूछते हैं तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी अपने इमोशंस को लेबल करना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या चीज है।
5: ओके,
4: मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में जेलेसी के इमोशन को फील नहीं किया था।
5: अच्छा।
4: जब उन्होंने ये चीज देखा कि कोई उनके किसी चीज पर जेलस हो रहा है कि भाई उनको ये चीज मिल गई है और इसके कारण वो उनसे नफरत कर रहे हैं या उनसे एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो मेरे पास आए, बोल रहे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। तो मुझे उनको ये समझाने में काफी मेहनत लगी कि आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक चीज के लिए अप्लाई किया, आपको ये चीज मिली, उनको ये चीज नहीं मिली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर चूंकि वो चीज आपको मिली और उनको नहीं मिली है, इसलिए वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है इस मोमेंट पे, वो एक डिसकंफर्टिंग फीलिंग है उनके लिए भी, और क्योंकि वो एक डिसकंफर्ट महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे तो आप इस बात की खुशी का इजहार करेंगे कि देखो मुझे तो ये चीज मिल गई, और इसलिए वो आपको अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से बात कही कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
5: अच्छा।
4: मैंने कहा बिल्कुल आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए नहीं हो, या हो सकता है आपके घर में पहले से परवरिश ऐसी दी गई हो कि किसी को कोई चीज मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आप शायद कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही आप रेज नहीं करते, शायद बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, घर में आपके घर में ज्यादा बच्चे रहे होंगे तो आप शेयरिंग करना सीख चुके होंगे, या किसी को कोई चीज मिलती है तो ना मिलने पर भी उसका बुरा ना मानना आप स्वाभाविक रीति से अनुभव करते आए होंगे। तो ऐसा बहुत सारे इमोशंस के साथ होता है, और युवा काल एक ऐसा काल होता है कि जहां पर आप अभी अभी चीजों को एक एडल्टहुड में एक्सप्लोर करने लगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वयस्कों जैसा बर्ताव करें, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल जैसा बर्ताव करें, और कभी कभार इस प्रेशर के चलते भी आप अपने इमोशंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि भाई एक्टिविटी जो अक्सर वर्कशॉप्स में हम लोग कराते हैं वो ये है कि शुरुआत में हम कहते हैं कि एट द मोमेंट हाउ आर यू फीलिंग, तो लोगों को अलग अलग चीजें बताने का, उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कभी कभार उस फीलिंग के ऊपर ही आपको, जब कल्पना जी कह रहे थे कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग, हाउ एंग्शियस आर यू फीलिंग, आप इन चीजों को पूछते हैं तो पहली दफे लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब ऑन अ स्केल भी मैं अपने आप को माप सकता हूँ।
5: बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है।
4: हाँ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता, इससे पहले किसी ने उस चीज पर बातचीत नहीं की हुई होती, और इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। कई बार बच्चे लफ्जों में चीजों को समझने लगते हैं, कई बार आजकल मैं बच्चों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पूछा, भाई किस बात के लिए डिप्रेस्ड फील कर रहे हो? तो बोलता है, आज मैं इतना सब कुछ पढ़ना है मेरे को और मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो हालांकि कोई 11-12 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो हमें लग सकता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, कि 12 साल की उम्र में तुम्हें किस बात का डिप्रेशन होना चाहिए, किस बात के लिए तुम्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, या वो पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो उस चीज को डिप्रेस्ड फील कर रहा है। कई बार हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम कुछ शब्दों को सुन लिए होते हैं टेलीविजन में, मीडिया में, या हमारे टीचर्स या बड़ों को, घर वालों को बातचीत करते सुन लेते, तो हमको लगता है कि भाई ये सैड होना ही डिप्रेस्ड होना है, या मूड ठीक नहीं होना ही डिप्रेस्ड होना है। तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि हम इमोशंस को समझें। आज मैं इस घड़ी कैसा महसूस कर रहा हूँ, उस इमोशन का एक नाम है, वो क्या चीज है। अगर मुझे वो समझ आ जाए, वो अवेयरनेस आ जाए, तो फिर शायद मैं उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में भी सोच पाऊंगा।
5: एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और हमारे पास इस एपिसोड में टाइम कम बचा है, लेकिन हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे इस पे बातचीत करना। मैं कल्पना जी से भी आने वाले एपिसोड्स में ये जानना चाहूंगी कि क्या जैसे हम जेलस फील कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हैं कि 10 नंबर पे हैं, वो रेटिंग क्या हमें करनी चाहिए और उससे क्या फर्क पड़ता है डील करने पे, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी प्रेजेंटली जो भी हमने बातें सुनी उससे हम अपने करंट इमोशन को समझ पाए या उसको अनुभव कर पाए, इसके लिए क्या कुछ मेडिटेशन हम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें मदद करे?
3: बिल्कुल, जैसे कि मेडिटेशन का मतलब ही है कि अपने अंदर में जाकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम चारों तरफ से अपने अटेंशन को कट ऑफ करके उसको पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कितना इंटेंसिटी है उस फीलिंग की, क्या वो फीलिंग सही है या नहीं है, या वो फीलिंग जैसा मुझे फील हो रहा है वही है या कुछ और है,
5: कुछ और है।
3: जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ये हम ओपन अप करके फिर छोड़ देंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो आकर्षण हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, वो प्यार हो जरूरी नहीं है, तो उस चीज को समझना। तो चलिए इस चीज के लिए हम थोड़े से,
5: मुझे लगता है दीदी ये बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि फील करते हैं कि प्यार है पर वो सच में है या नहीं, ये बहुत लोग जानना जरूर जाएंगे, तो अगले बार में जाने को मिलेगा।
3: सो चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और थोड़ा सा चारों तरफ से अपने अटेंशन को कलेक्ट करके अपने ऊपर एकाग्र करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्रोताओं से कि वो गहरी और लंबी सांस लें, जहां भी हैं 2 मिनट के लिए रुक जाएं, आराम से बैठ जाएं। ये 2 मिनट का अभ्यास हमें आने वाले 2 घंटे के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देकर जाने वाला है। अपनी आंखों को आराम से बंद करें, सांसों पर ध्यान दे, गहरी और लंबी सांसें ले, सांस के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करें, थोड़ा सा अपने आप से मेंटली डिटैच हो जाए, जैसे हम दूर से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वैसे दूर से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखिए, केवल देखिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करें, भावनाओं में न बहे, जस्ट विचारों को आते हुए जाते हुए देखते रहे, किसी विचार को पकड़े नहीं, जाने दे। अब एक सुंदर विचार को अपने मन में दोहराए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस समय आज मैं बहुत खुश हूं। रिपीट करे इस विचार को अपने मन में 2 बार 3 बार 4 बार, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और देखिए उस विचार से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही, मेरा मन अपने आप खुशी का कारण ढूंढ रहा है। गर्मी के इन दिनों में ठंडी हवा चल रही, चारों ओर हरे भरे पेड़ पत्ते फूल और उनकी खुशबुएं हैं। मेरी खुशी के कई सारे कारण हैं, परंतु मैं बिना कारण के भी खुश होना जानती हूं, मुस्कुराना जानती हूं। गहरी और लंबी सांसें, इसी विचार के साथ आज सारा दिन व्यतीत करें, मैं खुश हूं। कारण ढूंढे खुशी के लिए, और ना हो तो बिना कारण के भी खुश होना अपनी आदत बना ले। धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक थॉट में हम कैसे स्थित हो सकते हैं अपने, और मल्टीपल आने वाले थॉट से अवेयर होते हुए जाते हुए भी कैसे देख सकते हैं और कैसे टिक सकते हैं उस इमोशन में जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते भी हैं, तो उसका प्रोसेस आपने बताया, एक्सपीरियंस भी कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
5: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर और राज जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को और बेहतर पहचानना चाहते हैं, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से कहिए लव यू जिंदगी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना भाषा से कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जैसे प्रोग्राम का नाम है मेरा गाँव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, तो इस एरिया में जो कुछ गतिविधि हो रही सब तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंच है, आज एक मंच मिलेगा बच्चों को, क्योंकि हम पोलो ग्राउंड में पहुंचे जहां की रेडियो मधुबन का जो टावर है प्रसारण होता है, अचलगढ़ से प्रसारण होता है। तो इस कार्यक्रम को भी आज जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पोलो ग्राउंड आबूराज में पहुंचे, जो कि आबू पर्वत से पहले विख्यात था। तो आज आबूराज से ही सभी को हमारा श्रोता मित्र को सलाम करते हुए स्वागत करते हैं। एक प्रस्तुति जो कि हम सबको विदित है, खेल हमारा जीवन में कितना आवश्यकता, खेल तो बहुत सारा है, लेकिन अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, और उनका जो गाइड करते हैं जो हमारा टीम लीडर है, तो उनको भी धन्यवाद है। तो उनका एक इशारा से आज हमें प्रस्तुत करने के लिए दिए, तो उनको पहले सुनेंगे। सर आप अपना नाम बता दीजिए कोच हमारा।
1: मेरा नाम परमेश शर्मा है
0: जी सर,
1: मैं वॉलीबॉल कोच हूँ और SMS स्टेडियम जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। वहाँ पर बाहर के लड़के भी आते हैं, वहाँ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा एक वॉलीबॉल की एकेडमी भी चलाई जाती है। वहाँ सभी प्लेयर्स को रहने की खाने की पढ़ने की पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ सुबह शाम बच्चे ग्राउंड आते हैं और दिन में सभी जने सुबह जो स्कूल का टाइम होता है तो वहाँ पर स्कूल के ऑटो की व्यवस्था रहती है, तो सभी जने ऑटो से स्कूल जाते हैं। उसके बाद में आकर गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्टल दिए हैं वहाँ रुकने की व्यवस्था है, फिर वहाँ पर दिन में लंच के बाद रेस्ट करके और इवनिंग सेशन लगता है जयपुर में SMS स्टेडियम में, ठीक है। और वहाँ पर फिर बच्चों को डिनर है और नाइट स्टे वहीं रहता है, रहना खाना पीना सब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। और हमारी लड़कियाँ वहाँ अच्छी परफॉर्म कर रही है, पिछली बार भी जैसे हमारी एकेडमी की अभी दो लड़कियाँ हैं जो इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, एक तो अनीता जाट है जो स्कूल इंडिया खेल के आई थी अभी, और इस साल एक हाल ही में एक लड़की रजनीश नैन
0: जी,
1: जिसका स्कूल इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसकी टीम चाइना जाएगी। और हमारी जो एकेडमी की लड़कियां हैं इसका 17 और 19 में पिछली बार दोनों में स्टेट में गोल्ड मेडल है, और कम से कम 10-15 लड़कियां हैं जो नेशनल में सिलेक्शन हो चुका है। और ये अभी गवर्नमेंट का इनका कैंप लगा है, इसमें से कुछ लड़कियां जो है वो

0: दिन लड़कियों को और एक दिन लड़कों को वोटिंग की पूरी व्यवस्था करवाई गई थी। और ऐसे ही घूमने के लिए भी एक दिन लड़कों को और एक दिन लड़कियों को गुरु सीकर और उधर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को घुमाया गया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति और जानकारियां दिया। हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और जो बच्चे इस माध्यम से सुन पा रहे तो जरूर इसका फायदा ले और उनको स्वागत करते माउंट आबू का जो आबूराज का जो पोलो ग्राउंड में खेलकूद चल रहा है और बच्चों से जानेंगे उसके बारे में। लेकिन हमारा जो बच्चे स्टूडेंट्स जो सुनते जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते उनके लिए एक जड़ी बने संजीवनी बुट्टी जैसे काम करेगा, उनका जो भावना भाव को लेकर आपका पास पहुंचेंगे। ये था सर का जो कोच का कुछ इंट्रोडक्शन। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे आप सबसे। हमारा साथ जो होवनहार बच्चे कितना उम्मीद लेकर आए हैं, कितना मेहनत करते हैं अपना शरीर को फिट रखने के लिए, जानेंगे एक अल्प विराम के बाद। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में हम पहले बताए थे लिंक का, पहले गीत भी सुने आप लोग, और बच्चों का आवाज न हो, बच्चों का जो भाव और भावना न हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी द्वारा, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। आज कम्युनिटी से बच्चा है और खास राजस्थान का नाम रोशन करेंगे, और पहला प्रस्तुति के लिए तैयार है, रेडी? ओके, हेलो, क्या नाम बताइए?
2: मेरा नाम कल्पना, मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ। मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो जयपुर में एकेडमी है उसमें प्रैक्टिस करती हूँ, और अब हमारा यहाँ पे 20 दिन का समर कैंप लगा है, उसमें मैं आई हूँ। यहाँ का मौसम और सब अच्छा है, और यहाँ जो सरकार ने है ना, यहाँ अब मैं इसलिए कैंप लगाया कि जैसे कि नीचे के एरियो में गर्मी ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे जो मौसम अच्छा है तो इस वजह से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्टेमिना भी अच्छा होगा, और लड़कियों के साथ जैसे कि साथ में एक साथ कैंप लगाया तो बॉन्डिंग भी बनेगी और गेम में इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो थैंक यू सर।
1: वाह, थैंक यू, वेलकम करते हैं। और कल्पना नाम जैसे संकल्प से सिद्धि करेंगे, है ना, जो भी संकल्प करेंगे ना कल्पना, तो जरूर कामयाबी होंगे, क्योंकि हमारा संकल्प में इतना सिद्धि है, शुद्ध संकल्प हो, सच संकल्प हो और कल्याणकारी हो, तब जाकर हमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रोत्साहन आपको कौन कौन देते हैं?
2: मेरे गुरु, मेरे सर, मेरे पेरेंट्स और मेरे साथी, सभी।
1: साथी का नाम क्या? अच्छा, साथी का नाम बताओ। देखिए, बहुत सारा साथी तो है, एक अच्छा साथी हर समय, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा है ना, अच्छा दोस्त, सभी ना एक
2: सभी है।
1: बोले क्या बताओ, सभी इनका अच्छा दोस्त है, किसका नाम लू किसका नहीं लू, इसलिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, किसका नाम नहीं लिया, बोला सभी मेरा अच्छे दोस्त। ताली बजा भाई, अच्छे दोस्त लोग, वेरी गुड। देखो, ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लग रहा, मुस्कान चेहरा में गुलाब फूल जैसे खिल गया है कि नहीं, तो इसलिए और एक बार ताली बजा बच्चे, क्या बात, एक्सरसाइज भी हो जाता है और साइलेंस में ही आपका शरीर फिट होता है, क्योंकि एक इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं फेस को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते कल्पना को, नेक्स्ट इस कार्यक्रम को और आगे एक कदम बढ़ाते हुए। हेलो,
3: मेरा नाम गरिमा है, मैं डिडवाना कुचामन से हूँ, और मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में प्रैक्टिस करती हूँ, और हमारे कोच का नाम श्रीमान प्रवीण शर्मा है, वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, और जो हमारी गलतियाँ वगैरह होता है सब बताते हैं, हमारी जो भी कमी है वो सुधारते हैं, और अभी हमारा कैंप लग रहा है माउंट आबू में, इससे हम सेल्फ डिपेंड होना सीखते हैं, और घर वालों से दूर रह के हम आत्मनिर्भर भी होते हैं, और यहाँ हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और हमारा गेम भी इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे।
1: अच्छा, गेम में क्या क्या गेम आपको अच्छा लगता है?
3: वॉलीबॉल ही है सर।
1: आप वॉलीबॉल के लिए आए, वॉलीबॉल का खासियत क्या है, मैंने क्या विशेषता जो आप उसको सिलेक्ट नहीं किए, क्रिकेट को नहीं किए, बैडमिंटन को नहीं किए, सिर्फ वॉलीबॉल को क्यों?
3: सर, हमारे गांव में बाकी गेम चलते नहीं है, और ये वॉलीबॉल ही है ज्यादा जो
1: चलता है।
3: हाँ, इसलिए।
1: कौन सा गांव? गांव में आते हैं आप?
3: हाँ,
1: शहर से नहीं, गांव से।
3: हाँ,
1: इसलिए गांव में वॉलीबॉल होता है, इसलिए उनको अति सहज सहूलियत से मिल जाता है, जिसका चलते और प्रैक्टिस भी हो जाता है और ग्रुप मिल जाता है, और अच्छा उसमें लगता है। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो क्रिकेट के लिए कोई ऑफर मिलेगा तो क्या जाएंगे?
3: नहीं नहीं, बस
1: सही बात, जो एक ही में, क्योंकि एक व्रता जैसे रहना चाहिए भाई, हम वॉलीबॉल में तो उसमें ही दिखाएंगे, पांच जगह में नहीं जाना है,
3: नहीं।
1: एक जगह में खोदेंगे तो जरूर पानी निकलेगा, पांच जगह खोलेंगे तो समय हमारा बर्बाद होगा, टाइम भी जाएगा,
3: और कुछ नहीं आएगा,
1: हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक बात बोले, ऐसे बच्चे के पास उमंग हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत और खास में राजस्थान, और राजस्थान को तो कहते राजाओं का देश, जहाँ पर माउंट आबू जो देवभूमि कहते, और देवभूमि में सभी पधारे, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं,
3: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
1: क्या अच्छा लगा, एक पॉइंट बताओ, क्या अच्छा आपको? वेदर तो है ही, वेदर
3: हाँ, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, एकदम नेचुरल हवा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ का, वेदर, मौसम, सब कुछ अच्छा है यहाँ का,
1: इसलिए प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमको बचाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट डे में हम अभी जून महीना में मनाए थे, एनवायरनमेंट प्रकृति हमारा कितना दोस्त होना, मित्र होना चाहिए, प्रकृति को मित्र बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ देता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टेप में पहले हम किसको सुन रहे थे? गरिमा को। कल्पना गरिमा का बाद अभी चलते हैं दूसरा। हेलो, नाम बताइए।
4: जी मेरा नाम खुशबू है, मैं बाड़मेर से हूँ और मैं भी जयपुर एकेडमी से प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ हमारा समर कैंप लग रहा है जो कि 20 दिन का है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है जैसे कि सबने बोला ही है।
3: तो
4: और
3: कुछ नवीनता बोला वो लोग तो बता दिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो खाना पीना का रहता ना, कहीं पेट पूजा तो पहले होना चाहिए।
4: यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर दो तीन चीजें में प्रकृति से भी मिल रही है जैसे कि कैरुंदे हुए और आम हुए, यहाँ आम भी लगे हुए हैं बहुत सारे, खजूर भी है, ये सब हमने खाए हैं इधर।
3: और डाइट में क्या क्या गवर्नमेंट तरफ से आपको प्रोवाइड हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ना पैसा शुल्क देना पड़ता है आपका, जो भोजन करते तीन टाइम का लंच डिनर वगैरह उसमें पैसा लगता है ना, फ्री मिलता है?
4: या हमें गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छी डाइट मिल रही है, जैसे कि सुबह हमें मिलता है ब्रेड जैम दूध दलिया आंवला और उस थोड़े मिल के हिसाब से एक दिन अलग उपमा वगैरह पराठे वगैरह ऐसे मिलते रहते हैं और दोपहर में हमें दाल चावल सब्जी रोटी चावल सलाद और दही मिलता है और डिनर में हमें मिलता है सब्जी बनती है और रोटी और दूध मिलता है सलाद।
3: इसे कितने दिन का ये आपका जो कैंप चल रहा है, कितने दिन के लिए, कब से शुरू हुआ?
4: ये हमारा हुआ था 4 तारीख से शुरू हुआ था, अब 24 तारीख को इसकी क्लोजिंग है।
3: तो श्रोता मित्र ध्यान से सुने, 4 जून से 24 जून, जब 20 दिन का यहाँ पर उनको मिला है, बाहर से घर से दूर आए हैं कुछ सीखने के लिए कुछ करने के लिए, और सरकार को भी धन्यवाद देते इस तरह बीच बीच में बच्चों को उमंग उत्साह देने के लिए, एक हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए इस तरह ग्राउंड भी मिला है। और माउंट आबू तो है ही है आबूराज, तो उसका विशेषता जितना भी का काम ही होगा क्योंकि सबको पसंद है आबूराज। और जैसे बताया क्या नाम था,
4: खुशबू,
3: आज तो खुशबू फैलाया है ना। खुशबू मतलब क्या है?
4: खुशबू यानी महक सुगंध।
3: तो फूल से हम तो सुगंध लेते, लेकिन बच्चों से आपको जब देखेंगे बा किसको देखें तो खुशबू कैसे महसूस करेंगे? कुछ नवीनता देखने से पता चले पर्सनैलिटी।
4: हाँ।
3: क्या होना चाहिए खुशबू में, वो भी एक पर्सनल, जैसे एक खुशबू बताओ, फूल का खुशबू तो सबको मालूम है।
4: हाँ।
3: लेकिन व्यक्ति का खुशबू किसको कहते हैं?
4: व्यक्तित्व और आत्मसम्मान, पॉजिटिव वाइब्स,
3: किसको दुख नहीं देना।
4: हाँ।
3: सुख लेना सुख देना, ये गुड वाइब्रेशन एक वैल्यू है ना। जैसे धीरज परीक्षा का समय में एग्जाम होता है ना।
4: हाँ।
3: तो उसमें गंभीरता से लेना है उसको, ऐसा फालतू नहीं लेना, भाई आए तो गंभीरता से करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए नेक्स्ट। हेलो, नाम बताइए।
5: माया सेन।
3: हाँ, कहाँ से?
5: मैं चित्तौड़गढ़ से।
3: और बाप, चित्तौड़गढ़ कहाँ का? राजस्थान का सभी का आज भरपूर है, गुलदस्ता बन गया सभी फूल जैसे नाम कहते। तो आपका लक्ष्य क्या रखे, बड़े होकर क्या बनेगी?
5: मैं बड़े होकर पीटीआई बनना चाहूंगी।
3: पीटीआई, वेरी गुड। इसलिए स्पोर्ट्स को सिलेक्शन किए, पीटीआई के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या मेहनत करते हैं?
5: इसके लिए स्पोर्ट्स के बाद बीएड करके मैं मतलब ऐसे पढ़ाई करके ऐसे ही पीटीआई बना,
3: फिर ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद खेल में लेंगे। हेलो, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट।
6: हाय, मेरा नाम लेखिका शर्मा है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनेड है, मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। और हम यहाँ पे या माउंट आबू हमारे 20 दिन का समर कैंप लगा है जो 4 जून से 24 जून तक है। अब हमारे 15-16 दिन हो चुके हैं और अब 5-6 दिन और बाकी है। यहाँ पे जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है, वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो ग्राउंड है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे ग्राउंड मिले हैं, हमें सरकार द्वारा बहुत अच्छा खाना मिलता है दोनों तीनों टाइम, डाइट वाइट भी बहुत अच्छी है।
3: अच्छा, आपका दिनचर्या क्या, सुबह से शाम तक क्या करते हैं?
6: हम सुबह
3: आज कैंप में इधर तो कुछ काम नहीं, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, बाहर तो जाना नहीं होता है, तो सब्जी बनाना नहीं पड़ता है ना। तो आपको पूरा टाइम मिला है, तो सुबह से शाम तक आपका दिनचर्या टाइम बाय टाइम क्या करते हैं? क्योंकि एक जो लक्ष्य रखे उसको गोल अचीव करने के लिए आपका समय को भी उसी हिसाब से ढलना पड़ता है। तो आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं वो बताइए, जो कि हमारा ये कार्यक्रम का माध्यम से जो बच्चे सुन रहे हैं तो उनको एक प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले।
6: हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं क्योंकि हमारा अभी जो यहाँ का ग्राउंड टाइम है वो 6 बजे का है। 5 बजे उठ के फिर रेडी होते हैं और 5 बजे ग्राउंड पे आने के बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग वनिंग करते हैं। हमारा सुबह फिजिकली होता है, बॉल टच हम बहुत कम करते हैं। फिर जाने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा धो के सो जाते हैं। फिर टाइम यहाँ से 10-10:30 के आसपास ब्रेकफास्ट करके सो जाते हैं हम। फिर 3 बजे उठ जाते हैं क्योंकि हमारे जो इवनिंग सेशन है वो 4:30 बजे का है। यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करके फिर हम खेलना शुरू कर देते हैं और हम मैच खेलते हैं शाम को। सब कोई दूसरे गेम्स वाले सर आ जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं।
3: क्या क्या खेल खेलते हैं?
6: वॉलीबॉल खेलते हैं।
3: वॉलीबॉल
6: खेलते
3: हैं, अटेंशन देते हैं, फोकस उसी में। और तीरंदाजी बहुत पर खेल होता होगा।
6: हाँ,
3: क्या क्या खेल देखे आप? भले नहीं खेले लेकिन क्या क्या खेल
6: यहाँ पे? एक तो
3: 15 दिन आप यहाँ पर रुके, तो क्या क्या खेल यहाँ?
6: यहाँ पे 6 गेम्स है, उसमें एक वॉलीबॉल है, तीरंदाजी है, बॉक्सिंग है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है और एथलेटिक्स है।
3: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस कार्यक्रम को सुंदर में साक्षी दृष्टा रूप में हमारा सर देख रहे हैं, इसको पूरा केयर टेकर के जैसे सर ऑफिशियली भी हमारा सर को परिचय लेंगे। सर अपना परिचय दीजिए।
7: मैं वीर सिंह देवड़ा
3: जी सर,
7: शिक्षा विभाग से यहाँ लगा हूँ इस कैंप में।
3: शिक्षा विभाग राजस्थान,
7: राजस्थान शिक्षा विभाग सिरोही से लगाऊँ यहाँ पर इनकी व्यवस्थाओं के लिए। तो सुबह शाम तक इन की व्यवस्थाओं में हम ध्यान रखते हैं।
3: क्या बात?
7: और बच्चे यहाँ 6 प्रकार के खेल खेलते हैं
3: जी सर।
7: तो वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, हैंडबॉल है, तीरंदाजी है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है। तो सभी बच्चे बड़े आनंद ले रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है इनको
3: जी जी।
7: बढ़िया, इनको देखते हमें भी आनंद आ रहा है
3: कि
7: ये राजस्थान का
3: तुरंत नीचे शांतिवन से तलेट से आए,
7: राजस्थान का टैलेंट है। और उम्मीद करते हैं कि ये राजस्थान का नाम रोशन करेंगे आगे जाके। बहुत बढ़िया बच्चे, बढ़िया आनंदित और सब साथ मिल के खेलते हैं, अच्छा भोजन मिलता है इनको और बढ़िया एनर्जी वाला भोजन है। और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था फ्री कर रखी है इनके लिए और बढ़िया बच्चे सब आनंद आ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, कोचेज भी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह इनका व्यायाम सेशन होता है वार्म अप वाले और दौड़ भी करते हैं और शाम को स्किल डेवलपमेंट होती है और गेम भी होते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें भी आकर।
3: तो आप पीटी सर ना स्कूल में क्या करते हैं सर?
7: मैं वैसे हैंडबॉल, टेबल टेनिस और कबड्डी का पीटी हूँ और मेरे भी बच्चे खेलते हैं और अपने सिरोही से यहाँ इस बार 5-6 बच्चों ने भाग लिया है।
3: क्या बात!
7: और ऊपरी खेड़ा की लड़कियाँ हैं जो राजस्थान गोल्ड मेडलिस्ट है इस बार लील की, वो भी यहाँ भाग ले रही है और वो भी यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा महसूस कर रही है।
3: कौन बोले? उपला खेड़ा, ऊपरी खेड़ा,
7: ऊपरी खेड़ा
3: कौन सा?
7: अवरोड तहसील से है और वहाँ की इस बार राजस्थान टॉप रही है बच्ची।
3: क्या बात, उनसे मिलाना जरूर।
7: बिल्कुल आपको मिलेंगे, अभी वो चले गए हैं।
3: धन्यवाद, आपने गाइड किया और खासकर हमें खुशी है कि सिरोही से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी को लेकर आए हैं क्योंकि ये एक मौका मिल रहा है। क्योंकि सिरोही जिला में हमारा 5 जो ब्लॉक है, तो आबरोड ब्लॉक, पिंडड़ा ब्लॉक और रेबदर ब्लॉक और अपना शिवगंज और सिरोही, सबको लेकर हम चलते हैं। क्योंकि रेडियो मधुबन हर ब्लॉक में जाकर, हर तहसील में जाकर उसको गतिविधि देखते। तो आज पोलो ग्राउंड स्थित जो आबूराज से हम आपका कवरेज आपके पास पहुँच रहे, जो कि शाम का सुन पाए, ये सुबह का रिकॉर्डिंग था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और किसी बात को लेकर। बहुत मजा आया कि बच्चों से जो मिले तो उनका जो भाव भावना, जो अंदर में जो बात था, बड़ों को क्या बनना चाहते हैं और क्या कोचिंग कैसे होता है और क्या क्या सुविधा मिलता है, ये गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते, क्योंकि राजस्थान सरकार और खासकर सिरोही जिला कलेक्टर उनको भी धन्यवाद देते, कार्यक्रम बच्चों को उत्साह दिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज बारी बारी सभी खेल का अनुभव और जो अनुभव उनका पास है वो दे रहे हैं और जो पोलो ग्राउंड में हुई थी उस प्रोग्राम आज उसको आगे बढ़ाते हुए जो हैंडबॉल चल रहा है उसका कवरेज आपके पास हम रख रहे हैं बारी बारी और हमारा कोच को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं और एक स्टूडेंट जो प्रशिक्षित स्टूडेंट हैं पोलो ग्राउंड में जो जून 4 तारीख से जून 24 तारीख से जो हुई उसका कवरेज आपके पास रख रहे हैं तो एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको स्वागत करते हैं, अपना परिचय देंगे प्लीज।
5: मेरा नाम नितिन सैनी है, मैं जयपुर से हूँ, मैं गोल नेशनल प्लेयर हूँ, मेडलिस्ट हूँ नेशनल में।
4: अरे वाह, इस तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या मेहनत किए थे?
5: सर हमारे कोचेज बहुत ही अच्छे कोचेज थे, इंटरनेशनल कोचेज थे, हमारे सर प्रवीर दीप सिंह जी और हमारे मनीष राठौड़ दोनों बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया, जो चीज हमें बाहर सीखने को नहीं मिलती वो यहाँ सीखने को मिली हमारे दोनों कोचेज के द्वारा से।
4: अच्छा, तो खासकर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे आए थे तो आपका जो हैंडबॉल में कौन सा जिला से आए थे आपको कुछ याद है?
5: जी सर,
4: जैसे
5: हमारे चूरू से बच्चे थे, चित्तौड़गढ़ से थे, सीकर से थे, जयपुर से थे, भीलवाड़ा से थे, नागौर से थे, ऐसे बीकानेर ऐसे जगह से बच्चे थे।
4: लगभग पूरा राजस्थान का पूरा मैंने प्लेयर आए थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर।
5: हाँ पूरे राजस्थान के पूरे प्लेयर थे।
4: और कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर राजस्थान को मैंने माउंट आबू जो की आबूराज को पसंद करेंगे?
5: जी सर बिल्कुल।
4: क्या खासियत है आबूराज की?
5: हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, आबूराज में हम रहे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ठंड का माहौल देखने को मिला, हमें वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हमें रनिंग कराते थे, हमें पहाड़ों में रनिंग करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे व्यू देखने के मौके मिले।
4: तो जो भी श्रोता हमारा सुन रहे लिसनर्स तो उनको भी कभी मौका मिलेगा तो इस तरह गेम यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आबूराज को जो माउंट आबू को तो उनको भी फायदा मिलेगा। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर जो भूमि माने देवभूमि है तो ये भी एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग करता है। और जो रनिंग मैंने सुबह सुबह देख रहा था सभी बच्चे रनिंग में पूरा मैंने पहाड़ी इलाके में कैसे रनिंग करते वो भी सीखने को मिलता है ना?
5: जी सर, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला वहाँ रनिंग करने में भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह रनिंग कराई हमें, जैसे गौमुख में गए थे, हमें बहुत मजा आया गौमुख से, गौमुख में मजा
4: गौमुख तक पहुँच गए थे। अरे
5: हम गौमुख पे रनिंग करते हुए लेके गए थे हमें पोलो ग्राउंड से और हम मून पॉइंट अर्बुदा माता सभी जगह पे हमें रनिंग करते हुए लेके गए और हमें बहुत अच्छा मजा भी आया वहाँ पे रनिंग करने में।
4: तो खास कर जो हैंडबॉल है तो इसमें कितना बच्चे रहते हैं दोनों साइड में?
5: दोनों साइड में 14 प्लेयर रहते हैं सर।
4: सात सात ऐसे सेवन सेवन
5: सेवन सेवन प्लेयर रहते हैं।
4: अच्छा, कोई बैकअप भी रहता कुछ मान लीजिए किसको थोड़ा चोट आया कि कोई मैंने बैकअप में रहते हैं कोई
5: सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, टोटल प्लेयर 16 रहते हैं वन टीम में और सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं 8 प्लेयर।
4: ओके ओके, और उसके लिए खास क्या ध्यान देना पड़ता है एक प्लेयर को?
5: प्लेयर को सर सबसे ज्यादा तो अपनी इंजरी का ध्यान देना पड़ता है, डाइट का ध्यान देना पड़ता है। कि अपने को कैसे अच्छा है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, अपना बेस्ट देता है, इंजरी ना हो जाए, डाइट अच्छी लेता है, और कोचेज की बात में जैसे कोच बताते हैं वैसा करता है, डिसिप्लिन में रहता है,
4: इंस्ट्रक्शन जो आता है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक अनुशासन में चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि कोच तो हम अगर आप कप्तान है तो कोच का जो दिशा निर्देश मिलता है उस तरफ फॉलो करता है, डाइट हो चाहे हेल्थ हो चाहे एनवायरनमेंट को भी साफ सफाई रखना और खुद भी साफ सफाई रखना और मन और बुद्धि को मेडिटेट करके एकाग्र फोकस करके।
5: हमारे कोच के लिए, हमारे कोच के लिए दीप सिंह हमें इस चीज के लिए अलग से क्लास दिए थे हमें,
4: अच्छा
5: ये
4: क्या बात,
5: वो कैसे कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे क्या रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, बड़ों का आदर करना है, ये चीज हमें अलग से क्लास दी थी। फिर
4: नहीं उससे क्या है ना शक्ति मिलता है और कुछ कमाना अच्छा जब करते हैं बाय करने के लिए सोचते तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच हमें टीम को बल देता है, सबका प्रति सुभावना रहता है, शुद्ध भावना रहता है और कल्याणकारी भावना जब रहता है टीम के लिए तो जरूर टीम मैंने एक इंडिविजुअल नहीं, ये गेम तो जो हैंडबॉल है तो एक मैंने समूह रूप में करना पड़ता है, मैंने जो गेम है सिंगल नहीं है एक टीम है, तो टीम के लिए सुभावना और उनका कल्याणकारी भावना रखेंगे तो जरूर टीम को आगे बल मिलेगा और टीम जरूर सक्सेस होगा, इस तरह आपको कोच से मिलता है। और खासकर आपका जो गांव है कौन सा गांव?
5: सर मैं जयपुर से हूँ।
4: प्रॉपर जयपुर शहर से है?
5: हाँ जी सर।
4: अच्छा जयपुर को तो सभी जानते हैं है ना, सबका जय होने वाला है और पिंक सिटी से प्रसिद्ध है जयपुर में। ऐसे खास कोई विजिटिंग करने के लिए जाएंगे क्या क्या प्लेस है
5: क्या सर
4: जयपुर में पर्यटन स्थल?
5: जयपुर में घूमने की जगह?
4: हाँ जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा
5: जयपुर में? सर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी, हवा महल हमारे, जल महल है हमारे, जंतर मंतर है हमारे, आमेर के किले हैं हमारे,
4: अरे वाह,
5: और हमारे जैसे हमारे बहुत खूबसूरत स्टेडियम भी है जयपुर का स्टेडियम, जहाँ हम लोग
4: स्टेडियम
5: प्रैक्टिस करते हैं,
4: क्या बात है,
5: जहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी होते थे पहले। यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह भी है, यहाँ पे जैसे हमारे एक लेक भी है सांबर लेक
4: जी
5: पड़ती है।
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसलिए सभी पर्यटक को इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरूर एक बार जयपुर जाकर अपना जो विजिटिंग प्लेस है जो साइट सीन है तो जरूर देखें। और ऐसे तो पिंक सिटी का नाम से प्रसिद्ध है और जयपुर बहुत अच्छा प्लेस है जो राजस्थान का मैंने हार्ट है। और हमारा जो भाई जी अपना बात को रख रही है भी कम बात नहीं, अचानक भी आए कोई झिझक नहीं कोई डर नहीं फिर भी अपना बात को रख पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, ऐसे उमंग उत्साह मिलता रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। और खासकर आपका जो जीवन में लक्ष्य रखा है क्या लक्ष्य रखा है, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
5: मुझे इंडिया की तरफ से मेडल लाना है।
4: क्या बात, बहुत अच्छा, आपको इन एडवांस बधाई हो और इंडिया भारत माता के लिए कुछ करने के लिए चाहते हो मेडल लेकर आना है। और बास्केटबॉल आपका फेवरेट है ना, इस गेम को ही ज्यादा पसंद करते हैं?
5: हैंडबॉल,
4: हैंडबॉल को, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को नहीं, सिर्फ हैंडबॉल क्यों?
5: गेम तो सब सारे गेम अच्छे हैं सर
4: जी,
5: पर सर खुद का गेम हमारा हैंडबॉल है।
4: हैंडबॉल है तो इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आप लिए हैंडबॉल को, मैंने कौन आपको प्रभावित किया बा आकर्षण करने के लिए बा इस गेम को आने के लिए, कौन प्रेरणा दिया बा आपको सजेस्ट किया?
5: सर मेरे चाचा रविंद्र सैनी है जो ऐसा ही है, हैंडबॉल इंडियन प्लेयर है वो भी।
4: ओके
5: उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वो भी हमारे कोच प्रियदीप सिंह के अंडर खेले हुए हैं।
4: ओके वेरी गुड, उनको भी धन्यवाद देते हैं इसको आगे रखने के लिए, आपको भी प्रेरणा दी, क्योंकि एक जो घर के कोई भी सदस्य रहता है तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और कुछ गाइडलाइन भी मिल जाता है, मैंने सपोर्टिंग जिसको कहते हैं है ना, तो परिवार हो चाहे कोई भी आपका दोस्त इस तरह फील्ड में है तो आपको सहयोग मिल जाता है जिसका चलते आप भी आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे। और रेडियो मधुबन में आज अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं तो आपको कैसे महसूस हो रहा है?
5: मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे हमने वहाँ को सीखा है वो आपको मैं पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें बहुत ही अच्छी लेवल की कोचिंग दी गई है वहाँ पे माउंट आबू में, हमारे दोनों ही कोच बहुत ही अच्छा हौसला देते रहे हमें, बहुत टाइम टाइम पे बताते रहे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हमें, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिली माउंट आबू में।
4: आज
5: अबू रात में
4: आप तो कोचिंग कोचर से कोचिंग ले रहे, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप कोच बन सकते हैं ना, बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना?
5: नहीं सर जैसे हम उनके लेवल जितने किसी को नहीं सिखा पाएंगे किसी को, जितना उन लोगों ने हमें सिखाया होता हम किसी को नहीं बता पाएंगे।
4: अच्छा ऐसे, उनके पास बहुत अनुभव है मैंने एक्सपीरियंस।
5: हाँ हाँ बहुत एक्सपीरियंस है सर उनके पास, वो खुद हमारे हैंड बॉल जैसे हमारे प्रीति पीसी सर हैं, खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, बहुत बार इंटरनेशनल खेला है उन्होंने, और वो बहुत इंटरनेशनल कोचेज भी हैं, दोनों हमारे कोच हैं जो इंटरनेशनल कोचेज है।
4: इससे पता चलता है बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, और वो जैसे जितना भी हो तो उनका हम पद का धूली जैसे है उनसे बराबर नहीं कर पाएंगे, बड़ों को सम्मान देते हैं, और हमारा कोच तो कोच होते हैं तो उनका बराबरी नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम भी कभी भी माने चांस मिलेगा तो बड़े होने के बाद तो आप भी कोचर बन सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे हो जा सकते हैं तो पीछे जा सकते हैं, उनका बराबर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लक्ष्य रखेंगे तो कोच तो बन सकते हैं, और वो प्लेयर अच्छा अपना भारत के लिए नाम रोशन करने के लिए कुछ मेडल लेकर आने के लिए जो लक्ष्य रखा है जरूर आप कामयाब होंगे, और एक टीम वर्क जो होता है तो आप ऐसे सिंगल सभी का सहयोग से खेल होता है, तो जो हैंडबॉल में खासकर क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है
5: सर? जैसे हमारे तो पहले तो ये है कि सारी टीम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे हमारे जो खेलता है उसको अच्छे से टीम चला के चलना पड़ता है, हमें बोल के खेलना पड़ता है हम करेंगे हम जीतेंगे, एकता में शक्ति है, हम ये सोच के चलते एकता में शक्ति है, हमारी टीम को कोई नहीं छोड़ सकता।
4: जी बहुत अच्छा, और अभी कौन सा क्लास में पढ़ाई चल रहा है?
5: जी सर अभी मैं 12th क्लास में हूँ।
4: 12th, तो आफ्टर 12th क्या करेंगे
5: सर? अभी तो जैसे मैं अभी हैंडबॉल को कंटिन्यू करते हुए 12th क्लास को कर रहा हूँ अभी।
4: हाँ उस तरफ भी कॉलेज भी करेंगे, नहीं तो कोई भी अच्छा यदि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं ऐसे।
5: जी सर,
4: जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन जाते हैं ना, पढ़ाई का साथ साथ ये तो खेल तो साइड है, कोई कोई पूरा खेल में ही पूरा जीवन दे देते हैं, और कोई कोई साइड बाय साइड रखते हैं, अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई करेंगे तो खेल को साथ तो रखना ही है।
5: जी सर खेल साथ में रखेंगे।
4: बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपका जो व्यू, और इसका श्रेय किसको देना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहते हैं आप जो इतना तक पहुंचे?
5: ये सर मैं धन्यवाद मेरे चाचा रविंद्र सैनी को और मेरे कोच दीप सिंह दोनों को देना चाहता हूँ।
4: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर अपने कार्यक्रम को सजाया, और आपका जो बड़े प्रेरणा का स्रोत दोनों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनका बदलो तो आज यहाँ तक पहुंचे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका बदलो आशीर्वाद से और गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

0: वर्षों का ये कारवां।
1: नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारे सामने ऐसी नारी शक्ति विराजमान है जिनका नाम है अयोध्या शर्मा। आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 62 वर्ष है और आपने पढ़ाई बीए की हुई है और आप लेखिका है, संगीत का शौक रखती है, डांस भी आप बहुत अच्छा कर लेती है, आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई सबका शौक है और किसी जमाने में आप भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग भी लेते थे और इस कंपटीशन को आप जीत करके फर्स्ट भी आते थे। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वैसे हम इनको हाउस मेकर कह सकते हैं कि एक गृहिणी है, लेकिन साथ ही साथ इतनी प्रतिभाओं की धनी है। तो ऐसी नारी शक्ति से आज हम बातचीत करेंगे, आपसे मिलवाएंगे और इनका अनुभव भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: जी। बहुत अच्छा लगा, देखिए आप आज स्टूडियो में पधारे हैं
2: जी,
1: आपके अनुभव शेयर करने के लिए। और आपके चेहरे की स्माइल देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा इसी तरह खुश मिजाज रहती है
2: जी। मुस्कुराती रहती हूँ मैं सबको देखकर, ताकि मेरे को देख के और भी लोग मुस्कुराए, क्योंकि सबके दिलों में कितनी तरह की उलझनें रहती है, लोग मुस्कुराना ही भूल गए, लेकिन अपन एक स्माइल देंगे तो उधर से भी एक स्माइल तो आएगी, ये मेरी कोशिश रहती है।
1: क्या बात है बहुत अच्छी कोशिश है कि खुश रहना और खुशियां बांटना।
2: दुखों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम मुस्कुराने के तो पैसे नहीं लगते ना
1: जी।
2: और नहीं मुस्कुराएंगे तो भी दुख तो कटने वाला नहीं है, वो तो चलेगा, तो फिर क्यों नहीं अपन मुस्कुराए, क्यों अपने अपने दिल की वो चीज लोगों को क्यों बताए कि मैं दुखी हूँ के क्या हूँ, मुस्कुराओ ना, इसमें क्या जाता है, हमेशा मुस्कुराते रहो
1: बहुत ही सुंदर और अच्छी सोच है आप कि अगर दुख है तो ऐसे भागने वाले नहीं है
2: जी,
1: तो चेहरे पर लाने से कोई फायदा भी नहीं है
2: जी,
1: इसलिए मुस्कुराना जरूरी है। बहुत सुंदर आपने बात कही है और कहते ना कि जो हकीकत में ऐसा जीवन जीते वो ही बोल पाते हैं
2: जी।
1: तो चलिए, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
2: अभी घर पर ही हूँ, बस यही लेखन कार्य है और काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ। अभी मैं 4-5 महीने से काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ, उसमें हमारी सभी बहनें जुड़ी हुई है, ऑनलाइन काव्य गोष्ठी चलती है। हमारी अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना शर्मा है, जो अपने आबू रोड में ही रहती है, आबू रोड की अध्यक्ष वो है। तो महीने के लास्ट तारीख को हमारी एक काव्य गोष्ठी होती है, उसमें सभी भी स्टेटों के जितने भी जो लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं, लेखन कार्य करते हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, कोई भी कुछ अपनी रचना बोल सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, अपनी स्वरचित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्वरचित नहीं है या किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है या आपके मन को मतलब मनोबल बढ़ाती है तो वो भी आप उसमें बोल सकते हो। ये पूरी छुट्टी है उसमें, किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है और आपका मनोबल बढ़ाती है तो आप औरों को भी सुनाकर प्रेरणा दे सकते हो।
1: अच्छा, तो ये कोई आप पर्सनल समाज मिलकर के कर रहे हैं या फिर सभी के लिए?
2: सभी के लिए है ये गांधीधाम, बड़ोदरा, ये आबू रोड, कितने शहर जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और भी लोगों को जोड़ो जो संगीत पसंद करते हैं और किसी भी तरह का मतलब गा सकते हैं, सुना सकते हैं, अच्छी बातें अच्छे विचार, आजकल इसी की ज़रूरत है लोगों के लिए
1: जी,
2: क्योंकि सब लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है।
1: तो इसमें महिलाएं जुड़ती है या पुरुष लोग
2: भी जुड़ते हैं? नहीं, पुरुष भी, बच्चे भी, जो कोई भी हो गा सकते हैं
1: जी। जी
2: जी,
1: और इससे मतलब आप किस तरह इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या सिस्टम रहता है इसका?
2: इसका सिस्टम ये है कि महीने की जो एक लास्ट तारीख होती है उसको चाहे कोई सा भी वार पड़े, संडे पड़े तो बहुत ही अच्छा होता है, सभी के लिए सुविधा रहती है। अगर संडे नहीं, आपके सैटरडे पड़ा था, शनिवार था 30 तारीख का, तो हुई मीटिंग तो वो एक लिंक देते हैं, उस लिंक से जुड़ना पड़ता है, उस लिंक पे सभी की फ़ोटोएं आ जाती है और सभी एक दूसरों का वेलकम करते हैं। फिर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है और जैसे जिसका नाम बोलता है और जिसको जो कविता जो भी कुछ बोलना है अपना कार्यक्रम, उसकी 2 लाइनें पहले एक दिन पहले लिख के डालनी होती है व्हाट्सएप पे कि मैं इस विषय पर ये बोलूँगी, तो उनको पता रहता है तो वो आगे होके बोलते हैं आप सुनाइए अपनी रचना, इस तरह से होता है।
1: टाइमिंग क्या रहता है?
2: टाइमिंग जितने ज़्यादा लोग उतना ही टाइम, अगर वो किसी काम के वजह से बाहर गए हुए हैं, नहीं जुड़ पा रहे, उस दिन कहीं गए हैं, सबको घर गृहस्थी में काम रहता है तो नहीं हो पाता है। जैसे जितने लोग हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो डेढ़ दो घंटा भी हो जाता है, और कम लोग आए हैं आज तो कम टाइम लगता है, एक घंटे।
1: तो ये रात का समय रहता है, दिन का समय रहता है?
2: शाम का 5:30।
1: अच्छा,
2: शाम का टाइम।
1: फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
2: इससे अभी देख रहे हैं समय, फिर जो सबसे अच्छा गाते हैं करते हैं उनको अलग से छांट कर और फिर उनका वहाँ नाम वगैरह देंगे, सम्मानित करेंगे। दिल्ली में इसका बड़ा वो है कार्यालय, वहाँ सभी नाम वाम जाएंगे। अभी देख रहे हैं कौन अच्छा गाते हैं करते हैं, फिर उनको सम्मान करेंगे।
1: दिल्ली में?
2: दिल्ली में।
1: तो फिर आप लोग भी जाते हो या फिर दिल्ली में आपकी टीम है वो सम्मान करती है?
2: दिल्ली बुलाया जाएगा बाद में, जब कभी भी उनका प्रोग्राम होगा बड़ा, अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है।
1: अच्छा, तो कितना समय हुआ है ये?
2: ये अभी 5-6 महीने हुए हैं।
1: अच्छा, तो हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी मान लीजिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं?
2: जरूर जरूर।
1: अच्छा,
2: तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी गा सकते हैं।
1: तिया हर कुछ भी सुना रहा है और आप उसको पसंद करते हैं या सेलेक्टेड गीत कविताएं होते हैं?
2: नहीं, पहले उनका वो कराते हैं, अगर अच्छा गाया है तो उनको सराहना करते हैं कि भाई अच्छा गाया है, आगे और भी अच्छा गाओगे आप, प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे शुरुआत होती है, चलता है थोड़ा बहुत, अगर कोई वो है तो उसमें सुधार कराने का बोल देते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा गाइए, अच्छे उससे बोलिए, तो सभी को लेते हैं।
1: अच्छा,
2: ताकि सबका मनोबल बढ़े कि भाई अब की बार थोड़ा ढंग से नहीं गा पाए तो अगली बार थोड़ा इसमें ये सुधार करना, फिर जब फाइनल होगा तब उसमें फिर अच्छे लोगों को छांटेंगे।
1: हाँ, वो फिर छटनी हो जाती है।
2: धीरे-धीरे छटनी हो जाती है, अभी तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है और कोई भी भाग ले सकता है।
1: अच्छा, इसमें कोई फीस वगैरह?
2: नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री एकदम।
1: जी जी जी।
2: हाँ,
1: ग्रुप से जुड़ना होता है, क्या करना होता है?
2: लिंक देते हैं, वो लिंक पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस, आधार कार्ड, सब तरह के वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी करनी पड़ती है।
1: ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, ताकि किसी को बड़ा मंच मिले ना मिले
2: जी,
1: यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है
2: जी,
1: तो उनका सपना भी पूरा होता है
2: जी। एक बात बताऊं कि बचपन से मुझे कोई भी अच्छी चीज हो ना, कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिलती है तो उसको आके मैं कॉपी में उतार लिया करती थी। ऐसे करते करते मेरी पूरी डायरी भर गई। फिर मैंने सोचा क्या होगा इसका, एक दिन क्या करेंगे, कभी इच्छा होती पढ़ लेते हैं, मन खुश हो जाता है कोई अच्छी रचना पढ़कर। इस तरह से चलता रहा और अब देखो बाबा की कृपा, ये कार्यक्रम शुरू हुआ काव्य गोष्ठी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रोग्राम होगा। तो इसमें अभी पूरी डायरी मेरे काम आ रही है, और इसमें ऐसा है कि ये नहीं कि बिना देखे आप गाओ, कागज पर देखकर डायरी में भी गा सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये, अब देखो एज का भी वो है, थोड़ा भूल भी जाते हैं अपन गाते गाते, प्रैक्टिस है नहीं
1: जी।
2: अचानक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ तो आप कागज में देख के, किताब में देख के गा सकते हो। तो वो मैंने जो इतना सारा लेखन कार्य इकट्ठा किया लिख लिख के, और वो मेरे काम आ रहा है, एक से एक गीत गाकर और सब प्रेरणादायक ऐसे गाती हूँ। हमेशा वाहवाही होती है, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, सबका नंबर आता है, अभी 4-5 बार सरस्वती वंदना मैंने गई।
1: अच्छा, इसमें कोई थीम देते हैं आप या हर प्रकार के गा सकते हैं, जैसे राजस्थानी, हिंदी?
2: हर प्रकार के, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा एज वाले हैं वो भजन गाते हैं तो भजन भी गा सकते हैं, किसी भी भगवान का हो, वो भोले बाबा का हो, गणेश जी का हो, किसी का भी हो,
1: जिसको जो आता है वो सुना सकता है।
2: संगीत से जुड़ा होना चाहिए, संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। संगीत में वो शक्ति है कि कितना ही बीमार आदमी हो उसकी आप कितनी ही दवा सब कुछ कर लो, देखभाल कर लो, जब तक अच्छे विचार और संगीत उनको नहीं सुना दोगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, एक डॉक्टर तो होता है देखता है ऐसा हो गया नहीं है, टाइम लगेगा वो है, और एकदम पॉजिटिव बोलता कुछ नहीं अभी होते हो आप रेडी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये विचारों का ही वो है, तो एकदम पेशेंट में स्टेमिना आ जाती है।
1: जी जी बिल्कुल। हाँ, आपने सही कहा है, और संगीत के बहुत ही अच्छी आपने शायरी बोल के सुनाई है कि रोगी को वास्तव में संगीत सुना दिया जाए तो आदत तो उसी समय ठीक हो जाएगा।
2: कम से कम हर स्वस्थ व्यक्ति को भी आधा एक घंटे रोज संगीत सुनना चाहिए
1: जी।
2: मैं भी टीवी पे गाने सुनती हूँ मस्ती पर, पुराने गाने फिल्मों के।
1: चलिए तो हम आपसे दो लाइन जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, इसलिए कहीं भी जाइएगा नहीं। अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके अनुभव अभी भी सुनने बहुत सारे बाकी है। आइए सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुणे लौट करके आ रहे हैं। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं कि किस तरह इनके पिताजी यात्रा निकालते थे और ट्रेन में ये लोग यात्रा करते थे। तीन तीन चार चार महीना ट्रेन में ही इनका गुजरता था। तो अयोध्या जी, फिर आप कह रहे थे कि बच्चे का जन्म भी ट्रेन में हो गया
2: जी।
1: तो ऐसे बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एज वर्ग होता था या फिर इसमें कुछ कंडीशन होती थी?
2: नहीं, हर एज होती थी। यहाँ तक कि गांव के लोग तो ये मानते हैं जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है कि ये हमारे देवता हैं, पूर्वज हैं, उनको भी यात्रा करानी पड़ती है। आप मेरे कभी अनुभव सुनना, साक्षात ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो कहते भाई हमारे पितरों को हमको यात्रा लेके चलनी है। कहते हैं रोंगट थोड़े खड़े हो, तो बोले पितरों को यात्रा करानी है तो उनका कैसे? तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं था, उन्होंने कहा वो तो देवता समान है, उनके क्या पैसे लेने, ले चलो यात्रा में उनको। लेकिन वहीं स्टेशन पे जैसे वो आए ना, तो उनके शरीर में वो आ गए और उनका मेरी जगह कहाँ है, मेरा टिकट लो तब मैं बैठूंगा गाड़ी में। सबके टिकट हैं, बिना टिकट के मैं नहीं चलूंगा। फिर 125 उस जमाने में चलता था, 1 रुपया और 54, आपने देखी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल,
2: अभी भी रखे हैं मेरे पास 25 पैसे
1: जी। तो हमने भी कर रखा है स्टोर
2: जी। तो 125 रुपये का टिकट लिया उनका, और उनकी इतनी सी जगह छोड़ के और फिर बैठा करते थे। एक बार कोई उनकी जगह खिसक गया, बैठ गया, ध्यान नहीं रहता है, तो फटाक से उनके घर के सदस्य के शरीर में आके बोला कि मेरी जगह छोड़ के बैठा करो। और डिलीवरी हुई, डेथ हुई, कितने ही लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहाँ जाना है, किसको वो करना है, क्या करना है। फिर स्टेशन मास्टर जी से सब कुछ पूछते थे कैसे क्या करना है। फिर उनका अंतिम संस्कार भी होता था काशी में, उज्जैन में, कई जगह 8-10 डेथें भी हुई थी। बहुत बहुत बुजुर्ग लोगों को ले गए। अब आते थे टिकट और उस टाइम इतने बिजी होते थे, कहते भैया मेरे 8 टिकट काटना, मेरे 5 काटना। तो हम सब लोग होते थे, जगह जगह एजेंट बैठे हुए थे, सबको रसीद बुक दे रखी थी, पैसे ले लेते थे और रसीद काट के, मेरे 5 सदस्य है और ये एज है, अब वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सा है। और एज का तो आजकल कोई भी नहीं है
1: जी,
2: किसी भी एज में व्यक्ति कभी भी जा सकता है
1: जी।
2: एज का वो नहीं है कि इसी एज में व्यक्ति जाएगा करेगा।
1: तो जैसे आप 8 भाई बहनों इस तरह हर साल यात्रा पर 3-4 महीना बाहर रहते थे
2: जी,
1: तो स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी?
2: मिल जाती थी उस जमाने में।
1: अच्छा।
2: बहुत खुश होती थी टीचर, बहुत ही खुश होती थी, जाओ यात्रा में जाओ आराम से, और भगवान की दया से पास हो ही जाते थे, बस सेकंड एंड थर्ड या कभी कभी फर्स्ट बॉकम इस तरह से कर करके और ग्रेजुएशन किया।
1: तो हर साल वो स्थान पर जाते थे या चेंज करते रहते थे?
2: चेंज भी होता रहता था, जैसे ये गंगा सागर वगैरह जाते थे तो थोड़ा चेंज होता था कभी, और तीनों धाम की जो यात्रा है उसमें तो वही सब आते थे, रामेश्वरम, जगदीश, जगन्नाथपुरी, ये सारे सब माउंट आबू। तो कितनी बार आके गई हूँ शादी में, रेलवे स्टेशन पे खूब टोस्ट खारी खाई है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट स्टेशन मेरा आबू रोड ही होगा।
1: शादी करके आप आबू रोड ही आ जाएंगे।
2: आबू रोड आ जाएंगे
1: जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि आपको कढ़ाई सिलाई बुनाई सभी का शौक है
2: जी,
1: तो ये किनसे सीखा आपने?
2: ये घर में ही, आठ पड़ोस की औरतें होती थी सभी, जैसे स्वेटर बुनना है, और स्कूल में भी मेरे वो होम साइंस थी तो कुकिंग करना मुझे बहुत शौक है, गुलाब जामुन वगैरह सब अपने हाथों से बनाना करना, गाजर का हलवा। तो इसका भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में आता था दाल के पकौड़े बनाने, गाजर का हलवा बनाना, फिर नंबर मिलते थे, सब मैडम वगैरह टेस्ट करती थी कितने नंबर आए कितने क्या। होम साइंस थी मेरे पास सब्जेक्ट,
1: होम साइंस में तो
2: सभी आ जाते
1: ही
2: हैं, कपड़े धोना, किस तरह से नील देना, टीना पोल देना, कपड़े के दाग कैसे छुड़ाना, सब चीज की एग्जाम होती थी।
1: तो आपके लास्ट तक आपने बीए फाइनल किया था तब तक होम साइंस थी या फिर 11-12 तक?
2: नहीं, 11-12 तक, फिर मेरे थे हिंदी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स बीए तक।
1: अच्छा।
2: हाँ, 12वीं से जो सब्जेक्ट होते हैं ना तीन
1: जी,
2: तो हिंदी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र।
1: हाँ, उसके बाद आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया?
2: चेंज कर ली
1: जी।
2: फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई 21 साल की उम्र में, 21-22 में लगी जब शादी हो गई।
1: जी जी, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा परिवार मिलकर के आप यात्रा पर जाते थे, तो 3-4 महीना घर बंद रहता था।
2: घर बंद रहता था।

0: तो जाते हैं कहीं तो, लेकिन मेरा एक सिद्धांत क्या है कि आपने अगर घर छोड़ा कहीं भी जा रहे हो तो उस परमात्मा पे विश्वास रखो कि बस मैं गया, अब घर तेरा है, तेरे को देखना है। अगर आप इस सिद्धांत पे चलते हो, क्योंकि जो अपनी किस्मत में है वो तो कहीं जा नहीं सकता, और जो किस्मत में नहीं है वो अगर घर में भी तुम रह रहे हो तो वो तो जाएगा ही जाएगा किसी भी तरह से। तो ईश्वर में पूरा भरोसा। ट्रेन में बैठने के बाद में मैं घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, जहाँ गए हो वहाँ का और एंजॉय खराब
1: जी
0: हो,
1: जी बिल्कुल
0: इतना पैसा खर्च किया है, अभी जाके आए हैं हम वहाँ शिमला, तो बिल्कुल मैं तो घर की याद ही नहीं आती। जाके वहाँ सब सारा सब देख कर आराम से घर में आते हैं, और भगवान की कृपा है सब कुछ पहले जैसा ही सब कुछ मिलता है।
1: जी जी
0: तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, अगर वो अपने ऊपर कृपा कर रखी है तो किसी की जरूरत नहीं है, हर एक की जगह 1000 को लाके खड़ा कर देगा, और उसकी वो नहीं है कृपा तो सारा खेल बिगाड़ देगा। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है प्रभु में विश्वास करना
1: जी।
0: भगवान पे।
1: तो जैसे आप बता रहे थे कि 3-4 महीना यात्रा पर जाते, आप 8 भाई बहनों, कभी किसी की शादी भी हुई होगी, तो यात्रा के दौरान अगर शादी करनी होती तो फिर कैसे क्या करता है?
0: नहीं, उस हिसाब से करते थे शादी। अब जैसे भाभियाँ वगैरह आ गई तो उनको भी लेके जाते थे। मेरी भाभी 1.25 महीना हुआ था, डिलीवरी थी, भतीजा हुआ 1.25 महीने की थी, और मेरे पिताजी की हमेशा जिद रहती थी कि सारे घर के चलो। मेरा भी यही नारा है हमारे घर में, पता कहीं भी जा। अब मेरे बच्चों का भी यही नारा हो गया। अभी जैसे हिल स्टेशन शिमला जाना था, पहले हम मंसूरी गए गई बार, तो एकदम माउंट आबू जैसे ये सारा राउंड राउंड रास्ता। तो अब थोड़ी एज वेज हो गई तो थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ दोनों तीनों जने, पापा और मैं घर पे रह जाएंगे। तो इसने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। तो मैंने कहा दोनों जने का खाना तो मैं बना लूंगी, नहीं है तो टिफिन मंगा लूंगी, सारी व्यवस्था है और सब काम वाली आती है सारा काम करने वाली। तो मैंने कहा, बोले नहीं जाएंगे। तो उस टाइम तो मतलब कि कम रेट में थे रूम वगैरह और ये सारा सब, मैंने मना कर दिया तो इसने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर 10-15 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने कहा तुम नहीं जा रहे क्या? बोले नहीं आप नहीं चल रहे तो हम भी नहीं चल रहे। फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं मेरे जैसे। तो मैंने कहा कि लो चलो चलते हैं, होगा सो देखा जाएगा, जो भी तबीयत बिगड़ेगी करेगी कुछ भी होगा। नहीं बोले आपको लेके इस तरह से चलूंगा, तबीयत बिगड़ेगी कैसे? मसूरी पे तो सुविधा नहीं थी, और शिमला में क्या ट्रेन जाती पहाड़ियों के बीच में होके, 103 तो गुफाई थी।
1: अच्छा।
0: कभी आप गए हो शिमला में? देख के आना, बहुत गजब का नज़ारा है। 103 तो गुफाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, अंधेरा गुप, सब लोग ट्रेन वाले चिल्लाए। और वो ट्रेन जिसमें आराधना पिक्चर थी ना, जिसमें शर्मिला टैगोर थी, गाड़ी में बैठी बुक पढ़ती है और राजेश खन्ना नीचे रोड पे चलते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उस वाली ट्रेन में हम बैठे जो शूटिंग हुई थी। और वो ट्रेन चली, इतना सा भी नहीं लगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे कब चढ़ गए, और इतना मजा, और चारों तरफ इतने फूल प्रकृति के, अपन तो लगाते हैं एक पेड़ पौधा भी तो उसका कितना संभालते हैं कितना करते हैं, तब कोई फलता है या फूल देता है, प्राकृतिक सौंदर्य इतना, हजारों फूल बेल लताएं, इतना सब कुछ नज़ारा देखने में, पूरा कब समय भी बीत गया पता ही नहीं चला, 4-5 दिन तक वहाँ शिमला जाके।
1: जी जी तो जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरा परिवार जाते थे
0: जी
1: ट्रेन से, और आपने कुछ बताया था कि आपके भाभी को भी
0: डिलीवरी हुई थी उस टाइम
1: ट्रेन में।
0: जी नहीं, घर पे हो गई थी डिलीवरी, 1.25 महीने की हो चुकी थी। हमारे 1.25 महीने तक सूतक मानते हैं कि 1.25 महीने तक चूल्हे परिंडे कहीं लग नहीं सकते, पवित्र नहीं मानते। 1.25 महीने के बाद जब जलवा हो जाता है, पूजा हो जाती, कुआ पूजन होता है हमारे, फंक्शन होता है, वो फंक्शन हो जाता है, उसके बाद वो कहीं भी जा सकती करती। तो मेरी मम्मी ने मना किया कि भाई बहू को नहीं लेके चलेंगे, बच्चा बहुत छोटा है, रोज ये गंगाओं में नहाएगी, सब जगह गंगा जी में नहाना पड़ता है, तो बच्चा छोटा है, दूध पीता है माँ का, तो बीमार बीमार हो। नहीं बोले भगवान है सब कुछ, सब बात वो भगवान पे छोड़ते थे और उनके सब काम पूरे भी होते थे। ऐसे ही मैं भी भगवान पे छोड़ती हूँ, मेरे सब काम पूरे होते हैं, मैं जो कह देती हूँ ना वो बात होती है। फिर लेके गए उसको, ले गए, अब पिताजी की जिद के आ गए, वो सभी गंगाओं में नहाई करी, तो मेरे भतीजे को निमोनिया हो गया था, निमोनिया हो गया, छोटे बच्चों को, 1.25 महीने का बच्चा लड़का, वो भी
1: कितना नाजुक।
0: हाँ कितना नाजुक,
1: चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो,
0: वही बराबर है वो तो जी
1: जी।
0: बहुत छोटा था, बहुत मना किया मेरी माँ ने कि देखो मत लेके चलो, हर साल चलते हैं, अगले साल चलेंगे, थोड़ा बड़ा होने दो। पर उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि परिवार पूरा ही चले, लेके गए तो भाभी हर गंगाओं में नहाती थी, तो उसको भी थोड़ा बहुत तो नहलाते ही थे गंगा का पानी।

0: तो नमोनिया हो गया बहुत बड़ा और इतना सीरियस हो गया कि पूछो मत। तो मेरे भाई वगैरह डॉक्टरों को दिखाए करे वो, मेरे पिताजी तो बस अपनी शक्ति को मानते थे। 51 पंडित बिठाए और पता नहीं कौन सी पूजा करवाई, वो कोई नाम है वो पूजा उन्होंने कराई।
1: वो भी ट्रेन में ही?
0: नहीं, वो मतलब ट्रेन से नीचे उतर के ग्राउंड में।
1: हाँ, सफर में ही।
0: हाँ, सफर में, सफर में।
1: और कहाँ से लाए होंगे 51 पंडित?
0: ट्रेन में ही मिल गए।
1: अच्छा।
0: हाँ, ट्रेन में ही पूरा जनकपुर और ये जयपुर में कौन सी जगह है, वो साधु महात्मा संत, ये अजमेर के पास है सलीमाबाद, वहाँ के सर्वेश्वर जी महाराज, जनकपुर, अयोध्या, सब जगह
1: जी, जी, जी। चलिए तो
0: और फिर हम... ठीक हो गया वो।
1: अच्छा,
0: पूजा होते ही ठीक हो गया मेरा भतीजा।
1: चलिए, बहुत सुंदर। तो आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: महान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: बहु रानी और सास माँ होती है, बहु रानी और सास माँ होती है। नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है, नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ है। इनके काफी अनुभव सुने हैं कि किस तरह हर साल 3-4 महीना आप सफर में ट्रेन में ही रहते थे, बच्चे का जन्म भी ट्रेन में, तो बुजुर्गों की मृत्यु भी ट्रेन में, और कुछ हो गया है तो पूजा पाठ वगैरह भी सब ट्रेन में, मतलब आधी लाइफ इनके ट्रेन में ही गई। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, और भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपके पिताजी को अवार्ड भी मिला।
2: जी, हमेशा हर साल यात्राएं लेके जाते थे तो उनको बॉम्बे रेलवे से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। ट्रेन के पास पूरे ट्रेन बनी हुई है सर्टिफिकेट के ऊपर, और उनके विचार लिखे हुए हैं कि एक आदमी ऐसे छोटे गांव से, राणोली गांव दौसा के पास, 4 क्लास पढ़े हुए उस जमाने में, लेकिन आज के PhD के सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा को मात दे सकते थे। इतना ज्ञान, इतना अनुभव उनको था। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है पढ़ाई से भी ज्यादा होता है, किताबी ज्ञान कम होता है। किताबें पढ़ के डिग्रियां चाहे कोई कितना ले लो, अगर वो अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर उनकी पढ़ाई किस काम की है।
1: जी।
2: तो व्यवहारिक ज्ञान होना जीवन में बहुत ज्यादा है। तो आज उन्होंने देखो 4 क्लास पढ़े हुए थे, 4th क्लास की परीक्षा भी, जैसे आज हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो अपने गांव से दूसरे शहर में जाते हैं, सेंटर आता है, तो ऐसे ही उस जमाने में राणोली एक छोटा सा गांव है दौसा के पास, उसमें हमारे आमों के बगीचे वगैरह हैं, दादाजी ने लगा रखे हैं और ये सब। तो मेरे पिताजी 4th क्लास का एग्जाम देने के लिए दौसा आए थे।
1: अच्छा।
2: उस जमाने में 4th क्लास के, और हम इतने पढ़ गए लिख गए, सारे बहन भाई सबको मात कर देते थे, हिसाब किताब सब में। इतने लोगों को यात्रा कराना ऐसे ही है क्या? आज अपना एक परिवार नहीं संभाल सकते,
1: बिल्कुल,
2: और वो भी एक बेटा एक बेटी आज के जमाने में, और आज की जनता तो केवल एक बच्चे पे आ रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब हमारे देख लो, गुड़िया है एक, 5 साल की हो गई मेरी पोती, बेटे वो बिल्कुल ना बोलते हैं, बहुत है एक ही, और हम 8 बहन भाई थे। तो सोचो उन लोगों की, उन्होंने कैसे, और अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया, हमको कोई शिकायत नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हो स्वर्ग में हो, और हर जन्म में हमको वही परिवार मिले, वही माता पिता मिले। इतना सुख उन्होंने हमको अच्छा दिया कि कभी ऐसे, और इतना प्रेम होता था। छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, वो बड़ा हो रहा है तो उसको पहना दिए, उसको पहना दिए। आजकल तो एक बार पहने फेंको हटाओ, और वो भी ब्रांडेड कपड़े होने से मैडम कुछ नहीं होता है।
1: जी,
2: ब्रांडेड सोच होनी चाहिए। कपड़े खराब हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए, चोरी चकोरी से, गलत कार्य से शर्म करनी चाहिए। अपना घर कैसा भी हो, कुछ भी हो, मंदिर है वो, झोंपड़ी हो चाहे कुछ, तो इस तरह के लोग आजकल शो ज्यादा देखते हैं, असलियत को वो नहीं पहचानते।
1: जी जी जी, नकली का जमाना है,
2: नकली का जमाना, दिखावे का।
1: जी, तो फिर आपको शिक्षा संस्कार भी माता पिता से ट्रेन में ही मिलते थे?
2: ट्रेन में मिले, घर पे भी मिलते थे, हर बात पे रोका टोकी करते थे, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ में, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, कोई आंख में कर रहा है, तो हमको ऐसे ऐसे शेर शायरियां चौपाइयां ये सब करके बताते थे। नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर। इस तरह से कह के समझाते थे, और इतना परिपक्व कर दिया हमको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो भी वो 10 बार एक दो काम कर लेंगे, फिर हाथ धोने की आदत, एक दो काम करे फिर इतनी बार हाथ धोते हैं करते हैं। और अब मेरी वही आदत हो गई, परिवार में मैं कुछ देखती हूँ करती हूँ तो तुरंत टोकती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो बच्चों, ऐसा नहीं करना बेटा, बैठे बैठे कोई जैसे यूं कर रहा है, हाथ झूठे हो गए ना, तो बोले अब काम क्या करना है जो हाथ झूठे हो गए, नहीं मुंह में हाथ नहीं देने का। परिवार के लिए भी मैं बहुत रोका टोकी करती हूँ, ये मेरी थोड़ी गलत आदत है, सही है जो भी आप समझो। इतना
1: आपका समय अलग था, लेकिन अभी का समय अलग है, अभी थोड़ी रोका टोकी मतलब पसंद नहीं करते आज की जनरेशन।
2: लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चों की पूरे समाज में तारीफ है और मेरे पियर वाले सब मेरे बच्चों को इतना मेरे पियर जाते हैं सुबह उठते हैं मामाओं को प्रणाम करना मामी जी को प्रणाम करना सब सब कहते हैं अयोध्या भाई आपके बच्चे देखो कितने संस्कारिक है मतलब ता से बच्चे की पहचान नहीं होनी चाहिए कि भाई उनका पुत्र है ये पुत्र से पिता की पहचान होनी चाहिए अच्छा आप उनके बच्चे हो तो बच्चों से हमारी पहचान है बच्चों को भले ही इनको ऐसा लगा हो कभी मेरी बात का बुरा भी नहीं माना है लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे पसंद है तो पूरा आबू रोड कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे जिन्होंने तुमको संस्कार दिए तो ये संस्कार पहले मैं लेके आई हूँ अपने घर से गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और गृहिणी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है ये गृहिणी के ऊपर डिपेंड है आदमी तो हमेशा बाहर रहता है जॉब पे लेकिन वो चाहे तो फिर बच्चे कहना मानने वाले भी होने चाहिए थे मैंने ऐसा जीवन जिया शादी के बाद अपना काम किया पहले तो इतने नौकर चाकर भी नहीं होते थे सब झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करते थे हमारे जमाने में सारा सब कुछ कर करा के दोपहर में बच्चों को आते ही स्कूल से सिखाया खाना खा के कपड़े चेंज करके और अपना बैग लेके पहले होमवर्क पूरा करो और फिर दोपहर में सो जाओ ना मैं कहीं जाती थी इधर उधर मोहल्ले में औरतों के पास कोई ऐसी औरत हो जिसके पास बैठे शिक्षा मिले तो मेरा तो अलग ही जीने का तरीका है आपको पता है मेरे को तेरी मेरी ये फालतू का समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर अपन पुण्य भी नहीं कमा सकते हैं तो क्यों किसी को अपना घर संभाल के ही बता दें तो वही सबसे बड़ी बात है मैं तो सबसे ही कहती हूँ मेरे किसी की नहीं सुननी मेरे तो बस मेरे घर की तारीफ हो जाए कि अच्छे से घर चल रहा है वही सबसे बड़ी बात है
1: बहुत सुंदर विचार है आपके और वो शिक्षा संस्कार जो बचपन से मिलते हैं उसका तो प्रभाव पूरे लाइफ टाइम पड़ता ही है और हर माँ की इच्छा रहती है कि अगर अच्छे शिक्षा संस्कार हमें मिले तो हम भी अपने बच्चों को उस अनुसार ढाले लेकिन हाँ सबके बच्चे ऐसे नहीं होते कि वो अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं वो सारे अपने मन से भी चलते हैं
2: मन से चलते हैं लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं आज बैंक में जॉब करता है वाइफ आ गई बच्ची हो गई लेकिन आज भी ये बड़ा भी कितना भी बुड्ढा हो जाएगा मेरे लिए वही रहेगा मेरी छवि में मुझे वही दिखता है कि मेरा बच्चा है जब इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया अभी भी मैं इसको डांट दूं कुछ भी कह देती हूं कभी कुछ नहीं कहता
1: माता पिता के लिए तो देखिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे
2: हां मेरा कहना मानते हैं अभी भी मैं कह देती हूं ऐसे नहीं वैसे नहीं यूं नहीं मेरे हस्बैंड को भी कह देती हूं मैं क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता ऑफ हो गए थे
1: अच्छा
2: दादी ने इनको पाला था बहुत ऐसी कंडीशन जिंदगी जी है इन्होंने तो मैं ना मेरी थोड़ी आदत खराब है इनको भी कह देती हूं ऐसे नहीं आप इतने बड़े प्रिंसिपल हो ऐसे बैठने का ढंग हो ऐसे बात करने का अभी जैसे गेट पे आए ना तो एक पुलिस वाले भैया आए और भाग के आए और बोले सीधी गाड़ी अंदर जाने दो तो हमने सोचा भाई ऐसे क्या बोले इन सर से मैं पड़ा हुआ हूँ बाहर गेट कीपर पे बैठे ना पुलिस वाले भैया नाम भी बताए बेटे को पता होगा तो उन्होंने कहा सीधी गाड़ी ले जाओ इस सर से पड़ा हुआ हूँ मैं अब इनके क्या तीन अटैक आ गए ना थोड़ा कम बोलते हैं हमेशा 100% रिजल्ट दिया इन्होंने कभी सुख की रोटी नहीं खाई टाइम हो गया रोटी छोड़ के चल देते थे लेकिन स्कूल में कभी शिकायत नहीं आई
1: कहाँ जॉब थी
2: 10 साल तो मूंगथला में रहे
1: जी
2: और 20 साल रेवदर में रहे और 5 साल पामेरा वहां से रिटायरमेंट हुआ VRS लिए 6 महीने पहले अटैक आ गया ना
1: जी जी जी
2: तो फिर VRS दिला दिया हमने
1: प्रिंसिपल के पद पर थे
2: प्रिंसिपल के पद पर
1: चलिए बहुत अच्छी बात है आपके बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं आप कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही उनको क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज
2: यही मैसेज देना चाहूंगी बहनों को कि नारी शक्ति एक ऐसी है जिसको भगवान ने इस तरह से बनाया है पियर और ससुराल दो दो घर को निभाती है छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातें तक उसको याद रहती है उसने मेरे को इस फंक्शन पे ऐसा दिया था वो दिया था मुझे ये करना है मुझे वो करना है नारी शक्ति को अपने आप पे इतना गर्व होना चाहिए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं घर की नौकरानी हूँ मेरा तो यही जीवन है कि मैं उठूँ और सबको सेवाएं करूँ काम करूँ कोई कह रहा है चाय बना दो कोई कह खाना हो रहा है मेरे ऑफिस जाना है मेरे स्कूल जाना है सबका करके भी वो अपने लिए समय निकाले और अपनी पहचान अलग से बना के बताए
1: क्या बात है बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है नारी शक्ति को और ये बहुत ही जरूरी भी है
2: और आज मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व है कि मैंने हाउस वाइफ होके भी नींव की ईंट बनके और कंगूरे झुकाए हैं और जो मेरे अंदर गुण थे वो कैसे लोगों को मालूम पड़ते अगर मैं लोगों से मिलती नहीं और ये बुक लिखती नहीं लोगों के हाथ में मेरी ये किताब जाती नहीं मेरा लेखन कार्य तो उनको कैसे पता पड़ता कि मैं घर के अंदर क्या करती हूँ कैसे रहती हूँ और क्या नहीं करती हूँ कैसे मेरी एबिलिटी मालूम पड़ती सबको
1: जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या जी आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही कीमती समय स्वयं का भी दिया रेडियो मधुबन और श्रोता बंधुओं के लिए और बहुत ही सुंदर अनुभव सभी के साथ शेयर किए हैं, इसके लिए आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में अयोध्या शर्मा, जो आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं, आपने बीए कर रखा है, उम्र आपकी 62 वर्ष है और आपको किस तरह देखिए कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक है और कैसे सफर में आपका जीवन बीता, किस तरह ट्रेन में यात्राओं पर आप जाते थे, कैसे आपको अपने माता पिता के द्वारा शिक्षा संस्कार मिले और आपने किस तरह अपने बच्चों का शिक्षा संस्कार दिए, क्या आज आप एक हाउसवाइफ होकर के भी, का कहना है कि पूरे आबू रोड में आपकी पहचान अच्छी है, सभी आपको जानते हैं मानते हैं। सचमुच में एक गृहिणी से, वो कहते ना कि उम्मीद बहुत ही कम रखते हैं लोग, लेकिन नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है, अगर वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि अयोध्या जी ने किया है। देखिए इनके अनुभव हमने काफी कम सुने हैं, बहुत सारे अनुभव है जो हम अगले रविवार को सुनेंगे और भी, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे अयोध्या जी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 1 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों का स्वधर्म है शांति, तुम्हारा घर है शांति धाम और बाप है शांति का सागर। शांति का सागर बाप आकर के शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं। जिसको सुखधाम कहते हैं वहां सुख और शांति दोनों ही है। आज की दुनिया में कोई अगर राय भी देते हैं शांति के लिए तो भी उनको नोबल प्राइज मिलता है। बाबा कहते बाबा तो प्रैक्टिकल में श्रीमत भी देते हैं और साथ में सुख शांति की दुनिया की स्थापना भी करते हैं, तो सबसे बड़ा प्राइस तो बाबा को ही मिलना चाहिए। लेकिन मनुष्य में पहचान नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि सुख शांति की दुनिया की स्थापना कौन करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया के अंदर बस एक राय देने के निमित्त बने तो भी उनको पीस प्राइज मिल जाता है। दूसरा बाबा कहे, बाबा ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं जहां राधे कृष्ण होते हैं, सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। परंतु सतयुग के अंदर एक महाराजा महारानी का राज्य होता है, लेकिन उस समय और छोटे छोटे राज्य भी जरूर होते हैं। इसीलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण अलग राज्य से था और राधे अलग राजधानी से थी, अर्थात वहां भी छोटे छोटे और राज्य जरूर होंगे और इसीलिए त्रेता अंत तक भी कई ऐसे छोटे छोटे राज्य होंगे जहां पर राजा रानी का राज्य होता है। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऐसे राजाई घराने में जाने का, और उसके लिए बाबा जो श्रीमत देते हैं पावन बनने की, तो बाबा की श्रीमत पर चल पावन जरूर बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलने चाहिए। कौन सी प्राइज? पीस प्राइज भी बाप को मिलने चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशुक को फॉलो कर सके। एक तो पावन बनते हैं, दूसरा जो आशिक बनते हैं वही माशुक बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ में ले जाता हूं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गौ का पूछ पकड़ने से पार हो जाएगा। दिखाते हैं गौ का पूछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूछ की तो बात ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। शिव बाबा ही पतित पावन है, शिव बाबा ही निराकार है। तुम भी

प्राइज मिलती है। तभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे कि शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। जब अशांति की दुनिया है तो बाबा कहे एक अशांत हुआ तो दूसरों को भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमात्मा राम की, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दिल्ली कहते हैं। नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान थी, राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे, और प्रिंस प्रिंसेस भी जरूर होंगे। आठ राजाएं तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाएं और भी होगी, अलग अलग राजाएं भी होंगे। यहां भी देखो कितनी राजाएं हैं, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना, सतयुग में इतने थोड़े थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है, 2500 वर्ष उन्होंने का राज्य चला है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन, बाप ये रूहानी भोजन देते हैं। किसको देते हैं? तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं, अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। गीता ज्ञान से पतित पावन नहीं होते, गीता के भगवान को कहा जाता है पतित पावन। ये अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी

लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। गीता को ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्र आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सत्युग में तो ब्राह्मण होते नहीं, सत्युग में देवी देवताएं हैं, ब्राह्मण होते नहीं, वहां कोई और जाति नहीं है, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना इसकी विष्णु पूरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है चार, श्रीमद् भगवत गीता है नंबर वन शास्त्र, जिससे नंबर वन धर्म की स्थापना होती है। फिर होती है इस्लामी बौद्धी, एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है, कोई परमात्मा की मत नहीं है, दिव्य आत्माओं की मत है, धर्म पिताओं की मत है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धी शास्त्र नहीं कहा जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और स्थापना कब होती है? बाबा के स्थापना होती है अंत में, ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाए से सर्व की सदगति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा, बाप भी है टीचर भी है, सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर तो नहीं कहेंगे, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, सर्वगुण संपन्न बनाया, तो वह टीचर भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उसने ऐसा बनाया तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो। हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे से शरीर धारण किया है, बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूछती है, पुकारते भी है, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं, शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, इसलिए बाबा कहे, वो शिव भगवान कहते ईश्वर कहते हैं, बस ऐसे ही याद करते हैं, उनके बुद्धि में ये नहीं आता है बाबा है, क्योंकि बाबा अगर आए तो वर्षा भी आए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं।
अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मातन में आकर समझाते हैं, त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, बाप की महिमा बहुत है। इनडायरेक्ट रूप में मनुष्य कितनी बाप की महिमा करते हैं जानते नहीं। गीत में भी सुना, तू प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, ऐसी महिमा जिसकी हो वो बाबा कितना प्यारा है। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप, कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है हे पति पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, यह है ही नरक, इसको रौरो नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते गौ का पूछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब जानवर की तो बात ही नहीं है। तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है, तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो, तुम जानते हो आत्माएं आशिक है परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो आए हैं लेने लिए, कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा, कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? बाबा पूछते क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए,
बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं, आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं, दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है, बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो कि हमें इसको फॉलो करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता, शिव बाबा प्रतिज्ञा करते हैं पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पति पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं, गंगा तो पति पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहे अभी पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे, बाबा को फॉलो करेंगे तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे परमधाम में, तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? शिव बाबा पूछते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ तो तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूं। इस सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? सतयुग में जो देवी देवताएं रहते हैं इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं, हमारा ये बर्थ प्लेस है। बाबा को भी नाज है भारत पर कि हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, यह सर्व के पति पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना उच्च है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूं वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ, किस लिए? वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बिना याद के आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे से प्यारा है ऐसा प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचना का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। न्यारा प्यारा होकर के खेल दिखना है। आज का व्यक्त इशारा है, जुलाई मास का ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। अच्छा, ओम शांति।